0: Yep. Yeah,
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सुंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा, एक कोई भी घटना, कोई भी तस्वीर हर सेकंड में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और कभी कभी तस्वीरों के पीछे ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इसे सच मान लेते हैं, इसे शेयर कर लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आगी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई का ये वीडियो है जब दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर ही फेंक दिया। क्या इस दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धस गई और गड्ढा हो गया। क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि यह वीडियो 20 जुलाई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन का है जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर फेंक दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च किया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। अब इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षा बल की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोले को वापस फेंकते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि सोनम वांगचुक जी के एक युवा समर्थक की हिम्मत देखकर वहां मौजूद युवा खुश हुए, आंसू गैस का गोला युवाओं पर फेंका, एक छात्र ने अपनी हिम्मत दिखाकर वापस पुलिस की तरफ फेंक दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो 20 जुलाई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान का है जिसमें एक प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर ही फेंक रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में दिखाई दे रही एक इमारत पर डॉल्फिन एजुकेशन का बोर्ड नजर आया। इस सुराग और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमने जब इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो गूगल मैप्स पर डॉल्फिन एजुकेशन हमने खोजा। वहां हमें वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली इमारत और उसके आसपास का दृश्य गूगल मैप से मेल खाता बिल्कुल नजर नहीं आया, जिससे पुष्टि हुई कि ये नेपाल का है। मतलब ये कि वायरल वीडियो नेपाल का हो सकता है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है और ये घटना कब की है। दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर ये वीडियो मिला। 9 सितंबर 2025 को ये वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें वायरल क्लिप भी देखने को मिला। वीडियो को नेपाल के जेंजी आंदोलन का बताया गया था। एक यूट्यूब चैनल पर 8 सितंबर 2025 को वायरल वीडियो मिला यहाँ पर भी इसे नेपाल के जेंजी आंदोलन का बताया गया था। सर्च के दौरान हमें कई वेबसाइटों पर इसके बारे में प्रकाशित खबरें मिली, जिनमें शामिल तस्वीरें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य से काफी हद तक समान है। खबरों के मुताबिक यह तस्वीर सितंबर 2025 में नेपाल में सरकार विरोधी जेंजी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की है। इस आंदोलन में 77 लोगों की मौत हुई थी। इसी दौरान काठमांडू में संसद भवन के पास प्रदर्शन में शामिल 23 वर्षीय राशिक खटीवाड़ा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो दिल्ली के सीजेपी प्रदर्शन का नहीं बल्कि सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जेंजी आंदोलन का है। फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इस तस्वीर को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धस गई और गड्ढा हो गया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अब इसी एक्सप्रेसवे से जोड़कर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें हाईवे टूटा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तस्वीर में पानी भरा हुआ भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को शेयर करके केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए दावा किया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धस गई है और गड्ढे हो गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है, जहां पर एक हिस्से में सड़क धस गई और गड्ढा हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। तो ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि राज्यसभा में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि एक्सप्रेसवे पर दो गड्ढे पाए गए थे। हालांकि सरकार ने कहा है कि सड़क अभी 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में है, इसीलिए निर्माण कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी के तहत बिना सरकारी खर्च के उसकी मरम्मत कर दी है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड वो तय अवधि होती है जिसमें सड़क निर्माण से जुड़ी किसी भी तकनीकी खराबी या निर्माण दोष को ठीक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। इस दौरान मरम्मत का पूरा खर्च सरकार नहीं बल्कि निर्माण कंपनी उठाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए ये अवधि 10 साल तय की गई है। अब हमें यह जानना था कि वायरल तस्वीर के जरिए गड्ढे और सड़क धंसने का जो दावा किया जा रहा है वो वाकई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल तस्वीर को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई खामियां नजर आई जिसमें हमें दावे की असलियत पर संदेह हुआ। तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें यह नजर आ रहा है कि कारें दाएं ओर चल रही हैं लेकिन रोड साइन पीछे की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो फिर वायरल हो रही तस्वीर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम दावे की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा कहीं नहीं मिली। अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के गड्ढे बने होते तो ये खबर मीडिया में कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होती। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल फोटो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाई मॉडरेशन टूल का इस्तेमाल किया। इस टूल की मदद से स्कैन करने पर 99.9% से ज्यादा संभावना इस बात की जताई गई कि तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है। हमने एक और टूल साइट इंजन की मदद से भी फोटो को सर्च किया। साइट इंजन के एनालिसिस में 99% तक तस्वीर के AI से बने होने के संकेत सामने आए। जब वायरल तस्वीर को ट्रूथ स्कैन टूल की मदद से चेक किया गया तो इसने भी इसे AI निर्मित बताया। इसके एनालिसिस में 97% तक तस्वीर के AI से बने होने की संभावना व्यक्त की गई। इस तरह जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुआ। दिल्ली से देहरादून के बीच बने नए एक्सप्रेसवे पर गड्ढे होने के दावे से एआई तस्वीर वायरल की जा रही है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: मुंबई में मानसून की बारिश हर साल कई हैरान करने वाले नजारे सामने लेकर आती है, लेकिन इस बार वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। इस वीडियो में रेलवे ट्रैक पर भरे पानी के बीच मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। यही अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान हैं और मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण मछलियां तैरते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: महाराष्ट्र में मॉनसून एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगभग दो हफ्ते मौसम साफ होने के बाद मॉनसून की ये वापसी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर 41 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कई मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मुंबई में हालिया भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरती दिख रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेलवे ट्रैक के आसपास काफी मात्रा में पानी भरा नजर आ रहा है। इसी पानी में कई मछलियां तैरती दिखाई दे रही हैं। आसपास मौजूद लोग इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। बारिश के बीच ट्रैक पर मछलियों का ये नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। इस दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और इसे जब हमने ध्यान से सुना तो ये मराठी लगा। मतलब ये कि वायरल वीडियो मुंबई का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर घटना मुंबई के किस इलाके की है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानेंगे।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान ये वीडियो एक अकाउंट से 9 जुलाई 2024 को पोस्ट किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मुंबई का बताया गया था। नौ जुलाई 2024 को पोस्ट किए गए इस वीडियो में हमें वीडियो में मराठी भाषा भी सुनाई दी। हालांकि वीडियो में दिख रहे दृश्यों में हमें किसी स्टेशन का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया। जांच में हमें एक फेसबुक अकाउंट पर भी 10 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। इस वीडियो में भी इसे मुंबई का ही बताया गया, लेकिन ये किस स्टेशन की घटना है इसका जिक्र नहीं किया गया। सर्च के दौरान हमें कई मीडिया आउटलेट्स पर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में खबरें मिली, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में पुख्ता तौर पर लोकेशन का जिक्र नहीं किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हुआ कि मुंबई में हालिया में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरने के दावे से वायरल ये वीडियो पुराना है और कम से कम 2 साल से इंटरनेट पर मौजूद है।
2: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के इस बार आपको लिए चलेंगे वायरल। दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का अनोखा तरीका लोगों का दिल जीत रहा है। पढ़ाई को दिलचस्प बनाने और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए उन्होंने ऐसा देसी आइडिया अपनाया है जिसके हर तरफ तारीफ हो रही है। उनका बनाया हुआ सेल्फ अटेंडेंस बोर्ड न सिर्फ बच्चों को बेहद पसंद आ रहा है बल्कि इंटरनेट पर भी लोग इसे शानदार और प्रेरणादायक पहल बता रहे हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि बोर्ड पर हर बच्चे के लिए एक अलग माचिस की डिब्बी लगी हुई है और डिब्बी के ऊपर वाले हिस्से पर उस छात्र की फोटो चिपकाई गई है जिससे बच्चे आसानी से अपनी जगह पहचान सके। जब कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तब डिब्बी पर लाल रंग के साथ एब्सेंट लिखा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल पहुंचता है वो अपनी डिब्बी को हल्का सा ऊपर खिसका देता है। इसके बाद नीचे से हरे रंग की पट्टी दिखाई देती है जिस पर प्रेजेंट लिखा होता है। इस तरह बच्चे अपनी अटेंडेंस खुद दर्ज करते हैं। पहली नजर में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है लेकिन इसका असर काफी बड़ा है। टीचर का कहना है कि इस आसान से प्रयोग ने बच्चों में स्कूल आने का उत्साह बढ़ा दिया है। अब बच्चे सुबह स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले अपना अटेंडेंस अपडेट करने के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्हें ये काम किसी खेल जैसा लगता है इसलिए वे इसे खुशी खुशी करते हैं। एक मासूम बच्ची की छोटी सी इच्छा और पिता के प्यार ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक नन्ही बच्ची से होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा पाउडर का डिब्बा होता है। वो पूरे उत्साह के साथ घर के एक एक सदस्य के पास जाती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है कि क्या मैं आपको पाउडर लगा दूं? उसके चेहरे पर खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई देती है। वो चाहती है कि कोई उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा करने का मौका दे। सबसे पहले बच्ची अपने भाई के पास पहुंचती है। वो उससे प्यार से पूछती है लेकिन भाई किसी वजह से मना कर देता है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद बहन मान जाएगी लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है।
7: नहीं, नहीं, नहीं।
6: लगातार दो बार मना होने के बाद बच्चे के चेहरे पर हल्की मायूसी जरूर दिखाई देती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसके मासूम कोशिश वहीं खत्म नहीं होती। कुछ पल बाद वो अपने पापा के पास जाती है और चेहरे पर वही उम्मीद लिए वो उनसे भी पूछती है कि क्या वो उन्हें पाउडर लगा सकती है। जैसे ही पिता उसकी बात सुनते हैं वे बिना किसी झिझक के मुस्कुरा देते हैं और तुरंत हामी भर देते हैं। उनकी इस छोटी सी हामी ने बच्ची की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद बच्ची पूरे ध्यान और प्यार से अपने पिता के चेहरे पर पाउडर लगाती है। वो इस काम को इतने मन से करती है जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो। पिता भी पूरे धैर्य के साथ बैठे रहते हैं और अपनी बेटी की खुशी में शामिल हो जाते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बताती है कि उनके लिए ये पल कितना खास है।
7: दादी, आपकी स्किन ऐसी क्यों है?
8: हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए।
7: अच्छा, तो बूढ़े होने से क्या होता है?
8: बूढ़े होने पर कमी हो जाती है, शरीर की कमी हो जाती है।
7: शरीर के खून के?
8: ये शरीर है हमारा। हाँ। ये आपका शरीर है।
7: हाँ।
8: तो मेरे शरीर की अब कमी हो गई है।
6: सोशल मीडिया पर एक क्यूट वीडियो वायरल है जिसमें एक नन्हा बच्चा अपनी परदादी से उनकी झुर्रियों के बारे में पूछता है।
7: दादी, आपकी स्किन ऐसी क्यों है?
8: हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए।
7: अच्छा, तो बूढ़े होने से क्या होता है?
8: बूढ़े होने पर कमी हो जाती है, शरीर की कमी हो जाती है।
7: शरीर के खून के?
8: ये शरीर है हमारा। हाँ। ये आपका शरीर है।
7: हाँ।
8: तो मेरे शरीर की अब कमी हो गई है।
6: दादी का भोला और प्यार भरा जवाब सबका दिल जीत रहा है। इस मासूम बातचीत को देख यूजर्स भावुक हो रहे हैं और अपने दादा दादी को याद कर रहे हैं।
7: दादी, आपकी स्किन ऐसी क्यों है?
8: हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए।
7: अच्छा, तो बूढ़े होने से क्या होता है?
8: बूढ़े होने पर कमी हो जाती है, शरीर की कमी हो जाती है।
7: शरीर के खून के?
8: ये शरीर है हमारा। हाँ। ये आपका शरीर है।
7: हाँ।
8: तो मेरे शरीर की अब कमी हो गई है, खाना कम खाते हैं, पानी कम पीते हैं।
7: अच्छा।
8: काम नहीं कर पाते हैं तो कमियां हो जाती है।
7: हाँ।
8: हर बूढ़े आदमी की।
7: हाँ।
8: देखो हमारे मुँह
7: टेढ़ा मेढ़ा तो हो गया, इसीलिए। और हाथ भी हो गया
8: यहाँ पे, पैर की अंगूरी भी टेढ़ी हो गई।
7: पैर की उंगली भी टेढ़ी हो गई,
8: लट गई है।
6: इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को बचपन की यादों में लौटा दिया है। स्कूल जाते बच्चों से भरा साइकिल रिक्शा देखकर यूजर्स भावुक हो गए। मासूम मुस्कान, दोस्तों का साथ और रिक्शा चालक की मेहनत ने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मोबाइल कैमरा लेकर एक साइकिल रिक्शा के पास पहुंचता है। रिक्शे के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, सभी अपने स्कूल बैग के साथ आराम से बैठे हुए नजर आते हैं। तभी उनकी एक और नन्ही साथी आती है और बाकी बच्चे तुरंत उसके लिए जगह बना लेते हैं। ये छोटा सा दृश्य इतना प्यारा लगता है कि देखने वाला खुद ब खुद मुस्कुरा देता है। बच्चे कैमरे को देखकर शर्माते भी हैं और फिर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनके चेहरों की मासूमियत ही इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों केरल के एक कॉलेज का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां छात्रों ने अपने केयर टेकर के लिए कुछ ऐसा किया कि उनकी आंखें नम हो गई। छात्रों ने अपने कॉलेज के केयर टेकर को एक बेहद खास और भावुक तोहफा दिया। ये मामला केरल के सेंट ग्रेगोरियस डेंटल कॉलेज का है, जहां छात्रा हरिप्रिया हमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलेज के केयरटेकर जॉनी चेट्टन के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया। हरिप्रिया ने इस पूरे पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें छात्र जॉनी चेट्टन को घेर कर खड़े नजर आते हैं और उन्हें एक पैक किया हुआ गिफ्ट थमाते हैं। वीडियो में जॉनी चेट्टन को धीरे धीरे और सावधानी के साथ गिफ्ट खोलते देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर उत्सुकता भरी मुस्कान थी। जैसे ही रैपिंग हटी, अंदर से खुद उनकी ही हाथ से बनाई गई एक पेंटिंग निकली, जो छात्रों ने खुद उनके लिए तैयार की थी। अपनी ही पोर्ट्रेट देखकर जॉनी चेट्टन का चेहरा भावनाओं से भर गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी छात्रों का शुक्रिया अदा किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने पालतू कुत्तों को ही क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लिया। वीडियो किसी पहाड़ी ग्रामीण इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ बच्चों के पास क्रिकेट खेलने के लिए पूरी टीम नहीं थी, ऐसे में उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को ही खेल में शामिल करने का फैसला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे प्लास्टिक के बल्ले और लकड़ी की स्टंप से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके साथ मौजूद जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते भी पूरे जोश के साथ खेल का हिस्सा बने हुए हैं। वीडियो में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुत्ते सिर्फ मैदान में घूम नहीं रहे, बल्कि खेल को समझते हुए नजर आते हैं। जैसे ही बल्लेबाज शॉट लगाता है, कुत्ते तेजी से गेंद के पीछे दौड़ पड़ते हैं, गेंद पकड़कर वापस बच्चों के पास लाते हैं और कभी कभी रन रोकने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो लंबे समय से बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हों। उनकी फुर्ती और समझदारी देखकर हर कोई प्रभावित हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का शुभ पर्व भी अब आने ही वाला है, तो ऐसे में बापा के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। अमरावती की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल यहां पर कलाकार दिन रात मेहनत करके इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं और खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश और विदेशों तक है।

0: रंग बिरंगी पापा की प्रतिमाएं, अलग अलग आकार के आसन पर विराजे गणपति, कहीं बारीक नक्काशी का काम चल रहा है तो कोई रंगों से पापा की दिव्यता को निखार रहा है। जहाँ हर हाथ में कला है और हर चेहरे पर आस्था की चमक, अमरावती की इस कार्यशाला में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। गणेश चतुर्थी में भले ही अभी वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमरावती की जिराफे आर्ट कार्यशाला में इस बार भी आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए यहां खास इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
1: एक तो अभी मट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग कलाकारों की सालों की मेहनत और श्रद्धा की कहानी बयां कर रही है। अमरावती की कार्यशाला आस्था, कला और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा संगम बन गई है कि यहाँ होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक भी पहुँच चुकी है। गणेशोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी है। इसलिए तो हर प्रतिमा में कलाकार सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ते, बल्कि उसमें अपनी भक्ति, मेहनत और भावनाएं भी उकेर देते हैं, ताकि जब बाप्पा घर घर विराजे तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचे। अब बस बाप्पा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा।
2: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ। यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कौन आपका गुरु हो सकता है, किसके अंदर गुरु होने के गुण विद्यमान होते हैं, गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या है गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देश भर में दिखने लगे सावन के रंग, हरिद्वार से अनोखी नोटों वाली कांवड़ लेकर चला शख्स, शिवालय में अर्पित की जाएगी कुल धनराशि। महाकाल मंदिर में पहली बार मिल रहा है दक्षिण भारतीय प्रसाद, अन्न क्षेत्र में परोसा जा रहा है इडली, सांभर और पायसम, सावन में श्रद्धालुओं को मिलेगा फलाहार। के साईं दरबार में गुरु पूर्णिमा पर्व का शुभारंभ, आंध्र प्रदेश के भक्त ने अर्पित किया 642 ग्राम सोने का मुकुट, 1,03,00,000 रुपए आंकी गई कीमत। अयोध्या में 52 एकड़ जमीन पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर म्यूजियम, देश विदेश के मंदिर शैलियों की दिखेगी झलक, अक्टूबर में शुरू हो सकता है निर्माण। रुद्रप्रयाग में बड़ा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, सैलाब में फंसी महिलाओं का एसडीआरएफ के जवानों ने किया सफल रेस्क्यू, आसपास के लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, जीएनडी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। सावन के पावन महीने की दस्तक सुनाई देने लगी है। फिजा में भक्ति और श्रद्धा की रौनक साफ तौर पर महसूस की जा रही है। देश भर के प्रसिद्ध शिवालयों में सावन की अगवानी की गर्मजोशी दिखाई दे रही है। इसी बीच कांवड़ यात्रा की रौनक भी साफ तौर पर नजर आ रही है। भगवान भोले के भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। मान्यता है कि सावन महीने में गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि शिव के भक्त सावन महीने में गंगा जल के लिए लंबी पद यात्रा करते हैं और इस दौरान पूरी तरह से नियम व्रत का पालन भी करते हैं। सावन की अगवानी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: सावन का पावन महीना यूं तो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन भगवान भोले को अत्यंत प्रिय इस पवित्र महीने की अगवानी में प्रकृति मनमोहक हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के साथ वसुधा का श्रृंगार पहले ही कर चुकी है। क्योंकि सावन का महीना शुरू होने के अवसर पर पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कावड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हों। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म हैं। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रमेय अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में भगवान भोले का कलिमल हरणी गंगा के जल से एक बार अभिषेक कर देने से आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को दैहिक दैविक और भौतिक यानी त्रिविध तापों से मुक्ति दे देते हैं। कहते हैं कि भगवान ने सावन के महीने में ही हलाहल पिया था और गरल के प्रभाव से उनके कंठ में जलन होने लगी थी। मान्यता है कि अभिषेक से भगवान भोले को हलाहल के जलन से शांति मिलती है।
1: भगवान ने जब हलाहल विष पी लिया, भगवान के कंठ में स्थापित हुआ, तो भगवान को अत्यंत उससे पीड़ा होती है। तो जो भक्त भगवान के हैं, भगवान की इस पीड़ा को, भगवान की शांति मिले उनको इस पीड़ा से, इस वजह से उनको जलाभिषेक करते हैं। शीतल जल विशेष तौर पे कहा जाता है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि मौसम भी इस प्रकार का होता है कि मंदाग्नि हो जाती है, लोगों के शरीर में कुछ भी खाया पिया नहीं पचता, विशेष तौर पे जो उमस लगातार बनी रहती है। तो जलाभिषेक करने से, जल अर्पण करने से भगवान शिव को आनंद प्राप्त होता है और जो व्यक्ति इनको इस समय जलाभिषेक करता है उसकी मनवा इच्छा मनोकामना भगवान निश्चित पूर्ण करते हैं।
0: भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि माँ गंगा का धरती पर अवतरण शिव की जटा से ही होता है। यही वजह है कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त गंगा जल लेने के लिए कावड़ लेकर निकल पड़ते हैं। पवित्र पात्र में गंगा जल भरने के लिए महादेव के भक्त 100-200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस दौरान अत्यंत कठिन नियम व्रत का पालन करते हैं। शिव भक्त के लिए कांवड़ शिव स्वरूप ही हो जाता है, लिहाजा वो कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान मन सात्विकता के भाव से भरा रहता है। पूर्ण पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य माना गया है। इस दौरान जुबां पर बम बम भोले का जयकारा और मन में शिव स्वरूप का ध्यान बना रहता है। इस तपस्या की पूर्णाहुति तब होती है जब कांवड़ के साथ लाए गए गंगा जल से भगवान भोले का अभिषेक किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि सावन के महीने में भगवान भोले के सिद्ध धामों में श्रद्धावान कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है और इसके लिए मंदिर प्रबंधन को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। भगवान शिव के जागृत धाम महाकाल लोक में कांवड़ियों की सुविधाजनक जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं।
2: श्रावण के माह में अत्यधिक संख्या में कांवड़ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए एवं जल अर्पण करने के लिए आते हैं, इसलिए सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक दिन पूर्व अनुमति प्राप्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्री बिना अनुमति के आते हैं उन्हें मानसरोवर से प्रवेश दिया जाता है और जिनकी पूर्व में सूचना मिल जाती है उन्हें विशेष हर सिद्धि एवं एक नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ यात्रियों के लिए जल अर्पण करने हेतु मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों से जल पात्र स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभा मंडप में, टनल में एवं कार्तिक मंडपम के अंदर जल पात्र रखे गए हैं।
0: सावन का महात्म्य ही ऐसा है कि इसकी अगवानी में भगवान शिव के धाम पहले से ही गुलजार हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा तट पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सावन की दस्तक के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। गंगा तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर भजन कीर्तन और भोले के जयकारों के साथ गुलजार है। मंदिर की फिजा में भक्ति का भाव इस कदर घुल गया है कि यहाँ आते ही मन में श्रद्धा का संचार होने लगता है।
3: ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पे ये सावन में भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है, भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे और सारी इच्छाएं पूरी होती है भोले बाबा के दरबार पे। और यहाँ काफी दूर दूर से लोग भी आते हैं, ऐसा है माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: इस बार सावन के महीने के लिए मनकामेश्वर मंदिर में कुछ विशेष नियम और ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। मनकामेश्वर मंदिर में इस बार पॉलीपैक दूध या डिस्पोजेबल पैक में लाए गए दूध से अभिषेक नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह की पॉलीथीन से लेकर मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, सावन के महीने में रुद्राभिषेक के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किए गए हैं। पुरुषों की धोती और महिलाओं को साड़ी या सूट में ही रुद्राभिषेक की अनुमति दी जाएगी। सावन महीने में प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं।
4: यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इस बार सावन 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 4 सोमवार, 2 प्रदोष और नाग पंचमी, इसी बीच में मुख्य पर्व जो होते हैं सावन के, वो पड़ते हैं और इन्हीं में अक्सर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से वो सावन में सभी दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। वैसे तो भगवान के रुद्राभिषेक का विशेष फल बताया गया है सावन में, और सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने से रुद्राभिषेक तो नहीं होता है, अन्य दिनों में रुद्राभिषेक भी निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। कांवड़ लेकर भी लोग यहाँ आते हैं, कांवड़ियों की का भी जलाभिषेक यहाँ कराया जाता है, उसकी भी व्यवस्था अलग से की जाती है। तो यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रशासन के द्वारा पूरी की जाती हैं।
0: सावन में माँ गंगा की गोद में बसे हरिद्वार की आध्यात्मिक रौनक भी काफी बढ़ जाती है। दरअसल उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से के शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार ही आते हैं और यहाँ से अपने पात्र में पवित्र गंगा जल भरकर भगवान भोले के अलग अलग मंदिरों में पहुँचकर जलाभिषेक करते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में हरिद्वार कांवड़ियों का केंद्र बन जाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कांवड़ियों के लिए इस बार कुछ खास अपील की है।
5: इस समय कांवड़ मेला होने जा रहा है और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ियों की पूजा तक की थी, उनके चरण तक गोए थे, साक्षात कांवड़ियों को भगवान का स्वरूप माना गया था। और मैं भगवान शिव के गुणों को निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, कृपया हरिद्वार में आए, शांति बनाए रखें, आपकी यात्रा जो हो बिल्कुल नशा मुक्त हो और कम से कम जल लेने का प्रयास करें। दो दो मटके बहुत है, 10-10 मटके जल आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जान है तो जान है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कांवड़ी भाई व्रत भी रखते हैं, जब ये कांवड़ यात्रा में जल उठाते कहीं हमारे भगवान शिव के गण है जो व्रत रखते उपवास रखते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप होटल में जहाँ खाना खाते हैं वहां देखे किसका होटल है, फलहार आप खाते हैं किसका होटल है, वो पहचान करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि आपका धर्म खंडित हो, ये स्वयं आपको इसकी रक्षा करनी है।
0: सावन में झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम का महात्म्य भी काफी बढ़ जाता है। यहाँ दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं। इस दौरान वो लंबी पदयात्रा करते हैं और मंदिर पहुंचकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 के शुभारंभ और पहली सोमवारी पर संभावित भारी भीड़ को देखते हुए ही देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर नई टाइमिंग और गाइडलाइन जारी की है। इतना ही नहीं, पुलिस के जवान या दूसरे सरकारी विभाग के लोग अपने पद का दुरुपयोग कर आम श्रद्धालुओं के लिए परेशानी खड़ी न कर पाए, इसकी भी खास व्यवस्था इस बार की गई है।
6: बहुत सारे जवान वो जाके निकास द्वार पे खड़े हो जाते हैं मंडे के दिन कि उनको जलार्पण करना है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो मंदिर के अंदर जो भी जिनका भी डेपुटेशन है उनको अलग से हमने बैज और सब कुछ दे रखा है। अगर उसके अलावा हमको कोई भी दिख गया वहां पे तो वो सबका फेस कैमरे में रिकॉर्ड होगा और मैं इंश्योर करूंगा कि सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो इसके लिए आप रेडी रहिए और किसी भी ऑफिसर किसी भी जवान के कारण कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो पूरे सर्विस में वो धब्बा उनके सर्विस बुक में चला जाएगा और मैं इंश्योर करूंगा कि उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा वो ऑफ हाईएस्ट डिग्री होगा, ये मैं इंश्योर करूंगा।
0: साफ है कि सावन को देखते हुए भगवान शिव के सभी सिद्ध धामों पर हर तरह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उधर भगवान भोले के भक्त भी कांवड़ यात्रा के लिए कमर कस चुके हैं। जाहिर है हिंदुस्तान की फिजा में भक्ति के साथ साथ हर हर बम के जयकारे गूंजने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब अमृत के साथ हलाहल निकला तो उस हलाहल यानी विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान किया। विष पीने से उनका गला नीला पड़ गया जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब विष पान किया तो वो सावन का ही महीना था और यही वजह है कि सावन के महीने में उनका अभिषेक करने से वो भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी विश्वास की वजह से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। शिव के भक्तों के लिए कांवड़ महादेव का ही स्वरूप होता है, इसीलिए कांवड़ की पवित्रता खंडित ना हो इसका वो विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं।

0: सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई दिक्कत पेश न आए, साथ ही शरारती तत्वों द्वारा उनकी पवित्रता खंडित न हो पाए, प्रशासन को इसका भी ध्यान रखना होता है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले होटल, रेस्तरां और दुकानों में प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें QR कोड स्कैन कर उनका सत्यापन कर रही हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
1: बहुत क्लियर है कि इनके QR कोड वगैरह हमारी टीम स्कैन कर ले रही है, जिससे कि उस टाइम पे कोई भी असहज स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी और का नाम और इस तरह से दिक्कत जैसे लास्ट टाइम पे फेस की थी स्पेशली मुजफ्फरनगर में। तो हम लोग अभी से सचेत हैं इसमें, और रेट लिस्ट वगैरह के लिए पहले ही बोल दिया गया है, उसको अच्छे से डिस्प्ले कर दें, इसमें बाद में किसी भी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न ना हो और विवाद का कारण बने।
0: दरअसल सावन का महीना भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने का अलौकिक अवसर होता है। भक्ति में पवित्रता की कसौटी सबसे कठिन होती है। श्रद्धा और भक्ति ईश्वर की वो सौगात है जो तर्कों से परे होती है। भगवान शिव के प्रति भक्ति के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो सामान्य मन बुद्धि के लोगों को हतप्रभ कर सकते हैं। अब घुटनों के बल चल रहे 53 साल के इस शिव भक्त को देख लीजिए। मेरठ के रहने वाले हरपाल नाथ रामराज ने शिव की भक्ति में अपने जीवन को ऐसे समर्पित कर दिया है कि ये घुटने के बल ऐसे ही चलकर हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां से गंगा जल लेकर काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जाकर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान ये करीब 2400 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही करेंगे। इस दिव्य अलौकिक यात्रा सम्पन्न करने में इन्हें 411 दिन का समय लगेगा।
2: किधर जा रहे हो?
3: फिर महाकाल जाएंगे, उज्जैन, फिर पशुपतिनाथ जाएंगे। 411 दिन की यात्रा।
2: 411 दिन की यात्रा। कितनी उम्र?
3: चल लो,
2: उम्र कितनी है?
3: 53।
2: तो ये क्या क्या सोच करके आपकी कर रहे
3: हैं? तीसरी हमारी तीसरी है।
2: अच्छा, तीसरी है।
0: भक्ति का ऐसा अनुपम स्वरूप आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि में ही देखने को मिल सकता है। कठिन तपस्या और नियम के जरिए भगवान को प्रसन्न करने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। पर क्या आपने कभी सोचा कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त कांधे पर इतना भारी गंगा जल लेकर क्यों मीलों पैदल चलते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी भोले के भक्तों के चेहरों पर शिकन तक क्यों नहीं आती? दरअसल अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाकर शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल इसलिए भरकर लाते हैं ताकि सावन की शिवरात्रि के दिन वो अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी तिथि से 4 महीने के लिए नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव ही पालन और संहार का कार्यभार संभालते हैं।
4: जब भगवान शिव जब ये व्यवस्था संभाल लेते हैं चातुर्मास अर्थात 4 महीने के लिए सृष्टि की, भगवान नारायण जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस धरती का संहार ही नहीं जो भगवान शिव की विशेषता है, साथ में पालन भी भगवान शिव करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप है। तो इन 4 महीने भगवान शिव इस धरती के ऊपर रहकर पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। जैसे श्रावण मास में उन्होंने अपने ससुर भगवान दक्ष को ये आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि श्रावण मास में मैं दक्षेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित रहकर लोगों का कल्याण करूंगा। तो इसलिए भी और इसी मास में चूंकि है ना भगवान शिव ने इस धरती पर कई अलग अलग स्वरूपों में प्रकट हुए हैं तो उनका भी आशीर्वाद इस समय श्रावण मास विशेष हो जाता है।
0: सावन में भगवान भोले के अभिषेक के इतने ज्यादा महत्व के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विश्वपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव के अभिषेक की परंपरा है।
4: ऐसा माना जाता है कि इसी मास में भगवान ने हलाहल पिया था, नीलकंठ उनको नाम मिला था। श्रावण मास में इसीलिए जलाभिषेक का विधान है। भगवान को जल अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ में एक और विशेष बात, माता सती को पहली बार श्रावण मास में ही भगवान ने दर्शन दिए थे जब सती स्वरूप में माता उनकी तपस्यारत थी उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए।
0: इस बात का बेशक आपको कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार ना दिखे, लेकिन भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि उन्हें सावन के पावन महीने में भगवान भोले का अभिषेक करने के प्रत्यक्ष लाभ की अनुभूति होती है। दरअसल भगवान भोले की भक्ति की शक्ति ही अनुभूति तर्क से परे है। सच्चाई यही है कि ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है, और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन में जलाभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। सनातन के संदर्भों में भी सावन की अद्भुत महिमा बताई गई है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ वीर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए उम्मीद यही करते हैं कि महादेव की असीम कृपा आप सबको यूं ही प्राप्त होती रहे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: करते हैं मौसम की, जिसका मिजाज उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के कई राज्यों में बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। लेकिन पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसका असर मैदानी राज्यों में भी

0: जुलाई के इस आखिरी हफ्ते में मॉनसून सुपर एक्टिव है, जिसके चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बारिश देखने को मिल रही है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हो रही इस बारिश से तमाम नदियां, नाले और झरने उफान पर हैं, जिसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आई है, जहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है और तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं, जिसे देखते हुए लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
1: पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध भगवान शिव की कोटेश्वर गुफा में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कोटेश्वर गुफा के बाहर बहने वाली माँ अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है।
0: पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी भारी बारिश के कारण ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 जुलाई तक प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पे इसी दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है, देखिए 30 और 31 जुलाई को काफ़ी सक्रिय रहेगा और इस चलते हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो सालों में देखने को मिलेगी। अगर 30 की बात करें, 30 जुलाई की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना एक दो सालों में। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, यहाँ के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जो मेन एक्टिविटी है वो 29 जुलाई की देर रात से लेकर 31 जुलाई तक काफ़ी सक्रिय रहेगा।
0: बात अगर मैदानी राज्यों की करें तो चंडीगढ़ से लेकर पंजाब तक, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर यूपी तक बारिश देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में कहीं जोरदार बारिश तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
3: मौसम जो है वो ठीक हुआ है क्योंकि काफी ह्यूमिड कंडीशंस थी, गर्मी काफी थी, लेकिन अब टेम्परेचर काफी डिप हुआ है। लेकिन बारिश जो है काफी हैवी रेनफॉल हुआ है और काफी दिनों से उम्मीद की जा रही थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज सुबह से ही चंडीगढ़ में जो है बारिश लगातार हो रही है और सड़कों पे आप देख सकते हैं पानी भी जो है भरना शुरू हो गया है। हालांकि लोगों के लिए राहत की खबर है क्योंकि चंडीगढ़ में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये बारिश से लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है।
0: वहीं दिल्ली NCR के शहरों में भी बीते कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे और बारिश की राह देख रहे थे। लोगों का ये इंतजार आज खत्म हुआ। सुबह जब लोग सोकर उठे तो आसमान में काले घने बादलों का डेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, रिमझिम फुहारों का दौर तेज बारिश में बदल गया, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिल गया।
4: मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करवट पूरी तरीके से ले चुका है। काले बादल सुबह से ही इसी तरीके से आसमान में लगातार नजर आ रहे थे और अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की भारी वर्षा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और ये पहले से अनुमान था कि बीच में चाहे मानसून ने थोड़ी सी ब्रेक ली हो, लेकिन एक बार मानसून फिर से वापस से दस्तक देगा और इसी तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो होती हुई दिखेगी। बात चाहे सभी मैदानी राज्यों की जाए, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली NCR, हर तरफ जो है इस वक्त भारी वर्षा की जो है शुरुआत हो चुकी है और आज पूरे दिन इसी तरीके से मौसम रहेगा, जिसके साथ तापमान में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कनॉट प्लेस की, तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में समूचे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का ये दौर जारी रह सकता है, खासकर पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
5: ओवरऑल आप बात करें तो इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। अगर ये आप फिगर के

0: माध्यम से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज्यादातर हिस्सा ईस्ट इंडिया का इधर ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है और बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर जा रहा है इस रीजन के लिए, और इसके अलावा अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, जिसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। इवन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, और हिमालय की बात करें आने वाले 3 से 4 दिन और स्पेसिफिकली उत्तराखंड हिमाचल, वहाँ वेरी हैवी विंड 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रह सकते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादातर हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा।
1: अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सही साबित हुआ तो आने वाले 2 से 3 दिन पहाड़ी राज्यों में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। यही वजह है कि मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों की मदद की जा सके। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वो बिना वजह घरों से बाहर न निकले। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, शिमला से विकास शर्मा, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: कौन आपका गुरु हो सकता है? किसके अंदर गुरु होने के गुण विद्यमान होते हैं? गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए? क्या है गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end, game two. Overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Good news today is really good. In this case, उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देश भर में दिखने लगे सावन के रंग, हरिद्वार से अनोखी नोटों वाली कांवड़ लेकर चला शख्स, शिवालय में अर्पित की जाएगी कुल धनराशि। महाकाल मंदिर में पहली बार मिल रहा है दक्षिण भारतीय प्रसाद, अन्न क्षेत्र में परोसा जा रहा है इडली सांभर और पायसम, सावन में श्रद्धालुओं को मिलेगा फलाहार। शिरडी के साईं दरबार में गुरु पूर्णिमा पर्व का शुभारंभ, आंध्र प्रदेश के भक्त ने अर्पित किया 642 ग्राम सोने का मुकुट, 1,03,00,000 रुपया की गई कीमत। अयोध्या में 52 एकड़ जमीन पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर म्यूजियम, देश विदेश की मंदिर शैलियों की दिखेगी झलक, अक्टूबर में शुरू हो सकता है निर्माण। रुद्रप्रयाग में बड़ा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, सैलाब में फंसी महिलाओं का एसडीआरएफ के जवानों ने किया सफल रेस्क्यू, आसपास के लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सुंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, हर किसी के हाथ में कैमरा, एक कोई भी घटना, कोई भी तस्वीर हर सेकंड में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और कभी कभी तस्वीरों के पीछे ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इसे सच मान लेते हैं, इसे शेयर कर लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आर्मी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई का ये वीडियो है जब दिल्ली में सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर ही फेंक दिया। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी होगी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धंस गई और गड्ढा हो गया। क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई, आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि यह वीडियो 20 जुलाई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन का है जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर फेंक दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
8: जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च किया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। अब इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षा बल की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोले को वापस फेंकते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि सोनम वांगचुक जी के एक युवा समर्थक की हिम्मत देखकर वहां मौजूद युवा खुश हुए, आंसू गैस का गोला युवाओं पर फेंका, एक छात्र ने अपनी हिम्मत दिखाकर वापस पुलिस की तरफ फेंक दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो 20 जुलाई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान का है जिसमें एक प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस पुलिस की ओर ही फेंक रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में दिखाई दे रही एक इमारत पर डॉल्फिन एजुकेशन का बोर्ड नजर आया। इस सुराग और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमने जब इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो गूगल मैप्स पर डॉल्फिन एजुकेशन हमने खोजा। वहां हमें वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली इमारत और उसके आसपास का दृश्य गूगल मैप से मेल खाता बिल्कुल नजर नहीं आया, जिससे पुष्टि हुई कि ये नेपाल का है। मतलब ये कि वायरल वीडियो नेपाल का हो सकता है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है और ये घटना कब की है। दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर ये वीडियो मिला। 9 सितंबर 2025 को ये वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें वायरल क्लिप भी देखने को मिला। वीडियो को नेपाल के जेंजी आंदोलन का बताया गया था। एक यूट्यूब चैनल पर 8 सितंबर 2025 को वायरल वीडियो मिला, यहाँ पर भी इसे नेपाल के जेंजी आंदोलन का बताया गया था। सर्च के दौरान हमें कई वेबसाइटों पर इसके बारे में प्रकाशित खबरें मिली जिनमें शामिल तस्वीरें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य से काफी हद तक समान है। खबरों के मुताबिक यह तस्वीर सितंबर 2025 में नेपाल में सरकार विरोधी जेंजी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की है। इस आंदोलन में 77 लोगों की मौत हुई थी। इसी दौरान काठमांडू में संसद भवन के पास प्रदर्शन में शामिल 23 वर्षीय राशिक खटीवाड़ा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो दिल्ली के सीजेपी प्रदर्शन का नहीं बल्कि सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जेंजी आंदोलन का है। फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इस तस्वीर को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धस गई और गड्ढा हो गया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अब इसी एक्सप्रेसवे से जोड़कर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें हाईवे टूटा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तस्वीर में पानी भरा हुआ भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को शेयर करके केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए दावा किया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में सड़क धस गई है और गड्ढे हो गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है, जहां पर एक हिस्से में सड़क धस गई और गड्ढा हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। तो ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि राज्यसभा में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि एक्सप्रेसवे पर दो गड्ढे पाए गए थे। हालांकि सरकार ने कहा है कि सड़क अभी 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में है, इसीलिए निर्माण कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी के तहत बिना सरकारी खर्च के उसकी मरम्मत कर दी है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड वो तय अवधि होती है जिसमें सड़क निर्माण से जुड़ी किसी भी तकनीकी खराबी या निर्माण दोष को ठीक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। इस दौरान मरम्मत का पूरा खर्च सरकार नहीं बल्कि निर्माण कंपनी उठाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए ये अवधि 10 साल तय की गई है। अब हमें यह जानना था कि वायरल तस्वीर के जरिए गड्ढे और सड़क धंसने का जो दावा किया जा रहा है वो वाकई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का है। इसके लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल तस्वीर को गौर से देखा। इस दौरान हमें इसमें कई खामियां नजर आई जिसमें हमें दावे की असलियत पर संदेह हुआ। तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें यह नजर आ रहा है कि कारें दाएं ओर चल रही हैं लेकिन रोड साइन पीछे की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो फिर वायरल हो रही तस्वीर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड तस्वीर को वायरल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
9: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम दावे की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा कहीं नहीं मिली। अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के गड्ढे बने होते तो ये खबर मीडिया में कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होती। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल फोटो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाई मॉडरेशन टूल का इस्तेमाल किया। इस टूल की मदद से स्कैन करने पर 99.9% से ज्यादा संभावना इस बात की जताई गई कि तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है। हमने एक और टूल साइट इंजन की मदद से भी फोटो को सर्च किया। साइट इंजन के एनालिसिस में 99% तक तस्वीर के AI से बने होने के संकेत सामने आए। जब वायरल तस्वीर को ट्रूथ स्कैन टूल की मदद से चेक किया गया तो इसने भी इसे AI निर्मित बताया। इसके एनालिसिस में 97% तक तस्वीर के AI से बने होने की संभावना व्यक्त की गई। इस तरह जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुआ। दिल्ली से देहरादून के बीच बने नए एक्सप्रेसवे पर गड्ढे होने के दावे से AI तस्वीर वायरल की जा रही है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: मुंबई में मानसून की बारिश हर साल कई हैरान करने वाले नजारे सामने लेकर आती है, लेकिन इस बार वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। इस वीडियो में रेलवे ट्रैक पर भरे पानी के बीच मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। यही अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान हैं और मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण मछलियां तैरते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
9: महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मॉनसून एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगभग दो हफ्ते मौसम साफ होने के बाद मॉनसून की ये वापसी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर 41 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैक पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कई मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मुंबई में हालिया भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरती दिख रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेलवे ट्रैक के आसपास काफी मात्रा में पानी भरा नजर आ रहा है। इसी पानी में कई मछलियां तैरती दिखाई दे रही हैं। आसपास मौजूद लोग इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। बारिश के बीच ट्रैक पर मछलियों का ये नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। इस दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और इसे जब हमने ध्यान से सुना तो ये मराठी लगा। मतलब ये कि वायरल वीडियो मुंबई का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर घटना मुंबई के किस इलाके की है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
9: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान ये वीडियो एक अकाउंट से 9 जुलाई 2024 को पोस्ट किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मुंबई का बताया गया था। नौ जुलाई 2024 को पोस्ट किए गए इस वीडियो में हमें वीडियो में मराठी भाषा भी सुनाई दी। हालांकि वीडियो में दिख रहे दृश्यों में हमें किसी स्टेशन का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया। जांच में हमें एक फेसबुक अकाउंट पर भी 10 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। इस वीडियो में भी इसे मुंबई का ही बताया गया, लेकिन ये किस स्टेशन की घटना है इसका जिक्र नहीं किया गया। सर्च के दौरान हमें कई मीडिया आउटलेट्स पर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में खबरें मिली, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में पुख्ता तौर पर लोकेशन का जिक्र नहीं किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हुआ कि मुंबई में हालिया में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैरने के दावे से वायरल ये वीडियो पुराना है और कम से कम 2 साल से इंटरनेट पर मौजूद है।
10: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के इस बार आपको लिए चलेंगे वायरल। दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
12: Jack, come home. It's supper time.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
13: Hey Jack, could you play that one song with the words?
11: Jack FM, playing what we want.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: अब खबर श्रावण मास से जुड़ी हुई। भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना एक दिन बाद शुरू हो रहा है। ऐसे में शहर शहर कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासकर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। झारखंड से लेकर बिहार तक और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। कहीं पर कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, कहीं पर ऐप लॉन्च किया जा रहा है और कहीं पर पुलिस की मोबाइल टीम बनाई गई है।

0: श्रावण मास के लिए शिवालय तैयार हैं और घरों से कांवड़ लेकर शिव भक्त भी निकल चुके हैं, क्योंकि भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना एक दिन बाद शुरू हो रहा है। मान्यता है कि इस श्रावण मास के दौरान जो भी शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, देवाधिदेव महादेव उन पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। इसी मनोरथ को लेकर 53 साल के हरपाल नाथ हरिद्वार से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। करीब 2400 किलोमीटर की इस यात्रा को हरपाल 411 दिनों में पूरा करेंगे। इससे पहले वो हरिद्वार से सोनभद्र तक 1800 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर चुके हैं।
1: किधर जा रहे हो?
2: हम तो
3: समर एड जाएंगे सर,
2: फिर महाकाल जाएंगे,
3: फिर पशुपति नाथ जाएंगे।
2: 411 दिन की यात्रा,
1: 411 दिन की यात्रा। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है?
2: 53।
0: हरपाल जैसे ही हजारों लाखों शिव भक्त 30 तारीख से शहर शहर शिवालयों और गंगा घाटों पर नजर आने वाले हैं, जो अपने कांधों पर गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर निकलेंगे, ताकि सावन के सोमवार पर महादेव का जलाभिषेक कर पाए। इन शिव भक्तों के स्वागत और सुरक्षा के लिए ही प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये तैयारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। मेरठ में जहां पुलिस ने एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तो वहीं हापुड़ पुलिस ने 17 कांवड़ मोबाइल टीम बनाई है, जो कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
4: हम हैं मेरठ के हाईटेक कंट्रोल रूम में, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहां तमाम निगाह रखी जा रही है और यहां एक टाइम में लगभग 250 कैमरों का जो है एक्सेस लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे इस कैमरे जो तमाम ये कैमरे हैं उनसे नजर रखी जा रही है, क्या गतिविधियां कहां कहां चल रही हैं, कहां कहां के कैमरे बंद हैं या कहां कहां कौन सी परेशानी आ रही है, उसको लेकर के 24 घंटे यहां निगाह रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम में 250 जगहों का जो एक्सेस है वो लिया जा सकता है, 250 जगहें एक साथ देखी जा सकती हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि लगभग 1500 कैमरे अभी तक जो है वो कांवड़ जो मार्ग है उस पर लगाए गए हैं।
5: मोटरसाइकिल मोबाइल हम लोगों ने आज रवाना की है, 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीजन हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी।
0: यूपी में कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन डिजिटल तरीका भी अपना रहा है। बागपत में कांवड़ियों की मदद के लिए कांवड़ यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिव भक्तों को कंट्रोल रूम, मेडिकल सहायता, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, भंडारे, पीने के पानी के केंद्र, कांवड़ मार्ग और पूरा महादेव मंदिर परिसर का डिजिटल मैप समेत तमाम जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं तक सही समय पर सूचना पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसी उद्देश्य से इस ऐप को तैयार किया गया है।
6: इस बार जो हमारा कांवड़ ऐप है वो अगेन वो बिल्कुल अपडेटेड है, जितने भी शिविर होंगे चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे भंडारा लग रहा है, टॉयलेट कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, वो सभी हमने उस कांवड़ ऐप पे उपलब्ध है। और इसके अलावा हमने IMA से भी समन्वय किया हुआ है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कांवड़ रूट पे मिलेंगे, वहाँ पे अगर किसी कांवड़िया को कोई भी हेल्थ संबंधित कोई भी इशू होता है तो वो वहाँ पर जाके निशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं।
0: इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों को यात्रा मार्ग पर खाने पीने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन सही कीमत पर मिले, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेट लिस्ट चस्पा करने के साथ ही QR कोड लगा दिए गए हैं।
7: हापुड़ का ये पुलेंचर रोड है जो पुलेंचर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर तमाम ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इन ढाबों पर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस मामले में आज खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार के यहाँ पर एक स्टिकर लगाया है, जिससे ये पुष्टि होगी कि वो दुकान किस मालिक की है। इस जो स्कैनर आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करते ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी सामान मिलता है उसके रेट क्या है। रेट लिस्ट इसको सही लगानी पड़ेगी और दुकानदार की जो पहचान है वो भी स्पष्ट सामने आएगी। इस मामले में कहीं भी कांवरिया को कोई परेशानी ना हो पाए, इसके लिए भी शिकायत का प्रावधान किया गया है।
0: यूपी और उत्तराखंड की तरह ही बिहार और झारखंड में भी प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की हुई है। कोशिश यही है कि सावन के महीने में शिवालयों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर यहां एक और लोगों की चिंता लगातार बढ़ा रहा है, तो वहीं पर सनातन आस्था की एक अनोखी परंपरा भी इसी पल का इंतजार कर रही है। संगम तट पर स्थित प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की निगाहें मां गंगा के आगमन पर टिकी हुई हैं। दरअसल मान्यता यह है कि जब मां गंगा स्वयं मंदिर पहुंचकर लेटे हनुमान जी का जलाभिषेक करती हैं, तो ये पूरे देश के लिए सुख शांति और समृद्धि का शुभ संकेत होता है।

0: प्रयागराज के इस मंदिर में माँ गंगा के पधारने के पावन पल की प्रतीक्षा चल रही है। प्रयागराज में नदियों का बढ़ा जलस्तर भले ही बाकियों के लिए चिंता का विषय हो, लेकिन इस मंदिर में नदी की धारा के आने की मान्यता खुद में बड़ी अनूठी है।
1: बहुत ही सुंदर नजारा रहता है देखने के लिए। अगर आप आइए, पंछी उड़ते रहते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक आपको दृश्य मिलता है और एक अलग नजरिया रहता है उसको देखने का कि भाई आपको एक कहते हैं ना कि ईश्वर के दर्शन जैसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, नेचर का आपको एक अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे।
0: सावन के आसपास यही वो पावन बेला होती है जब संगम के प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में माँ गंगा के आगमन की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बाढ़ का जल मंदिर के पास पहुँचता है, श्रद्धालु माँ गंगा का स्वागत करते हैं, उनका पूजन करते हैं और दीपों की पंक्तियों के बीच भव्य आरती उतारते हैं।
2: जी, माँ गंगा जब तक हनुमान जी को स्नान नहीं कराती तब तक नहीं जाती, और यहाँ पे कोई परेशान नहीं होता। माँ गंगा का स्वागत करते हैं स्पेशली यहाँ पे कि वो आए और भगवान जो लेटे हुए हैं हनुमान जी महाराज, उनका स्नान कराए और यहाँ स्वागत करते हैं, परेशान नहीं होते यहाँ पे लोग।
0: धार्मिक मान्यता है कि माँ गंगा स्वयं अपने पुत्र समान बजरंग बली का जलाभिषेक करने आती है। ये केवल जल का बढ़ना नहीं है बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सनातन परम्परा का जीवंत उत्सव भी है। भक्तों का विश्वास है कि जब माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान कराती हैं, तब पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का संदेश फैलता है।
3: माँ गंगा इनको स्नान कराती हैं तो पूरे प्रयागराज के जितने भी वासी हैं, सबके दिल में इतना हर्षोल्लास होता है कि बस वो ये इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब गंगा माँ आए और कब हमारे जो है बजरंग बली को स्नान कराए।
0: फिलहाल प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी माँ गंगा का जल लेटे हनुमान मंदिर तक नहीं पहुँचा है। श्रद्धालुओं की निगाहें उसी दिव्य क्षण पर टिकी हैं, जब माँ गंगा अपने पुत्र बजरंग बली का जलाभिषेक करेंगी और जब वो अलौकिक दृश्य सामने आएगा।
4: ये कहा जाता है माँ गंगा जब तक बजरंग बली को स्नान नहीं कराती तब तक देश में सुख शांति नहीं आती है। माँ गंगा बजरंग बली को स्नान कराती है, वो सुंदर नजारा देखते ही बनता है। कल कल जब सीढ़ियों से गंगा जल बहता है तो लोग बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि किस तरह से माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आती है। प्रयागराज में बाढ़ का स्वागत किया जाता है, पूजा पाठ करके माँ गंगा का आवाहन किया जाता है। पंकज सिंह तो प्रयागराज, गुड न्यूज चुड़ी।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: कौन आपका गुरु हो सकता है, किसके अंदर गुरु होने के गुण विद्यमान होते हैं, गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या है गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
9: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन भारत ने जीते दो और सिल्वर मेडल, अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई, बॉक्सिंग में 3 और मेडल पक्के। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल, एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। देशभर में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा उत्सव, स्नान के लिए पवित्र नदियों के किनारे उमड़े लोग, शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। सावन मेले को लेकर देश भर में तैयारी। काशी बाबा विश्वनाथ में श्रद्धालु और कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम। इस बार 1 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद। चीन में पेश किया गया दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल रोबोट पांडा। घर में रहने वाले बच्चों को गुड हैबिट सिखाने के साथ विकास में बनेगा मददगार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
10: मेरे पागलो, एक बात तुम जीवन में याद रखना, कुसंग की शुद्धि सत्संग से होती है। किससे होती है? बोलो बोलो बोलो बोलो, सत्संग से। और सत्संग की प्राप्ति रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा, पर राम जी की कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से ही होगी। इसलिए जितने ये पांचों पंडालों में बाहर खड़े हैं, आए हैं, आप ये मत मानना आप कथा में आए हैं, हमारा मानना है ठाकुर ने तुमको बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। वरना कितने काम नहीं आ जाते। मान लो तुम कथा के लिए चल पड़े, उसी समय पेट खराब हो जाए, लो हो गई कथा जय बजरंग बली की, बाथरूम में घुसे रहो। गाड़ी पंचर हो जाए, घरवाली लड़ने लगे, दे बेलन चिमटा, और मैं तो चली माए के सजन, तुम यहीं बरो ठटरी। फिर तो भगवान की बड़ी कृपा, बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग किसको प्राप्त होता? बोले जिस पर राम जी की विशेष अनुकंपा होती है वो सत्संग में आके बैठता। सत्संग में आकर बैठने वाला राम जी की कृपा, राम जी की कृपा यानी भगवान की कृपा। लेकिन सत्संग में बैठने वाला यदि भगवान की कृपा है तो सत्संग दिल में बैठने वाले को भक्ति की कृपा कहते हैं। ये भी तो बड़ा कठिन है। कई लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर सत्संग उनमें नहीं बैठता, ये भी एक खतरा है। हमें तो कई यजमान मिलते, गुरुदेव हमने तो आपकी 20 कथाएं सुन ली। अच्छा बेटा, कितना सुधार हुआ है? सुधार तो कुछ नहीं हुआ है,

बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। कई लोगों के पास बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। जैसे आपके पास कार तो हो पर चलानी ना आती, तो कार का कोई महत्व है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, कार का कोई महत्व है? वाहन का तब महत्व है जब वाहन आपको संचालन करना आता हो, चलाना आता हो। ऐसे ही जीवन तो बहुत लोगों को प्राप्त हो जाता, जीवन जीना कैसे चाहिए ये सत्संग सिखाता है। ये मगरमच्छ ने पैर शंकराचार्य का पकड़ा तो उन्हें संन्यास मिला। हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा तो उनको साधु के अंदर असाधु मिला। कालनेमी, कालनेमी के यहां पर जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रावण ने कालनेमी को बुलाया, इधर आओ, यू कम हियर। कालनेमी बोला बोलो। रावण बोला तुमको एक बंदर को रोकना है। रोकना है? हाँ। कौन से बंदर को? बोले बायो डाटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा खतरनाक, तुम्हें रोकना है। कालनेमी बोला कैसे रोकेंगे? बोले रावण बोला हमने पता लगाया वो कथा का बड़ा प्रेमी है, तो तुमको साधु बनना है। कालनेमी बोला तुम भी तो साधु बने थे एक बार, घर पे आफत बुला ली और हमें भी साधु बनवाकर आफत बुलवाओगे? रावण बोला खबरदार बहसबाजी मत करो, हमने जो कहा वो मानो वरना। कालनेमी बोला वरना क्या? कालनेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है हनुमान जी के हाथों मरे। कालनेमी बोला एक बात बताओ काम क्या करना है? बोले तुमको राम कथा कहनी है। कालनेमी बोला हम सुने ही नहीं कहेंगे क्या? रावण बोला कुछ नहीं, कथा में कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं, बस यही रावण लंका की और हमारी महिमा सुनाना, हमारी बीच बीच में एकाध बार उसका नाम ले लेना। बोले किसका? बोले जिसकी राम कथा है, राम जी का एकाध बार, ज्यादा नहीं, एकाध बार राम कथा सुनानी, जाओ जाओ आज्ञा है। कालनेमी बोला पर बंदर इतना खतरनाक है? रावण बोला है। तो बोले रोकना है? बोले बिल्कुल रोकना, मात्र चार पांच घंटे, पांच घंटे रुक जाए, सूर्योदय हो जाए और सूर्योदय होते ही प्राण लक्ष्मण जी के चले जाएंगे, फिर भले ही छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। कालनेमी बोला बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो, क्या ये वही बंदर है जो पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम लंका में लैंड हुआ था? बोले हाँ हाँ वही है, वही है, सही पहचान गए, जही जारा नगर प्रथम, वही है वही है वही है। कालनेमी बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम कहां से रोकें? जब वो आया था तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला चुप, बहसबाजी करता है, तर्क वितर्क करता है, चलो जाओ। ठीक है जा रहे। अब कालनेमी आके साधु बन के बैठ गया। अच्छा साधु बनना बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। हमारे जैसे 200 का कुर्ता, 250 की धोती और 300 रुपया में बढ़िया रुद्राक्ष की 20-25 माला और 2 रुपया का 2.5 एकड़ के प्लाट पे चंदन। हेलो, बन गए साधु? साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है। समझना, साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना कठिन है, क्योंकि भेष का नाम साधु थोड़ी है, स्वभाव का नाम साधु है। अब कालनेमी बैठ गया, राम कथा गाने लगा। अब राम कथा उसने कभी सुनी ही नहीं तो बोले क्या? तो सीधा लंका का, ना बालकांड ना अयोध्या, ना किष्किंधा ना सुंदर, सीधा लंका कांड। हाँ, ना राम जन्म हुआ ना विवाह हुआ, सीधी लड़ाई हो रही है उसकी राम कथा में, कि राम राम होत होत रण राम रावण, राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी जले जा रहे थे, नीचे राम कथा देखी तो

एक घड़ी तो कथा सुनी लें, क्या दिक्कत है। हनुमान जी कथा में बैठ गए। अब काल नेमी कथा सुना रहा, कथा वाचक काल नेमी और श्रोता हनुमान जी, विचार करो कैसी हो रही होगी। और काल नेमी भीतर ही भीतर डरे कि कहीं ये ना पूछ ले कि पहले की कथा क्या है, और पता ही नहीं है। तो बेचारा राम रावण का युद्ध बता रहा, इतने तीर चल रहे, उतने तीर चल रहे, युद्ध बता रहा। हनुमान जी ने सोचा हम लेट आए होंगे, कथा पहले शुरू हो गई हो। हनुमान जी जो हाथ जोड़ के बैठ गए। काल नेमी ने कहा ये बहुत बढ़िया है, ये कुछ बोलता भी नहीं है। अच्छा, जो सच में ज्ञानी होता वो बोलता नहीं है, जो आधा ज्ञानी होता है वही फुदकता है ज्यादा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्हें आधी चौपाई आती है वो ज्यादा जोर से बोलते, जिन्हें पूरी चौपाई आती है जिन्हें सब पता वो नहीं बोलते, जिन्हें आधी आती हो। जैसे कोई चौपाई हम गाएं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, हाँ बड़े भाग्य मानस तन पावा, आगे तुम बोलो बोलो। तो हमने कहा भाई हम क्यों बोले, नहीं नहीं बोलो, हमें तो इतना ही आती है ठटरी के बारे। हनुमान जी बैठे हाथ जोड़कर सुनने लगे कथा। काल नेमी ने कथा सुनाई, बीच में ही हनुमान जी को प्यास लगी। बताओ कथा में हनुमान जी को प्यास लगती है कहीं? लेकिन कोई साधु सुनाता है तो कथा प्यास बुझा देती है, पर कोई असाधु सुनाता है तो प्यास लग जाती है। हनुमान जी को प्यास लगी, हमको पानी पीना है। तो काल नेमी भी इतना विचित्र आदमी, उसने कमंडल लिया, लो पिया। हनुमान जी बोले कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है, चेला को हमको क्यों दे रहे। काल नेमी बोला चेला बन जाओ। उसे कहानी पता ही नहीं था, जो मन में आए सो कहता जाए। हनुमान जी बोले तैयार, हम आपके चेला बनने को तैयार हैं, आप हमारे गुरु बनो। स्नान करके आते हैं, तालाब में गए, उसी समय एक मगरिया ने पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, पैर पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया सीताराम हो गई। दिव्य लोक की तरफ जाते जाते हनुमान जी से बोली, वो कोई साधु नहीं है, असाधु है काल नेमी, काल नेमी। अरे बोले वाह। जैसे ही हनुमान जी वापस आए, काल नेमी बोला दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। तो अब उसे पता ही नहीं था कि पहले दीक्षा दी जाती कि दक्षिणा। तो तुरंत बोला लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ दक्षिणा लाओ लाओ लाओ। हनुमान जी बोले गुरु जी चरण आगे करो। और जैसे ही चरण आगे किए, दोनों पैर पकड़ के हनुमान जी ने ऐसा घुमाया, बोले गुरु जी लो दक्षिणा पकड़ियो। काल नेमी बोला हमें पकड़ियो। हनुमान जी बोले दक्षिणा पकड़ियो। ऐसे घुमा के फेंक दिया, गुरु जी हो गए राम नाम सत्तो। काल नेमी स्वागत। शंकराचार्य जी का पैर मगरिया ने मगर ने पकड़ा, सन्यासी बने। हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा, साधु असाधु का पता लग गया, असाधु है साधु नहीं है। एक और मगर ने पैर पकड़ा भागवत में, किसका? हाथी का। गज का पैर भी मगरमच्छ ने पकड़ा, किसने बचाया? भगवान जी ने, श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने। अच्छा, इन तीनों की कथा से एक सिद्ध होता है कि हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा। मेरे पागलो, सच्ची भक्ति जब हृदय से होती है तो भगवान भी भक्त के बिना रह नहीं पाते। भगवान भी उतना ही प्रेम भक्तों से करते जितना भक्त करते। अभी हम लोगों की भक्ति दिखावा की है, प्रदर्शन की है, और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद के मन को झांको, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन को झांको तो तुम पाओगे कि तुम्हारी भक्ति कितनी दिखावा की, प्रदर्शन की है, जगत को रिझाने की है। और मेरे पागलो, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान को मानते हैं, भक्ति का मतलब यह है कि भगवान तुम्हें मानने लगे। आप भगवान को प्रेम करो, यह भक्ति नहीं हुई। भगवान आपको प्रेम करें, यह कोई बात हुई। यदि भगवान आपको प्रेम करने लगे, जीवन बदलते देर ना लगेगी। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, संसार के इस खूंटे को खोलो। आहा,
दक्षिण भारत की एक और विभूति कालडी में जिनका जन्म हुआ, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम यही संसारे बहु दुस्तारे है। शंकराचार्य भगवान अद्वैतवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने वाले दक्षिण भारत की भूमि पर उनका जन्म हुआ। बाल्य काल से ही बड़े मेधावी हुए, कालडी में उनका जन्म हुआ। 8 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर सन्यासी बन गए। मां से कहा, मां हमको सन्यास लेना है। मां ने कहा, बालक हो, बड़े हो जाओ, मैं सन्यास नहीं लेने दूंगी। भगवान शंकर, नाम शंकर रखा, थे ही शंकर। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मां मैं तो सन्यास लूंगा। नहीं बात मानी माने। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए मां के साथ गए। अवस्था 8 साल की थी। स्नान करते करते करते करते जल के बीच में रहने वाले भयंकर खूंखार जीव मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर को पकड़ लिया। छोटा सा बालक फड़फड़ाने लगे, मां रोने लगी, हाय हाय बचाओ बचाओ बचाओ। और वो गहरी नदी की तरफ मगरमच्छ खींचने लगा खींचने लगा खींचने लगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मां मगरमच्छ कह रहा छोड़ तो दूंगा पर एक शर्त पर। मां बोली, क्या शर्त पर? मगरमच्छ कह रहा सन्यासी होना पड़ेगा, तब छोड़ूंगा। अब तू बता, सन्यासी होने में फायदा कि मगरमच्छ का भोजन बनने में फायदा? मां ने कहा, बेटा जा, आज्ञा दी, बन जा सन्यासी, बस तेरे प्राण बचे, तू खुश रहे। इतना कहते ही मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भला कौन मां चाहे कि हमारा पुत्र दूर हो। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक में आया, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, माता कुमाता नहीं होती। इसलिए सनातनियों, हमारी प्रार्थना है, आद जगतगुरु शंकराचार्य की ये घटना जीवन को सिखाती है, मां को बालक की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता होती और सन्यासी बना दिया। और वो बालक कालांतर में 32 वर्ष की अवस्था तक चारों तरफ पैदल चल चल करके चारों मठों की स्थापना की और नाम पड़ा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान।

0: कौन आपका गुरु हो सकता है, किसके अंदर गुरु होने के गुण विद्यमान होते हैं, गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या है गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने जीते 2 और सिल्वर मेडल। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। बॉक्सिंग में 3 और मेडल पक्के। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। देशभर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा उत्सव। स्नान के लिए पवित्र नदियों के किनारे उमड़े लोग। शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। चीन में पेश किया गया दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल रोबोट पांडा। घर में रहने वाले बच्चों को गुड हैबिट सिखाने के साथ विकास में बनेगा मददगार। दिल्ली में इंडिया कॉट्योर वीक का आयोजन। डिजाइनर जयंत रेड्डी ने पेश किया नया कलेक्शन द गिल्डेड एरा। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी और अभिनेता सिद्धार्थ रहे शो स्टॉपर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग।
8: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले। सबसे ज्यादा 7 मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में जीते। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के और 3 मेडल पक्के। बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया घांगस और जादूमणि सेमीफाइनल्स में पहुंचे। देशभर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा उत्सव। शिरडी में 3 दिवसीय भव्य आयोजन का शुभारंभ। देश

0: से हजारों की तादाद में शिरडी पहुंचे श्रद्धालु, आज दर्शन के लिए रात भर खुला रहेगा साईं मंदिर। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर देश विदेश के फूलों से सजा साई दरबार, अखंड साई चरित्र ग्रंथ का पाठ जारी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में काकड़ आरती के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव, जयकारों से गूंजा साई धाम। आरती के बाद भक्तों ने निकाली भव्य पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं ने दर्शन पर मांगा आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं को भक्त की अनोखी भेंट, सोने का नक्काशीदार मुकुट गुरु दक्षिणा के तौर पर किया गया अर्पण। 642 ग्राम सोने से बना है यह सुंदर मुकुट, 1,03,00,000 रुपए है इस मुकुट की कीमत। मुकुट पर ओम और नवग्रहों की सुंदर आकृतियां बनी हैं, साथ ही नवरत्नों से मनमोहक नक्काशी की गई है। शिरडी साईं बाबा को नेलूर के एक भक्त मल्लादी श्रीनिवास राव ने दी है अनमोल भेंट, सालों से साई दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं श्रीनिवास। हर साल लाखों भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए उनके दरबार में लगाते हैं हाजिरी, मनोकामना पूरी होने पर या स्वेच्छा से अर्पित करते हैं कई बेशकीमती भेंट। कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारी तैयारियां पूरी, इस बार 1,00,00,000 शिव भक्तों के आने की उम्मीद। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बनाए गए हैं कुल 6 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रोक, 5 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है पूरा इलाका। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस बार भी सावन में प्लास्टिक की सामग्री पर प्रतिबंध जारी, मंदिर के यूट्यूब और मंदिर के सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे भक्त भी कर पाएंगे दर्शन। बागपत में कावड़ यात्रा होगी पूरी तरह से डिजिटल, जिलाधिकारी के निर्देश पर सूचना विभाग ने तैयार की है QR कोड आधारित कावड़ यात्रा। इस ऐप से श्रद्धालुओं को मेडिकल सहायता भंडारे, पेयजल केंद्र कावड़ मार्ग और पूरा महादेव मंदिर परिसर का डिजिटल मैप समेत तमाम जरूरी सुविधाएं एक ही जगह होंगी उपलब्ध। सावन शुरू होने से पहले ही नजर आ रहे हैं कावड़ यात्रा के अलग अलग रंग, हरिद्वार दिल्ली लाई जा रही है नोटों से बनी कावड़, बनी आकर्षण का केंद्र। इस कावड़ा में 100 से 50 से लेकर 20 और 10 के नोट भी शामिल हैं, बारिश से नोटों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए कावड़ पर लगाई गई है पॉलिथीन। 9 लोगों ने मिलकर बनाई है ये खास कावड़, शिवालय में अर्पित किए जाएंगे कावड़ में लगे नोट, इसी राशि से भंडारा आयोजित होगा। सावन मेला कंट्रोल रूम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल, कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया संवाद, सुरक्षा यातायात तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। देवघर में श्रावणी मेले की जोरदार तैयारियां, भीड़ प्रबंधन के लिए अलर्ट मोड में प्रशासन। AI तकनीक से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर रहेगी नजर, AI से लैस कैमरे और ड्रोन किए गए हैं तैनात, जो कंट्रोल रूम को भेजेंगे रियल टाइम अलर्ट। प्रशासन ने पूरी की सावन मेले की तैयारी, हर साल सावन मेले में देवघर आते हैं लाखों शिव भक्त। हरिद्वार से जल लेकर सहारनपुर पहुंचे 18 साल के स्वामी सच्चिदानंद गिरिजी महाराज, पंचकुला तक पैदल कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। 8 साल की उम्र में पिंडदान कर संन्यास ग्रहण कर चुके हैं स्वामी सच्चिदानंद गिरी, युवा पीढ़ी को नशे से दूर करना और गौ सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना है कावड़ यात्रा का उद्देश्य। देश विदेश इलाकों शिव भक्त पहुंचे सुल्तानगंज, गंगा जल लेकर देवघर के लिए रवाना, सावन के प्रथम दिन करेंगे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। हर साल सावन माह से में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू कर रहे हैं भक्त, शिव के जयकारों के बीच देवघर में बाबा बैद्यनाथ के करते हैं दर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे श्रावणी मेला 2026 का विधिवत उद्घाटन, पूरे सावन माह में रोजाना होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, 90 साल की सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली की यात्रा पर निकली है शिव भक्त बहू। लगातार दूसरी बार सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली की कांवड़ यात्रा कर रही है काजल चौधरी, समाज को दे रहे हैं बुजुर्ग माता पिता और सास ससुर की सेवा का संदेश। महाकाल मंदिर में पहली बार दक्षिण भारतीय प्रसाद, अन्य क्षेत्र में परोसेंगे इडली सांभर पायसम। हफ्ते में 2 बार यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मिलेगी साउथ इंडियन व्यंजन, सावन में मिलेगा फलाहारी भोजन। अलवर में माता जानकी के साथ विवाह के बाद बारात लेकर लौटे भगवान जगन्नाथ, उमड़ा भक्तों का सैलाब। हजारों लोगों ने दूल्हा दुल्हन के रूप में भगवान जगन्नाथ और जानकी जी के दर्शन किए, जगह जगह बारात का हुआ स्वागत। बैंड बाजे हाथी घोड़ी के साथ निकाली महाप्रभु की रथ यात्रा, 171 सालों से लगातार चली आ रही है ये परंपरा। वाराणसी में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के सम्मान में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया संत रविदास को नमन। संत रविदास स्मारक स्थल से मंदिर तक निकाली गई 131 पवित्र कलशों की भव्य यात्रा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। करीब 250 महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा में लिया हिस्सा। रविदास घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 11,000 दीप। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर म्यूजियम के निर्माण की तैयारियां तेज, निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई 52 एकड़ भूमि। प्रस्तावित म्यूजियम में अलग अलग देशों के प्रसिद्ध मंदिरों के आर्किटेक्चरल मॉडल, उनके इतिहास और धार्मिक महत्व को आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शित। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा पर फिर लगा ब्रेक, आज भी स्थगित रहेगी केदारनाथ यात्रा। गुप्त काशी में केदारनाथ हाईवे की पहाड़ी टूटने के बाद फैसला, यात्रा कंट्रोल रूम से हो रही है लगातार निगरानी। सोनप्रयाग और बाकी सुरक्षित स्थानों पर रोके जा रहे हैं धाम जाने वाले यात्री, यात्रियों से खराब मौसम में यात्रा ना करने की अपील। बाढ़ बारिश के बीच गोंडा में रेस्क्यू, राहत सामग्री चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए हनुमान रथ नाम का विशेष वाहन रवाना, सड़क पानी और कीचड़ में भी आसानी से चल सकता है ये वाहन। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद मददगार है ये हनुमान रथ, बड़े पहिए होने के कारण बिना रुकावट चलता है ये वाहन। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी जारी रहेगी भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, 1 अगस्त तक पूरे राज्य में सक्रिय रहेगा मॉनसून। इस सप्ताह यूपी ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 1 अगस्त तक महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ समेत पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश दिए, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कानपुर में भारी बारिश से निचले रिहायशी इलाकों में जलभराव, फायर डिपार्टमेंट ने जाजमऊ इलाके में लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश से नदियों में उफान, मराठवाड़ी बांध के गेट खोले गए, वांग नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। ओडिशा के जाजपुर जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर, प्रशासन ने बाढ़ की संभावना के मद्देनजर इंतजामों की तैयारी की। पंजाब के फरीदकोट जिले में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में फंसे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अपील, लोगों से बाढ़ के कारण बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों से मदद की अपील की। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, नागालैंड के कोहिबा और दीमापुर से कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ जैसे हालात, सड़कें और खेत जलमग्न, उफान पर बरसाती नाले, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बनासकांठा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभाव हुआ, निचले इलाकों के कई गांव जलमग्न, मुख्य सड़कें पानी में डूबी, कई गांवों का टूटा संपर्क। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मॉनसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का चेनाब, रेल पुल पार करते हुए का नजारा बेहद मनमोहक नजर आई, बादलों के बीच दौड़ती ट्रेन। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए दिल्ली कैबिनेट से मिली मंजूरी, राखी के फेस्टिवल पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान, अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। सीएम नायब सैनी का बड़ा फैसला, हरियाणा में 30 लाख तक के ईवी वाहन पर रजिस्ट्रेशन फ्री, 30 लाख से अधिक के वाहन पर रजिस्ट्रेशन में 50% छूट। झारखंड के रांची पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण, ऑपरेशन नवजीवन सेकंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सहारनपुर के मियाजाकी आम ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, 2,11,000 रुपए में खरीदा गया 1 किलो आम। सूरत के व्यापारी ने अपनी मां के लिए खरीदा आम, पहले 3.25 लाख में तय हुई थी आम की डील, लेकिन खरीदने जाने पर पता चला घटकर 2,11,000 हुई कीमत। बिहार पुलिस ने लौटाए लोगों के चेहरे पर मुस्कान, 103 मोबाइल मालिकों को लौटाए खोए हुए मोबाइल। ऑपरेशन मुस्कान रखा गया इस पूरे अभियान का नाम, 19.25 लाख रुपए है इन खोए मोबाइल्स की कुल कीमत। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा, सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली में इंडिया का कौट्योर वीक शो का शानदार आयोजन, मशहूर डिजाइनर डॉली जी ने पेश किए अपने कलेक्शन। फैशन शो में पारंपरिक भारतीय कारीगरी की झलक नजर आए, दुल्हन के लिए लहंगे, कॉकटेल गाउन्स और शादी समारोह के लिए खास डिजाइन पेश किए गए। भोपाल को मिली चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निषादपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, इंदौर उज्जैन की ओर से आने वाली ट्रेन के यात्रियों को होगा इससे फायदा। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में राज्यभर से पहुंचे साइंस के छात्रों से मुलाकात की, स्पेशल सेशन में छात्रों से बातचीत कर आधुनिक शिक्षा के प्रति किया प्रोत्साहित। चीन में पेश किया गया दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल साथी रोबोट पांडा, झेजियांग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने किया तैयार। घर में रहने वाले छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है प्रोएक्टिव रोबोट पांडा, बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और स्पर्श को समझकर देता है प्रतिक्रिया। बच्चों में रोजाना की आदतों को सीखने में मददगार बनेगा रोबोट पांडा, अलग अलग लेवल पर बच्चों के विकास में बनेगा भागीदार। चीन में फाइटर रोबोट का वीडियो हुआ वायरल, मार्शल आर्ट्स की स्किल्स ने खींचा सबका ध्यान। जबरदस्त एनर्जी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की शुरुआत, हर रोबोट में संभावित टारगेट को स्कैन करने और पहचानने के लिए लगे 3D लेजर विजन। एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की एक भावुक झलक दिखाता है ये ट्रेलर, ये एक ऐसे परिवार की कहानी बताता है जिसका जीवंत हिंसा, डर और जबरन पलायन की वजह से पूरी तरह से बदल जाता है। मार्वल फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाकेदार तमिल एंथम रिलीज, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म। साउथ इंडियन रैपर वेंगायो ने गाया है ये गाना, जबकि इसका म्यूजिक नेशनल अवार्ड जीतने वाले संगीतकार जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किया। दीपक तिजोरी की गुजराती फिल्म गेट सेट गो का ट्रेलर हुआ रिलीज, 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म।
1: हजी सुधी माहिती एटली मिली है कि कहां तो ये लोग।
0: दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर बनी खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट का हिस्सा, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कहानी 3 में यामी की एंट्री, विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर, 10 साल बाद आ रहा है पार्ट 3। सलमान खान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, काला हिरन फिल्म का टीजर 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया, प्रोड्यूसर्स को फटकार। चोट से उभरने के बाद फिर जिम में वापस लौटी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, लिखा वह एक नई शुरुआत की ओर देख रही हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण अस्पताल में भर्ती, अमेरिकी डॉक्टर्स की टीम ने की कलाई की पेचीदा सर्जरी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, शुभमन गिल को मिला टीम इंडिया का जिम्मा, केएल राहुल बने उप कैप्टन। टेस्ट टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत को मिला मौका, साई सुदर्शन, ध्रुव, जुरेल, जडेजा शामिल। टेस्ट टीम में सिराज, कुलदीप, मानव सुतार, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त, पड्डिकल को भी मिली जगह। पहली बार सारांश जैन और बरार की इंडियन टेस्ट टीम में एंट्री, सारांश जैन ने 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 188 विकेट झटके, 2000 से भी ज्यादा रन बनाए। 15 से 19 अगस्त तक गाल में खेला जाएगा पहला टेस्ट, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के SSC मैदान पर होगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: कौन आपका गुरु हो सकता है, किसके अंदर गुरु होने के गुण विद्यमान होते हैं, गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या है गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं कुछ दिल को छू जाती। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे उस पर्व की जिस पर्व पर पूजा होती है ईश्वर से बड़ी सत्ता की, जिस पर्व पर पूजा होती है गुरु की और गुरु की कृपा मिलती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की और गुरु की कृपा पाने के तरीके की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है, यथाशक्ति उनकी उपासना करता है, दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि अपने गुरु को भेंट करता है और अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। गुरु की पूजा उपासना करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। अर्थात जो ईश्वर भी नहीं कर सकता वो गुरु की कृपा से आपको जीवन में मिल सकता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, सामान्यता क्या होता है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो भगवान की बातें करते हैं, आप उन्हें अपना गुरु समझकर गुरु बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वही गुरु होते हैं? कौन गुरु हो सकता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं, लोग टीचर को, ज्योतिषी को गुरु कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। कौन होता है गुरु? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, सिर्फ परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म मानव शरीर में आते हैं तब वो सद्गुरु के रूप में अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का जितना संभव हो पालन किया जाए। हालांकि वास्तव में अगर सद्गुरु होंगे तो उनको अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहिए और कोई वस्तु वो नहीं मांगेंगे। अगर गुरु आश्रम बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं तो ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु का मतलब केवल आपका कल्याण जो चाहता हो। फिर भी शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करे। मानव शरीर में गुरु होते हैं इसलिए मानव शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका ध्यान शिष्य को अपने गुरु के लिए जरूर रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पावन अवसर है, तो अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइएगा, उनके चरण जल से धुलाइएगा और इसके बाद उनके चरण पोंछिएगा। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको सफेद या पीला वस्त्र दीजिएगा और इसके बाद यथाशक्ति जितना आप कर सकें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा और चाहें तो अपने गुरु की वंदना भी कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब उनकी वंदना कर लें, उनकी पूजा कर लें, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा दायित्व स्वीकार कर लें। और जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेंगे तब आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल गुरु की पूजा जरूरी नहीं है, ये प्रार्थना करना भी जरूरी है कि गुरु आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो आज हमने बात की गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या श्री कृष्ण को गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उनकी उपासना करिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन भारत ने जीते 2 और सिल्वर मेडल। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। बॉक्सिंग में 3 और मेडल पक्के। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। देशभर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा उत्सव। स्नान के लिए पवित्र नदियों के किनारे उमड़े लोग। शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। दिल्ली में इंडिया कॉटियर वीक का आयोजन। डिजाइनर जयंत रेड्डी ने पेश किया नया कलेक्शन द गिल्डेड एरा। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी और अभिनेता सिद्धार्थ रहे शो स्टॉपर। चीन में पेश किया गया दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल रोबोट पांडा। घर में रहने वाले बच्चों को गुड हैबिट सिखाने के साथ विकास में बनेगा मददगार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: नमस्कार। गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: नमस्कार।
6: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं आज के इस शो में। हम चर्चा करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मौका है तो गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन से अचूक उपाय आप कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको सारी जानकारी देंगे। उपायों के बारे में भी बताएंगे। आपके सवाल भी हम इस शो में शामिल करेंगे। अंत में जाकर आपको महा उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुटलक मंत्र कौन सा है।
2: अपनी पूजा उपासना का, साधना का, ध्यान का कभी भी प्रदर्शन मत करिए। आपका और ईश्वर का संबंध बड़ा पर्सनल संबंध है। आप उनकी कैसे पूजा करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये सब मत करिए कि मैं बड़ी पूजा करता हूं, बड़ी उपासना करता हूं। उसका प्रदर्शन ना करें। अगर आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो इसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे।
6: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 29 जुलाई 2026 बुधवार के पंचांग के बारे में।
2: दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 8:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 3:37 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
6: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, चूंकि हम चर्चा करने वाले हैं, तो पहला सवाल पंडित जी यही है कि आपसे कि क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व?
2: जी देखिए, महान दार्शनिक महान संत कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर ईश्वर और गुरु दोनों साथ में हो तो उसमें भी बड़ी महिमा गुरु की है। ईश्वर से भी बड़ी सत्ता अगर कोई सृष्टि में है तो वो गुरु है। और हिंदू परंपरा में हम गुरु के लिए अलग से एक विधान बनाते हैं उनकी पूजा करने का गुरु पूर्णिमा पर। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है। अगर आप अपने गुरु की नियमित पूजा उपासना करें और गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में हर एक चीज आप बड़ी सरलता से पा सकते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को है, तो आप अपने गुरु की पूजा उपासना वंदना करिएगा, गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।
6: चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, पंडित जी के साथ आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
2: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, परिवार में आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
6: चलिए पंडित जी से एक और सवाल लेते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आपके जीवन का मार्गदर्शक, जिसको आप गुरु भी कहते हैं, कौन हो सकता है? कैसे उनका चुनाव होगा? कैसे समझ में आएगा कि यही आपके मार्गदर्शक बनेंगे?
2: देखिए, गुरु हम लोग किसको समझते हैं? जो हमें पढ़ा देता है वो गुरु हो जाता है। जो थोड़ा सा ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, उसको गुरु मान लेते हैं। आजकल लोग ज्योतिषियों को भी, पंडितों को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु होना कोई मामूली बात नहीं है। ब्रह्म ही वो गुरु रेखा ना परह। सिर्फ ईश्वर जब मानव शरीर में आते हैं तो वही गुरु हो सकते हैं। वास्तव में सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को, कुछ सिखाने बताने वाले को अपना गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान देता है वो शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। जो स्वयं ईश्वर का अनुभव नहीं किया हो वो आपको क्या अनुभव कराएगा? ईश्वर के बारे में कहना आसान है, शास्त्र पढ़ के बताना आसान है, लेकिन ईश्वर का जिसने अनुभव किया होगा वही दरअसल आपको ईश्वर का अनुभव करवा सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। 13 शर्तें तंत्र शास्त्रों में बताई गई हैं। वो कौन सी हैं? शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति रखने वाला। गुरु की जब आपको प्राप्ति हो जाए, आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों के बाद अगर इस जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो वो केवल शिष्य से उसका कल्याण मांगेंगे या कल्याण चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन शिष्य को ये देखना चाहिए कि गुरु की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी देखभाल करनी चाहिए। होता क्या है, जब ईश्वर मानवीय शरीर में आते हैं तो मानव के शरीर के धर्म उनको निभाने पड़ते हैं। मानव शरीर में रोग भी होता है, शोक भी होता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मानव शरीर में कष्ट भी होता है। ये सब सद्गुरु मानव शरीर की वजह से देखते हैं, झेलते हैं। और मानव शरीर में वस्त्र की, अनाज की, रहने की जरूरत भी होती है। तो ये जो मानवीय शरीर है इसकी देखभाल शिष्य को करनी चाहिए, क्योंकि गुरु उसी मानवीय शरीर में प्रकट होते हैं।
6: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ। अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं, कैसा रहने वाला है। बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
2: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी किसका है पहला सवाल?
2: जी आज का पहला प्रश्न वर्षा जी ने हमें लिखा है और वर्षा जी हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 2000, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। वर्षा कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, मुझे किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वर्षा, सबसे पहले बता दें कि सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कमजोर हैं, और केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। मेरी सलाह ये है कि आप किसी अच्छे संस्थान से मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, MBA करें, और उसके बाद आप फाइनेंस में, अकाउंट्स में, बैंकिंग में अगर नौकरी का प्रयत्न करें तो आप अच्छा करियर कॉरपोरेट सेक्टर में बना पाएंगी। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आपका करियर और आपकी दिशा बेहतर हो इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
6: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और पंडित जी से ही जानते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का पंडित जी तक आया है।
2: जी अगला प्रश्न राजन जी ने हमें लिखा है, और राजन जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1980, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है बरेली। राजन जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राजन जी, कर्ज से छुटकारा पाने में अभी वक्त लगेगा। 2028 के शुरुआत तक जाते जाते आप काफी हद तक अपना कर्ज कम कर ले जाएंगे, लेकिन साथ में आप ये समझिए कि आपको अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करना होगा और आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर मध्यम दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
6: देखिए, गुरु पूर्णिमा के मौके पर अक्सर गुरु की उपासना करने का विधान है, तो किस प्रकार से सही तरीके से गुरु की उपासना की जानी चाहिए, पंडित जी से जानते हैं।
2: देखिए, अगर आपके गुरु शरीर में हैं तो अपने गुरु के पास जाएं, अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और कपड़े से तौलिए से पोंछें, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करें और इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र देंगे। यथाशक्ति जितना संभव हो फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करेंगे और इसके बाद अगर संभव हो तो गुरु की वंदना करेंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येना चराचरम तत्पदम दर्शितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुरून मिलतम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु की वंदना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि आपके गुरु आपका दायित्व स्वीकार करें। केवल गुरु की वंदना और पूजा करना जरूरी नहीं है, गुरु के सामने अपने आप को समर्पित करें और गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपकी सारी जिम्मेदारी, सारा दायित्व स्वीकार करें।
6: चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की।
2: तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके साथ बनी रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, संपत्ति की समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं,

0: करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे यह है कि अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, आपके गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए?
0: देखिए, शास्त्र कहता है कि वास्तव में जो सद्गुरु होते हैं उनके पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। आज भी अलग अलग सद्गुरुओं के माध्यम से जो आपको मार्ग दिखाते हैं वो शिव ही हैं। आनंद सूत्र कहता है शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्मा। शिव और शक्ति ब्रह्म है। और फिर कहता है ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी ब्रह्म के अलावा, ईश्वर के अलावा आपका कोई गुरु नहीं हो सकता। तो अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो शिव जी को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, यानी श्री कृष्ण आज भी जगद्गुरु हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण का या शिव जी का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए स्वरूप में कीजिए। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप शिव जी को गुरु मान रहे हैं, आप श्री कृष्ण को गुरु मान रहे हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करिए और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। आप इस प्रकार से भी भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम तीन राशियों का हाल भी। मकर, कुंभ और मीन वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको बताएंगे।
0: मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रहेगा, परिवार में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहे।

0: योग बन रहे हैं, करियर में सुधार और बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है पंडित जी के पास।
0: जी अगला प्रश्न अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है और अजय प्रताप हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1990, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है बलरामपुर उत्तर प्रदेश। अजय प्रताप कह रहे हैं कि मैंने अभी अपना व्यापार शुरू किया है तो क्या मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी और मेरा विवाह कब तक होगा। अजय प्रताप जी, व्यापार आपका बढ़िया चलेगा, सही समय पे सही काम शुरू किया है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, व्यापार में दिक्कत की कोई बात नहीं है और आपकी शादी का समय भी चल रहा है, लगभग शादी आपकी तय हो चुकी है या होने वाली है, साल 2026 के अंत में आपके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। दर्शकों का अंतिम सवाल कौन सा है पंडित जी के पास, पंडित जी से ही जानते हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न कविता शर्मा ने हमें लिखा है और कविता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। कविता की जन्म की तारीख है 21 मार्च 1982, जन्म का समय शाम के 6:00, जन्म स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कविता कह रही हैं कि बहुत दिनों से मैं और मेरे पति मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक नहीं खरीद पाए हैं, तो आगे प्रॉपर्टी खरीदने की क्या संभावना हमारे जीवन में बन रही है। कविता, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने का समय चल रहा है लेकिन जमीन खरीदकर मकान बनवाने का प्रयास मत करिएगा, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिए, अप्रैल 2027 के पहले आप प्रॉपर्टी खरीद ले जाएंगी। स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर है और अक्टूबर 2027 तक जाते जाते आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 जुलाई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी।
0: ज जिन लोगों का जन्मदिन 29 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन आने वाले साल में महत्वपूर्ण काम सब होंगे लेकिन थोड़े विलंब से होंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं? देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं, वास्तविक गुरु हैं, तो उनका चित्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, संपूर्ण सृष्टि और चर अचर में विद्यमान हैं, व्याप्त हैं। गुरु का चित्र केवल आपको जागृत रखने का उपाय है कि आप चित्र देखकर गुरु को स्मरण कर सकें, याद रख सकें। फिर भी अगर आपको लगे, आप चाहें, तो आप बिना संकोच के अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर रख सकते हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 29 जुलाई 2026 उपहर के बारे में।
0: दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है। शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में अपने गुरु को सफेद फूल अर्पित करिएगा। गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 जुलाई बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए। आज की गुडलक राशि है मिथुन। आप नियमित रूप से रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आप जीवन में हमेशा तरक्की और हमेशा प्रगति कर सकेंगे।
1: चलिए, तमाम उपाय और जानकारियों के बारे में आपने पंडित जी से ज्ञान ले लिया है, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, अगर आपको सद्गुरु नहीं मिले हैं, आप सद्गुरु की प्राप्ति, वास्तविक गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अपने आचरण और अपने व्यवहार में शुद्धता लाइए और रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र कम से कम 27 बार या 108 बार पढ़िए और सद्गुरु प्राप्त करने की प्रार्थना करिए।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: कौन हो सकता है आपका गुरु? गुरु की महिमा क्या है? और गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर गुरु का आशीर्वाद कैसे लेंगे? क्या है गुरु पूर्णिमा के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव
7: मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का शुभ पर्व अब आने ही वाला है, ऐसे में बप्पा के स्वागत की तैयारियां भी पूरे शबाब पर हैं। अमरावती की एक तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। दरअसल यहां कलाकार दिन रात मेहनत कर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक भी है। देखिये

0: रंग बिरंगी पापा की प्रतिमाएं, अलग अलग आकार के आसन पर विराजे गणपति, कहीं बारीक नक्काशी का काम चल रहा है तो कोई रंगों से बापा की दिव्यता को निखार रहा है। जहां हर हाथ में कला है और हर चेहरे पर आस्था की चमक, अमरावती के इस कार्यशाला में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। गणेश चतुर्थी में भले ही अभी वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमरावती की जिराफे आर्ट कार्यशाला में इस बार भी आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए यहां खास इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खासतौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही है।
1: एक तो अभी मट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मट्टी के गणपति बनाते हैं। यूपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग कलाकारों की सालों की मेहनत और श्रद्धा की कहानी बयां कर रही है। अमरावती की कार्यशाला आस्था, कला और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा संगम बन गई है कि यहाँ होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक भी पहुँच चुकी है। गणेशोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी है। इसलिए तो हर प्रतिमा में कलाकार सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ते, बल्कि उसमें अपनी भक्ति, मेहनत और भावनाएं भी उकेर देते हैं, ताकि जब बापा घर घर विराजे तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचे। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा।
2: हर किसी को अब बापा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बापा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ। यही अब हर किसी लाडले बापा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश की सबसे लंबी मुकुंदरा टनल अब शुरू हो गई है। इससे ना सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि 45 मिनट का रास्ता अब सिर्फ 5 मिनट में तय किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
4: दिल्ली से मुंबई जाने वाले हजारों यात्रियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। राजस्थान में बनी 4.9 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा टनल वाहनों के लिए खोल दी गई है। फिलहाल चेचट से कोटा की तरफ जाने वाली लेन शुरू की गई है, दूसरी लेन भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अब एक्सप्रेस वे से उतरकर पहाड़ी और स्टेट हाईवे के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा। पहले जिस सफर में करीब 45 मिनट लगते थे, अब वही दूरी से 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, करीब 20 किलोमीटर का रास्ता भी बच जाएगा। करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस टनल का पहले ट्रायल किया गया। गुणवत्ता जांच पूरी हो जाने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। टनल शुरू होने से दरा घाटी में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और जाम से राहत भी मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। राजस्थान में एक्सप्रेसवे का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, कुछ हिस्सों पर अभी भी निर्माण चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुकुंदरा टनल शुरू होने से अब दिल्ली से मुंबई की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। समय की बचत होगी, ईंधन कम खर्च होगा और जाम की परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरी लेन शुरू होने के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकेगा। देश की सबसे लंबी मुकुंदरा टनल खुलने के साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफर एक नए दौर में पहुंच गया है। यात्रियों को अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का फायदा मिलेगा। जयपुर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
5: वायरल वीडियो में एक बच्चा अपनी मां के साथ शॉपिंग मॉल में नजर आता है, तभी उसकी नजर लाल रंग की ड्रेस पहनी एक महिला पर पड़ती है। मजेदार बात यह कि उस महिला ने बिल्कुल वैसी ही लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है जैसी बच्चे की मां ने पहनी है। बस फिर क्या था, नन्हा मासूम बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को ही अपनी मां समझ बैठता है और उसके साथ चलने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद असली मां सामने आ जाती है। अब बच्चे के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है, वो कभी एक महिला की तरफ देखता है तो कभी अपनी मां की ओर। आखिरकार नन्हा अपनी असली मां का हाथ मजबूती से थाम लेता है और उनके साथ वहां से चल देता है। बच्चे की ये मासूम गलती, उसके चेहरे पर उभरते प्यार एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नन्हे फैन की खिलखिलाहट सबके चेहरे पर मुस्कान ला रही है। एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से टीवी पर मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी देखता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कार्टून में मजेदार शरारतें और फनी सीन सामने आते हैं, वैसे वैसे बच्चे की हंसी भी और मजेदार होती जाती है। कभी वो ठहाके लगाकर हंसता है तो कभी हंसते हंसते खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। उसकी मासूम खिलखिलाहट कमरे का माहौल ही बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कार्टून से ज्यादा मजेदार बच्चे का हंसने का अंदाज हो। बच्चे की बेफिक्री और चेहरे पर छलकती खुशी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। इस वायरल वीडियो में एक माँ हाथ में चप्पल लिए अपनी नन्ही बच्ची के पीछे दौड़ती नजर आती है। लगता है कि बच्ची ने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसके बाद माँ उसे सबक सिखाने के मूड में है। उधर पापा आराम से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े रखते हुए नजर आ रहे हैं। तभी उनकी नजर घबराकर भागती बच्ची पर पड़ती है और वो फौरन एक मजेदार तरकीब निकाल लेते हैं। पापा झट से बच्ची को उसी बड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर छिपा देते हैं। माँ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन बच्ची दिखती नहीं। कुछ पल के लिए उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर नन्ही शैतान कहाँ गायब हो गई। इधर बैग के अंदर छिपी बच्ची सुरक्षित रहती है और पापा के इस रेस्क्यू मिशन की वजह से चप्पल की मार से वो बच जाती है। माँ का गुस्सा, पापा की फुर्ती और बच्ची की मासूम शरारत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इस वीडियो में देखिए, एक व्यक्ति और उसका पालतू डॉगी साथ साथ बैठे नजर आते हैं। उनके सामने एक घंटी टंगी होती है, वहीं पास में एक महिला भी खड़ी रहती है। जैसे ही व्यक्ति घंटी बजाता है, महिला तुरंत उसके मुंह में खाने का एक निवाला रख देती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 दफा होता है। डॉगी पूरी घटना को बड़े गौर से देखता रहता है, मानो हर नियम कायदे समझने की कोशिश कर रहा हो। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में डॉगी को भी पूरा खेल समझ आ जाता है। वो अपने पंजे से घंटी बजाता है और खाने का इंतजार करने लगता है। उसका अंदाज देख ऐसा लगता है मानो वो कह रहा हो, अगर घंटी जाने से खाना मिलता है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। डॉगी की समझदारी और उसके प्यारे एक्सप्रेशंस लोगों का दिल जीत रहे हैं। इस वायरल वीडियो में एक बिल्ली एटीएम के बिल्कुल किनारे बड़े आराम से बैठी नजर आती है। तभी एक शख्स पैसे निकालने के लिए मशीन के पास पहुंचता है और जैसे ही वो एटीएम में हाथ डालकर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है, बिल्ली तुरंत एक्टिव हो जाती है। कभी वो अपने पंजे से उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है, कभी ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस देती है मानो हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हो। उसका अंदाज देख ऐसा लगता है जैसे वो एटीएम की सेल्फ अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड हो, जो बगैर जांच पड़ताल किए किसी को पैसे निकालने नहीं देगी। शख्स जितनी दफा मशीन की तरफ हाथ बढ़ाता है, बिल्ली भी उतनी ही मुस्तैदी से उसे रोकने की कोशिश करती है। बिल्ली की ये चौकसी और उसके मजेदार हाव भाव लोगों को लुभा रहे हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: कौन हो सकता है आपका गुरु? गुरु की महिमा क्या है? और गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर गुरु का आशीर्वाद कैसे लेंगे? क्या है गुरु पूर्णिमा के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
8: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
9: La Que Buena.
8: ESPN Radio.
10: We know LeBron has to be the best player on the planet to
8: get The Daily.
11: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
8: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन भारत ने जीते दो और सिल्वर मेडल, अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई, बॉक्सिंग में 3 और मेडल पक्के। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल, एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। आज है गुरु पूर्णिमा, शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे भक्त, शिरडी के साई धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। उम्मीदों भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: शुभ समाचार की शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के साथ करेंगे। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आस्था का ये महापर्व गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रम तक श्रद्धालुओं का सैलाब उबड़ा है, तो गुरु पूर्णिमा के रंग कैसे बिखर रहे हैं हर जगह, ये भी आगे आपको दिखाएंगे।
4: वही बात सावन की भी होगी, दरअसल कल से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। ऐसे में शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है और इसी भीड़ को देखते हुए काशी समेत देश भर के शिव धामों में खास तैयारी की गई है, विस्तार से करेंगे बात।
3: तो साथ ही आपको मॉनसून की फुहारे भी हम दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जगहों पर भी मौसम का कैसा है मिजाज, इस पर भी हम आगे करेंगे बात।
4: साथ ही आपको स्कॉटलैंड के ग्लासगो भी लिए चलेंगे, जहां पर आज 6ठा दिन है, इससे पहले कल भारत ने 2 और मेडल जीते, इस तरह अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हो गई है, कुछ और मेडल पक्के हैं, कौन से ये मेडल हैं, इन सभी के बारे में करेंगे विस्तार से बात।
3: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे चीन, जहां एक प्रोएक्टिव इमोशनल रोबोट पांडा लॉन्च किया गया है, ये घर में रहने वाले बच्चों को गुड हैबिट सिखाने के साथ विकास में भी मददगार बनेगा, तो इसकी और खासियत भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
4: आज देशभर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। आज के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, तो वहीं सुबह से भक्त गंगा में डुबकी लगाकर अपने गुरु की पूजा पाठ कर रहे हैं।
3: सावन को लेकर देशभर के शिव मंदिरों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां मंदिरों में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं महादेव के जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों का जोश बरकरार है। 30 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है।
4: बागपत में कांवड़ यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए अच्छी पहल की गई है, जहां पर कांवड़ियों के लिए कांवड़ यात्रा ऐप लॉन्च किया गया। इस डिजिटल पहल के जरिए श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर रूट मैप, चिकित्सा सहायता, पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए 30,000 से अधिक डिजिटल वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं।
3: महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में अब दक्षिण भारतीय भोजन भी परोसा जा रहा है, मंगलवार से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अब हर मंगलवार और शुक्रवार को यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में साउथ इंडियन डिशेस दी जाएंगी। सावन में यहां फलाहारी भोजन भी मिलेगा। महाकाल मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं को सांभर इडली, स्टीम राइस, मौसमी सब्जी और पोंगल परोसा जाएगा। शुक्रवार को पुलिहरा, पायसम रसम, स्टीम राइस और मौसमी सब्जी प्रसाद के रूप में दी जाएंगी। पहले दाल चावल रोटी सब्जी और मिठाई परोसी जाती थी।
4: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 1 अगस्त को योजना का आवेदन पोर्टल खुलेगा, जिसके बाद पहली किस्त रक्षाबंधन पर आने की उम्मीद है।
3: अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर म्यूजियम के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। म्यूजियम के निर्माण के लिए 52 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, प्रस्तावित म्यूजियम में अलग अलग देशों के प्रसिद्ध मंदिरों के आर्किटेक्चुरल मॉडल, उनके इतिहास और धार्मिक महत्व को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
4: सर्बिया के नोवी साद में चल रहे वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में भारत के राहुल शर्मा के शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम उसको हासिल किया। राहुल शर्मा ने इस टूर्नामेंट में न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
3: बोस्निया के मोस्टा शहर में एक अनोखी डाइविंग प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक ओल्ड ब्रिज से खिलाड़ी नदी में छलांग लगाते हैं। ये डाइविंग प्रतियोगिता यहां के 450 साल पुराने पुल के पुनर्निर्माण का जश्न मनाने के लिए होती है। 30 मीटर ऊंचे ऐतिहासिक पुल को यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है।
4: आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सनी देओल एक ऐसे शख्स के किरदार में नजर आते हैं जो किसी भी हाल में अपने जमीर से समझौता नहीं करता। वहीं शबाना आजमी एक बुजुर्ग महिला के रोल में है। ये फिल्म 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द की कहानी दिखाती है। फिल्म में अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल भी नजर आए।
5: मैं कितने जाना, मेरा घर है
6: पर मैनू लगता है

0: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नमः। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आस्था का ये महापर्व गुरु के प्रति सम्मान कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रम तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कहीं भक्त गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो कहीं गुरु चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। हरिद्वार प्रयागराज वाराणसी उज्जैन नासिक और देशभर के पवित्र नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर गुरु का स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया। तड़के काकड़ आरती से उत्सव की शुरुआत हुई। आज दिन भर दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी गुरु पूर्णिमा की भव्य छटा देखने को मिल रही है।
1: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल का पंचामृत में और पवित्र जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्म आरती और भव्य श्रृंगार में बाबा महाकाल ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए।

0: गुरु जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अनंत प्रकाश है, गुरु जिनके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती, धर्म ग्रंथों में जिन्हें भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपनी सारी अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है, अपना सारा भार गुरु को दे देता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे कथा मिलती है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
1: ये वेद व्यास जी जो सारी है ना रचनाओं के रचयिता है, जिन्होंने पुनः दोबारा वेदों का प्रादुर्भाव भी किया, उनका जन्म तिथि है। उनकी जन्म जयंती के साथ साथ में ये गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम पे की जाती है। और आज के दिन ही अपने गुरुओं का पूजन करना और उनके आशीर्वाद लेना और अपने उत्तम लोक के कल्याण हेतु उनसे ज्ञान लेने का दिन कहलाता है।
0: चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कब से लग रही है गुरु पूर्णिमा की तिथि और कौन से शुभ युग का हो रहा है निर्माण। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास की पूर्णिमा 28 जुलाई को शाम 6:18 से शुरू हो चुकी है और ये आज यानी 29 जुलाई को रात 8:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए आज ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर बुधादित्य योग बन रहा है। इसके अलावा शश राजयोग और हंस राजयोग बन रहे हैं। ये योग बौद्धिक क्षमता और मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। ग्रहों की ये स्थिति 56 साल बाद एक साथ बनी है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। लेकिन तब क्या करें जब आपके गुरु नहीं हो? अगर आपके गुरु नहीं है तो हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिवजी ही हैं। अगर गुरु ना हो तो शिवजी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिवजी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें।
1: यदि आपको शारीरिक गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसके आपके चरण पकड़ के आपका कल्याण हो, तो भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके आप निष्ठा पूर्वक भगवान के भगवत भजन में लग जाएं, अपने सिद्धियों को यह प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, श्री कृष्ण 16 कला परिपूर्ण है, इनकी भक्ति करने वाला, इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही उनका गुरु के समान ही अपने जीवन में प्रभाव पाता है और वह पल पल पे, पग पग पे आपका हाथ पकड़ के आपके आगे के मार्गों को सुगम करते हैं।
0: कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है, उसे सुख, शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है। तो आप भी इस शुभ तिथि का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो रामनगरी अयोध्या में भी गुरु पूर्णिमा के उत्सव उमंग दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या मोक्ष दायिनी को कहा गया है और यहाँ पर पतित पावनी सरयू नदी बहती है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह से भक्त सरयू में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। घाट पर अच्छी रौनक भी नजर आ रही है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव को लेकर तमाम तैयारी की गई है। हरिद्वार में भी गंगा स्नान को लेकर भक्त उमड़ चुके हैं। तो गुरु पूर्णिमा को लेकर हर जगह पर अलग अलग तरीके से उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मंदिरों की तरफ भी पहुंच रहे हैं, वही घाटों पर भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और फिर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। जय श्री राम के उद्घोष और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आई।
3: आज जिस तरह से भगवान राम का सेवा हो रहा है, उसी तरह अपने गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, गुरु और शिष्य का जो है, गुरु के अपना पूजा पत्रिका जो भी है, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वो परंपरा आज से नहीं, सदैव से ही परंपरा चलते आई है। गुरु चेला का ये संबंध।
2: तो वहीं प्रयागराज में आस्था और विश्वास के रंग बिखरे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, दान पुण्य किया और अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सुख शांति और समृद्धि की कामना की है।
4: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जी की पूर्णिमा है। जितने भक्तजन है जो गुरु दीक्षित हो चुके हैं, गुरु से मंत्र ले चुके हैं, उन लोगों की अति पुण्य पर्व है। जिनके कोई गुरु नहीं है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण है, उनकी पूजा करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अतः वो सबके गुरु हैं। जिनका कोई गुरु नहीं भगवान कृष्ण की पूजा करें।
5: उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे। फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है, वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
6: जी आज गुरु पूर्णिमा है, आज स्नान करने आए हैं, गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज महत्वपूर्ण स्नान है आज का।
2: और चलिए हरिद्वार में गंगा स्नान की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करके अपने गुरुओं की पूजा करनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। लिहाजा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तिभाव के साथ यहाँ गंगा आरती भी की गई। तो देखिए किस तरह से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह भक्त जो हैं वो गंगा घाटों पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज के दिन स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। गुरु की पूजा आज की जाती है और आज के स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जुटना शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ सावन का कावड़ मेला भी शुरू हो गया है, लिहाजा आज बड़ी संख्या में कावड़िए जल लेने हर की पौड़ी पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास का इस धरती पर अवतरण हुआ था।
7: बहुत आनंदमयी पल है, भगवती गंगा की कृपा, भगवान शंकर की कृपा, और विशेषकर आज जो है गुरु पूर्णिमा का विशेष उपलक्ष्य है। अर्थात आज के दिवस को जो है अज्ञान से ज्ञान की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को मनाया जाता है। आज ही जो है भगवती गंगा में स्नान करके हम जो है अपनी यात्रा भी प्रारंभ करते हैं हरिद्वार से।
8: बोले कि निरोग रखे माँ, हमारे बाल बच्चे को भक्ति के मार्ग पे चलने को कहे, बस यही भक्ति मांगी माता से।
9: गुरु पूर्णिमा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे आए हैं, गुरु जी के दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन से बहुत सुख शांति घर में मिलती है।
2: तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शिरडी साईं धाम श्रद्धा और भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है। 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। काकड़ आरती के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा और श्री साईं चरित्र ग्रंथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु साईं समाधि के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिरडी में विशेष इसका महत्व माना जाता है। साईं बाबा को करोड़ों श्रद्धालु अपना सदगुरु मानते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के चरणों में नमन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस पावन मौके पर साईं बाबा का दर्शन और गुरु पूजन करने से गुरु की कृपा होती है और जीवन के दुख संकट और अज्ञान का नाश होता है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा शिरडी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है और लाखों लोग इस पर्व का हिस्सा बनते हैं।

0: बाबा का सजा दरबार है। चारों ओर फूलों का श्रृंगार है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं को ये भक्तों की सौगात है। शिरडी की रौनक बता रही है कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व शुरू हो चुका है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया है तो कोई सात समंदर पार से बाबा के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करने पहुँचा है। गुरु उत्सव के पावन पर्व की रौनक से चप्पा चप्पा दमक रहा है।
1: बाबा के दरबार आते हुए हमें कम से कम भी मैं 2005 या 6 से जुड़ा था, तो अब बाबा की बहुत कृपा है। मतलब हमने दिन प्रतिदिन प्रगति देखी है। बाबा से दर्शन करो और दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। और मुझे लगता है कि सब साईं भक्तों को आना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की सब साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा को गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। इस अवसर पर कोई साईं को सोना चांदी चढ़ाता है तो कोई गुरु दक्षिणा में रुपए पैसे दान देता है, लेकिन श्रद्धा में सब बराबर है। साईं के भक्त भी मानते हैं कि हर मनुष्य में भगवान देखने का साईं का संदेश यहाँ आकर साक्षात सच प्रतीत होता है। इस बार साईं बाबा को नेल्लूर के एक भक्त ने 642 ग्राम सोने का 1,03,00,000 रुपए का ये मुकुट अर्पित किया है। इस सोने के मुकुट पर दशावतार की मूर्तियां हैं।
2: गुरु पूर्णिमा का वजह से एक मुकुट लाया भगवान का अर्पण करने का। ये गुरु पूर्णिमा में ये मुकुट है नवग्रह का, बाबा का अर्पण।

0: पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत जो है आज हुई है। तीन दिन की उत्सव में आज सुबह कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकल गई और द्वारका माई में जो है अखंड साई चरित्र पारायण की शुरुआत हुई है। पूरी देश विदेश से लाखों साई भक्त जो है वो इस उत्सव में आने की आशंका है। बाबा के भक्त बाबा को जो है गुरु मानते हैं, तो यहाँ आने के बाद बाबा की झोली में भर भर के गुरु दक्षिणा जो देते हैं।
1: साईं बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव तीन दिनों तक चलेगा। इस तीन दिनों में बाबा के दर्शन का न केवल रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि हर बार की तरह इस बार भी चढ़ावे का नया कीर्तिमान बनेगा। फिलहाल तो शिरडी के साईं का ये धाम भक्ति के आनंद में मगन है, साईं के दर्शन भर से कृतज्ञ है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं के जोश से धन्य है। शिरडी से नितिन मिराणे की रिपोर्ट।
2: गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था की नगरी उज्जैन पूरी तरह से शिवमय हो उठी है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती हुई, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव की जय घोष, घंटों और शंखनाद के बीच गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। महाकाल की अलौकिक भस्म आरती हुई, उससे पहले महाकाल का दूध दही घी और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद आरती का नजारा देखने लायक था।

0: बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारियां।
1: कौन हो सकता है आपका गुरु? गुरु की महिमा क्या है? और गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर गुरु का आशीर्वाद कैसे लेंगे? क्या है गुरु पूर्णिमा के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचतानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
4: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
3: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
5: Because people who won't watch games, they hear the voice.
3: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना

0: होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सीडब्ल्यूजी में चमक रहा भारत, वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। आज गुरु पूर्णिमा, शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों में उमड़ रहे हैं भक्त। शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएगी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। दिखने लगे कावड़ के रंग, हरिद्वार में तैयार की गई करेंसी नोटों की कावड़, मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। फोर्टी अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जेएनटी की रिपोर्टर मनीषा लड्डा, एंकर गीतिका पंत और प्रोड्यूसर रानू राठौर को मिला अवार्ड। दिल्ली में इंडिया कुटोर वीक का आयोजन, डिजाइनर जयंत रेड्डी ने पेश किया नया कलेक्शन द गिल्डेड एरा, अभिनेत्री अदिति राव हेदरी और अभिनेता सिद्धार्थ रहे शो के स्टॉपर।

0: चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। बात कर लेते हैं सावन की, क्योंकि कल से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। लिहाजा सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भक्त पूरे महीने महादेव की भक्ति करते हैं। पूरा देश शिवमय हो जाता है, कहीं पर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और आज से हरिद्वार में कांवड़ मेला का शुभारंभ भी हो गया है। इसी के साथ बोलबम के जय घोष के साथ लाखों शिव भक्तों की आस्था कई महायात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हुए हैं। और चलिए अब कांवड़ मेले के रंग आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान एक कांवड़ ऐसी भी दिखी जो नोटों से बनी है। शिवभक्त दीपांशु ने भोलेनाथ से यह अनोखी मन्नत मांगी है। उनका कहना है कि अगले साल वो इससे भी बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने आएंगे। इस अनूठी कांवड़ में 100 के नोट है, 50 के नोट है, 20 और 10 के भी नोट इसमें है। इसे उसी से सजाया गया है। बारिश में नोट खराब ना हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है, लिहाजा कांवड़ को पॉलिथीन से लेकर कवर किया गया है। दीपांशु का कहना है कि इन पैसों से वो भंडारा करवाएंगे और धर्मार्थ पर इसे खर्च करेंगे।
1: बोले मैं अभी हरिद्वार से मैंने कांवड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली। बोले हम मेरा क्या कहते हैं मतलब सपना था नोट वाली कांवड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कांवड़ लेने। देख सकते हो मेरे पीछे जो कांवड़ है इसमें अनगिनत नोट है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें 50 के, 100 के, 10 के और 20 के नोट हैं। जितने भी ये नोट हैं हमारे शिवालय पे पहुंचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे और उनका भंडारा करवाएंगे। नहीं बस भोले बाबा के प्यार में हम ये कांवड़ लेके जा रहे हैं। हम टोटल 4 लोग हैं पर ये कांवड़ सिर्फ मैं चलाऊंगा, एक कंधे कांवड़ है। हाँ बोले क्या कहते हैं अभी ये जो कांवड़ है इससे मैंने मांगी है, अगर ये पूरी हो जाती है तो मैं अगले साल इससे बड़ी नोट की कांवड़ लेके जाऊंगा।
0: तो देखिए सावन में शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है और इसी भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ धाम में पुख्ता तैयारी की गई है। यहां पर सावन के पावन अवसर पर करीब 1 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद की जा रही है।
2: ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और माता गौरा को, और इस महीने में भगवान कैलाश से यहाँ काशी में वास करते हैं, तभी यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं।
3: भगवान शिव को ये प्रिय महीना है, तो इसमें जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी।
4: ब्लेसिंग इन योर सोल इन योर आत्मा इज बिग बिग दर्शन।
5: यूं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हर दिन रौनक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, लेकिन सावन की तो बात ही निराली है। सावन जब प्रकृति हरे रंग से धरती का श्रृंगार करती है, आसमान से बरसती बूंदे उनमें ताजगी का एहसास भर देती है और इन सब के बीच भगवा रंग में रंगे कांवड़ियों का जय घोष मानो देवादिदेव के रंग में खुद के रंग जाने का ऐलान करता है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, लेकिन विश्वनाथ धाम में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है।
6: सावन का पावन माह इस बार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इसलिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये संख्या 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। और अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसके मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई हैं।
5: महादेव को काशी भी पसंद है और सावन भी, तभी तो भोलेनाथ के इस मोक्ष धाम में सावन की अद्भुत छटा बिखरती है। बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज हर तरफ हर घड़ी सुनाई देती है। महीने भर भक्तों का मेला रहता है, संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। सावन में यहां सबसे ज्यादा 1,63,00,000 शिव भक्तों के पहुंचने का रिकॉर्ड है। इस बार भी अनुमान 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने का है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एंड टू एंड और जिगजैग बैरिकेडिंग होगी। जर्मन हैंगर, पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस की व्यवस्था होगी। खोया पाया केंद्र बनाया गया है। कांवड़ियों के लिए एक लेन पूरी तरह से सुरक्षित की गई है। श्रद्धालुओं के रूट पर वेटिंग रूम, मेडिकल टीम, पीआरवी, क्यूआरटी टीम भी 4 किलोमीटर पर मौजूद रहेगी। सिविल ड्रेस में भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि बेहतर निगरानी की जा सके। बाढ़ को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ, बाढ़ राहत पुलिस, पीएसी की फ्लड कंपनी और स्थानीय जल पुलिस की सभी घाटों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके, और प्राइवेट गोताखोरों को भी रखा गया है। निर्धारित मानक और डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। प्लास्टिक पर पहले से ही रोक है और इस बार भी सावन में प्लास्टिक की सामग्री को लेकर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन पर पूरे महीने रोक रहेगी।
7: एसओपी हमारी पुनः लागू रहेगी। उसी प्रकार जिगजैग लगाए जाएंगे, एंड टू एंड जिगजैग रहेगा। प्रवेश और निकास के निर्धारित मार्ग रहेंगे। 6 मार्गों से प्रवेश निकास की व्यवस्था रहेगी। लोगों के लिए एंड टू एंड जो है वो कैनोपीज लगाकर, या हमारे जो जर्मन हैंगर्स हैं और जो अलग सिंथेटिक फाइबर का जो हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है, उसके माध्यम से लोगों को छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल के अलावा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, ओआरएस की व्यवस्था रहेगी, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था बनाई गई है।
5: वहीं भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि मंदिर आते समय वो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।
7: इसके अतिरिक्त यह अपील बार बार जारी की गई है, कृपया प्लास्टिक की सामग्री लेकर धाम में प्रवेश न करें। यह अपील बार बार जारी की गई है कि दर्शन में समय अधिक लगता है, श्रावण मास में बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो कृपया खाली पेट न आएं, क्योंकि लंबा समय लगने पर लोगों के फेंट होने की समस्या होती है। और बार बार यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने ठहरने के स्थान पर, रुकने के स्थान पर, अपने घर पर, सराय में, होटल में, रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ से भी आप आ रहे हो दर्शन करने, वहाँ पर अपना मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरे वाला जो चश्मा होता है, पेन और धातु की अन्य नुकीली वस्तुएं छोड़कर आए, इनके साथ यहाँ प्रवेश संभव नहीं है। बैग लेकर ना आए, बैगेज काउंटर उसमें संचालित नहीं होते हैं।
5: सावन है, महादेव है, काशी है, श्री भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने बिना ही सावन मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पावन उत्सव में शरीक हो सकते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: कल से पवित्र सावन मास की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मौसम ने भी शिव भक्तों का स्वागत किया है। बारिश के फुहारों से इसका स्वागत करना शुरू हो चुका है और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश भर के मौसम का मिजाज अभी कैसा है।

0: कहते हैं सावन और बारिश का रिश्ता वैसा ही है जैसा धरती और आसमान का। सावन वो महीना है जो आसमान से बरसता है और धरती पर हरियाली बनकर मुस्कुराता है। कल से सावन का शुभारंभ हो रहा है, उससे पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे शबाब पर है और उसकी हर बूंद आने वाले सावन की नई कहानी लिख रही है। जुलाई का आखिरी हफ्ता बारिश से तरबतर है, कहीं रिमझिम फुहारे मन को सुकून दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश लोगों के धैर्य और हौसले की परीक्षा ले रही है। सावन के आगमन से पहले ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर बारिश से तराबोर है। बीते कई दिनों तक उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था, लेकिन जैसे ही बादल बरसे गर्मी ने मानो घुटने टेक दिए। मौसम खुशनुमा हो गया है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की ये मेहरबानी अभी थमने वाली नहीं है।
1: ओवरऑल आप बात करें तो इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। अगर ये आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज्यादातर हिस्सा ईस्ट इंडिया का इधर ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है और वे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर जा रहा है इस रीजन के लिए, और इसके अलावा अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, जिसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। इवन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, और हिमालय की बात करें आने वाले 3 से 4 दिन और स्पेसिफिकली उत्तराखंड हिमाचल, वहाँ वेरी हैवी विंड 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रह सकता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादातर हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा।
0: उधर पहाड़ों पर भी सावन पूरे रंग में बरसने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है।
2: 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे इसी दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है, और ये जो वेदर एक्टिविटी है इसमें देखिए 30 और 31 जुलाई को काफ़ी सक्रिय रहेगा, और इसके चलते हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दूसरे में देखने को मिलेगी। अगर 30 की बात करें, 30 जुलाई की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना एक दो स्थानों में। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, यहाँ के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जो मेन एक्टिविटी है वो 29 जुलाई की देर रात से लेकर 31 जुलाई तक काफी सक्रिय रहेगा।
0: कहते हैं सावन सिर्फ धरती को नहीं बल्कि हर किसी का मन भी को देता है। यही वो मौसम है जब शिव भक्ति और बारिश का संगम दिखाई देता है। इसी सावन में आस्था और प्रकृति एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं, और हरियाली के बीच खुशहाली की उम्मीदें भी लहलहाने लगती हैं। सावन की हर फुहार सिर्फ बरसती नहीं है बल्कि अपने साथ सुकून, श्रद्धा और जीवन का नया उत्साह भी लेकर आती है। शिमला से विकास शर्मा, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और दिल्ली से मनीषा लता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मानसून के इस मौसम में कई जगह भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन डूब क्षेत्र में वक्त रहते पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूपी के गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू, राहत सामग्री और चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए एक विशेष वाहन लॉन्च किया गया। इसे हनुमान रथ नाम दिया गया है, और अपने नाम की ही तरह ये व्हीकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बड़े पहिए वाला ये वाहन सड़क, पानी और कीचड़ में भी आसानी से चल सकता है और बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में सक्षम है। मंत्रोच्चार के बीच डीएम प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर हनुमान रथ की शुरुआत की। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में ये वाहन अहम भूमिका निभाएगा।
4: जनपद जो उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से जनपद है उनमें है, और हमारे यहाँ करनैलगंज और तरबगंज तहसीलों की गांव और एक आबादी जो होती है बाढ़ से प्रभावित होती है, जिनके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी की गई। इसी क्रम में हमारे माननीय सदर विधायक महोदय द्वारा शार्प या हनुमान रथ जो वाहन एम्फीवियस व्हीकल है, एक CSR एक्टिविटी के माध्यम से हमारे जिला आपदा प्राधिकरण को दिया गया है। यह आपदा के समय में यह सड़क पर भी चल सकता है और नदी में भी चल सकता है, तो आपदा के समय में जो भी यदि कोई व्यक्ति फंस गया है तो उन तक पहुंचने या फिर किसी व्यक्ति तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने, उनको रेस्क्यू करने, इन सभी कार्यों में इस वाहन का प्रयोग किया जाएगा। आज इसका मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और भली भांति सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ।
5: किसी का रेस्क्यू भी किया गया अभी?
4: हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, तो उसमें एक व्यक्ति का रेस्क्यू भी किया गया है और किस प्रकार से उसमें दोनों पर्पज के लिए प्रयोग है। यदि किसी का रेस्क्यू करना है तो एज अ रेस्क्यू व्हीकल भी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, और यदि हमें बाढ़ के बीच में कोई आबादी अगर घिरी है और उस तक हमें विभिन्न सहायताएं पहुंचानी है तो भी हम इस वाहन का प्रयोग कर पाएंगे।
3: इस वक्त की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रामायण को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पिछले हफ्ते कॉमिक कॉन 2026 में ट्रेलर रिलीज टलने के बाद अब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बड़ा ऐलान किया है। रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण का पहला ट्रेलर 30 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, और खास बात यह है कि मेकर्स ने रामायण के ट्रेलर रिलीज के लिए एक बेहद खास समय चुना है। फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:15 पर दुनिया भर में एक साथ रिलीज किया जाएगा। यह समय अलग अलग देशों के टाइम जोन को ध्यान में रखकर तय किया गया है। सुबह का यह समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक साधना, पूजा अर्चना और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए इसे सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान श्रीराम पर आधारित इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की पहली झलक भी इसी शुभ बेला में दर्शकों के सामने लाई जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर इंडिया फैशन वीक के मंच पर फैशन, शिल्प और शाही अंदाज का शानदार संगम देखने को मिला। मशहूर डिजाइनर जयंत रेड्डी ने अपना नया कलेक्शन द गाइल्डेड एरा पेश किया, जिसने रैंप पर राजसी वैभव और भारतीय विरासत की खूबसूरत झलक बिखेरी। कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय कारीगरी को आधुनिक रंग के साथ पेश किया गया। सुनहरे रंग, बारीक जरी, हाथ की कढ़ाई और रॉयल एम्ब्रॉयडरी से सजे परिधानों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर डिजाइन में भारतीय शिल्प कला और शाही सौंदर्य का अनूठा मेल दिखाई दिया है। शो का सबसे खास आकर्षण रहा अभिनेता सिद्धार्थ और अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, जिन्होंने शो स्टॉपर के तौर पर रैम का शानदार वॉक किया। दोनों की शानदार मौजूदगी ने फैशन शो में 4 लगा दिए। रॉयल आउटफिट्स में सजे इस सेलिब्रिटी कपल ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी।

0: और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की कर लेते हैं। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज एक साथ कुल 12 मेडल जीत लिए हैं और पदक तालिका में नवे स्थान पर काबिज है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते। बीती रात गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। वो इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। गुलवीर के अलावा महिला वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 69 किलोग्राम वर्ग में 29 साल की वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर का ये करियर का बेस्ट प्रदर्शन रहा। इसके अलावा गुड न्यूज ये भी है कि भारतीय बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाकर कम से कम 3 और मेडल पक्के कर दिए हैं।
1: राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में युवा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए GNT की रिपोर्टर मनीषा लड्डा, एंकर गीतिका पंत और प्रोड्यूसर रानू राठौर को 40 अंडर 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया ने 40 अंडर 40 सम्मान समारोह का आयोजन किया था।
0: और अब आपको इंस्टा स्टोरीज में उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए शालिनी महल की फन इंस्टा स्टोरी।
2: 5 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मरने से पहले जरूर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले पैसे हैं आपके पास? पैसे हैं? अब कहोगे मैंने सेविंग्स की नहीं है। अम्मी की सब्जी में से जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग नहीं कहते। अब्बू के वॉलेट में से जो 1 दरम 2 दरम निकालते हो उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो आपके अपनी स्कूल की फीस में से पैसे बचा लेते हो उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो दोस्त के पैसे लेके उधार और उसको वापस ना करना वो भी सेविंग नहीं है। ठीक है, पहले सेविंग कर लो फिर बताऊंगा 5 कौन सी जगह है। वीडियो देख रहे हैं एंड तक।
3: सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है, करूंगी नहीं।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना है।
0: बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: कौन हो सकता है आपका गुरु? गुरु की महिमा क्या है? और गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर गुरु का आशीर्वाद कैसे लेंगे? क्या है गुरु पूर्णिमा के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचातानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
8: FinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit FinQuest.com for more details.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे उस पर्व की जिस पर्व पर पूजा होती है ईश्वर से बड़ी सत्ता की, जिस पर्व पर पूजा होती है गुरु की और गुरु की कृपा मिलती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की और गुरु की कृपा पाने के तरीके की। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात के 8:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 3:37 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है, यथाशक्ति उनकी उपासना करता है, दक्षिणा पुष्प वस्त्र आदि अपने गुरु को भेंट करता है और अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। गुरु की पूजा उपासना करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के
जीवन में हर एक चीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। अर्थात जो ईश्वर भी नहीं कर सकता वो गुरु की कृपा से आपको जीवन में मिल सकता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सामान्यता क्या होता है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो भगवान की बातें करते हैं, आप उन्हें अपना गुरु समझकर गुरु बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वही गुरु होते हैं? कौन गुरु हो सकता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। लोग टीचर को, ज्योतिषी को गुरु कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। कौन होता है गुरु? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, सिर्फ परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म मानव शरीर में आते हैं तब वो सद्गुरु के रूप में अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का जितना संभव हो पालन किया जाए। हालांकि वास्तव में अगर सद्गुरु होंगे तो उनको अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहिए
और कोई वस्तु वो नहीं मांगेंगे। अगर गुरु आश्रम बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं तो ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु का मतलब केवल आपका कल्याण जो चाहता हो। फिर भी शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करे। मानव शरीर में गुरु होते हैं, इसलिए मानव शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका ध्यान शिष्य को अपने गुरु के लिए जरूर रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, संपत्ति को लेकर समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पावन अवसर है, तो अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइएगा, उनके चरण जल से धुलाइएगा और इसके बाद उनके चरण पोंछिएगा। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको सफेद या पीला वस्त्र दीजिएगा और इसके बाद यथाशक्ति जितना आप कर सकें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा और चाहें तो अपने गुरु की वंदना भी कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब उनकी वंदना कर लें, उनकी पूजा कर लें, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा दायित्व स्वीकार कर लें।
और जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेंगे तब आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल गुरु की पूजा जरूरी नहीं है, ये प्रार्थना करना भी जरूरी है कि गुरु आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, परिवार में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार और बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या श्री कृष्ण को गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उनकी उपासना करिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मेरे पागलो,
1: एक बात तुम जीवन में याद रखना, कुसंग की शुद्धि सत्संग से होती है। किससे होती है? बोलो बोलो बोलो बोलो, सत्संग से। और सत्संग की प्राप्ति रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा, पर राम जी की कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से ही होगी। इसलिए जितने ये पांचों पंडालों में बाहर खड़े हैं, आए हैं, आप ये मत मानना आप कथा में आए हैं, हमारा मानना है ठाकुर ने तुमको बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। वरना कितने काम नहीं आ जाते। मान लो तुम कथा के लिए चल पड़े, उसी समय पेट खराब हो जाए, लो हो गई कथा जय बजरंग बली की, बाथरूम में घुसे रहो, गाड़ी पंचर हो जाए, घरवाली लड़ने लगे, दे बेलन चिमटा, और मैं तो चली माए के सजन, तुम यहीं बरो ठटरी, फिर तो भगवान की बड़ी कृपा। बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग किसको प्राप्त होता? बोले जिस पर राम जी की विशेष अनुकंपा होती है वो सत्संग में आके बैठता। सत्संग में आकर बैठने वाला राम जी की कृपा, राम जी की कृपा यानी भगवान की कृपा। लेकिन सत्संग में बैठने वाला यदि भगवान की कृपा है तो सत्संग दिल में बैठने वाले को भक्ति की कृपा कहते हैं। ये भी तो बड़ा कठिन है। कई लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर सत्संग उनमें नहीं बैठता, ये भी एक खतरा है। हमें तो कई यजमान मिलते, गुरुदेव हमने तो आपकी 20 कथाएं सुन ली। अच्छा बेटा कितना सुधार हुआ है? सुधार तो कुछ नहीं हुआ है।

बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। कई लोगों के पास बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। जैसे आपके पास कार तो हो पर चलानी ना आती है, तो कार का कोई महत्व है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, कार का कोई महत्व है? वाहन का तब महत्व है जब वाहन आपको संचालन करना आता हो, चलाना आता हो। ऐसे ही जीवन तो बहुत लोगों को प्राप्त हो जाता, जीवन जीना कैसे चाहिए ये सत्संग सिखाता है।

ये मगरमच्छ ने पैर शंकराचार्य का पकड़ा तो उन्हें संन्यास मिला, हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा तो उनको साधु के अंदर असाधु मिला, कालनेमी। कालनेमी के यहां पर जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए तो रावण ने कालनेमी को बुलाया, इधर आओ, यू कम हियर। कालनेमी बोला बोलो। रावण बोला तुमको एक बंदर को रोकना है। रोकना है? हाँ। कौन से बंदर को? बोले बायोडाटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा खतरनाक, तुम्हें रोकना है। कालनेमी बोला कैसे रोकेंगे? बोले रावण बोला हमने पता लगाया वो कथा का बड़ा प्रेमी है तो तुमको साधु बनना है। कालनेमी बोला तुम भी तो साधु बने थे एक बार, घर पे आफत बुला ली और हमें भी साधु बनवाकर आफत बुलवाओगे? पा रावण बोला खबरदार बहसबाजी मत करो, हमने जो कहा वो मानो वरना। कालनेमी बोला वरना क्या? कालनेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है हनुमान जी के हाथों मरे। कालनेमी बोला एक बात बताओ काम क्या करना है? बोले तुमको राम कथा कहनी है। कालनेमी बोला हम सुने ही नहीं कहेंगे क्या? रावण बोला कुछ नहीं, कथा में कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं, बस यही रावण लंका की और हमारी महिमा सुनाना, हमारी बीच बीच में एकाध बार उसका नाम ले लेना। बोले किसका? बोले जिसकी राम कथा है, राम जी का एकाध बार, ज्यादा नहीं एकाध बार, राम कथा सुनानी, जाओ जाओ आज्ञा है। कालनेमी बोला पर बंदर इतना खतरनाक है। रावण बोला है तो बोले रोकना है? बोले बिल्कुल रोकना, मात्र चार पांच घंटे, पांच घंटे रुक जाए सूर्योदय हो जाए और सूर्योदय होते ही प्राण लक्ष्मण जी के चले जाएंगे, फिर भले ही छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। कालनेमी बोला बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो, क्या ये वही बंदर है जो पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम लंका में लैंड हुआ था? बोले हाँ हाँ वही है वही है, सही पहचान गए, जही जारा नगर प्रथम, वही है वही है वही है। कालनेमी बोला जब तुम नहीं रोक पाए हम कहां से रोकें? जब वो आया था तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला चुप, बहसबाजी करता है, तर्क वितर्क करता है, चलो जाओ। ठीक है जा रहे। अब कालनेमी आके साधु बन के बैठ गया। अच्छा साधु बनना बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। हमारे जैसे 200 का कुर्ता, 250 की धोती और 300 रुपया में बढ़िया रुद्राक्ष की 20-25 माला और 2 रुपया का 2.5 एकड़ के प्लाट पे चंदन। हेलो बन गए साधु? साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है। समझना, साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना कठिन है, क्योंकि भेष का नाम साधु थोड़ी है, स्वभाव का नाम साधु है। अब कालनेमी बैठ गया, राम कथा गाने लगा। अब राम कथा उसने कभी सुनी ही नहीं तो बोले क्या? तो सीधा लंका का, ना बालकांड ना अयोध्या ना किष्किंधा ना सुंदर, सीधा लंका कांड। हाँ, ना राम जन्म हुआ ना विवाह हुआ, सीधी लड़ाई हो रही है उसकी राम कथा में, कि राम राम होत होत रण राम रावण, राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी जले जा रहे थे, नीचे राम कथा देखी तो हनुमान

एक घड़ी तो कथा सुनी ले, क्या दिक्कत है। हनुमान जी कथा में बैठ गए, अब काल ने भी कथा सुना रहा, कथा वाचक काल ने भी और श्रोता हनुमान जी, विचार करो कैसी हो रही होगी। और काल ने भीतर ही भीतर डरे कि कहीं ये ना पूछ ले कि पहले की कथा क्या है, और पता ही नहीं है। तो बेचारा राम रावण का युद्ध बता रहा, इतने तीर चल रहे, उतने तीर चल रहे, युद्ध बता रहा। हनुमान जी ने सोचा हम लेट आए होंगे, कथा पहले शुरू हो गई हो। हनुमान जी जो हाथ जोड़ के बैठ गए, काल ने कहा ये बहुत बढ़िया, ये कुछ बोलता भी नहीं है। अच्छा, जो सच में ज्ञानी होता वो बोलता नहीं है, जो आधा ज्ञानी होता है वही फुदकता है ज्यादा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्हें आधी चौपाई आती है वो ज्यादा जोर से बोलते, जिन्हें पूरी चौपाई आती है जिन्हें सब पता वो नहीं बोलते, जिन्हें आधी आती हो। जैसे कोई चौपाई हम गाए, बड़े भाग्य मानस तन पावा, हाँ हाँ बड़े भाग्य मानस तन पावा, आगे तुम बोलो बोलो। तो हमने कहा भाई हम क्यों बोले, नहीं नहीं बोलो, हमें तो इतना ही आती है ठटरी के बारे। हनुमान जी बैठे हाथ जोड़कर सुनने लगे कथा। कालनेमी ने कथा सुनाई, बीच में ही हनुमान जी को प्यास लगी। बताओ कथा में हनुमान जी को प्यास लगती है कहीं? लेकिन कोई साधु सुनाता है तो कथा प्यास बुझा देती है, पर कोई असाधु सुनाता है तो प्यास लग जाती है। हनुमान जी को प्यास लगी, हमको पानी पीना है। तो कालनेमी भी इतना विचित्र आदमी, उसने कमंडल लिया, लो पिया। हनुमान जी बोले कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है, चेला को हमको क्यों दे रहे। कालनेमी बोला चेला बन जाओ। उसे कहानी पता ही नहीं था, जो मन में आए सो कहता जाए। हनुमान जी बोले तैयार, हम आपके चेला बनने को तैयार हैं, आप हमारे गुरु बनो। स्नान करके आते हैं, तालाब में गए, उसी समय एक मगरिया ने पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, पैर पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया सीताराम हो गई। दिव्य लोक की तरफ जाते जाते हनुमान जी से बोली, वो कोई साधु नहीं है, असाधु है कालनेमी, कालनेमी। अरे बोले वाह। जैसे ही हनुमान जी वापस आए, कालनेमी बोला दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। तो अब उसे पता ही नहीं था कि पहले दीक्षा दी जाती कि दक्षिणा। तो तुरंत बोला लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ दक्षिणा लाओ लाओ लाओ। हनुमान जी बोले गुरु जी चरण आगे करो। और जैसे ही चरण आगे किए, दोनों पैर पकड़ के हनुमान जी ने ऐसा घुमाया, बोले गुरु जी लो दक्षिणा पकड़ियो। कालनेमी बोला हमें पकड़ियो। हनुमान जी बोले दक्षिणा पकड़ियो। ऐसे घुमा के फेंक दिया, गुरु जी हो गए राम नाम सत्तो। कालनेमी स्वामी शंकराचार्य जी का पैर मगरिया ने, मगर ने पकड़ा, सन्यासी बने। हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा, साधु असाधु का पता लग गया, असाधु है साधु नहीं है। एक और मगर ने पैर पकड़ा भागवत में, किसका? हाथी का। गज का पैर भी मगरमच्छ ने पकड़ा, किसने बचाया? भगवान जी ने, श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने। अच्छा, इन तीनों की कथा से एक सिद्ध होता है कि हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा। और मेरे पागलों, सच्ची भक्ति जब हृदय से होती है तो भगवान भी भक्त के बिना रह नहीं पाते। भगवान भी उतना ही प्रेम भक्तों से करते जितना भक्त करते। अभी हम लोगों की भक्ति दिखावा की है, प्रदर्शन की है, और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद के मन को झांको, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन को झांको तो तुम पाओगे कि तुम्हारी भक्ति कितनी दिखावा की, प्रदर्शन की है, जगत को रिझाने की है। और मेरे पागलों, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान को मानते हैं, भक्ति का मतलब यह है कि भगवान तुम्हें मानने लगे। आप भगवान को प्रेम करो, यह भक्ति नहीं हुई। भगवान आपको प्रेम करें, यह कोई बात नहीं। यदि भगवान आपको प्रेम करने लगे, जीवन बदलते देर ना लगेगी। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, संसार के इस खूंटे को खोलो। आहा,
दक्षिण भारत की एक और विभूति कालडी में जिनका जन्म हुआ, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे है। शंकराचार्य भगवान अद्वैतवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने वाले दक्षिण भारत की भूमि पर उनका जन्म हुआ। बाल्य काल से ही बड़े मेधावी हुए, कालडी में उनका जन्म हुआ। 8 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर सन्यासी बन गए। मां से कहा, मां हमको सन्यास लेना। मां ने कहा, बालक हो, बड़े हो जाओ, मैं सन्यास नहीं लेने दूंगी। भगवान शंकर, नाम शंकर रखा, थे ही शंकर। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मां मैं तो सन्यास लूंगा। नहीं बात मानी मां ने। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए मां के साथ गए। अवस्था 8 साल की थी। स्नान करते करते करते करते जल में, जल के बीच में रहने वाले भयंकर खूंखार जीव मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर को पकड़ लिया। छोटा सा बालक फड़फड़ाने लगे। मां रोने लगी, हाय हाय, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो गहरी नदी की तरफ मगरमच्छ खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मां मगरमच्छ कह रहा छोड़ तो दूंगा पर एक शर्त पर। मां बोली, क्या शर्त पर? मगरमच्छ कह रहा सन्यासी होना पड़ेगा, तब छोड़ूंगा। अब तू बता, सन्यासी होने में फायदा कि मगरमच्छ का भोजन बनने में फायदा? मां ने कहा, बेटा जा, आज्ञा दी, बन जा सन्यासी, बस तेरे प्राण बचे, तू खुश रहे। इतना कहते ही मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भला कौन मां चाहे कि हमारा पुत्र दूर हो। श्री दुर्गा सप्तसती के श्लोक में आया, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, माता कुमाता नहीं होती। इसलिए सनातनियों, हमारी प्रार्थना है, आद जगत गुरु शंकराचार्य की ये घटना जीवन को सिखाती है, मां को बालक की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता होती और सन्यासी बना दिया। और वो बालक कालांतर में 32 वर्ष की अवस्था तक चारों तरफ पैदल चल चल करके, चल चल करके चारों मठों की स्थापना की और नाम पड़ा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर
10: फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
19: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
20: वायरल वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में नजर आता है, तभी उसकी नजर लाल रंग की ड्रेस पहनी एक महिला पर पड़ती है। मजेदार बात यह कि उस महिला ने बिल्कुल वैसी ही लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है जैसी बच्चे की माँ ने पहनी है। बस फिर क्या था, नन्हा मासूम बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को ही अपनी माँ समझ बैठता है और उसके साथ चलने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद असली माँ सामने आ जाती है। अब बच्चे के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है, वो कभी एक महिला की तरफ देखता है तो कभी अपनी माँ की ओर। आखिरकार नन्हा अपनी असली माँ का हाथ मजबूती से थाम लेता है और उनके साथ वहाँ से चल देता है। बच्चे की ये मासूम गलती, उसके चेहरे पर उभरते प्यार एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नन्हे फैन की खिलखिलाहट सबके चेहरे पर मुस्कान ला रही है। एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से टीवी पर मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी देखता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कार्टून में मजेदार शरारतें और फनी सीन सामने आते हैं, वैसे वैसे बच्चे की हंसी भी और मजेदार होती जाती है। कभी वो ठहाके लगाकर हंसता है तो कभी हंसते हंसते खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। उसकी मासूम खिलखिलाहट कमरे का माहौल ही बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कार्टून से ज्यादा मजेदार बच्चे का हंसने का अंदाज हो। बच्चे की बेफिक्री और चेहरे पर छलकती खुशी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। इस वायरल वीडियो में एक माँ हाथ में चप्पल लिए अपनी नन्ही बच्ची के पीछे दौड़ती नजर आती है। लगता है कि बच्ची ने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसके बाद माँ उसे सबक सिखाने के मूड में है। उधर पापा आराम से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े रखते हुए नजर आ रहे हैं, तभी उनकी नजर घबराकर भागती बच्ची पर पड़ती है और वो फौरन एक मजेदार तरकीब निकाल लेते हैं। पापा झट से बच्ची को उसी बड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर छिपा देते हैं। माँ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन बच्ची दिखती नहीं। कुछ पल के लिए उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर नन्ही शैतान कहाँ गायब हो गई। इधर बैग के अंदर छिपी बच्ची सुरक्षित रहती है और पापा के इस रेस्क्यू मिशन की वजह से चप्पल की मार से वो बच जाती है। माँ का गुस्सा, पापा की फुर्ती और बच्ची की मासूम शरारत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
21: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचातानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: कॉमनवेल्थ गेम्स में चमक रहा भारत। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। आज गुरु पूर्णिमा शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे हैं भक्त। शिरडी के साई धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत। पहलगाम में निभाई जाएगी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्म। दिखने लगे कावड़ के रंग, हरिद्वार में तैयार की गई करेंसी नोटों के कावड़। मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए GNT के मनीष अलड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला हुआ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
3: आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान और तप का है विशेष महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना माना जाता है अत्यंत शुभ।

0: गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू घाट पर सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़, विधि विधान से की श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता, लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार के गंगा घाटों की निखरी रंगत, मठ मंदिर में अपने गुरुओं की पूजा करने पहुंच रहे भक्त। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से ही भक्तों का लगा मेला, संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी, भक्तों ने किया पूजन पाठ। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मुड़िया मेले पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु उमड़े, जमकर लगाए जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेला पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह मुस्तैद दिखे जवान। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पूजा अर्चना की, दोनों की उतारी आरती। गुरु पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने गुरु का किया पूजन, गुरु की उतारी आरती। राजस्थान के डीग में सीएम भजन लाल शर्मा ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंगल आरती में हुए शामिल। राजस्थान के डीग में सीएम भजन लाल ने श्री वन बिहार जी मंदिर में किए दर्शन, भगवान का लिया आशीर्वाद। थूथुकुड़ी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर उमड़ा आस्था का मेला, हजारों भक्तों ने जलाए मिट्टी के दीपक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के साई बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, साई बाबा का पुजारियों ने किया विधि विधान से अभिषेक और पूजन। गुरु पूर्णिमा पर साई बाबा का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, साई बाबा की उतारी गई विशेष आरती। फूलों से सजाकर निकाली गई साईं बाबा की भव्य पालकी, भक्तों ने गाए भजन कीर्तन। साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय साईं राम के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर और दरबार की गई भव्य सजावट, विदेश से भी पहुंच रहे श्रद्धालु। पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएगी भूमि पूजन। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत पर निभाई गई नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्म। 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक दर्शन, 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे भक्त। आस्था उमंग के साथ लगातार अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहा है यात्रियों का जत्था। मदुरई के कल्ला जागर मंदिर में आदि तिरुविजय उत्सव की तैयारियां तेज, मंदिर में विशेष अनुष्ठान जारी। फूलों से सजा भगवान कल्ला जागर का दरबार, रथ यात्रा के लिए रथ बनकर तैयार। कल्ला जागर मंदिर में आदि तिरुविजहा उत्सव से पहले उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्सव से पहले भगवान कल्ला जागर शेष वाहन मोहिनी अलंकार और हाथी वाहन पर सवार होकर भक्तों को दे रहे दर्शन। उत्सव को लेकर मंदिर परिसर में लगा मेला, तरह तरह के सामानों से सजी दुकानें। कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर धूम, करेंसी नोटों से तैयार की गई कावड़। कावड़ बनाने में 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोटों का किया गया है इस्तेमाल, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। हापुड़ में कावड़ यात्रा को लेकर ब्रज घाट पहुंचे मेरठ के कमिश्नर, घाट का लिया जायजा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 40 अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जीएनटी को मिले कई सम्मान। जीएनटी के पत्रकार मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला अवार्ड। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया ने किया था सम्मान समारोह का आयोजन, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए इसमें शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। सैलानियों से गुलजार हुआ डल लेक, शिकारा राइड का आनंद ले रहे सैलानी। पुलवामा में बुजुर्गों के लिए पुलवामा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने लिया इसमें हिस्सा। वडोदरा में गौरी व्रत मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लड़कियों ने लिया इसमें हिस्सा। राजस्थान के डीग में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अगरतला में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, सीएम शाह ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को किया सम्मानित। बिहार के मुंगेर में सरकार डिग्री कॉलेज के शैक्षणिक सत्र का आगाज, सीएम सम्राट चौधरी हुए इसमें शामिल। दिल्ली में इंडिया कुटियोर वीक शो का शानदार आयोजन, मशहूर डिजाइनर डॉली जे ने पेश किया अपने कलेक्शन। फैशन शो में पारंपरिक भारतीय कारीगरी की झलक नजर आई, दुल्हनों के लिए लहंगे कॉकटेल गाउन और शादी समारोह के लिए खास डिजाइन पेश किए गए। भोपाल को मिली चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निषादपुरा रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन, इंदौर उज्जैन की ओर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को होगा इससे फायदा। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में राज्यभर से पहुंचे साइंस के छात्रों से की मुलाकात, स्पेशल सेशन में छात्रों से बातचीत कर आधुनिक शिक्षा के प्रति किया उन्हें उत्साहित।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचतानी। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम कर

0: आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
1: somebody save me,
0: to timeless favorites,
1: life is like a song,
0: and new discoveries.
1: So much more than a history. Wake up.
0: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर

0: जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: आज है गुरु पूर्णिमा, शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे भक्त। शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत। पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी। सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। दिखने लगे कावड़ के रंग, हरिद्वार में तैयार की गई करेंसी नोटों के कावड़। मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जेएनटी के मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला हुआ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में चमक रहा भारत। वेट लिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और जयंती पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्पेशल शो में आज हम बात करेंगे पवित्र और पावन महीने यानी कि सावन के शिव भक्ति से सराबोर सावन के बारे में। देखिए, महादेव की आराधना वाली शिवरात्रि नाग पंचमी की प्राचीन परंपरा भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व यानी कि रक्षाबंधन अपने साथ लेकर आता है। यानी जो अगस्त का हर दिन होता है वो उत्सव का संदेश लेकर आता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अगस्त जो है कई त्योहार अपने साथ लेकर आता है, जिसके बारे में आज के हम स्पेशल शो में बात करने वाले हैं। देखिए, सावन एक ऐसा महीना है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ हर सुबह पूजा से शुरू होती है, हर दिन किसी नई परंपरा से जुड़ता है और ये त्योहार हमें प्रेम, विश्वास, भाईचारे और संस्कृति से जोड़ता है। शिव की आराधना से लेकर भाई बहन के अटूट प्रेम तक, प्रकृति के सम्मान से लेकर शिव शक्ति के मिलन तक, अगस्त अपने साथ खुशियों का पूरा संसार लेकर आता है। आपको बता दें कि अगस्त में इस साल हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे कई प्रमुख त्योहार पड़ेंगे जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। वहीं कामिका और पवित्र एकादशी का व्रत भी इसी महीने में किया जाएगा, यानी सावन के महीने में इसे किया जाएगा। ऐसे में अगस्त का ये महीना बेहद खास रहने वाला है।

0: सावन की रौनक देखिए, उत्साह देखिए, जिधर देखिए उमंग और उल्लास ही नजर आएगा, क्योंकि सावन की शुरुआत बस होने वाली है, साथ ही त्योहारों के महीने की भी शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की। वैसे तो सावन का महीना शिव का महीना माना जाता है, जिसकी शुरुआत और अगस्त महीने की शुरुआत करीब करीब एक साथ हो रही है, और ऐसा संयोग होता भी तो कम है। अगस्त महीने की शुरुआत मानकर चलिए कि सावन के पहले सोमवार से ही हो रही है, यानी 3 अगस्त को पवित्र महीने सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, यानी महीने की शुरुआत के साथ पूरे महीने कोई ना कोई त्योहार, व्रत और पूजा पड़ने वाली है। सावन के सोमवार से लेकर शिवरात्रि तक सुहागिन महिलाओं का त्योहार हरियाली तीज से लेकर नागपंचमी और भाई बहन का खास त्योहार यानी कि रक्षाबंधन तक इस महीने मनाए जाएंगे। कामिक और पवित्र एकादशी का व्रत भी इसी महीने होगा, जिसका शास्त्रों और पद्म पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि व्रत त्योहार के लिहाज से ये महीना बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कजरी तीज जैसे कई बड़े व्रत और त्योहार भी मनाए जाने हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इस महीने में महादेव की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत का भी खास महत्व होता है। सावन सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और विवाहित महिलाओं का दाम्पत्य जीवन सुखमय और मधुर बनता है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। श्रावण मास के हर एक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी उम्र और संतान की रक्षा होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी 9 अगस्त को है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से पाप कम होते हैं और बेहद पुण्य फल मिलता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान और पितृकर्म किए जाते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति आती है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो नाग पंचमी का दिन नाग देव की पूजा के लिए समर्पित है। ये त्योहार सावन शुक्ल पंचमी को पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन उत्तम और विशेष होता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 17 अगस्त को मनाया जाएगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आने वाले त्योहारों के बारे में। संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त 2026, सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026, कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026, हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त, चौथा सोमवार 24 अगस्त, ओणम या तिरुवोणम 26 अगस्त, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन 28 अगस्त, कजरी तीज 31 अगस्त 2026। सावन महीने में दो बड़े ग्रहण भी लगने जा रहे हैं। 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण और 27-28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। वैसे तो ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे बहुत खास माना गया है। ये समय सामूहिक घटनाओं, शासन, अर्थव्यवस्था, मौसम और लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 से शुरू होकर अगले दिन यानी 13 अगस्त 2026 की सुबह 4:25 पर समाप्त होगा, जबकि चंद्र ग्रहण 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह 6:52 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक चलेगा, यानी इसकी कुल अवधि 5 घंटे से ज्यादा रहने वाली है। लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अब क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन के शुभ कार्यों पर इसका कोई असर नहीं होगा। बहनें बिना किसी चिंता के राखी बांध सकती हैं, तिलक, पूजा पाठ और अन्य सभी परंपराएं सामान्य रूप से निभाई जा सकती हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। सूर्य सरकार, नेतृत्व और देश के आत्मविश्वास से जुड़ा है। वहीं चंद्रमा जनता की भावनाओं, अन्न उत्पादन, पानी और सामाजिक स्थिरता का प्रतीक है। क्योंकि ये दोनों ग्रहण पवित्र सावन के महीने में पड़ रहे हैं, इसीलिए ज्योतिष के लिहाज से इनका बहुत महत्व है। यानी अगस्त का महीना शुभता का आशीर्वाद तो लेकर आया ही है, सावन का महीना जैसे प्रकृति का भी महीना माना जाता है, वैसे ही आमतौर पर अगस्त में पूरे भारतवर्ष हरियाली की बहार आ जाती है। इस महीने में पूजा पाठ तो होता ही है, उत्सव की रौनक भी नजर आती है। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा भी इसी महीने देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर अगस्त का महीना खुशियां लेकर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन में शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, और इसी भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ धाम में पुख्ता तैयारी कर ली गई है। यहां सावन के पावन अवसर पर करीब 1 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
2: ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, माता गौरा को, और इस महीने में भगवान कैलाश से यहाँ काशी में वास करते हैं, तभी यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं।
3: भगवान शिव को ये प्रिय महीना है, तो इसमें जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी।
4: ब्लास्टिंग इन योर सोल इन योर आत्मा इज बिग बिग दर्शन। Anytime, acha, but seven is important.
5: यूं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हर दिन रौनक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, लेकिन सावन की तो बात ही निराली है। सावन जब प्रकृति हरे रंग से धरती का श्रृंगार करती है, आसमान से बरसती बूंदें उनमें ताजगी का एहसास भर देती है, और इन सब के बीच भगवा रंग में रंगे कांवड़ियों का जय घोष मानो देवाधिदेव के रंग में खुद के रंग जाने का ऐलान करता है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, लेकिन विश्वनाथ धाम में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है।
6: सावन का पावन माह इस बार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इसलिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये संख्या 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। और अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसके मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई हैं।
5: महादेव को काशी भी पसंद है और सावन भी, तभी तो भोलेनाथ के इस मोक्ष धाम में सावन की अद्भुत छटा बिखरती है। बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ हर घड़ी सुनाई देती है। महीने भर भक्तों का मेला रहता है, संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। सावन में यहां सबसे ज्यादा 1,63,00,000 शिव भक्तों के पहुंचने का रिकॉर्ड है। इस बार भी अनुमान 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने का है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एंड टू एंड और जिगजैग बैरिकेडिंग होगी, जर्मन हैंगर, पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस की व्यवस्था होगी। खोया पाया केंद्र बनाया गया है। कांवड़ियों के लिए एक लेन पूरी तरह से सुरक्षित की गई है। श्रद्धालुओं के रूट पर वेटिंग रूम, मेडिकल टीम, पीआरवी, क्यूआरटी टीम भी 4 किलोमीटर पर मौजूद रहेगी। सिविल ड्रेस में भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि बेहतर निगरानी की जा सके। बाढ़ को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ, बाढ़ राहत पुलिस, पीएसी की फ्लड कंपनी और स्थानीय जल पुलिस की सभी घाटों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके, और प्राइवेट गोताखोरों को भी रखा गया है। निर्धारित मानक और डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। प्लास्टिक पर पहले से ही रोक है और इस बार भी सावन में प्लास्टिक की सामग्री को लेकर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन पर पूरे महीने रोक रहेगी।
7: एसओपी हमारी पुनः लागू रहेगी, उसी प्रकार जिगजैग लगाए जाएंगे, एंड टू एंड जिगजैग रहेगा। प्रवेश और निकास के निर्धारित मार्ग रहेंगे, 6 मार्गों से प्रवेश निकास की व्यवस्था रहेगी। लोगों के लिए एंड टू एंड जो है वो कैनोपीज लगाकर, या हमारे जो जर्मन हैंगर्स हैं और जो अलग सिंथेटिक फाइबर का जो हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है, उसके माध्यम से लोगों को छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल के अलावा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, ओआरएस की व्यवस्था रहेगी, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था बनाई गई है।
5: वहीं भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि मंदिर आते समय वो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।
7: इसके अतिरिक्त यह अपील बार बार जारी की गई है, कृपया प्लास्टिक की सामग्री लेकर धाम में प्रवेश न करें। यह अपील बार बार जारी की गई है कि दर्शन में समय अधिक लगता है, श्रावण मास में बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो कृपया खाली पेट न आएं, क्योंकि लंबा समय लगने पर लोगों के फेंट होने की समस्या होती है। और बार बार यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने ठहरने के स्थान पर, रुकने के स्थान पर, अपने घर पर, सराय में, होटल में, रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ से भी आप आ रहे हो दर्शन करने, वहाँ पर अपना मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरे वाला जो चश्मा होता है, पेन और धातु की अन्य नुकीली वस्तुएं छोड़कर आए, इनके साथ यहाँ प्रवेश संभव नहीं है। बैग लेकर ना आए, बैगेज काउंटर उसमें संचालित नहीं होते हैं।
5: सावन है, महादेव है, काशी है, शिव भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने बिना ही सावन मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पावन उत्सव में शरीक हो सकते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन के महीने में हरियाली तीज का पर्व भी आता है। हरियाली तीज महिलाओं के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है। ये पर्व माँ पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। देखिए, मान्यता है कि कठोर तपस्या के बाद इसी दिन माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे, और यही वजह है कि हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। ये दिन अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली कामना के साथ व्रत रखने के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है।

0: सावन का हर दिन पावन है। शिव के प्रिय महीने सावन में बिखर उठते हैं हजारों रंग। पूरे महीने बरसती है शिव पार्वती की विशेष कृपा। इसी पावन महीने में एक खास दिन आता है और इसे कहते हैं हरियाली तीज। कल है हरियाली तीज का शुभ अवसर। ये दिन उन कन्याओं के लिए बेहद खास है जिनके विवाह में बाधा आ रही है या फिर जिन्हें मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा है।
1: श्रावण शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज का संबंध बताया गया है, जिस दिन हरियाली तीज का महत्व है। और यह संभवतः जो लोकों में एक आख्या बताई गई है उसमें अनुसार बताया गया है कि भगवान शिव और पार्वती के यह मिलन का चूंकि दिन है, सती का दिन त्याग करने के बाद जो मिलन प्रथम भगवान का हुआ था इसी दिन हुआ था, या भगवती पार्वती ने शिव आराधना शुरू करने का जो संकल्प किया था उसी दिन किया था, क्योंकि इसके ठीक एक महीने बाद बड़ी तीज पड़ती है। तो हरियाली तीज का उसी से संबंध है कि सौभाग्य का यह व्रत है और भगवान शिव का पार्वती का यह व्रत है।
0: तो आज हम आपको हरियाली तीज के वो खास उपाय बताएंगे जिससे आपको मिलेगा मनचाहा वर और वरदान। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हरियाली तीज की महिमा क्या है। हरियाली तीज का महत्व। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार। सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस दिन व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं को इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए। हरा रंग जो प्रतीक है प्रकृति का, समृद्धि का, और जब इससे जुड़ता है पार्वती और शिव का नाम तो इसे पुकारा जाता है हरियाली तीज के नाम से। ये दिन होता है सुहाग के नाम। कहते हैं सावन के महीने में ही शिव ने अपनी संगिनी पार्वती का हाथ थामा था। पार्वती ने भूखे प्यासे तपस्या कर शिव का दिल जीता था, इसीलिए इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर मां पार्वती से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं।
1: कोई कन्या विवाह करना चाहती है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको नौ नौ चूड़ियां लेकर के, हरे रंग की कांच की चूड़ियां लेकर के, और अगर नौ विवाहित स्त्रियों को देती है या नौ कन्याओं को भी देती है जिनका विवाह होना है, भगवती को चढ़ा करके अर्पण करके नौ कन्याओं को देने से विवाह होता है। और जिनके पुरुषों के जिनके विवाह नहीं हो रहे हों वो भी हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी ले जाकर भगवान महादेव के मंदिर में जहाँ अर्घा है उस पर अर्पण करें तो उनके विवाह की संभावना शीघ्र हो जाती है।
0: कहते हैं इस दिन अगर अविवाहित कन्याएं व्रत और उपासना करें तो उन्हें मनचाहा सुयोग्य वर मिलता है। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन पूजा पाठ और व्रत करती हैं तो उनके जीवन में खुशियों की बरसात होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: सावन के महीने में यानी अगस्त में भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन भी आने वाला है, जिसकी रौनक अब देश भर में दिखाई देने लगी है। सीमा पर तैनात वीर भाइयों के लिए बहनें अपने हाथों से खूबसूरत राखी बनाने में जुट गई हैं। अमेठी के एक सरकारी स्कूल में छात्राएं उत्साह और उमंग के साथ राखियां तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के सरकारी स्कूल की नन्ही बेटियों ने एक ऐसी पहल की है जिसने रक्षाबंधन के मायने और भी ज्यादा खास बना दिए हैं। सरकारी विद्यालय की छात्राएं अपने हाथों से राखियां तैयार कर रही हैं, जिन्हें रक्षाबंधन से पहले स्पीड पोस्ट के जरिए सीमा पर तैनात सैनिकों तक भेजा जाएगा।

0: सीमा पर तैनात ये वीर सिपाही हर पल देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। चिलचिलाती गर्मी हो, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश या बर्फीली चोटियां, हर परिस्थिति में उनका एक ही संकल्प होता है, देश की रक्षा। और जब पूरा देश अपने परिवार के साथ त्योहारों की खुशियां मना रहा होता है, तब भी ये जवान सरहद पर मुस्तैद रहकर करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा का जिम्मा निभा रहे होते हैं। और बहन भाई के प्यारे पर्व रक्षाबंधन पर हर बहन चाहती है कि देश की रक्षा में जुटे इन वीर भाइयों की कलाई भी रक्षाबंधन पर सूनी ना रहे, उन तक भी बहन के प्यार, सम्मान और विश्वास की डोर पहुंचे, ताकि उन्हें एहसास हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि देश भर में रक्षाबंधन से करीब एक महीने पहले ही बहनों ने वीर भाइयों के लिए राखी बनाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमेठी की हैं, जहां सरकारी स्कूल की छात्रों ने सीमा पर देश की रक्षा में जुटे भाइयों की सूनी कलाई को स्नेह के रंगों से सजाने का संकल्प लिया है।
1: जो सीमा पर सैनिक लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, उनके लिए हम राखी बना रहे हैं, क्योंकि वो रक्षाबंधन पर तो आ नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें राखी भिजवाने के लिए राखी बना रहे हैं।
2: हम ये राखी फौजी भाइयों के लिए बना रहे हैं जो सेना पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जैसे वो लोग सेवा कर रहे हैं देश की, वैसे ही सेवा करते रहें, और हम बहनें उनके लिए राखी बनाएंगे।
0: सरकारी विद्यालय की छात्राएं अपने हाथों से रंग बिरंगी राखियां तैयार कर रही हैं।
3: यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल के, वो राखी बनाने में जुटे हुए हैं। उन सैनिकों को जो देश की हमारी सेवा कर रहे हैं, उनको यहीं राखी बनाया जा रही है, तो ये राखी उनको यहाँ से भेजी जाएगी। देख सकते हैं ये क्लास 7th, 8th, 6th सभी बच्चे हैं, और ये लगातार देखा जाए तो लगभग हजारों राखियां ऐसे बनेगी, क्योंकि ये अनवरत चल रहा है कार्यक्रम।
0: हर राखी में सिर्फ रंग और मोती ही नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास, अपनापन और देशभक्ति की भावना भी पिरोई गई है।
3: राखी जो बना रही हो तुम लोग अपने हाथों से, क्या होगा, किस लिए बनाने के लिए ये प्रेरणा मिली, क्या चाहे?
4: वो सैनिकों जो है हमारे घर आ नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें भेजने के लिए राखी बना रहे हैं।
3: तो अच्छा, लगभग कितनी राखियां बनाई अभी तक?
4: सर 100 हो गई।
3: 100 राखियां? तो अच्छा ये बताओ, ये राखी बना रही हो तो कहीं से सीखी या अपने आप से ही आप लोग?
4: अपने आप से।
0: रक्षाबंधन से पहले इन सभी राखियों को स्पीड पोस्ट के जरिए सीमा पर तैनात जवानों तक भेजा जाएगा। राखियों के साथ छात्राएं अपने हाथों से लिखे संदेश भी भेज रही हैं, जिनमें वे सैनिकों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कामना कर रही हैं। इन मासूम संदेशों में सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि उन वीर जवानों के लिए पूरे देश का सम्मान और गर्व भी मौजूद है।
5: पिछले 2 दिनों से बच्चे हमारे बहुत उत्साहित हैं, रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, तो ये रक्षा सूत्र उनको भेजना चाहती हैं। इसलिए विद्यालय में जो क्राफ्ट कला के अंतर्गत गतिविधियां होती रही हैं, इस बार इन्होंने कहा कि मैं सरहद पे जो सिपाही हमारे रक्षा कर रहे हैं देश की, उनके लिए भी रक्षा सूत्र भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बच्चे बना रहे हैं, आगे हम लोग प्लान है कि इसको जिलाधिकारी के माध्यम से या अपने जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कोशिश रहेगी कि इसको जो है फौजी भाइयों तक पहुंचाया जाए।
0: विद्यालय प्रशासन के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य केवल राखी भेजना नहीं, बल्कि बच्चों के मन में सैनिकों के प्रति सम्मान, कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना भी है।
3: क्या उद्देश्य है इस राखी को बनाने के लिए और कितनी श्रद्धा बच्चों में दिखती जा रही है?
6: सर ये राखियां हम लोग जो है बना रहे हैं, जो बॉर्डर पे जो है जवान है उन लोगों को बांधने के लिए, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, और ये बहुत एक्टिविटीज मतलब हम सिखाते हैं, बच्चे सीखने के लिए वे तैयार और बहुत उत्सुक रहते हैं और अच्छे तरीके सीखते भी हैं।
0: 28 अगस्त को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश भर में ऐसे ही भव्य तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ अमेठी की बहनों की पहल नहीं है, बल्कि देश भर की बहनों की भावना है। हर बहन चाहती है कि सीमा पर तैनात उसके वीर भाइयों की कलाई रक्षाबंधन के दिन सूनी न रहे, उनके हाथों पर भी स्नेह, विश्वास और सम्मान का पवित्र रक्षा सूत्र सजे, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
8: It's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे भक्त, शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साईं दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत उसकी हुई है, पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की तमाम रस्में। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी, सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। दिखने लगे कांवड़ के रंग, हरिद्वार में तैयार की गई करेंसी नोटों की कांवड़, मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। वॉटी अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए GNT की मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू ठाकुर को मिला अवार्ड।
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है, हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप का विशेष महत्व है, गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना माना जाता है अत्यंत शुभकारी। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए था। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता, लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से भक्तों का मेला, संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने किया पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी, भक्तों ने किया पूजा पाठ। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मुड़िया मेले पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु उमड़े, जमकर जयकारे लगे। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने अपने गुरु दिग्विजय नाथ और अवैद्यनाथ की पूजा की, दोनों की आरती उतारी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। साईं बाबा का पुजारियों ने किया विधि विधान के साथ पूजन और अभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। साईं बाबा की उतारी गई विशेष आरती। पूर्णिमा के पावन मौके पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत की गई। पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन की रस्म। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत पर निभाई गई नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की तमाम रस्में। आस्था उमंग के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। अब तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन।
12: कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर देशभर में तैयारियां तेज। मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर धूम नजर आई। करेंसी नोटों से तैयार की गई है कावड़। कावड़ बनाने में 10, 20, 50 और 100 के नोटों का किया गया है इस्तेमाल। देखने के लिए लगी भीड़। मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम लगाए गए। 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। हापुड़ में कावड़ यात्रा को लेकर ब्रजघाट पहुंचे मेरठ कमिश्नर। घाट का लिया जायजा।
7: पुलवामा में बुजुर्गों के लिए पुलवामा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। वडोदरा में गौरी व्रत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान के डीग में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। अगरतला में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम साहा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। बिहार के मुंगेर में सरकार डिग्री कॉलेज के शैक्षणिक सत्र का आगाज। सीएम सम्राट चौधरी हुए इसमें शामिल।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
12: देशभर में आज मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। पवित्र नदियों में हो रहा है स्नान। ये दिन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक पर्व।
7: शिरडी के साईं धाम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम। दर्शन और आशीर्वाद को लग रहा भक्तों का तांता।
12: सावन के पावन महीने से पहले ही दिखने लगे कावड़ के अद्भुत रंग। करेंसी नोट से सजी कावड़ लेकर निकला भारत।
7: कॉमनवेल्थ गेम्स में चमक रहा भारत। वेटलिफ्टिंग में 69 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल।
12: आसमानी आफत के बीच देवदूत बन रही भारतीय वायुसेना। नागालैंड में बाढ़ बारिश के बीच फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू।

0: और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा की, क्योंकि आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आस्था का ये महापर्व गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रमों तक श्रद्धालुओं का सैलाब आपको नजर आएगा। कहीं भक्त गंगा नदी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं तो कहीं गुरु चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित भी किए जा रहे हैं।
1: हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, नासिक और देशभर के पवित्र नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर गुरु का स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं।
0: और देखिए, साईं बाबा समाधि मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया। तड़के काकड़ आरती से उत्सव की शुरुआत हुई। आज दिन भर दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गुरु पूर्णिमा की भव्य छटा आपको देखने को मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल का पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक किया गया।
1: इसके बाद भस्म आरती और भव्य श्रृंगार में बाबा महाकाल ने भक्तों को दिव्य दर्शन भी दिए। तो गुरु पूर्णिमा पर आज हम अयोध्या, हरिद्वार, प्रयागराज हर जगह आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कलाकार की एक अद्भुत कलाकृति। महाराष्ट्र के एक कलाकार कौशिक दिलीप जाधव ने भारतीय संस्कृति के आदि गुरु माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पीपल के पत्तों पर महर्षि वेदव्यास और उनके चार प्रमुख शिष्यों को आकर्षक कलाकृति तैयार की है।
0: और देखिए, इस कलाकृति में बीच में महर्षि वेदव्यास का चित्र उकेरा गया है, जबकि उनके चार प्रमुख शिष्यों का पीपल के अलग अलग पत्तों पर चित्रण किया गया। पैल, जिन्होंने ऋग्वेद का प्रचार प्रसार किया। वैंशपायन, जिन्होंने यजुर्वेद का प्रसार किया। जैमिनी, जिन्होंने सामवेद। और सुमंतु, जिन्होंने अथर्ववेद का प्रचार और प्रसार कर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया।
1: भारतीय परंपरा में पीपल का वृक्ष ज्ञान, आध्यात्म, पवित्रता और एक प्रतीक माना जाता है। इसी पवित्र पीपल के पत्तों को कैनवास बनाकर वेदों के विभाजन, गुरु शिष्य परंपरा के महत्व और ज्ञानदान की अखंड परंपरा का कलात्मक रूप में दर्शाने का यह अनोखा प्रयास है।
0: चलिए, अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा का उत्सव दिखाई दे रहा है। अयोध्या मोक्षदायिनी को कहा गया है। यहाँ पतित पावनी सरयू नदी बहती है। गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर सुबह से भक्त सरयू में स्नान के लिए लगातार आ रहे हैं। घाटों पर अच्छी खासी रौनक भी आपको दिखाई देगी।
2: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है और लगातार जो है घाटों पे भीड़ नजर आ रही होगी। यहाँ पे लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं सरयू का, और फिर हनुमानगढ़ी दर्शन करके, रामलला के दर्शन करके सीधा जो है अपने अपने गुरुओं के पास जाके उनका सम्मान करते नजर आ रहे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। उसको लेकर काफी संख्या में आज अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही स्नान ध्यान चल रहा है और साथ ही अपने गुरुओं का पूजन कर फिर वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला।
1: तो अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही धर्मनगरी में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और फिर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे।
0: बिल्कुल, देखिए, जय श्री राम के उद्घोष और भक्ति गीतों के बीच में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आ रही है।
3: आज जिस तरह से भगवान राम का सेवा हो रहा है, उसी तरह अपने गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, गुरु और शिष्य का जो है, गुरु के अपना पूजा पत्रिका जो भी है, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वो परंपरा आज से नहीं, सदैव से ही परंपरा चलते आई है। गुरु चेला का ये संबंध है।
0: और हरिद्वार लिए चलते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान की भव्य तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करके अपने गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। लिहाजा गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हर पटाड़ी पहुंचे और पुण्य के भागी भी बन रहे हैं।
1: गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्ति भाव के साथ यहां गंगा आरती भी की गई है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जुटना शुरू हो गया। गुरु पूर्णिमा पर यहां सावन का कावड़ मेला भी शुरू हो गया है, लिहाजा आज बड़ी संख्या में कावड़िये जल लेने के लिए हर की पौड़ी पहुंचे हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास का इस धरती पर अवतरण भी हुआ था।
4: बहुत आनंदमयी पल है, भगवती गंगा की कृपा, भगवान शंकर की कृपा, और विशेषकर आज जो है गुरु पूर्णिमा का विशेष उपलक्ष्य है, अर्थात आज के दिवस को जो है अज्ञान से ज्ञान की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को मनाया जाता है। आज ही जो है भगवती गंगा में स्नान करके हम जो है अपनी यात्रा भी प्रारंभ करते हैं हरिद्वार से।
5: बोले कि निरोग रखे माँ, हमारे बाल बच्चे को भक्ति के मार्ग पे चलने को कहे, बस यही भक्ति मांगी माता से।
6: गुरु पूर्णिमा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे आए है, गुरु जी के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन से बहुत सुख शांति घर में मिलती है।
0: और देखिए हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के योग पीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन दिन पर स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिष्यों और श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया।
7: गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भाई बहनों का, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई बहन सबको गुरु परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, उनके उत्तराधिकारी प्रतिरूप मूर्त विग्रहवान स्वरूप है, और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते ऋषि संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत सब धारण कर रहे हैं।
1: तो देखिए प्रयागराज में आस्था और विश्वास के रंग बिखरे हुए हैं और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, दान पुण्य किया और अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की है।

0: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज का कण कण आस्था और श्रद्धा में डूबा है। प्रयाग के संगम क्षेत्र में पतित पावनी गंगा में स्नान ध्यान करने श्रद्धालु सुबह से उमड़ पड़े। हर हर गंगे और जय गुरुदेव के जय घोष के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की।
1: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे। फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है, वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
2: बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
3: हम लोग स्नान करने आए हैं पूरे परिवार सहित। अरे बस अपना परिवार सुखी रहे, बाल पास ठीक ठाक से रहे।
0: गुरु पूर्णिमा पर संगम में आस्था श्रद्धा और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किया।
4: आज का दिन सनातन धर्म एवं हिंदुओं के लिए बहुत खास पुनीत पर्व है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जी की पूर्णिमा है। जितने भक्तजन है जो गुरु दीक्षित हो चुके हैं, गुरु से मंत्र ले चुके हैं, उन लोगों की अति पुनीत पर्व है। वो प्रातः काल काशी जी में, हरिद्वार जी में और प्रयाग में स्नान करके अपने गुरु भगवान के आश्रम में जाएंगे, गुरु की पूजा करेंगे, प्लस वासुदेव भगवान की पूजा करेंगे। और जिनके कोई गुरु नहीं है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु।
0: गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज से ही आई ये दूसरी तस्वीर है। प्रयागराज के बागम्बरी मठ के महंत बलवीर गिरी ने रीति रिवाज से हटकर विशेष पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर गुलाब के फूलों से पुष्पार्जन कर इस पावन त्योहार को श्रद्धा पूर्वक मनाया।
5: प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा का त्योहार काफी सादगी भरा मनाया जा रहा, वैसे ही बागम्बरी मठ जो प्रयागराज का है और कहा जाता है नरेंद्र महाराज जो थे उनकी भी यहाँ पर अस्थि रखी गई थी और यहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया गया और उसी के जस्ट बगल में एक भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित किया गया। लेकिन वहाँ पर पूजा पाठ तो हुई लेकिन फूलों के साथ हुई, किसी प्रकार का कोई केमिकल या किसी प्रकार का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ फूलों के जरिए पूजा की गई। फूलों के जरिए उनको मंत्रोपचार के साथ उनका पूरा पूजा किया गया, पाठ किया गया।
0: गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। लिहाजा महंत बलवीर गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी की पूजा अर्चना की, साथ ही नरेंद्र गिरी के समाधि स्थल पर स्थापित शिवलिंग पर भी गुलाब के फूलों के साथ पुष्पार्चन किया।
6: देखिए ये हमारे सतगुरुदेव की समाधि स्थल है और उसी समाधि स्थल के ऊपर नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया गया, इसलिए गुरु के रूप में हम भगवान शंकर के स्वरूप में अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन करते हैं। आज जो आपने पुष्पों से अर्चन देखा होगा ये पुष्पार्चन कहते हैं इसको, तो रुद्र सूक्त से अपने गुरुदेव का अर्चन किया गया इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।
0: इसके साथ ही महंत बलबीर गिरी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो गुरु के बताए मार्ग पर चले और धर्म सेवा तथा सदाचार का पालन करें। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: तो देखिए जब भी धर्म ग्रंथों की बात आती है तो धर्म ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, उन्हें सर्वशक्तिमान माना गया है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। आज उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदन का दिन है। इस साल गुरु पूर्णिमा पर 56 साल के बाद दुर्लभ राजयोग बना है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस गुरु पूर्णिमा पर सूर्य और बुध के मेल शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।

0: गुरु जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अनंत प्रकाश है, गुरु जिनके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती, धर्म ग्रंथों में जिन्हें भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपनी सारी अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है, अपना सारा भार गुरु को दे देता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे कथा मिलती है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
1: ये वेद व्यास जी जो सारी है ना रचनाओं के रचयिता है, जिन्होंने पुनः दोबारा वेदों का प्रादुर्भाव भी किया, उनका जन्म तिथि है। उनकी जन्म जयंती के साथ साथ में ये गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम पे की जाती है। और आज के दिन ही अपने गुरुओं का पूजन करना और उनके आशीर्वाद लेना और अपने उत्तम लोक के कल्याण हेतु उनसे ज्ञान लेने का दिन कहलाता है।
0: चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कब से लग रही है गुरु पूर्णिमा की तिथि और कौन से शुभ योग का हो रहा है निर्माण। गुरु पूर्णिमा पर बुधादित्य योग बन रहा है। इसके अलावा शश राजयोग और हंस राजयोग बन रहे हैं। ये योग बौद्धिक क्षमता और मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। ग्रहों की ये स्थिति 56 साल बाद एक साथ बनी है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। लेकिन तब क्या करें जब आपके गुरु नहीं हो? अगर आपके गुरु नहीं है तो हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिवजी ही हैं। अगर गुरु ना हो तो शिवजी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिवजी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें।
1: यदि आपको शारीरिक गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसके आपके चरण पकड़ के आपका कल्याण हो, तो भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके आप निष्ठा पूर्वक भगवान के भगवत भजन में लग जाएं, अपनी सिद्धियों को यह प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, श्री कृष्ण 16 कला परिपूर्ण है, इनकी भक्ति करने वाला, इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही उनका गुरु के समान ही अपने जीवन में प्रभाव पाता है और वह पल पल पे, पग पग पे आपका हाथ पकड़ के आपके आगे के मार्गों को सुगम करते हैं।
0: कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है, उसे सुख शांति ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है। तो आप भी इस शुभ तिथि का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शिरडी साई धाम श्रद्धा और भक्ति के

प्रदेश और देश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु साईं समाधि के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा के पर्व श्रेणी में विशेष महत्व है। साईं बाबा को करोड़ों श्रद्धालु अपना सदगुरु मानते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के चरणों में नमन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस पावन मौके पर साईं बाबा का दर्शन और गुरु पूजन करने से गुरु की कृपा होती है और जीवन के दुख संकट और अज्ञान का नाश होता है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा शिरडी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है और लाखों लोग इस पर्व का हिस्सा भी बनते हैं। और देखिए गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर शिरडी के साईं दरबार भक्तों की आस्था और भक्ति के साथ गुलजार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और साईं बाबा के सामने मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस खास मौके पर नर्तकियों ने भरतनाट्यम का बेहद सुंदर चित्रण कर अपनी आस्था भी यहां पर प्रकट की।

0: बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
1: मैं गुरु पूर्णिमा के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। भगवान की दया से मैं करीबन 45 साल से आ रहा हूँ। मेरा यहाँ पे घर भी है और जो कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को सब कुछ मैंने पाया यहाँ पे। बाबा के सिवा मेरा कोई है नहीं। माई बाप जो भी मैं खड़ा हूँ सिर्फ बाबा की वजह से खड़ा हूँ। धन्यवाद।
2: जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
4: आई फाउंड बाबा अ लिटिल लेट इन माई लाइफ बट टूडे आफ्टर हैविंग फाउंड हिम ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी कम्प्लीटली। He's changed my thinking, my personality, my attitude, everything.

0: बाबा का सजा दरबार है, चारों ओर फूलों का श्रृंगार है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं को ये भक्तों की सौगात है। शिरडी की रौनक बता रही है कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व शुरू हो चुका है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया है तो कोई सात समंदर पार से बाबा के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करने पहुंचा है। गुरु उत्सव के पावन पर्व की रौनक से चप्पा चप्पा दमक रहा है।
1: बाबा के दरबार आते हुए हमें कम से कम भी, मैं 2005 या 6 से जुड़ा था, तो अब बाबा की बहुत कृपा है। मतलब हमने दिन प्रतिदिन प्रगति देखी है। बाबा से दर्शन करो और दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। और मुझे लगता है कि सब साईं भक्तों को यहाँ आना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की सब साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा को गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। इस अवसर पर कोई साईं को सोना चांदी चढ़ाता है तो कोई गुरु दक्षिणा में रुपए पैसे दान देता है, लेकिन श्रद्धा में सब बराबर है। साईं के भक्त भी मानते हैं कि हर मनुष्य में भगवान देखने का साईं का संदेश यहाँ आकर साक्षात सच प्रतीत होता है। इस बार साईं बाबा को नेल्लूर के एक भक्त ने 642 ग्राम सोने का 1,03,00,000 रुपए का ये मुकुट अर्पित किया है। इस सोने के मुकुट पर दशावतार की मूर्तियां हैं।
2: गुरु पूर्णिमा का वजह से एक मुकुट लाया भगवान का अर्पण करने का। ये गुरु पूर्णिमा में ये मुकुट है नवग्रह का, बाबा का अर्पण करने का। ये मुकुट का वैल्यू है रफली 1 crore एंड इट इज वैल्यूड एट वो मुकुट का, ये नवग्रह का, ये भगवान नवग्रह रूप है, भगवान साईं बाबा ऐसा है। मैं ये देने का मेरे को मौका मिला है, वो दे दिया।
3: श्रीनिवास राव, उन्होंने लगभग 642 ग्राम का सोने का मुकुट

0: जो है वो बाबा को अर्पण किया है, उसकी कीमत जो है लगभग 1 करोड़ 3 लाख है। वो बाबा के बहुत डेडिकेटेड डिवोटी है, हर साल साल में 2-3 बार आते हैं और संस्थान की जो चैरिटेबल एक्टिविटी रहती है उसमें हमेशा योगदान देते हैं।
1: वैसे तो साईं का दरबार रोज इसी तरह भक्तों से आबाद रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर इस दरबार की रौनक कुछ अलग ही होती है। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिन चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत कक्कड़ आरती से हुई। आरती के बाद साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र ग्रंथ का जुलूस गुरु स्थान होकर द्वारका माई मंदिर में पहुँचा और यहाँ आए लाखों श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान मांगा।
0: गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत जो है आज हुई है। 3 दिन की उत्सव में आज सुबह कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकल गई और द्वारका माई में जो है अखंड साई चरित्र पारायण की शुरुआत हुई है। पूरी देश विदेश से लाखों साई भक्त जो है वो इस उत्सव में आने की आशंका है। बाबा के भक्त बाबा को जो है गुरु मानते हैं, तो यहाँ आने के बाद बाबा की झोली में भर भर के गुरु दक्षिणा जो देते हैं।
1: साई बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इस 3 दिनों में बाबा के दर्शन का न केवल रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि हर बार की तरह इस बार भी चढ़ावे का नया कीर्तिमान बनेगा। फिलहाल तो शिरडी के साई का ये धाम भक्ति के आनंद में मगन है, साई के दर्शन भर से कृतज्ञ है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं के जोश से धन्य है। शिरडी से नितिन मिराणे की रिपोर्ट।
2: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा के रंग। देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचातानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports, plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर मर रहे भक्त शिरडी के साई धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साई दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। दिखने लगे कावड़ के रंग, हरिद्वार में तैयार की गई करेंसी नोटों की कावड़, मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। 40 Under 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जीएनटी की मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और राणू राठौर को मिला अवार्ड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: और देखिए, कल से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, लिहाजा सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भक्त पूरे महीने महादेव की भक्ति करते हैं, पूरा देश शिवमय नजर आता है।
1: कई मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। आज से हरिद्वार में कांवड़ मेले का शुभारंभ हो गया है और इसी के साथ बोलबम के जय घोष के साथ लाखों शिव भक्त की आस्था की महायात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हुए हैं।
2: उत्तराखंड सरकार भी आस्था के महाकुंभ को लेकर फुल तैयारी में है।
1: और अब कांवड़ मेले के रंग आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। और इस दौरान एक कांवड़ ऐसी भी दिखी जो नोटों से बनी हुई है। शिव भक्त दीपांशु ने भोलेनाथ से अनोखी मन्नत मांगी। उनका कहना है कि अगले साल वो इससे भी बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने आएंगे। इस अनूठी कांवड़ में 100 के नोट है, 50, 20 और 10 के नोट भी है, इसे सजाया गया है।
0: और देखिए, इस बारिश में नोट खराब ना हो इसका भी ख्याल रखा गया, लिहाजा कांवड़ को पॉलिथीन से कवर किया गया है। दीपांशु का ये कहना है कि इन पैसों से वो भंडारा करेंगे, धर्मार्थ पर ये खर्च करेंगे।
3: बोले मैं अभी हरिद्वार से मैंने कांवड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली। बोले हम, मेरा क्या कहते हैं, मतलब सपना था नोट वाली कांवड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कांवड़ लेने। देख सकते हो मेरे पीछे जो कांवड़ है, इसमें अनगिनत नोट है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें 50 के, 100 के, 10 के और 20 के नोट हैं। जितने भी ये नोट हैं, हमारे शिवालय पे पहुंचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे और उनका भंडारा करवाएंगे। नहीं, बस भोले बाबा के प्यार में हम ये कांवड़ लेके जा रहे हैं। हम टोटल 4 लोग हैं, पर ये कांवड़ सिर्फ मैं चलाऊंगा, एक कंधे कांवड़ है। हाँ बोले, क्या कहते हैं, अब ये जो कांवड़ है इससे मैंने मांगी है, अगर ये पूरी हो जाती है तो मैं अगले साल इससे बड़ी नोट की कांवड़ लेके जाऊंगा।
0: और देखिए, सावन में शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ धाम में पुख्ता तैयारी की गई। यहां सावन के खास मौके पर करीब 1 करोड़ शिव भक्तों के आने की पूरी उम्मीद है।
4: ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, माता गौरव को। और इस महीने में भगवान कैलाश से यहाँ काशी में वास करते हैं, तभी यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं।
5: भगवान शिव को ये प्रिय महीना है, तो इसमें जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी।
6: ब्लेसिंग इन योर सोल इन योर आत्मा इज बिग बिग दर्शन। Anytime, अच्छा, but सावन is important.
2: यूं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हर दिन रौनक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, लेकिन सावन की तो बात ही निराली है। सावन, जब प्रकृति हरे रंग से धरती का श्रृंगार करती है, आसमान से बरसती बूंदें उनमें ताजगी का एहसास भर देती है, और इन सब के बीच भगवा रंग में रंगे कांवड़ियों का जय घोष मानो देवाधिदेव के रंग में खुद के रंग जाने का ऐलान करता है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, लेकिन विश्वनाथ धाम में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है।
7: सावन का पावन माह इस बार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इसलिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये संख्या 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। और अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसके मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर की गई हैं।
2: महादेव को काशी भी पसंद है और सावन भी, तभी तो भोलेनाथ के इस मोक्षधाम में सावन की अद्भुत छटा बिखरती है। बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ हर घड़ी सुनाई देती है। महीने भर भक्तों का मेला रहता है, संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। सावन में यहां सबसे ज्यादा 1,63,00,000 शिव भक्तों के पहुँचने का रिकॉर्ड है। इस बार भी अनुमान 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने का है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एंड टू एंड और जिगजैग बैरिकेडिंग होगी। जर्मन हैंगर पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस की व्यवस्था होगी। खोया पाया केंद्र बनाया गया है। कांवड़ियों के लिए एक लेन पूरी तरह से सुरक्षित की गई है। श्रद्धालुओं के रूट पर वेटिंग रूम, मेडिकल टीम, पीआरवी, क्यूआरटी टीम भी 4 किलोमीटर पर मौजूद रहेगी। सिविल ड्रेस में भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि बेहतर निगरानी की जा सके। बाढ़ को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ, बाढ़ राहत पुलिस, पीएसी की फ्लड कंपनी और स्थानीय जल पुलिस की सभी घाटों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके, और प्राइवेट गोताखोरों को भी रखा गया है। निर्धारित मानक और डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। प्लास्टिक पर पहले से ही रोक है और इस बार भी सावन में प्लास्टिक की सामग्री को लेकर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन पर पूरे महीने रोक रहेगी।
8: एसओपी हमारी पुनः लागू रहेगी, उसी प्रकार जिगजैग लगाए जाएंगे, एंड टू एंड जिगजैग रहेगा। प्रवेश और निकास के निर्धारित मार्ग रहेंगे, 6 मार्गों से प्रवेश निकास की व्यवस्था रहेगी। लोगों के लिए एंड टू एंड जो है वो कैनोपीज लगाकर, या हमारे जो जर्मन हैंगर्स हैं और जो अलग सिंथेटिक फाइबर का जो हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है, उसके माध्यम से लोगों को छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल के अलावा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, ओआरएस की व्यवस्था रहेगी, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था बनाई गई है।
2: वहीं भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि मंदिर आते समय वो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।
8: इसके अतिरिक्त यह अपील बार बार जारी की गई है, कृपया प्लास्टिक की सामग्री लेकर धाम में प्रवेश न करें। यह अपील बार बार जारी की गई है कि दर्शन में समय अधिक लगता है, श्रावण मास में बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो कृपया खाली पेट न आएं, क्योंकि लंबा समय लगने पर लोगों के फेंट होने की समस्या होती है। और बार बार यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने ठहरने के स्थान पर, रुकने के स्थान पर, अपने घर पर, सराय में, होटल में, रिश्तेदार के यहाँ, जहां से भी आप आ रहे हो दर्शन करने, वहां पर अपना मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरे वाला जो चश्मा होता है, पेन और धातु की अन्य नुकीली वस्तुएं छोड़ कर आए, इनके साथ यहाँ प्रवेश संभव नहीं है। बैग लेकर आए, बैगेज काउंटर उसमें संचालित नहीं होते हैं।
2: सावन है, महादेव है, काशी है, शिव भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने बिना ही सावन मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पावन उत्सव में शरीक हो सकते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: से पवित्र सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मौसम ने भी शिव भक्तों का स्वागत बारिश की फुहारों से करना शुरू किया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश भर के मौसम का हाल कैसा है।

0: कहते हैं सावन और बारिश का रिश्ता वैसा ही है जैसा धरती और आसमान का। सावन वो महीना है जो आसमान से बरसता है और धरती पर हरियाली बनकर मुस्कुराता है। कल से सावन का शुभारंभ हो रहा है, उससे पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे शबाब पर है और उसकी हर बूंद आने वाले सावन की नई कहानी लिख रही है। जुलाई का आखिरी हफ्ता बारिश से तरबतर है, कहीं रिमझिम फुहारें मन को सुकून दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश लोगों के धैर्य और हौसले की परीक्षा ले रही है। सावन के आगमन से पहले ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर बारिश से तराबोर है। बीते कई दिनों तक उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था, लेकिन जैसे ही बादल बरसे गर्मी ने मानो घुटने टेक दिए। मौसम खुशनुमा हो गया है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की ये मेहरबानी अभी थमने वाली नहीं है।
1: ओवरऑल आप बात करें तो इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। अगर ये आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज्यादातर हिस्सा ईस्ट इंडिया का इधर ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है और बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर जा रहा है इस रीजन के लिए, और इसके अलावा अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, जिसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। इवन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, और हिमालय की बात करें आने वाले 3 से 4 दिन और स्पेसिफिकली उत्तराखंड हिमाचल, वहाँ वेरी हैवी विंड 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रह सकता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादातर हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा।
0: उधर पहाड़ों पर भी सावन पूरे रंग में बरसने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है।
2: 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पे इसी दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है, और ये जो वेदर एक्टिविटी है इसमें देखिए 30 और 31 जुलाई को काफ़ी सक्रिय रहेगा, और इस चलते हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो साल में देखने को मिलेगी। अगर 30 जुलाई की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना एक दो सालों में। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, यहाँ के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जो मेन एक्टिविटी है वो 29 जुलाई की देर रात से लेकर 31 जुलाई तक काफी सक्रिय रहेगा।
0: कहते हैं सावन सिर्फ धरती को नहीं बल्कि हर किसी का मन भी को देता है। यही वो मौसम है जब शिव भक्ति और बारिश का संगम दिखाई देता है। इसी सावन में आस्था और प्रकृति एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं और हरियाली के बीच खुशहाली की उम्मीदें भी लहलहाने लगती हैं। सावन की हर फुहार सिर्फ बरसती नहीं है बल्कि अपने साथ सुकून, श्रद्धा और जीवन का नया उत्साह भी लेकर आती है। शिमला से विकास शर्मा, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और दिल्ली से मनीषा लता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और देखिए मानसून के इस मौसम में कई जगह भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन डूबे हुए क्षेत्रों में वक्त रहते पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। यूपी के गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू, राहत सामग्री और चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए एक विशेष वाहन लॉन्च किया गया। इसे हनुमान रथ नाम दिया गया। अपने नाम की तरह ये एम्फीबियस व्हीकल बहुत ज्यादा पावरफुल है। बड़े पहिए वाला ये वाहन सड़क, पानी और कीचड़ में आसानी से चल सकता है। बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के काम में भी ये पूरी तरह से सक्षम है।
4: मंत्रोच्चार के बीच डीएम प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर हनुमान रथ की शुरुआत की। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में ये वाहन एक अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ वक्तों का एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए लंच टाइम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचतानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
10: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

0: आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। दरअसल भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 12 मेडल जीत लिए हैं और पदक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 5वें दिन भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते। बीती रात गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में 2रा स्थान हासिल किया। वो इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं गुलवीर के अलावा महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और 69 किलोग्राम वर्ग में 29 साल की वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर का ये करियर का बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। इसके अलावा गुड न्यूज ये भी है कि भारतीय बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम 3 और मेडल पक्के कर दिए हैं।
1: और देखिए, राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में युवा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जीएनटी की रिपोर्टर मनीषा लड्डा, एंकर गीतिका पंत और प्रोड्यूसर राणू राठौर को 40 अंडर 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि यहां पर मौजूद रहे। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया ने 40 अंडर 40 सम्मान समारोह का आयोजन किया था।
0: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर इंडिया फैशन वीक के मंच पर फैशन शिल्प और शाही अंदाज का शानदार संगम देखने को मिला। मशहूर डिजाइनर जयंत रेड्डी ने अपना नया कलेक्शन द गाइल्डेड एरा पेश किया, जिसने रैंप पर राजसी वैभव और भारतीय विरासत की खूबसूरत झलक बिखेरी। कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय कारीगरों की आधुनिक रंग के साथ पेश किया गया और सुनहरे रंग, बारीक जरी, हाथ की कढ़ाई, रॉयल एम्ब्रॉयडरी से सजे परिधानों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर डिजाइन में भारतीय शिल्पकला और शाही सौंदर्य का अनूठा मेल दिखाई दिया। शो का सबसे खास आकर्षण रहा अभिनेता सिद्धार्थ और अभिनेत्री आदिति राव हैदरी, जिन्होंने शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर शानदार वॉक की। दोनों की शानदार मौजूदगी ने फैशन शो में 4 चांद लगा दिए।

0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
10: गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे हैं भक्त। शिरडी के साई धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साई दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर साई के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को चढ़ाए। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएगी भूमि पूजा, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी, सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। फोर्टी अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए GNT की मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला अवार्ड।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान और तप का विशेष महत्व, गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना माना जाता है अत्यंत शुभ। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात से ही बाबा भोलेनाथ दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू घाट पर सुबह से लगी भक्तों की भीड़, विधि विधान से की पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता, लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार के गंगा घाटों की निखरी रंगत, मठ मंदिर में अपने गुरुओं की पूजा करने पहुंच रहे हैं भक्त। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से भक्तों का मेला लगा, संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने किया पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी, भक्तों ने की पूजा पाठ। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मुड़िया मेले पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु उमड़े, जमकर लगाए जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह मुस्तैद दिखे जवान। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने अपने गुरु दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पूजा की, दोनों की आरती भी उतारी। गुरु पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने गुरु का किया पूजन, गुरु की उतारी आरती। राजस्थान के डीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा पाठ, मंगला आरती में हुए शामिल। राजस्थान के डीग में सीएम भजनलाल ने श्रीवन बिहार जी मंदिर में दर्शन पूजन किए, भगवान का लिया आशीर्वाद। थूथुकुड़ी में गुरु पूर्णिमा पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर उमड़ा आस्था का मेला, हजारों भक्तों ने जलाए मिट्टी के दीपक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के साई बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, साई बाबा के पुजारियों ने किया विधिवान से पूजा और अभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, साईं बाबा की उतारी गई विशेष आरती। फूलों से सजाकर निकाली गई साईं बाबा की पालकी, भक्तों ने गाए भजन कीर्तन। साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए साईं राम के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर और दरबार की गई भव्य सजावट, विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर पतंजलि योगपीठ में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने शिष्यों को दिया गुरु कृपा का आशीर्वाद। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकारों ने उकेरी अनोखी कलाकृति, पीपल के पत्तों पर बनाया महर्षि वेदव्यास की तस्वीर। महर्षि वेदव्यास के साथ उनके चारों शिष्यों को अलग अलग पत्तों पर उनकी तस्वीर बनाई गई, गुरु शिष्य परंपरा, वेदों के प्रसार और भारतीय ज्ञान संस्कृति के अमूल्य वारसा का दिया संदेश। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में संतों ने की महंत संजय दास की पूजा, गुरु का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर महंत नृत्य गोपाल दास का हुआ पूजन, गुरु के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएगी भूमि पूजन। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत पर निभाई गई नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक दर्शन, 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे भक्त। आस्था उमंग के साथ अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहा है यात्रियों का जत्था। मदुरई के कला झागर मंदिर में आदि तिरुविझा उत्सव की तैयारियां तेज, मंदिर में विशेष अनुष्ठान जारी। फूलों से सजा भगवान कला झागर का दरबार, रथ यात्रा के लिए रथ बनकर तैयार। कला झागर मंदिर में आदि तिरुविझा उत्सव से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्सव से पहले भगवान कला झागर शेष वाहन मोहिनी अलंकार और हाथी वाहन पर सवार होकर भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। उत्सव को लेकर मंदिर परिसर में लगा मेला, तरह तरह की सामानों से सजी हैं दुकानें। कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर देशभर में तैयारियां तेज, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर धूम करेंसी नोटों से तैयार की गई है कावड़। कावड़ बनाने में 10, 20, 50 और 100 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। देखने के लिए लग रही है भारी भक्तों की भीड़। मुजफ्फरपुर में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। हापुड़ में कावड़ यात्रा को लेकर ब्रजघाट पहुंचे मेरठ के कमिश्नर, घाट का लिया जायजा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 40 अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जीएनटी को मिले कई सम्मान। जीएनटी की पत्रकार मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला अवार्ड। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया ने किया था सम्मान समारोह का आयोजन, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। सैलानियों से गुलजार हुआ डल लेक, शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी। पुलवामा में बुजुर्गों के लिए पुलवामा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वडोदरा में गौरी व्रत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के डीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा भी की। अगरतला में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम साहा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को किया सम्मानित। बिहार के मुंगेर में सरकार डिग्री कॉलेज के शैक्षणिक सत्र का आगाज, सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल। दिल्ली में इंडिया कुट्योर वीक शो का शानदार आयोजन, मशहूर डिजाइनर डॉली जे ने पेश किए अपने कलेक्शंस।

0: फैशन शो में पारंपरिक भारतीय कारीगरी की झलक नजर आए। दुल्हन के लिए लहंगे, कॉकटेल गाउन्स और शादी समारोह के लिए खास डिजाइन पेश किए गए। भोपाल में मिली चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात भोपाल वासियों को मिली है। निषादपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ। इंदौर उज्जैन की ओर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को होगा इससे फायदा। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में राज्य भर से पहुंचे साइंस के छात्रों से मुलाकात की। स्पेशल सेशन में छात्रों से बातचीत कर आधुनिक शिक्षा के प्रति किया प्रोत्साहित। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले। सबसे ज्यादा 7 मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में जीते। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के और 3 मेडल पक्के। बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया घांगस और जादूमणि सेमीफाइनल्स में पहुंचे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। 1 अगस्त तक पूरे राज्य में सक्रिय रहेगा मानसून। इस सप्ताह उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। 1 अगस्त तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश दिए। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कानपुर में भारी बारिश से निचले रिहायशी इलाकों में जलभराव। फायर डिपार्टमेंट ने जाजमाऊ इलाके में लोगों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश से नदियों में उफान। मराठवाड़ी बांध के गेट खोले गए। वांग नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। ओडिशा के जाजपुर जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर। प्रशासन ने बाढ़ की संभावना के मद्देनजर इंतजामों की तैयारी की। पंजाब के फरीदकोट जिले में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में फंसे लोग। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। असम में बाढ़ को लेकर राहत की खबर। शिवसागर में लगातार घट रहा है बाढ़ का पानी। शिवसागर में अभी भी बाढ़ में डूबे हैं कई गांव, कई सड़कें भी हुई जलमग्न। शिवसागर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए युवा बने देवदूत। 1,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर बचाई गई जान। शिवसागर के नेपाली कुटी इलाके में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। घरों से मलबे को साफ करते दिखे लोग। बाढ़ से फसलों को भी पहुंचा भारी नुकसान। बाढ़ में कई वाहन भी हुए बर्बाद। राजौरी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जुटा प्रशासन। कई जगहों पर लगाए जा रहे हैं खंभे। उधमपुर में भारी बारिश की चेतावनी। जिला प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के से बाढ़ जैसे हालात हुए। कई सड़कें पानी में डूबी। बंधमाल गांव का टूटा संपर्क। नागालैंड में भूस्खलन के बाद इंडियन एयरफोर्स का राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया। सवाईमाधोपुर में बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर। कई रास्तों पर भरा पानी। कई सड़कों का किया गया बंद। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर खतरे के निशान को किया पार। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाल्मीकि बस्ती को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा। निचले इलाकों में भी भरा पानी। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुएं में बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू टीम ने किया। कई जगहों पर प्रशासन चला रहा रेस्क्यू अभियान। डोडा में हुई जोरदार बारिश। मौसम हुआ बेहद सुहाना। अलवर में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब। कई घरों में घुसा पानी। असम में बाढ़ बारिश के बीच ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अपील। लोगों से बाढ़ के कारण बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों से मदद की अपील की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश के बीच भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर से कई लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की खींचातानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: वायरल वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में नजर आता है, तभी उसकी नजर लाल रंग की ड्रेस पहने एक महिला पर पड़ती है। मजेदार बात यह कि उस महिला ने बिल्कुल वैसी ही लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है जैसी बच्चे की माँ ने पहनी है। बस फिर क्या था, नन्हा मासूम बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को ही अपनी माँ समझ बैठता है और उसके साथ चलने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद असली माँ सामने आ जाती है। अब बच्चे के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है, वो कभी एक महिला की तरफ देखता है तो कभी अपनी माँ की ओर। आखिरकार नन्हा अपनी असली माँ का हाथ मजबूती से थाम लेता है और उनके साथ वहाँ से चल देता है। बच्चे की ये मासूम गलती, उसके चेहरे पर उभरते प्यार एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नन्हे फैन की खिलखिलाहट सबके चेहरे पर मुस्कान ला रही है। एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से टीवी पर मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी देखता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कार्टून में मजेदार शरारतें और फनी सीन सामने आते हैं, वैसे वैसे बच्चे की हंसी भी और मजेदार होती जाती है। कभी वो ठहाके लगाकर हंसता है तो कभी हंसते हंसते खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। उसकी मासूम खिलखिलाहट कमरे का माहौल ही बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कार्टून से ज्यादा मजेदार बच्चे का हंसने का अंदाज हो। बच्चे की बेफिक्री और चेहरे पर छलकती खुशी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। इस वायरल वीडियो में एक माँ हाथ में चप्पल लिए अपनी नन्ही बच्ची के पीछे दौड़ती नजर आती है। लगता है कि बच्ची ने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसके बाद माँ उसे सबक सिखाने के मूड में है। उधर पापा आराम से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े रखते हुए नजर आ रहे हैं, तभी उनकी नजर घबराकर भागती बच्ची पर पड़ती है और वो फौरन एक मजेदार तरकीब निकाल लेते हैं। पापा झट से बच्ची को उसी बड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर छिपा देते हैं। माँ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन बच्ची दिखती नहीं। कुछ पल के लिए उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर नन्ही शैतान कहाँ गायब हो गई। इधर बैग के अंदर छिपी बच्ची सुरक्षित रहती है और पापा के इस रेस्क्यू मिशन की वजह से चप्पल की मार से वो बच जाती है। माँ का गुस्सा, पापा की फुर्ती और बच्ची की मासूम शरारत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आस्था की डुबकी के लिए पवित्र नदियों पर उमड़ रहे हैं भक्त। शिरडी के साई धाम में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साई दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर साई के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को चढ़ाए। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी, सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। 40 अंडर 40 में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जेएनटी के मनीषा लड्डा, गीतिका पंत और रानू राठौर को मिला अवार्ड। आज मनाया जा रहा इंटरनेशनल टाइगर डे, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रेत पर अद्भुत तस्वीर, बाघों के संरक्षण का दिया संदेश।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: गैस सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों के बीच अब सब लोग ढूंढ रहे हैं स्मार्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, ये तो है सुपर। बताइए कैसे। एक तो ये एलपीजी बचाता है और उसके साथ साथ हमें प्रोवाइड करता है स्मोक फ्री कुकिंग, जिससे हमारी किचन मॉडर्न और सेफ दोनों बन जाती है। तो आज तो इस इलेक्ट्रिक स्टोव के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ ताका झांकी करते हैं आपके फेवरेट शोज के आंगन में और पता कर आते हैं आज कौन सी कहानी में आया है, कौन सा स्पाइसी ट्विस्ट और किससे आ रही है हमारे लिए कोई गुड न्यूज। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।

0: अमृत के सामने आएगा रियाश का सच, गिड़गिड़ाएगी बिंदिया। अवंतिका ने चली नई चाल, लगा आरंभी पर इल्जाम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के होंगे 18 साल पूरे, मनाएगी टीम जश्न। अक्का साहिब को बचाने के चलते हादसे का शिकार होगी तन्वी।
1: तुम तो गिरगिट निकली कंपाउंडर, हालात बदलते ही रंग बदल लिए। जब जान पे बनाई थी तुम्हारी सारी बातें मान रही थी।
0: रूहानी लगाएगी गुरु पर इल्जाम, रिश्ते में आएगी दरार।
2: क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी थी, जिसमें बॉम्ब डिफ्यूज करना था, तो बॉम्ब भी तुम ही लाए होंगे ना।
3: हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है।
0: और गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर मोहित मलिक मिलाएंगे अपने गुरु से, देखेंगे मोहित का अनोखा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए।
4: खरीद लिया है एक इलेक्ट्रिक स्टोव और बस अब वो भी बनेगा उनके किचन का पार्ट। वैसे देखिए आपकी कहानी में भी आता है रोजाना किसी ना किसी नए ट्विस्ट का तड़का। तो क्या कुछ हो रहा है ईशा और सूरज की जिंदगी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया मोड या फिर कोई नई सिचुएशन? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट।

0: सूरज और ईशा की रस्साकशी।
1: समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। आओ डार्लिंग, हम दोनों अब खुद मिलते रहेंगे।
0: सूरज की गलतफहमी,
1: अब खुद मिलते रहेंगे। आओ डार्लिंग,
0: ईशा का गुस्सा
1: रहेंगे। तुम हमें
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा के हाथों में है रस्सी और वो किसी चीज की तैयारी कर रही है। ऐसे में सूरज को लगता है कि ईशा कुछ गलत करने जा रही है, जिस वजह से सूरज काफी घबरा जाते हैं और देखिए कैसे ईशा को आकर रोकने लगते हैं। पर ईशा को तो पता ही नहीं कि सूरज क्या कर रहे हैं। तो वहीं सूरज को लग रहा है कि ईशा सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इनके बीच शुरू हो चुकी है खींचातानी।
2: मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। हर बार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझे?
3: दिमाग खराब हो गया आपका, मतलब छोड़िए।
2: मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, छोड़ो।
3: वैसे तो बड़ा कानून का पाठ पढ़ाते रहती हैं आप, खुद गैर कानूनी काम कर रही है। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये अपराध है, मैं कह रहा हूँ छोड़िए।
2: मैं कौन सा गैर कानूनी काम कर रही हूँ, बताओ मुझे।
3: दिमाग खराब हो गया, मैं कह रहा हूँ सच्ची छोड़ दीजिए।
0: ऐसे में वहाँ बंटी और सूरज की बहन भी पहुँचते हैं और तब बातों ही बातों में पता चलता है कि सूरज को लग रहा था कि ईशा सुसाइड करने जा रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। असल में ईशा तो सावन का झूला बांधना चाहती है, जिसकी वो तैयारी कर रही होती है। इसी बात को लेकर फिर एक बार सूरज और ईशा में हो जाती है नोक झोंक।
3: ईशा जी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? तू चाहता है ईशा जी को मैं आत्महत्या करने दूं? बेवकूफ कहीं का।
2: अरे
4: गुस्से कपड़े नहीं तुम पर।
2: तुमसे किसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ? सावन के झूले की तैयारी के लिए रस्सी लगाई तू आप। लड़ूंगी तो सुसाइड नहीं।

0: सूरज ऑलरेडी ये परेशान है कि मैं ईशा जी के दिल को दुखाते रहता हूँ, हमेशा जाने अनजाने में तकलीफ पहुँचाते रहता हूँ। अवनी को घर में लेकर आ गया हूँ, अवनी कहीं ना कहीं यूनो हाथ में रक्षा सूत्र बांध दी है, ईशा जी को और तकलीफ हो रही है, तो ये सोचते ही रहता है सूरज। और अचानक से बाहर देखता है, खिड़की से देखता है कि ईशा जी मोहल्ले के बीचों बीच यूनो फंदा टांग रही है, और सूरज को ये लगता है कि मोहल्ले के बीचों बीच यूनो कहीं आत्महत्या तो नहीं करने जा रही है ईशा जी फंदा फांसी लगाने, और ईशा जी चेक भी उसी तरह करते रहती है, और वो घबरा सा जाता है और भागते हुए आता है, बोलते ईशा जी आप ऐसा नहीं कर सकती, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती, कानून का पाठ आप पढ़ाते रहती हैं मुझे और खुद आज अपराध करने जा रही है, ये सब नहीं कर सकती, छोड़िए मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है, पता चलता है, बंटी रिया आ जाते हैं और रिया बोलती है कि ये फांसी का फंदा नहीं बल्कि ये सावन का जो झूला है उसकी तैयारी कर रही है ईशा भाभी, कुछ भी सोचते रहते हो। फिर ये खड़ा होता है, पोपट हो गया रहता है दादा भाई का, और फाइनली खड़ा होता है एंड रियलाइज करता है कि झूला है, और फिर ईशा जी को बोलता है सॉरी वो गलती से, एंड तब तक ईशा जी काट देती है कि मैं अरविंद जी की बेटी हूँ, हाँ मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ाई लड़ के जीतूंगी।
1: खैर इनकी नोक झोक तो हुई खत्म, वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे शिव जी ने बना दी है ईशा और सूरज की जोड़ी, कैसे दोनों साथ साथ पूजा कर रहे हैं, और मिला है इन दोनों को शिव जी का आशीर्वाद। इन दोनों की जोड़ी वाकई है लाजवाब, तभी तो सावन के इस मौसम में इन्हें मिल गया है फिर एक बार साथ साथ पूजा करने का मौका, जिस बात से सूरज ईशा दोनों ही काफी खुश हैं।

0: लेकिन हम आपको बता दें कि ये तो है सपना। जी हाँ, असल में सपने में दोनों साथ साथ पूजा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो दादा भाई गुंडे हैं जिनके साथ ईशा पूजा नहीं करना चाहती है। खैर, ख्याल ही सही, लेकिन दोनों साथ पूजा जो कर रहे हैं, इसी में तो है फैंस की खुशी।
1: जैसे भभूति को अपनाया तू,
2: ये सपना है।
3: पहले ही ईशा जी ने क्लियर कर दिया है कि ये सपना है। लोग ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाएं सपने के साथ साथ, लेकिन मुद्दा ये कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो दे रहे हैं हम। खत्म मुद्दा। अब चाहे वो सपना हो, ख्याली पुलाव हो, लेकिन सूरज ईशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जाहिर सी बात है, ऑडियंस को भी पता है, तो उसे बस बयां करने का एक तरीका है।
2: हम श्रावण की पूजा कर रहे हैं, जैसे पिछले साल ऐसे दिखा रहे हैं कि एक साल हो गया हमारे शो को, पता भी नहीं कि हम दूसरा श्रावण सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे पिछले साल ईशा वो तड़प रही थी कि सूरज के हाथों श्रृंगार करने का मौका मिले, हम साथ में पूजा करें, तब बिंदिया आई थी और एक साल बाद अब अवनी आई है तो सेम रिपीट चीज है। तो उसी बीच हमारे में जो वो थोड़ा सा दूरी हो गई है, तो उसी में हम अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं कि हम दोनों चाहते हैं साथ पूजा करें, पर ऑफकोर्स ईशा अब दादा भाई के साथ नहीं करना चाहती। ईशा ने कहा है मैं दादा भाई के लिए नहीं रखूंगी अपने फास्ट, पर अपने सूरज के लिए रखूंगी।
3: और सूरज मनी मन में ये सोच रहा है कि मतलब ईशा जी आ गई, उसे सपोर्ट कर रही हैं, कलश में जो दूध है जो अर्पित कर रहे हैं शिव जी के पिंड पे, ईशा जी भी उसमें सपोर्ट कर रही हैं, और सूरज इमोशनली सारी बातें ईशा जी से कह रहा है। अचानक
2: तो
3: से जैसे
2: वो होना चाहिए वो सपना सूरज देख रहा है कि यही होना तो चाहिए था।
3: या मतलब ठीक है, मैं दादा भाई हूँ जो भी हूँ, लेकिन ईशा जी को एज ए पत्नी मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और ईशा जी को अच्छे से पता है वो जानबूझ के सपोर्ट नहीं करी है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि सूरज सुधर सकता है, मतलब दादा भाई से निकल के ये वापस।
2: पहले भी गुंडा से आईएएस बना था, तो फिर से गुंडा बनने की क्या जरूरत थी, ये ईशा का मेन मुद्दा है।
0: तो भाई अब देखना होगा कि इस सावन में क्या ईशा और सूरज की गलतफहमियां दूर होकर दोनों एक दूसरे के करीब आ पाते हैं, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है।
2: सूरज
3: अपनी अब मेरी जिम्मेदारी।
0: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अपनी केस फरेब से अपने पति को मैं निकालूंगी।
5: कभी कभी किचन में शुरू हुई एक छोटी सी बात भी रिश्तों की हीट बढ़ा सकती है, ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। वैसे रूहानी बात तो सही है, वो कभी कभी ना कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी इतना बड़ा बन जाता है, और बाद में हम सोचते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। तो बस कोई जरूरत नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा चीज को यूं बड़ा बनाने की या उसे एग्जैजरेट करने की, क्योंकि हमारे रिश्ते ही तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों लेकर आना उनमें बेकार का कंफ्यूजन, लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।
6: ये सब कुछ ना इसी की वजह से हुआ है।
7: अरे तुम तो क्रिकेट निकली कंपाउंडर, हालात बदलते ही रंग बदल लिए। जब जान पे बन आई थी तो हमारी सारी बातें मान रही थी, पर अब जब जान बच गई तो हम पे इल्जाम लगा दिए।
6: हाँ, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी।
0: गुरु और रूहानी में बहसबाजी।
6: तो बॉम्ब भी तुम्हें लाए होंगे ना, तभी तो इतनी आसानी से हमारी जान बच गई। मिस्टर जी, इसे एक मिनट नहीं लगा, इसे दोनों बम जमीन पे रखे, उसके ऊपर गद्दा डाल, और जब बम फट गए तो हमारी जान बच गई।
0: बम को लेकर मचा बवाल।
6: बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, मैं कह रही हूँ मिस्टर जी, ये सब इसी का किया था। मिस्टर जी, ये गुरु नहीं, ये गुरु घटाल है।
7: ए?
6: तो बॉम्ब भी तुम्हें लाए होंगे ना, तभी तो इतनी आसानी से हमारी जान बच गई। मिस्टर जी, इसे एक मिनट नहीं लगा, इसे दोनों बम जमीन पे रखे, उसके ऊपर गद्दा डाल, और जब बम फट गए तो हमारी जान बच गई।
0: बम को लेकर मचा बवाल।
6: बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, मैं कह रही हूँ मिस्टर जी, ये सब इसी का किया था। मिस्टर जी, ये गुरु नहीं, ये गुरु घटाल है।
7: ए? अपनी बकवास बंद करो, जो मन में आ रहा बोले जा रही है, जान बचाए।
0: सही सलामत घर आ जाते हैं, इल्जाम लगा देती है, जिसके चलते गुरु हैरान है।
6: जी, ये सब कुछ ना इसी की वजह से हुआ है।
7: देखा चौधरी साहब, मैंने कहा था ना कि ये गुरु की साजिश है।
8: अरे तुम तो क्रिकेट निकली कंपाउंडर, हालात बदलते ही रंग बदल लिए। जब जान पे बन आई थी तो हमारी सारी बातें मान रही थी, पर अब जब जान बच गई तो हम पे इल्जाम लगा दिए।
6: हाँ, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना आता है, तो बॉम्ब भी तुम्हें लाए होंगे ना, तभी तो इतनी आसानी से हमारी जान बच गई।
8: बाहुबली हम गोला बारूद में पले बड़े हैं, ये छोटे मोटे पटाखे बंद करना आते हैं हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही बॉम्ब लेकर आए हैं।
6: मिस्टर जी, इसे ना एक मिनट नहीं लगा, उसे दोनों बॉम्ब जमीन पे रखे, उसके ऊपर गद्दा रखा, और जब बम फट गया ना, हम दोनों की जान बच गई। अब तुम ही सोचो, बिना सोचे समझे, बिना साजिश के कैसे हो सकता है? मिस्टर जी, इसे एक मिनट नहीं लगा, इसे दोनों बम जमीन पे रखे, उसके ऊपर गद्दा डाला, और जब बम फट गया तो हमारी जान बच गई। ये कैसे हो सकता है, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे? मैं कह रही हूँ मिस्टर जी, ये सब इसी का किया था।
9: मजे लेने से पहले एक राहत की सांस है, क्योंकि रूहानी के क्लिप में हमने, मैंने और पुष्पी ने बॉम्ब इम्प्लांट किया था, और जो त्रिपुरारी जी हैं उन्होंने गुरु के पॉकेट में पेन बॉम्ब डाला था, और हम ये उम्मीद कर रहे थे, ये आशा कर रहे थे कि दोनों उस बॉम्ब की चपेट में आ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बट देन गौतम जी हमें पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ हो जाता है मेरे और त्रिपुरारी जी के बीच में, जिससे कि गौतम जी को शक होता है कि ये दो बॉम्ब कैसे आ गए, उन्होंने तो सिर्फ गुरु के लिए बोला था। एंड मीनवाइल गुरु और रूहानी दोनों एक जगह पर हैं, और गौतम जी किसी भी कीमत पर रूहानी को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए अब वो बम फटे नहीं, इसके लिए हम लोग पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि गुरु और रूहानी कहाँ पर हैं। हमें पता चलता है, हम वहाँ पहुँचे हैं, और बम तो फट गया है, लेकिन गुरु की सूझबूझ की वजह से गुरु और रूहानी दोनों बच गए हैं। क्या हुआ है इस दौरान, ये आपको सीन देखते हुए और एपिसोड देखते हुए समझ आएगा।
10: भाई गौतम के आगे जाकर चाल मामा मामी ने चली है, लेकिन रूहानी गुरु पर इल्जाम लगा रही है और गुरु अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन रूहानी ये मानने को तैयार नहीं है।
6: मैसेज जी, ये गुरु नहीं है, ये गुरु का टाल
7: है। ए, अपनी बकवास बंद करो, जो मन में आ रहा बोले जा रही है, जान बचाइए तुम्हारी।
6: अच्छा तो क्या समझिया हीरो बनने की, मरने दे मुझे।
7: वो कहा है ना, तुम्हारी तरह नहीं, स्वार्थी नहीं है।
11: रूहानी, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती हो, मुझे भी पहले से ही अंदाजा था कि ये इसकी ही साजिश है जो तुम्हारे गले पे चाकू रख सकता है, और मारने की कोशिश भी तो कर सकता है।
6: आपको पता था मुझे भी बॉम्ब लगाया गया था।
7: इसने गुरु घंटाल कह दिए, आप चक्कर बना दें। वो कहा है ना, इस काम के लिए तो मामा सीरी से वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों मामा जी?
6: गुरु
9: मामी एंड टीम तो आई डोंट नो, एक के बाद एक हमें असफलताओं का स्वाद चखने मिल रहा है, तो मैं तो ये कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा पावर प्रूफ प्लान हमारे पास हो जिसकी वजह से हम जीतें। प्लीज़ प्रे फॉर अस। बाकी गुरु और रूहानी का बॉन्ड इस दौरान कैसा उभर कर सामने आता है, ये ज़रूर दर्शकों के लिए देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक ट्विस्ट है ना, गौतम जो बीच में है, जो रूहानी को पसंद करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के क्या केमिस्ट्री बन रही है तीनों की, ये भी आई एम श्योर दर्शक जानना चाहेंगे। तो ये कैसे अनफोल्ड होगा, हम जो इस जुनूनी को शूट कर रहे हैं, हम खुद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो अभी तक तो हम ही अनफोल्ड नहीं कर पाए इसको।
10: फिलहाल तो गुरु अब भी अपनी बातों पर कायम है और उसे मामा पर ही शक हो रहा है, लेकिन गुरु की माँ आकर गुरु को शांत करती है। इतना ही नहीं, गुरु के भैया भाभी भी अपनी गलती स्वीकारते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि गुरु और रूहानी एक साथ मिले और इनके बीच की गलतफहमियां दूर हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा गलतफहमी डबल हो गई है। खैर, अब ये गलतफहमी है या फिर रूहानी गुरु मिलकर गौतम के साथ ही खेल खेल रहे हैं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: स्मोक फ्री कुकिंग और इजी हैंडलिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक स्टोव बन रहा है हर घर की स्मार्ट चॉइस। और यहाँ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की एक अगली खबर, जिसे परोस रहे हैं हम आपको गर्मा गर्म। वेल, इस कहानी में फिर से आया है एक नया ड्रामा जो लेकर आ रहा है इसमें हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। कैसे? ऐसे।
12: तन्वी तन्वी तन्वी आंखें खोलो तन्वी तन्वी आंखें खोलो प्लीज देखो देखो मैं आ गया तन्वी तन्वी आंखें खोलो देखो ऐसे मुझे डराओ
10: तन्वी संग हुआ हादसा
12: तन्वी तन्वी आंखें खोलो

0: पिघला अक्का साहेब का दिल। सास बहू और माफीनामा। दंगल टीवी की सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में तन्वी संग हादसा हो गया है और तन्वी बेसुध हालत में रसोई में पड़ी हुई है। ऐसे में उसे देखकर युग की हालत खराब हो गई है। वो बार बार अपनी तन्वी को पुकार रहा है। इतना ही नहीं, युग परेशान है भी और साथ ही साथ वो तन्वी को दे रहा है CPR भी, जिसके चलते तन्वी होश में आ जाती है।
1: तो मेरी जान निकाल दी थी तभी।
2: सो ये कैसे हुआ कि अक्का साहब वॉज डूइंग समथिंग इन द किचन एंड फिर तन्वी आउट ऑफ नोवेयर वो आती है किचन में, देखती है अक्का साहब को एंड यू नो हमारे तन्वी आई मीन अक्का साहब के पीछे एक अवन था। सो वो अवन में शॉर्ट सर्किट होता है एंड वो ब्लास्ट होने जा रहा होता है और तन्वी जाती है, अक्का साहब को पुश करती है एंड ब्लास्ट उसके चेहरे पे हो जाता है। तो यस, फिर बड़ा ही शॉकिंग चीज़ होता है ये। एवरीवन इज पैनिक्ड, सब देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये किस चीज़ की आवाज़ थी एंड सब भागते हुए आते हैं एंड वी सी दैट तन्वी यू नो वहाँ पे लेटी पड़ी है एंड अक्का साहब भी वहाँ पे नीचे गिरी हुई हैं। एंड मैं आता हूँ फिर तन्वी को बचाता हूँ। आई एम लाइक नॉट बचाना बट आई कम एंड आई आस्क हर कि भाई क्या हुआ बट शी इज़ नॉट इन द स्टेट टू आंसर बिकॉज वो बेहोश पड़ी है। एंड फिर उसे उठा के मैं हॉल में लेके आता हूँ।
0: भैयुक अपनी तन्वी को बाहर हॉल में ले तो आता है लेकिन तन्वी का ये हाल देखकर सभी घर वाले बेहद परेशान हैं और युग वो तो फर्स्ट एड बॉक्स भी मंगवाता है लेकिन जैसे ही फर्स्ट एड बॉक्स आता है तो अक्का साहिब वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने से मना कर अपना हल्दी का लेप ले आती है और युग को हटा कर खुद ही एक एक कर तन्वी के हाथ में लगे कांचों को न सिर्फ निकाल रही है बल्कि तन्वी से अपने दिल की बात भी कह रही है क्योंकि तन्वी ने अक्का साहिब की जान बचाई है। इसी के चलते आज तन्वी ने अक्का साहिब का दिल भी जीत लिया है।

0: कब होगा? जब पहले हाथ से कांच निकलेंगे। सिर्फ ऊपर से दवाई लगाने से दर्द कम नहीं। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, हमने तुम्हें सिर्फ दोष दिया। गलती हमारा व्योम करता रहा और सजा हम तुम्हें देते रहे। व्योम की हर जिद को हमने उसका प्यार समझा और तुम्हारी हर सच्चाई को अपना दुश्मन। व्योम की माँ होने का फर्ज तो हम निभाते रहे। हमारी जान बचानी तभी तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर उतार नहीं पाएंगे।
1: Not creepy exactly, but of course it is very terrifying to, you know, see your wife getting hurt. Yeah, फिर कांच चुभना, खून बहना, of course that is very terrifying. तो थोड़ा सा वो अजीब तो लग रहा है कि ओफ, what's happening? You know, I try to get the first aid box. I tell everyone कि first aid box लेके आओ, but you know, जब वो आ रहा होता है first aid box, तो a hand suddenly stops me. And it turns out to be that it's Akka Sahib. And वो मेरे हाथ से first aid box लेती है and she's like, तुम नहीं, मैं करूँगी. And everyone is shocked and you know, then she starts apologizing to Tanvi.
2: फिलहाल तो अक्का साहब को अपने बेटे व्योम की गलतियों का एहसास हो गया है। वो न सिर्फ अपने व्योम की करतूतों पर परेशान है, बल्कि आज तो वो तन्वी से माफी भी मांग रही है। इतना ही नहीं, आज तो उनकी आंखें नम भी हैं। अब अक्का साहिब के ये आंसू असली है या नकली, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल तो अक्का साहिब का रोना तन्वी को रास नहीं आया। जैसे तैसे कर अपने दर्द को संभालते हुए तन्वी उठी और उसने अक्का साहिब को माफ कर दिया। और तो और, दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगा लिया। भाई, इसी को तो कहते हैं कि रिश्ते अपने ही होते हैं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कहीं तो इलेक्ट्रिक स्टोव में कुकिंग, कहीं फैमिली टाइम, तो कहीं टी टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास एंटरटेनमेंट का मिक्स, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और पेठा के एयरलाइन। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज की सारे हाइलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड, हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज मित्तल हाउस में चल रही है कलावंती की हुकूमत। असल में कलावंती बन गई है घर की मालकिन और मित्तल परिवार वाले बन गए हैं घर के नौकर। ऐसे में जो मालकिन ने कहा है सभी घर वाले वही कर रहे हैं। राध्या, प्रथम और प्रथम के पापा घर की सफाई में लगे हुए हैं और बाकी औरतें रसोई में लगी हुई हैं और नौकरों की तरह अपने ही घर का काम कर रही हैं। भाई ये नज़ारा देखकर तो कलावंती बहुत खुश है और दौर उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए दे रही है सभी को ऑर्डर्स भी।
1: बहन जी, हमारे लिए नींबू पानी लेकर आओ। जाओ,
2: थोड़ी बर्फ भी है उसमें।
3: जिसने मेरी वजह से मेरे घर वालों को नौकर बना दिया है। सो मुझसे मिस्टेक हुई है, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा। जैसे मैंने स्वाइप करके लड़का हाँ बोल दिया, वैसे आप भी मत करिए। देख लीजिए अच्छे से कि लड़का सही है या नहीं, फिर शादी कीजिएगा।
0: अब कलावंती तो मालकिन का रौब झाड़ ही रही थी कि तभी राध्या को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसके ससुर जी से ऐसे बात करे। ऐसे में राध्या ने सफाई करते हुए बबलू की आंखों में कचरा डाल दिया, जिसके चलते बबलू बेचैन हो गया और कलावंती अपने बेटे की बेचैनी देखकर हो गई परेशान।
1: बबलू,

0: क्या करे, सफाई भूल तो होगी ना।
1: चुप, ये सुभान है कि जंगली घोड़ी कहीं कुछ बोला नहीं कि भिड़क जाती है। चल उधर जाकर सफाई कर, ठीक है।
2: खैर, कलावंती का ये राज ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। आज नहीं तो कल उसकी हुकूमत जाएगी, क्योंकि राध्या पूरी फिराक में लगी है इनकी सच्चाई पुलिस के सामने लाने की। वहीं बबलू भी अपना खेल खेल रहा है, जो स्क्रू ड्राइवर छिपाने की कोशिश कर रहा है, यानी कोई खतरनाक खेल खेल रहा है। तो सीरियल की कहानी है, लेकिन ऑफ कैमरा आज सेट पर सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है, क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 1100 एपिसोड। ऐसे में 1100 एपिसोड की खुशी में पूरे परिवार वाले अपनी पूरी टीम के साथ जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और कर रहे हैं एक दूसरे का मुंह मीठा भी, क्योंकि ये इनके लिए बड़ी उपलब्धि है।
3: बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 1000 बहुत बड़ा माइलस्टोन था, अब 1100 बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो जैसे जैसे बढ़ती रह रही है ना चीज़ें, बड़े बड़े माइलस्टोन हमारे कंप्लीट होते रह रहे हैं और उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता रह रहा है। पिछली बार कहा था बहुत अच्छा लगा था, उससे पिछली बार कहा था बहुत अच्छा लग रहा है।
4: खुशी को एक्चुअली लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। खुशी इतनी होती है ना, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट 1100 एपिसोड पूरे करना। सो आज हमारा भी एक्चुअली मन अति सुंदर हो गया है।
5: ग्यारह सौ शगुन डल गया है 11 का। और जब हम नई फैमिली आए थे तो सबसे पहले हमने 800, फिर 900, 1000, 1100 ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।
4: बस थैंक यू बोलूँगी मन अति सुंदर के जितने भी लोग हैं, जो दर्शक हैं, इसी तरह से आप हमें प्यार करते रहिए और हमारी ये सीढ़ियाँ चढ़वाने में हमारी हेल्प करते रहिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस ऑफ मन अति सुंदर।
6: बहू और बेटा के इस एपिसोड में आज हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ना इस इलेक्ट्रिक स्टोव से, जो है एक सिंपल, सेफ एंड मॉडर्न कुकिंग मेथड। स्पेशली देखिए, ये जो गैस सिलेंडर्स की कीमत है ये तो आसमान छू रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अडेप्ट करनी चाहिए स्मार्ट चॉइसेस। और यहाँ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका फेवरेट सेगमेंट, जो लेकर आएगा आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। इंट्रोड्यूस करते हैं आपको आपके फेवरेट सेलेब से। गेट सेट,

मोहित मलिक से, जिन्हें आपने डोलियर मानू की, कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे शोज में देखा है। लेकिन जल्द ही मोहित मलिक चमकने वाले हैं बॉलीवुड के पर्दे पर। भाई वो दिखेंगे मशहूर ओटीटी शो मिर्जापुर के फिल्मी वर्जन पर, जो सितंबर 2026 में रिलीज होगी। भाई फिल्मों में मोहित मलिक काम कर चुके हैं, लेकिन एक ओटीटी शो फिल्म बनकर आ रहा है और उसमें मोहित का रोल भी काफी जानदार है, क्योंकि वो भिड़ रहे हैं कालीन भैया से। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज मोहित के गुरु जी को हम मिलवा रहे हैं। जी हाँ, मोहित मलिक ने बतौर सिंगिंग की ट्रेनिंग ली थी। सिलसिला शुरू हुआ था मोहित के शो कुल्फी कुमार बाजेवाला से, जहाँ पर वो बने थे एक रॉक स्टार।

0: भाई शो के लिए उन्होंने सिंगिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग भी सीखी है। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम मोहित मलिक के सिंगिंग टीचर से आपको मिलाएंगे जिन्होंने उन्हें सिंगिंग के गुर सिखाए। शुरुआत तो हुई थी एक किरदार के लिए लेकिन अब सिंगिंग बतौर कलाकार मोहित की हेल्प कर रहा है। इसमें मोहित मलिक के साथ उनकी वाइफ अदिति मलिक भी है। चूंकि अदिति भी एक कलाकार है इसलिए मोहित के सिंगिंग वाले टैलेंट में उनकी पत्नी ने भी साथ दिया। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज हम मोहित का एक अनोखा टैलेंट दिखा रहे हैं और मिलाएंगे उनके गुरु से। तो आइए मिलते हैं कलाकार मोहित मलिक के गुरु से जिन्होंने उन्हें गाना सिखाया है।
1: ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, कहीं की बार नहीं कर पाते क्योंकि शूटिंग शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, बट आई मेक अ पॉइंट कि मैं रियाज करता रहूं।
2: पहली बार सुना था तो सिखाने से पहले सुनना जरूरी होता है, तो मैंने इनसे सुना तो मुझे लगा कि ही कैन सिंग। मतलब नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को शौक होता है गाने का लेकिन उनको गाने का कुछ भी नहीं पता होता है, तो आई वॉज सरप्राइज। मैं जब मैंने इनसे पहली बार कुछ गाने के लिए कहा तो इन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि हाँ मैं सिखाऊंगा और मुझे सिखाना चाहिए। इज़ वेरी टैलेंटेड। ये जितने अच्छे कलाकार हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, जो कि शक्ल से भी पता लगता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब मैं इनसे बात करता हूँ तो स्पिरिचुअल जो एक बॉन्डिंग होती है तो वो भी है हमारे बीच। तो वो जो हमारे बीच में सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब आए और नीरेगा कर लिया और गाना गा लिया, ऐसा नहीं है।
1: Actually, और ऐसा भी नहीं, लॉट हम बातें भी बहुत करते हैं। सर ने बिल्कुल सही कहा, हम फर्स्ट डे से सर मैं बहुत बातें करता हूँ और एक्चुअली मेरा पर्पस था कि एक और पर्पस ये भी है कि मैं इनकी इनकी सोच समझ सकूँ एज अ सिंगर, कि ये सिंगिंग को कैसे देखते हैं, म्यूजिक को कैसे देखते हैं। म्यूजिक की समझ बहुत ज़रूरी है और वो खैर वो पूरी समझ तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हाउ ही परसीव्स म्यूजिक, तो वो थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश करता हूँ इनसे चोरी छुपे बातों बातों में, तो वो मिल जाता है मुझे कहीं ना कहीं। बट ऑल थैंक्स टू हिम कि वो आते हैं घर पे और स्पेशली अपना टाइम निकाल के, ही इज अ वेरी बिजी मैन बाय द वे, बहुत फिल्मों में गाने गा रहे हैं और ये टाइम निकाल के आते हैं। एंड ही इज़ राइट कि हम स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही क्रिएटिव हैं और क्रिएटिविटी आई थिंक आती ही वहीं से, आपके हाई सेल्फ से, तो वो लोअर सेल्फ से तो आती नहीं है। तो जहाँ पे अपने आप को भुला के आप कुछ काम करेंगे वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे लोग, ये मेरा मानना है। तो अपने आप को सर बुलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम सिंग मैं जब भी रियाज करता हूँ और इनके साथ बैठता हूँ तो मैं एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और उससे बेहतरीन चीज़ नहीं है कोई, और इट्स रियली अ कट ऑफ।

0: ऐसा
1: गुड सिंगर, मतलब ऐसा हो कि तेरे बाद जब लोग मुझे सुने तो ऐसा बोले कि यार कमाल के सिंगर हो, तो सिर्फ एक्टर नहीं हो सिंगर भी हो, तो ये एक डेडिकेशन है, नहीं तो ऐसा भी चल सकता था काम जो इन्होंने नहीं चलाया।
2: सर ऐसे तो बहुत कुछ चल जाता है, लेकिन क्योंकि आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि सिंगिंग में ना पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और सिंगर्स के सर से जो मैंने बात सीखी कि इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मत गाना तो, और हम एक्टिंग में ऐसा क्या होता है ना, हमारे पैरामीटर्स नहीं होते इतने, कुछ भी चल जाता है कभी कभी, कुछ भी कोई कर रहा है तो इट जस्ट वर्क समहाउ, एंड क्या चीज़ काम कर जाती समझ में नहीं आता। तो पैरामीटर्स जो हैं वो एक्टिंग के बहुत यू नो ऊपर नीचे हैं, बट सिंगिंग का एक ही पैरामीटर है कि अगर आप, मैं आपको गाते हो किसी को गाते हो सुन लो सर, मैं आप जैसे सपोज किसी को कह दोगे कि आप नहीं गा सकते हो, या तो आप कहोगे आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको पता है पैरामीटर है एक कि ये पैरामीटर है, तो एक्टिंग में सर वो चीज़ मिसिंग लगती है मुझे हमारे हमारी इंडस्ट्री में, हमारे वो एक पैरामीटर्स जो हैं वो तय होना और वो पता होना कि हाँ यार, मतलब कोई भी एक्टर को, हर एक्टर को पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर है, इसके पे ही काम करना है, यू नो, तो वो बहुत जरूरी है, जो कि सिंगिंग में वो हर क्रिएटिव फील्ड में होना चाहिए।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
4: पर्दे पर कुल्फी कुमार बाजेवाला में मोहित ने बतौर सिंगर इस किरदार को शिद्दत से निभाया, यहाँ तक कि सिंगिंग भी सीखी और शो में गाया भी, लेकिन रियल लाइफ में भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनके गुरु जी ने क्या सिखाया है, आइए देखते हैं उनका ये सिंगिंग लेसन जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया है।

वैसे मोहित मलिक पूरी गुरु शिष्य परंपरा निभा रहे हैं, देखिए गुरु जी के साथ कैसे रियाज कर रहे हैं और रियाज भी पूरे दिल से। सुर और ताल के पर्दे पर अभिनय करना तो अलग है, लेकिन सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना अलग बात है। देख लीजिए गुरु शिष्य की ये जुगलबंदी।

0: उसमें मुझे सिखाया सर ने और मुझे जो बताया कि जो एक्चुअल रियाज है वो तानपुरे पे ही हो सकता है. और भाई हम करते हैं, हम तानपुरे का म्यूज़िक, हमने एक ऐप डाउनलोड किया है और हमने उस तानपुरे के उस पर हम रियाज करते हैं. और सबसे बेहतरीन चीज़ है आई थिंक, किसी और इंस्ट्रूमेंट से बेहतर आप तानपुरे पे रियाज करें. तानपुरे पे रियाज करना आई थिंक इज़ अ बेसिक थिंग, बेसिस फाउंडेशन है वो म्यूज़िक सीखने का. तो एंड इट इज़ ब्यूटिफुल आप करके, मतलब हर किसी को मैं तो कहता हूँ कि सिंगिंग सीखनी चाहिए. इट इज़ समथिंग विच ब्रिंग्स सैनिटी टू यू. तो बहुत ज़रूरी है वो, कुछ ना कुछ या मेडिटेशन करें या सिंगिंग सीखें. तो या तानपुरा इज़ द वन इंस्ट्रूमेंट वी डू रियाज ऑन.
1: भाई गुरु शिष्य के बीच में मोहित की सबसे बड़ी क्रिटिक उनकी पत्नी अदिति भी आई है. तो देखिए अदिति ने भी उनकी सिंगिंग पर फीडबैक दिया और साथ साथ मियां बीवी ने डांस भी किया.
2: ना काफी टफ गाना था, उन्होंने गलत चॉइस दे दी और इन्होंने गलत चूज कर लिया, लेकिन फिर भी ये गाना क्योंकि बहुत टफ है तो इतना गाना भी बड़ी बात है.
0: थैंक यू सर, बट एक्चुअली बहुत टफ है, मेरे को गाना नहीं चाहिए था सर वैसे. लेकिन ठीक है, कोई बात.
3: मैं कहूंगी यही लाइफ है, आई विल गिव टफ चॉइसेस, टफ चॉइसेस विल मेक यू टफ सिंगर. क्या कहते हो सर?
0: जब कोई बात बिगड़ जाएगा तो ओके

0: थैंक यू सो मच. मैं सबका सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा, सारे फैंस का, सारे व्यूअर्स का. आज तक के आज तक हमने बहुत सी स्टोरीज की हैं. ऐसी स्टोरी मैंने आज तक नहीं की, और मैं पहली बार आज तक के साथ आज तक पहली बार ये स्टोरी नहीं की. तो या सो सिंगिंग एक्चुअली नो वन हैज कवर्ड दिस, आपने कवर किया, थैंक यू सो मच.
1: तो ये थे मोहित मलिक, और आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर हमने उनके गुरुजी के साथ उनका एक अनोखा टैलेंट आपको दिखाया जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. तो उम्मीद है 2026 में मोहित की फिल्म मिर्जापुर सबको पसंद आए, और अब तक सीरियल से सबको एंटरटेन करने वाला मोहित अब बड़े पर्दे पर भी अपने टैलेंट का जादू दिखाए. मुंबई से रूपर मौजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: इलेक्ट्रिक स्टोव तो है एनर्जी सेविंग कुकिंग, और इसके साथ साथ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की एनर्जी. अब आप पूछेंगे कैसे, वेल लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा था हमने खास आपके लिए. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर, क्योंकि यहां तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल हुए पूरे। सेट पर हुआ सेलिब्रेशन। प्रोड्यूसर असद मोदी ने दिया टीम को तोहफा। दुनिया जलती है तो चले। सास बहू और बेटियां, आज पहुंच गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, जहां पर आज कोई सीन नहीं फिल्माया जा रहा है, बल्कि आज तो सभी सेलिब्रेशन और जश्न मनाने के मूड में हैं, क्योंकि सीरियल के 18 साल पूरे जो हो गए हैं, ये बेहद ही लंबा सफर है जो टीम ने एक साथ पूरा किया है। इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए, कई नए लोग जुड़े, पुराने लौट कर आए और कुछ लोगों ने सीरियल भी छोड़ा। लेकिन एक काम है जो इन्होंने नहीं छोड़ा है, वो है अपने दर्शकों को हंसाने का। 18 सालों तक वो हंसाते आए हैं और आगे भी हंसाते रहेंगे, और आज इसी बात का सेलिब्रेशन सभी मिलकर कर रहे हैं। भाई आज तो प्रोड्यूसर असद मोदी यहाँ पहुँचे हैं, और देखिए केक कटिंग के साथ साथ आज ये अपनी टीम के लिए प्यारा सा तोहफा भी लेकर आए हैं, चाहे फिर वो सभी एक्टर्स हो या हो बिहाइंड द सीन काम करने वाले इनके क्रू मेंबर्स। भाई आज तो सभी के चेहरे पर बस खुशी ही खुशी है।

0: नहीं, उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता कि? मैं बोला नहीं, ये रोज नया लगता है। कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम, एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे अच्छे सीन्स हमको ला कर देते हैं, और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में, सेम एक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज नया नया कुछ ना कुछ सूझ आता है, वो भगवान की कृपा है।
1: तो बहुत खुशी है, और समझ में नहीं आता है कैसे 18 साल, 28 जुलाई 2008 का दिन याद करता हूं, शो चालू हुआ था, तभी सब लोग बोलते थे सब टीवी पे कोई शो चलता नहीं है, तेरा शो बंद हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग चैनल नहीं शो देखने आते हैं, अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे। तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था, और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा, एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए।
2: भाई आज तो जेठालाल बबीता साथ साथ नजर आ रहे हैं बिहाइंड द सीन भी, क्योंकि अभी ये कैरेक्टर में जो है ऐसे में साथ हैं अय्यर, मिस्टर भेड़े, बापूजी और बाकी के सभी गोकुलधाम वासी। भाई टपू सेना को हम भला कैसे भूल सकते हैं, और आज सभी साथ मिलकर देखिए कैसे मना रहे हैं जश्न। भाई सभी को असित मोदी ने दिया है तोहफा, और ऐसे में इनका क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं।

0: थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए. बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबां पे नहीं ला सकता. तो आप समझ गए ना.
1: एनएसडी से और 18 साल तक कुवारा रहना, लड़कियां देखते रहना. जब भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो. जब कास्टिंग कर रहे थे, मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर इधर होगी चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए. क्योंकि कॉमेडी करती वक्त आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए. तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे धीरे धीरे करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गए हैं. हमको ऐसा चेहरा चाहिए था जो हंसे बाहर पब्लिक के सामने, सुंदर हंसे, सुंदर हास्य हो, और घर में हस्बैंड की वाट लगा दे. ये काम किया, नींबू लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, तो इस्त्री करो, नींबू काटो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं. हमको इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, और आज भी वो इनको तो है सबको कंप्लेन, छुट्टियां मिलती नहीं है. थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच.
2: नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरा टीम हमारा, टेक्निकल टीम, एवरीवन, डायरेक्टर्स. सर का तो खास शुक्रिया अदा कि मुझे ये कैरेक्टर दिया गया. और 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तब पता नहीं था लैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है.
3: हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे. एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू माई फीमेल को एक्ट्रेसेस, अंबिका, सोनालिका, नवीना, मुनाज, खुशी, सुनैना, धरती, हाय माही, एवरीवन. हाँ, महिला मंडल, माय फीमेल को एक्ट्रेसेस, आई थिंक दे आर रिमार्केबल. मे बी दे डोंट गेट दैट मच क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट आई थिंक वी ऑल आर फाइटर्स, वी ऑल आर इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एंड वी ब्रिंग अ लॉट टू द शो, टू द कैरेक्टर्स, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: मैंने एड में इसको देखा, मैंने टीम को बोला कि ये लड़के को ढूंढो, ये जो मासूमियत है, अभी तो मासूमियत चली गई है, अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो मासूमियत थी, 9 साल का था मुझे लगता है, 8-7 साल, तब से लेके अभी तक, अभी तो देख के भाग जाते हैं. पहले मैं आता था तो मिल के गले मिलता था, मिल जाता था, आशित भाई आशित, अभी बड़े हो गए, अभी बच्चे सुनते नहीं, अभी पहचानते भी नहीं है.
4: 53 ईयर्स की मैं हो गई हूँ, लेकिन वापस 18 साल की हो गई, उसके लिए थैंक्स.
1: उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाए हुए. तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, अगर ईमानदारी से कहूं तो जबरदस्त काम किया. हम लोग आज दिशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है. और मयूर वाकानी भाई सुंदर.
5: तो भाई, अब सीरियल ने 19वें साल में कदम रख लिया है, और अब तो कई और ड्रामे, कई और कॉमेडी और कई सारी चीजें आनी बाकी है, और दर्शकों को तो दया बेन का इंतजार है ही. खैर, आइए जानते हैं कि जेठालाल, लेडीज टीम, जेंट्स टीम और टप्पू सेना का इस जश्न के बारे में और 18 साल पूरे करने के बारे में क्या कहना है.
6: 2008 28 जुलाई का पहला दिन जब ये टेलीकास्ट हुआ, शूटिंग हालांकि हमने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था, तो तब सच में किसी को यकीन, मतलब ऐसा कौन सोच सकता है कि 18 साल तक ये सीरियल चलेगा, और इसी तरह 18वें साल में भी ये टॉप 10 में ये सीरियल होगा. बट ये लोगों का प्यार, लोगों के आशीर्वाद, आज भी लोग इतने प्यार से मिलते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, तो मतलब कभी कभी सोचते, जैसे आज भी हम लोग बैठे थे सब आर्टिस्ट, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब पहला एपिसोड कर रहे थे तभी हमें, या पहला एपिसोड हमने एक्चुअली सबने साथ में मिलके देखा था, तो तब यकीन, मतलब ऑफ कोर्स किसी को यकीन नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा. जो कैरेक्टर्स का इनोसेंस है, आई थिंक वो सबसे पहले तो लोगों के साथ क्लिक कर गया. कि जैसे मान लो भिड़े और जेठालाल के बीच में अगर झगड़ा होता भी है, बहुत मतलब हाई लेवल झगड़ा होता है, लेकिन फिर अचानक मतलब बाद में सब भूल करके वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं, तो मतलब मन में दिल में कोई रखता नहीं है. आई थिंक ये हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी सीखना चाहिए कि चाहे किसी से भी अपना मन मुटाव हो तो फिर उसको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में और रखा क्या है. हम सब हंसी खुशी के साथ जिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए.
7: देखिए, जब इंसान जन्म लेता है तब उसको मालूम नहीं होता है कब शादी होगी, कब आगे बच्चे होंगे और कब मेरा करियर बनेगा. वैसे ये हमारा भी यही था. उस समय हमारे सब लगन एक ही थी कि अच्छा काम करें और लोगों को हंसाएं. अभी वो करते करते करते ये शो ने इतनी पकड़ मजबूत कर ली है ऑडियंस में. तो हम अब यही कहना चाह रहे हैं कि आज 18 साल हुए, 36 54 होते रहें, लेकिन हम स्वस्थ रहें और लोगों को मज़ा कराते रहें.
8: ऑब्वियसली जब जर्नी शुरू हुई थी तब किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज जब व्हेन वी लुक बैक सो वी फील के यू नो के हंसते खेलते 18 साल बीत गए, हमें पता भी नहीं चला, और अभी भी उसी फ्रेशनेस के साथ हम रोज़ मिलते हैं, शूट करते हैं और अच्छे एपिसोड बनाने की कोशिश करते हैं.
9: मैं कभी इस बात को देखता हूँ कि ये हमारा जॉब है एक तरह से देखा जाए तो. हमें काम यहाँ पे आके काम करना है, लोगों का मनोरंजन करना है. मतलब रियल लाइफ में भी लोग बहुत सारी नौकरियां बदलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग की एक ही नौकरी है तारक मेहता की, जो हम लोग करे जा रहे हैं. और ये अभी जॉब ना रहते हुए ये एक आदत सी हो गई है. अब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं भिड़े नहीं हूँ या ये पोपटलाल नहीं है या अय्यर नहीं है. तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ आना है, यहाँ पे आपको 12 घंटे रुकना है, लोगों का मनोरंजन करना है, उसके बाद आप घर पे जा सकते हैं. लेकिन घर जाने के बाद फिर से वापस कब आना है उसका तो ध्यान रहता ही है कि नहीं पहले तो इधर आना है. इतनी आदत हो गई 18 साल में. और दूसरी बात यह होती है कि पहले तो आप एक स्ट्रगलर होते हो, फिर आपको एक जब एक सीरियल मिल जाते हैं तो शुरू में हम लोग का ऐसा था कि चलो सीरियल मिल गई है, डेली सोप मिल गई है. और उस दौर ऐसा था, उस वक्त OTT या सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, तो हम लोग को बहुत खुशी थी कि हम लोग एक डेली सोप मिला है करने के लिए, जो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है.
10: एक्चुअली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा शेर व शायरी नहीं करता, बट येस एज अ फ्रेंड, मतलब अगर परम मित्र की बात करें तो मैं बहुत ही लॉयल इंसान हूँ. अगर मैं आपको दोस्त मानता हूँ तो मेरे लिए आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है. तो इसके लिए फिर कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके लिए लड़ूंगा भी. और ये एक और भाई साहब आए हैं जो एक और हमारे साथ, मैंने भी 4 साल पहले इस ट्रेन में मैं कूदा था और ये भी एक हैं जो इस ट्रेन में कूदे.
11: 18 साल नहीं बट ऑफकोर्स जब इनको देखता हूँ ना तो वो इंस्पिरेशन मिलता है कि जैसे 18 साल ये इन्होंने निकाले वैसे और हम 18 साल निकालेंगे.
12: हाँ, वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज बन रही होती है तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे बनाने. ये हमारी कायनात है, ये है कायनात जो जुड़ के तारक मेहता को बना रही है. और बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा भी जो टीम लगी हुई है ना भाई, दिन रात मंडे टू सैटरडे 20-22 मिनट्स का आउटपुट निकालना और वो भी हंसाने वाला, इट्स रियली कमेंडेबल जॉब आई कैन से.
13: चलो मनाए हंसो हंसाओ दिवस आज.
1: हम लोग एंजॉय करते हैं अपना काम और जो भी सोशल इश्यूज होता है, जो हमको लगता है कि ये अच्छे से हम लोग समाज के सामने रख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का शो है, एक सामान्य परिवार का शो है. गोकुलधाम सोसाइटी है, मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी है, पचरंगी गोकुलधाम सोसाइटी है. तो इस तरह से हम लोग इसको मेहनत करते हैं कि हमारे 4780 एपिसोड के बाद भी कुछ नया लगना चाहिए, नहीं तो भी लगेगा कि वही का वही आ रहा है वही की. तो अभी मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई भी एपिसोड हमने रिपीट नहीं किया है. अगर आप 2008 से देखेंगे तो अभी तक हर एपिसोड नया है, इसीलिए आज भी पॉपुलर है क्योंकि उसमें एक ताजगी है.
14: नहीं, क्या है ना, जनरली एक एक्टर के लिए क्या चाहिए होता है कि ऑडियंस उसको उस कैरेक्टर से पहचाने या उसको प्यार करे, वो कैरेक्टर को प्यार करे. तो मुझे लगता है मेन तो उसका जो मंत्रा है वो ऑडियंस है, उनका प्यार है. तो वो लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं ना कि आपको छोड़ने का मन करता ही नहीं है.
15: मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत DMs और स्टोरीज पे मैसेज आते हैं, लेकिन आप ये क्यों खा रही हो? सो मुझे खाना बहुत पसंद है, बट ऑफकोर्स लिमिट में हर चीज़। और आई सुनैना को नाचना, आई लव टू डांस, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। सो या, और सुनैना बहुत ही, मतलब थोड़ी बहुत अंजलि जैसी, बहुत ही इमोशनल और वैसे है। सो या
16: ओके, तो रोशन तो वैसे एकदम ही घरेलू है, हाउसवाइफ है, खाना बनाती है, लेकिन मोनाज इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। मोनाज लव्स टू डांस। एक्चुअली आई वाज आल्सो एन इंस्ट्रक्टर विद श्यामक दावर्स, एंड फॉर आई मीन व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई लव वर्किंग आउट, आई लव एनिमल्स, एंड आई लव मीटिंग पीपल, आई लव यू नो गोइंग आउट। सो मोनाज की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग ही है, और मोनाज थोड़ी बहुत अंजलि भाभी जैसी है, वो डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। तो बहुत हेल्दी हेल्दी खाने में मोनाज बिलीव करती है। रोशन तो हर चीज में मलाई मक्खन मार के, लस्सी और पनीर एंड पनीर पकौड़े चाय में डुबो के, लेकिन मोनाज बिल्कुल ऐसी नहीं है।
17: ऑलमोस्ट हर क्वालिटी अपोजिट है टू नवीना बावरी की, बट मुझे

0: फायदा हो जाए उस सिचुएशन में. तो हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं सीखती रहती हूँ बावरी से.
1: ऑफ कोर्स मैंने ऐसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सोसाइटीज देखे हैं जहाँ पर रियल में उन लोगों ने एक टप्पू सेना बनाई है और बहुत ही क्यूट है यार. यस
2: हाँ, मतलब अभी ऐसा हर कोई आके यही बोलता है कि यार हमसे जो एज में बड़े हैं वो भी बोलते हैं हम आपको देख के बड़े हुए हैं. तो हमको ऐसा फील होता है कि सडनली हमारी एज तो कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ गई, क्योंकि जो हमसे एज में थोड़े से ज़्यादा क्या और भी ज़्यादा बड़े हैं वो भी बोलते हैं कि यार हम आपको देख के ही बड़े हुए हैं. तो हमारी एज रुक गई या फिर वो ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए. सो और अच्छा लगता है, टप्पू सेना तो हर सोसाइटी में होनी चाहिए, जैसे हम फ्रेंड्स हैं.
3: थैंक यू सो मच सर फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड या थैंक यू सो मच.
4: ये रही अपनी नई नवेली गोकुलधाम सोसाइटी.
5: तो इसी के साथ गोकुलधाम सोसाइटी का भी हो गया है रेनोवेशन, यानी कि रंग रूप ही बदल चुका है.
6: खास बात बताने आया हूँ जो आप लोग को पता ही नहीं है.
7: क्या होगा असित भाई का सरप्राइज?
5: अब देखना होगा कि कहानी में क्या कुछ फ्रेश आता है. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
8: कुकिंग है ना, ये होती है हमारे हेल्थ के लिए अच्छी, यानी ये लेकर आती है हमारे लिए हेल्थ वाली गुड न्यूज. लेकिन क्या यहाँ से आ रही है कोई एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट? लेकर चलते हैं आप सबको डॉक्टर आरएमपी के पास, उनके शो डॉक्टर आरएमपी के सेट पर.
9: आप लोग को बचाने वाली मैं, पर सॉरी टू से आप लोग को फंसाने वाली.
5: अवंतिका ने फिर से चली चाल.
9: टंडन फैमिली को बदनाम करने वाली तुम हो आरंभी, इतना बड़ा स्कैंडल करने वाली तुम हो आरंभी. जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन इस फैमिली को झेलनी पड़ी है उसकी वजह तुम हो आरंभी.
10: क्या सबूत है तुम्हारे पास?
5: आरंभी के घर में मच गया बवाल. घर वालों के लिए आरंभी निकली फिर से कसूरवार. कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज आरंभी के ससुराल वाले जेल से छूटकर घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया और उनके बवाल पर राज भी करारा जवाब दे रहा है, क्योंकि राज को भी पहली बार पता चला है कि उसके घर वाले दहेज ले रहे थे. ऐसे में राज भी अपने परिवार के खिलाफ है. इसी बात को लेकर डिम्पल बार बार आरंभी को कसूरवार ठहरा रही है.
11: आपका पैसा, आपका बिजनेस मुझे भर के अकेला है.
12: राज से आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं करी है और ना ही कभी करूंगी.
5: अब जो हुआ उस बात को लेकर संजय परेशान नहीं, बल्कि वो तो परेशान डीसी को लेकर है. उन्हें डर है कि कहीं डीसी भी अपना हाथ ना खींच ले इनके हॉस्पिटल को फंडिंग करने में. और होता भी वही है, क्योंकि इनकी बहस में ध्रुव की भी हो जाती है एंट्री.
11: नो डैड, सीरियसली, क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या आप लोगों के?
13: ये सब जो हो रहा है बहुत गलत तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है. तुम पता है कि?
14: हाँ मुझे पता है. आपको क्या लगता है बच्चा होना चाहिए? मैनिपुलेट कर लेंगे, बहका लेंगे. सब सुन लिया, सब देख लिया. आप लोग जेल में नहीं, आपने घर में इसलिए रखना है क्योंकि वहां से सबूत गायब हो गया. मुझे नहीं पता कैसे हुआ बट हो गया. इससे आप लोगों का क्राइम कम नहीं हो जाएगा. मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया. यू नो व्हाट डॉक्टर टंडन, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आप में, आपके इस परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके इन्वेस्टमेंट में. आई एम डन.
13: प्लीज देखो ये बात ऐसी नहीं है कि विश्वास.
14: इतना गुस्सा दिखाना भी ठीक नहीं है. क्या लगता है गुस्सा दिखा के झूठ सच में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा. सो डोंट इवन ट्राई.
13: विश्वास.
5: भाई विश्वास तो पहले से ही ध्रुव से चिढ़ता था और आज तो ध्रुव ने भी अपना फैसला सभी को सुना दिया। हालांकि संजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव उसने मानने से

0: इनकार कर दिया और तो और आरंभी को भी उसने नया प्रपोजल दे दिया और देकर वहाँ से चला गया। बस फिर क्या, इस बात को लेकर सभी घर वाले परेशान हो ही रहे थे कि डिंपल ने फिर से आरंभी को अपना टारगेट बना लिया। ऐसे में आरंभी भी चुप नहीं रही और उसने घर वालों को बता दिया कि उसे दहेज वाली बात किसी और ने नहीं बल्कि उसके बच्चे विहान ने बताई है। लेकिन डिंपल अब भी आरंभी को ही दोषी मान रही है।
1: डॉक्टर साहब, अगर तुमने ये बात इसको बताई तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी पुलिस को पता
2: चला। मैंने पुलिस को नहीं बताया, मैं बार बार वही तो बोल रही हूँ।
3: झूठ कह रही हो तुम, फिर एक बार हमें ही गलत साबित कर रही हो, हमें गुनहगार बना रही हो तुम।
2: मम्मी जी, आपसे बात करने के बाद मैं सीधा राज के पास जाने वाली थी उसे बताने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन राज को भी बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि आपने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था।
4: आपने मेरे वॉशरूम में भाभी को बंद कर दिया।
1: नायरा को कैसे पता?
2: मुझे नहीं पता नायरा को कैसे पता चला, मुझे नहीं पता पुलिस को कैसे पता चला, मैंने नहीं बताया है, मुझे नहीं पता।
0: भाई डिंपल को तो पूरा यकीन है कि नायरा के परिवार वालों को किसी और ने नहीं बल्कि आरंभी ने ही बताया है। लेकिन आरंभी बार बार सभी से यही कह रही है कि उसने ऐसा किया ही नहीं है। इतना ही नहीं, नंदिता और हरीश ने तो हैरानी जताई क्योंकि उन्हें तो दहेज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में घर में बवाल मचा ही हुआ था कि तभी हो गई अवंतिका की एंट्री, जिसने आते के साथ ही सभी घर वालों के सामने आरंभी पर उंगली उठा दी।
1: मुझे इस हालत में देख के शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ रिस्की, कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में से आप लोगों के खिलाफ जिसने सबूत चुराया है वो मैं। और ये रिस्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इस मामले को अपना परिवार मानती हूँ। आप लोगों को बचाने वाली मैं, पर सॉरी टू से आप लोगों को फंसाने वाली ये आरंभी है। आरंभी तो पहले से मुझ पर चिढ़ गई क्योंकि मैं सामने कितनी गैर जो करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यही इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए तो रिजॉर्ट से तुम मुझे टेंडन हाउस से बाहर निकालने की कोशिश में लगी थी, राइट?
3: अरे मुझसे प्रॉब्लम हुई तब तक तो ठीक था,
2: लेकिन इसे आप लोगों से भी प्रॉब्लम है। ये आप लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, इसीलिए दहेज के केस में इसे फंसाया।
3: बोलने पे टैक्स नहीं लगता तो क्या कुछ भी बोल दी जाओगी? जस्ट स्टॉप इट।
1: वो हम नॉट गोना स्टॉप इट।
5: इट्स रियली शॉकिंग और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ड्रामा हो, कोई पंगा हो और इसका बिल आरएमबी पे ना फटे। तो एज ऑलवेज आरएमबी पे बिल फट रहा है। तो हुआ ये है कि बहुत बड़ी बात हो गई है, टंडन्स पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है जो कि सच भी है। टंडन्स ने दहेज लिया है नायरा के पेरेंट्स से। तो अब बस गुत्थी ये है कि ये वीडियो किसने बनाई और पुलिस तक किसने पहुंचाई, तो ये कोई समझ नहीं पा रहा है। उतने में इस बात का खुलासा करती है अवंतिका। अवंतिका बोलती है कि आरंभी ने ये वीडियो पुलिस तक पहुंचाई है और अवंतिका ने टंडन्स को बचाया है। अवंतिका ने पुलिस स्टेशन से मतलब पुलिस की हिरासत में जो भी वीडियो थी पेन ड्राइव में वो गायब की है, तो आज हम जो सेफ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवंतिका। ये खुलासा अवंतिका ने किया है जो बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि अवंतिका को टंडन्स के गुड बुक्स में तो रहना ही है, तो उसके लिए अवंतिका किसी भी हद तक जा सकती है। बस यही ड्रामा चल रहा है सब।
0: अब आरंभी को तो पता है कि अवंतिका कितने पानी में है। ऐसे में उसने अवंतिका को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन आज अवंतिका शांत नहीं रहेगी क्योंकि वो तो पक्के इरादे से आई है आरंभी को सभी घर वालों के सामने नीचा गिराने की।
1: मैं आप साबित कर दूंगी कि पुलिस को वीडियो भेजने वाली तुम हो आरंभी, टंडन फैमिली को बदनाम करने वाली तुम हो आरंभी, इतना बड़ा स्कैंडल करने वाली तुम हो आरंभी, जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन इस फैमिली को झेलनी पड़ी है उसकी वजह तुम हो आरंभी।
3: क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये फालतू झूठे इल्जाम लगाना ना बंद कर दो अवंतिका।
1: ओह माय गॉड आरंभी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बातें सुन के तुम अपना सच कबूल कर लोगी।
3: बड़ी बेशरम निकली, तुम अब भी मुझे सबूत मांग रही हो? समझे?
5: ऑफ कोर्स माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरंभी कोई गलती करे और उसे माफ किया जाए ये तो हो ही नहीं सकता।
0: अब जिस कॉन्फिडेंस से अवंतिका आरंभी पर इल्जाम लगा रही है, उसी कॉन्फिडेंस से उसने एक पेन ड्राइव निकाल कर सभी घर वालों को दे दिया और वो पेन ड्राइव देखकर सभी घर वाले हैरान हो रहे हैं, क्योंकि वो पेन ड्राइव किसी और का नहीं बल्कि आरंभी के बेटे विहान का है। ऐसे में पूरे परिवार का शक आरंभी पर चला गया है।
3: कोई कंफ्यूजन नहीं है राज। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। हमारे खिलाफ वीडियो को पेन ड्राइव पर डालकर हमारी मिडिल क्लास मॉम का परस्त बहू आरंभी ने जाकर पुलिस के हवाले कर दिया है ना।
0: अब राज ने तो आरंभी का साथ दिया, लेकिन घर वाले सिर्फ आरंभी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि आरंभी कैसे घर वालों को ये बताएगी कि वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि अवंतिका ने ही शूट किया था, ताकि वो घर वापस आ सके। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: किचन कॉन्वर्सेशंस और उसके साथ साथ फैमिली मोमेंट्स, यही तो होता है घर का बेस्ट पार्ट। और देखिए, आज हमारे शो का बेस्ट पार्ट है ये इलेक्ट्रिक स्टोव, जो दे रहा है हमें एक इजी कुकिंग सोल्यूशन, स्पेशली ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के चलते हुए। लेकिन क्या हो रहा है प्रेजेंटली राघव और रीत की इस कहानी में, चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर, क्योंकि कहानी में फिर आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
0: बच्चे को लेकर रीत और बिंदिया में बहस। प्रतीक के चक्कर में भिड़ गई स्मिता और दिव्या। घर में मचा रिश्तों में बवाल। टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में बिंदिया एक एक कर सभी घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती जा रही है, और रीत उसका तो दिल उसने जीत ही लिया है। तभी तो देखिए कैसे रीत को अपने बच्चे के साथ सोता हुआ देखकर बिंदिया परेशान हो रही है, और तो और बड़े ही प्यार से उसने रीत को झांसे में ले लिया। ऐसे में रीत बच्चे के चारों तरफ तकिया रख कर वहाँ से चली जाती है ताकि बच्चा गिरे ना, लेकिन यहीं से बिंदिया का खेल शुरू होता है, क्योंकि बच्चे को अकेले कमरे में पाकर शालिनी बुआ चलती है चाल। जरा देखिए कैसे सबसे छिपते छिपाते वो सारी तकिया हटा देती है ताकि बच्चा नीचे गिर जाए, और होता भी वही है, लेकिन बच्चा गिरने से बच जाता है क्योंकि राघव आकर उसे बचा लेता है।

0: इसी के साथ बिल्ली और बुआ जी मिलकर ऐसा खेल खेलती हैं जिससे दीप को एहसास हो जाता है कि रियांश उसी का बच्चा है। ऐसे में वो रियांश को गोद में लेकर जाने लगती है और बिंदिया सभी घर वालों के सामने शुरू कर देती है अपना ड्रामा ताकि घर वाले बिंदिया की तरफ हो लें। बिंदिया तो सभी के सामने रीत के पैरों तले गिरकर गिड़गिड़ा रही है और राघव रीत को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रीत की जेठानी भी आकर रीत को समझाती है लेकिन रीत ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे तो बुआ जी और बिंदिया ने मिलकर गुमराह जो कर दिया है। ऐसे में बुआ जी को मिल जाता है मौका सभी के सामने रीत को दिमागी रूप से बीमार साबित करने का।
1: तुम लोग सच में यहाँ हमने फर्क नहीं कर पा रही है, उसे हर तरफ अपना ही बच्चा दिखाई देता है।
2: बस बहुत हो गया खाली, ये मेरा भाग नहीं, ये सच है और यहाँ मेरा ही बेटा है।
0: भाई रीत तो अपनी बात पर अड़ गई है और राघव उसकी ये हालत समझ रहा है और बुआ जी वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रही हैं क्योंकि वो जो करना चाहती थी उन्होंने वो कर दिया है। खैर राघव अभी अपनी रीत को लेकर तो चला गया है लेकिन कहीं न कहीं राघव को भी ऐसा ही लगता है कि रियांश उसी का ही बेटा है। वहीं दूसरी ओर रीत की बहन अस्मिता ने घर में आकर मचा दिया है बवाल और कर दिया है दिव्या पर हमला। जरा देखिए कैसे आते के साथ ही वो दिव्या के साथ भिड़ गई है। अब प्रतीक दोनों को रोकने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन स्मिता और दिव्या दोनों की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन रही है। कभी स्मिता दिव्या पर हमला बोलती है तो कभी दिव्या स्मिता पर। ऐसे में बात हद के पार हो जाती है और दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी बन जाती है। वो तो शुक्र है कि रीत आ जाती है और इनकी लड़ाई में लगाती है ब्रेक। अब दिव्या ने काम ही ऐसा किया है, स्मिता का भड़कना तो लाजमी है। ऐसे में रीत भी दिव्या को उसकी गलती का एहसास दिला रही है लेकिन दिव्या वो मानने को तैयार नहीं है। बस फिर क्या, दिव्या की अकड़ देखकर स्मिता से भी रहा नहीं जा रहा और दोनों बार बार एक दूसरे के बाल नोचना चाहती हैं। वो तो शुक्र है कि तभी राघव आ जाता है और दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। ऐसे में स्मिता ने भी अपने जीजा जी को बता दिया है कि दिव्या ने उसका रिश्ता तोड़वाया है और अब वही रिश्ता उसका जोड़ेगी।
2: कोशिश तो कर, तुझे मैं छोड़ूंगी।
0: स्मिता तो प्रतीक और दिव्या दोनों को ही अल्टीमेटम देकर चली गई। अब देखना होगा क्या उसके अल्टीमेटम पर दिव्या उसका रिश्ता जोड़ पाएगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: स्मार्ट कुकिंग, फैमिली बॉन्डिंग एंड फन मोमेंट्स, यही तो बनाते हैं हमारे दिन को परफेक्ट। वैसे यहाँ है आपके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट का मिक्स, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और पेटिया की एयरलाइन। खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज धैर्य बंदूक लेकर पहुंच गया है मन्नत और विक्रांत की शादी में, ताकि वो विक्रांत का काम तमाम कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मन्नत का राज सभी घरवालों के सामने खुल जाता है और मन्नत अपना रौद्र रूप सभी को दिखा रही है, क्योंकि वो अपने विक्रांत को इनके चंगुल से छुड़ाना जो चाहती है। ऐसे में पीछे से मान्यता उस पर वार करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आ गया धैर्य, और देखिए कैसे धैर्य दे रहा है मन्नत का साथ। हालांकि ये देखकर मन्नत हैरान तो है, लेकिन फिलहाल मन्नत को सिर्फ अपने विक्रांत को ही बचाना है।

0: नहीं बेचारा,
1: जो आपकी प्यारी सी बहन है ना,
2: भगवान को क्या झूठ,
1: ठीक है?
0: वो उससे कुछ नहीं किया।
1: झूठ बोला आपने, झूठ बोला ना आपने, झूठ बोला कि नहीं बोला?
3: बंदूक पीछे रखो, झूठों से
1: झूठ बोला तुमने। एक आदमी की मजबूरी का फायदा उठाया ऐसे लोग तुम लोग, और पिछले एक साल से हम लोग इस बात के लिए तड़प रहे हैं कि हमारा भाई कहाँ है। इस दुख में जी रहे हैं और जी क्या रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं।
4: खैर, बंदूक की नोक पर धैर्य ने मान्यता सम्राज्ञी और अंकित तीनों को रोक लिया है और वहाँ मन्नत अपने विक्रांत को ले जा रही है। ऐसे में मौका पाते ही धैर्य भी वहाँ से निकल गया है। और देखिए कैसे मन्नत और विक्रांत को उसने गाड़ी में बिठाया और वहाँ से ले गया। अब देखना होगा क्या वाकई धैर्य उनकी मदद कर रहा है या अकेले ले जाकर वो विक्रांत का काम तमाम करेगा।

0: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज स्वाति बहुत खुश है क्योंकि आज संजय उसको लेने आया है और वो संजय से मिलने के लिए बाहर जा ही रही होती है, वो भी वृंदा के साथ। तो ये देखकर स्वाति की माँ से रहा ना गया और उन्होंने देखिए कैसे अपना खेल खेला, अपने हाथ में जूस का जग उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके चलते स्वाति डर गई और उल्टे कदम वापस अपनी माँ के पास आ गई परवाह जताने के लिए।
1: आप ठीक हो ना? कहीं लगी तो पैर चेक करो।
2: तू डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, नहीं लगी। संजू आया ना, तू जा, ये हम साफ कर देंगे। अरे वो यहाँ बिल्कुल इसने कोने पे रखा था जब, तो गिर गया नीचे।
1: मैं साफ कर देती हूँ, पता नहीं अम्मू अम्मू अम्मू तुम रही
2: तो बता। अरे अरे कह रही है ना सर, तू साफ कर देती, विल हेल्प आ ना, डोंट वरी आई हेल्प।
1: अब जाओ साफ कर
2: दो।
3: तो स्वाति का दोनों भी एक्चुअली वृंदा और स्वाति दोनों भी ऐसे बहुत पॉजिटिव प्यारे से स्वीट से हैं, तो इसके साथ तो बेचारे के साथ जुर्म होता ही है, सॉरी इसके साथ डेस्टिनी जुर्म, इसके साथ मैं कर रही हूँ, उसके साथ डेस्टिनी कर रही है।
4: बट ठीक है, मुझे आज स्वाति सब सही लग रहा है यार, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट वहाँ मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, यहाँ मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई है, अम्मू मम्मी तो है ही,
1: हाँ
4: माँ तो है ही। मम्मा के साथ वो थोड़ा बैंटर चलता है मेरा, बट ऑल्सो मुझे ये भी पता है कि मुझे बहुत प्यार करती हैं। सो कहीं होता है ना कि मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, बट मुझे पता है कि बहुत प्यार करती है, वैसा वाला है माधवी के साथ।
0: अब स्वाति को क्या पता कि उसकी माँ वृंदा और संजय की शादी के बारे में जानती है, ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रही है कि वृंदा संजय को देख ही ना पाए। और तो और आज उन्होंने अपनी चाल के चलते वृंदा को घर के अंदर ही रोक लिया। बेचारी वृंदा चुपचाप काम कर रही है, सारे कांच को समेट रही है कि वहाँ पर पहुँच जाती है माधवी, दिखाती है उसे अपना टशन और देखिए कैसे रौब दिखाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब जो हो गई है।
5: नहीं एक्चुअली तो जेल से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे भी ज्यादा देखा है मैंने अपने खुद के घर पे, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, मुझे फ़ोन दिया है स्वाति दीदी ने और हम बहुत इन्जॉय करते हैं घर पे। अब मेरे साथ कोई है जो मुझसे बातें करता है, मेरे बारे में पूछता है। और माधवी जी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई बुरी इंसान नहीं है, शी इज़ जस्ट स्ट्रिक्ट, और अभी उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं हुआ है, तो बस वही बात है। कुछ
3: ऊपर भरोसा कैसे होगा, माइक्रोवेव में फॉइल डाल दिया इसने, मेरा माइक्रोवेव नया वाला खराब कर दिया, कैसे भरोसा करूँ इसे? देखो मैं इसको अपने घर की हर एक चीज खराब करके सीखने दे रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं है माधवी।
5: हाँ सही बात, मैं तो बोल रही हूँ सुंदरपुर में माइक्रोवेव होता ही नहीं है, चूल्हा होता है गर्म करने के लिए, सिखाया ही नहीं मेरे को, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई।
0: मैं फिलहाल तो सच से अनजान स्वाति संजय के साथ चली तो गई है, लेकिन जल्द ही उसके सामने ये सच आएगा कि जाने अनजाने वृंदा और संजय की शादी हो चुकी है, तब कहानी में आएगा नया ट्विस्ट।
6: सिंपल कुकिंग जो होती है काफी रॉकिंग, लेकिन देखिए अगर आप अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर्स का, तो ये डेफिनेटली होगा आपकी किचन के लिए और आपके वॉलेट के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारे इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
7: अटेंशन इनमेट, लॉकअप में एंटर कर रहे हैं विजिटर्स।
8: आपको तो ये भी नहीं दे सकता मैं, सॉरी।
9: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं रियलिटी शो लॉकअप की, जिसका जल्द ही फिनाले एपिसोड होने वाला है, और उससे पहले आ गए हैं घर में इन सभी कंटेस्टेंट्स के चहेते। कुछ हैं चहेते तो कुछ हैं दुश्मन, और सभी आकर करेंगे इन सभी कंटेस्टेंट्स की किस्मत का फैसला, यानी कौन जाएगा फिनाले में और कौन नहीं। इसी के साथ लॉकअप में शुरू हो गए हैं झगड़े भी, देख लीजिए इसकी एक एडवांस झलक।
10: आज फाइल होगी अल्टीमेट चार्जशीट, तेरे सामने दो कार्ड्स हैं, एक पे लिखा है सिक्योर और एक पे लिखा है एट रिस्क। कौन सिक्योर होगा कौन एट रिस्क होगा ये तेरे हाथ में है, ये
11: मेरे पास है आपकी जिंदगी और मौत।
12: दिस इज द सेफ कार्ड एंड दिस इज द एट रिस्क कार्ड।
10: Is that your final decision?
9: वैसे इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि आकांक्षा चौधरी घर से एविक्ट हो गई हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में बनाया माधुरी के साथ अपना पॉपुलर रील। तो अब देखना होगा कि लॉकअप सीजन 2 में क्या फेरबदल होती है और कौन बनता है विजेता।
13: अब उठो बिस्तर से।
14: तो आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से।
13: लो लो।
15: कैसे बात करो तुम बच्चे से? बच्चा है, उसे आराम से समझाओ ना।
9: नजर डाल लीजिए उड़ने की आशा के नए प्रोमो पर, जहां पर रोशनी की बातों में आएगी रेणुका। और अब कैसे बदलेंगे रेणुका और साइली के रिश्ते, ये देखना होगा।
15: वो दोनों की बेटी यहाँ लेकर आए हैं, सारी इंपोर्टेंस उसे मिल जाएगी। और मेरा लक्ष्य, उसे कोई पूछेगा भी नहीं काकू। अगर लक्ष्य के साथ भी वही हुआ जो तेजस के साथ होते आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी काकू?

सामने आए हैं ये अनसीन मोमेंट्स, जहां पर आकांक्षा रंजन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। भाई आकांक्षा की शादी तो हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल में ये वीडियो सामने आया है जहां पर आलिया भट्ट और बाकी के सभी लोग कर रहे हैं संगीत की तैयारियां, यानी कि डांस प्रैक्टिस।

0: शहनाज गिल पहुंच गई हैं गोल्डन टेंपल लेने बाबा जी का आशीर्वाद, जहां से उन्होंने शेयर की हैं ये तस्वीरें।
1: तो देखा आपने किस तरह टेक्नोलॉजी आसान बना रही है हमारी डेली लाइफ को। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक स्टोव बन गया है इन हालातों में हम सब का स्मार्ट साथी, जो बचा रहा है पैसे, मेहनत और टाइम। अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप रखें अपना अच्छे से ख्याल और बनाइए इस इलेक्ट्रिक स्टोव को अपना नया साथी। टेक केयर, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
10: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महोत्सव की धूम, फूलों से सजा साई दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर साई के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को चढ़ाए। बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेले में कावड़ियों के स्वागत की तैयारी बनाई जा रही है। 5,000 क्षमता वाले टेंट, 25,00,000 श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी। सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा। ढोल नगाड़े, बैंड बाजे और झांझ मजीरों की धुन पर झूमते दिखे श्रद्धालु। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत पर अद्भुत तस्वीर। बाघ संरक्षण का दिया संदेश।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान और तप का है विशेष महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना माना जाता है अत्यंत शुभ। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

0: गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल में उमड़ा आस्था का सैलाब। रात से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू घाट पर सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में लगाई डुबकी। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार के गंगा घाटों की निखरी रंगत। मठ मंदिर में अपने गुरुओं की पूजा करने पहुंच रहे भक्त। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से ही भक्तों का लगा मेला। संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी। भक्तों ने किया पूजा पाठ। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मुड़िया मेले पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु उमड़े। जमकर लगाए जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह मुस्तैद दिखे जवान। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु दिग्विजयनाथ और वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। दोनों की उतारी आरती। गुरु पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने गुरु का किया पूजन। गुरु की उतारी आरती। राजस्थान के डीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंगला आरती में भी हुए शामिल। राजस्थान के डीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्री वन बिहार जी मंदिर में किए दर्शन। भगवान के लिए आशीर्वाद। थूथुकुड़ी में गुरु पूर्णिमा पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर उमड़ा आस्था का मेला। हजारों भक्तों ने जलाए मिट्टी के दीपक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। साईं बाबा का पुजारियों ने किया विधि विधान से पूजन और अभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। साईं बाबा की उतारी गई विशेष आरती। फूलों से सजाकर निकाली गई साईं बाबा की विशेष पालकी। भक्तों ने गाए भजन कीर्तन। साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर और दरबार की गई भव्य सजावट। विदेश से भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा। भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को अर्पित किए। मुंबई के एक भक्त ने मन्नत पूरी होने के मौके पर सोने का हार किया अर्पित। 47,00,000 आकी गई इसकी कीमत। 2 दिन में 1 किलो 53 ग्राम सोने का चढ़ावा। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर राम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। गुरु पूर्णिमा पर राम मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। अकोल में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र, दत्त मंदिर और विभिन्न गुरु पीठों में भक्तों की लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर पतंजलि योगपीठ में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने शिष्य को दिया गुरु कृपा का आशीर्वाद। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकार ने उकेरी अनोखी कलाकृति। पीपल के पत्तों पर बनाया महर्षि वेदव्यास की तस्वीर। महर्षि वेदव्यास के साथ उनके चारों शिष्यों को अलग अलग पत्तों पर भी उकेरा। गुरु शिष्य परंपरा, वेदों के प्रसार और भारतीय ज्ञान संस्कृति के अमूल्य वारसा का दिया संदेश। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में संतों ने की महंत संजय दास की पूजा, गुरु के लिए आशीर्वाद। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर महंत नित्य गोपाल दास का हुआ पूजन, गुरु के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन की रस्में। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत पर निभाई गई नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में। 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक दर्शन, 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे भक्त। आस्था उमंग के साथ अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहा यात्रियों का जत्था। कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर धूम, करेंसी नोटों से तैयार की गई कावड़। कावड़ बनाने में 10, 20, 50, 100 के नोटों का किया गया इस्तेमाल, देखने के लिए लग रही भीड़। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, लगाए गए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर ब्रजघाट पहुंचे मेरठ के कमिश्नर, घाट का लिया जायजा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देख

0: टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
2: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रीडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साईं दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को चढ़ाए। बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेले में कावड़ियों के स्वागत की तैयारी, बनाया जा रहा 5,000 क्षमता वाला टेंट, 25,00,000 श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद। गुरु पूर्णिमा के मौके पे मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़े बैंड बाजे और झांझ मजीरों की धुन पर झूमते दिखे श्रद्धालु। आईसीसी ने जारी की बल्लेबाजी की रैंकिंग, वनडे में शुभमन गिल फिर से नंबर 1 बल्लेबाज, टी20 में ईशान किशन सबसे आगे, 230 स्थान की छलांग के बाद 48वें नंबर पे पहुंचे वैभव सूर्यवंशी।

0: आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत पर अद्भुत तस्वीर, बाघ संरक्षण का दिया संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं जिसने सावन में कावड़ उठाकर शिव का जलाभिषेक किया उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और बोल बम के जयकारों के साथ ही कावड़िया निकल पड़ते हैं बाबा के श्रृंगार के लिए। आज हम आपको बताएंगे कावड़ यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक बातें अभी आपको बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस यात्रा को लेकर क्या कहते हैं धर्मग्रंथ और पुराण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की।

0: कांवड़ यात्रा जो एक तपस्या है, भोले की भक्ति में डूब जाने की साधना है, यह नीलकंठ महादेव की हलाहल रूपी ज्वाला को शांत करने की परंपरा है जिसका सोपान सदियों से होता आ रहा है। कांवड़िए जो महादेव की समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, जिसमें नियम संयम के साथ ही अनुशासन भी सर्वोपरि होता है, माना जाता है कि भोले का ये जलाभिषेक मन वचन और कर्म को भी शुद्ध करता है। ये महादेव का ही प्रताप है जिससे भक्तों को अद्भुत शक्ति मिलती है, तभी तो कांधे पर कांवड़ उठाकर मीलों मील से पैदल चले आते हैं भोले के ये भक्त। राह में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आती हो, लेकिन इन भक्तों के हौसले को कभी भी डिगा नहीं पाती हैं। तभी तो कांवड़िए पवित्र नदियों से जल भरकर सावन की शिवरात्रि को महादेव का जलाभिषेक कर खुद को धन्य समझते हैं और अपने प्रभु को कालकूट से मुक्ति का जतन करते हैं।
1: भगवान शिव से अपने मन की प्रार्थना करते हैं। देखिए, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं वो क्षण भर में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा का अर्थ है अपने मन की कामना पूर्णता करवाना, पूर्णता करना और भगवान के शिव तत्व को प्राप्त कर लेना।
0: कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि मन में उमंग है अपने आराध्य के दर्शन की, दिल में कामना है शिवलिंग के जलाभिषेक की। सावन के आते ही शिव मंदिरों में बम भोले का जयघोष गूंजने लगता है। सावन का आरंभ भी होने जा रहा है। शिव को समर्पित ये माह मनोकामना पूर्ति के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए महादेव के भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर उनका अभिषेक करते हैं और महादेव भी प्रसन्न होकर भक्तों को कामना पूर्ति का वरदान देते हैं।
1: और ऐसा माना जाता है इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन होने के पश्चात जब हलाहल विष निकला तो भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। इस मास में ही भगवान शिव को नीलकंठ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जल उठा के जो आज श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान शिव को उस हलाहल विष के होने के कारण से मन में जो पीड़ा होती है वो जल अर्पण करने से उनको शीतलता मिलती है और उस शीतलता के फल स्वरूप भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपके मनोकामना, आपकी आरोग्यता, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।
0: लेकिन क्यों उठाई जाती है कांवड़? क्या है कांवड़ का महत्व? कांवड़ उठाने में किन नियमों का रखना है ध्यान? ये सब आज हम आपको बताने पा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कांवड़ उठाने से किन समस्याओं का अंत होता है, लेकिन पहले आपको कांवड़ का महत्व बताते हैं। कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा होती है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव ने हलाहल पिया था। कालकूट विष की ज्वाला को शांत करने के लिए भक्त भगवान को जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से तमाम बाधाएं दूर होती हैं। कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता ये भी है कि कांवड़ से भगवान शिव को नियमानुसार जल अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। कांवड़ यात्रा का आरंभ कब से हुआ, इस पर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कांवड़ यात्रा को लेकर कथाओं में कई प्रसंग मिलते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा त्रेता युग में आरंभ हुई। कोई इसे श्रवण कुमार से जोड़ता है तो कोई भगवान परशुराम से। आनंद रामायण में भगवान राम की कांवड़ यात्रा करने की कथा मिलती है, तो कहीं कहीं रावण को भी सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री बताया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस मान्यता पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ भगवान परशुराम ने उठाई थी। भगवान परशुराम ने शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शिव उनके गुरु भी हैं, तब उनको जल अर्पण किया था। उसी की है ना मार्ग पे चलते हुए भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए जलाभिषेक करते हैं।
0: मान्यता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गए थे और फिर वहां से लौटते वक्त अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए। इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। तो वहीं कुछ भक्त भगवान परशुराम से इस कथा का आरंभ मानते हैं। कहते हैं भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया था और उसके बाद कांवड़ की शुरुआत हुई थी। तो कुछ भक्त मानते हैं कि रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था बल्कि वो सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री भी था। मान्यता है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने कांवड़िया बनकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। कांवड़ यात्रा को कामना पूर्ति के वरदान के तौर पर माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पावन महीने में कांवड़ उठाने वाले भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कांवड़ उठाने के कुछ नियम भी हैं। आगे हम आपको कांवड़ उठाने के नियम और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिसे हर इंसान करना चाहता है। देखिए, माना जाता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नियमों का पालन करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर आप कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं तो घर पर ही शिव को मनाने का जतन कैसे करें, चलिए जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा का शास्त्रीय विधान।

0: सावन में शिव फलदाई है शिव की भक्ति। कांवड़ यात्रा से मिलती है कष्टों से मुक्ति। यह आस्था है जो शिव के साधकों की परीक्षा लेती है। परंपरा है कि कांवड़ यात्रा सावन से शुरू होकर सावन की शिवरात्रि तक चलती है। कांवड़ के पवित्र जल से शिव के भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का वरदान पाते हैं। युगो युगो से भगवान शिव के भक्त सावन में कांवड़ उठाकर शिव का जलाभिषेक करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कांवड़ उठाने वाले की हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं देवाधिदेव महादेव। चलिए आपको बताते हैं कि कब से हो रहा है कांवड़ यात्रा का शुभारंभ। पंचांग कहता है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई को रात 8:05 से लेकर 30 जुलाई को रात 9:30 तक है। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए कांवड़ यात्रा का शुभारंभ 30 जुलाई से होगा। सावन कृष्ण प्रतिपदा से कांवड़ यात्रा का आरंभ होता है। ये यात्रा सावन कृष्ण चतुर्दशी यानी सावन की शिवरात्रि तक चलती है। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को है। वहीं देवघर में जो कांवड़ यात्रा होती है वो सावन के शुक्ल पूर्णिमा तक चलती है। सावन माह की पूर्णिमा 28 अगस्त को है। माना जाता है कि सावन माह में जलाभिषेक के लिए सभी दिन शुभ हैं, क्योंकि हर दिन महादेव का है। लेकिन जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं वे चाहते हैं कि वे जलाभिषेक सावन के सोमवार को करें। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन खास तिथियों पर भोले का जलाभिषेक करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दस अगस्त को सावन के सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का शुभ संयोग है। ये दिन जलाभिषेक के लिए बहुत उत्तम है। 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है। 17 अगस्त को सावन के सोमवार के साथ साथ नाग पंचमी का संयोग भी है। 28 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है। उस दिन श्रावण मास का अंतिम दिन है। माना जाता है कि कांवड़ उठाने वालों पर अपने विशेष कृपा लुटाते हैं देवाधिदेव महादेव। इसलिए सावन में शिव के भक्त कांवड़ में जल भरकर शिव को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का वरदान पाते हैं। लेकिन कांवड़ उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, तो गौर से देखिए।
1: कांवड़ उठाने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने आप, एक तपस्या है ये, तो तपस्वी के समान रहना होता है। किसी के हाथ का भोजन नहीं करना होता, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना। वस्त्र भी ऐसे धारण करते रहते हैं जिन्हें हम श्रावण में भगवान शिव के गणक मानते हैं। भगवे वस्त्र धारण करते हैं या काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, और भगवान का हर की पैड़ी आदि से ब्राह्मण से पूजन करा के संकल्प पूर्वक जल लेकर चलते हैं और उस जल को अपने इच्छित शिवालय में अर्पण करते हैं। उसके पश्चात ही वो अपने घर जाके मंगल तिलक आदि करा के घर का व्रत पूर्ण करते हैं। गुलर के पेड़ के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। सोने के समय पर ऐसी जगह पर सोना चाहिए जो स्वच्छ हो और भगवान शिव को जैसे शिवालय, किसी प्रकार के व्यसन आदि से बचना चाहिए।
0: किसी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। कांवड़ के जल को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान शिव मंत्र का जाप करते रहें। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति के घर में भी सात्विक भोजन बनना चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ उठाना चाहिए। मान्यता है कि इससे ऊर्जा स्तर संतुलित रहता है। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है। वैसे तो महादेव के दर पर साल भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ज्योतिर्लिंगों में तो पांव रखने तक की जगह नहीं होती। शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की आस्था सिरमौर होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो लोग कांवड़ उठाकर यात्रा करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कैसे घर बैठे पा सकते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद? हम आपको बताते हैं कि किन उपायों से घर पर ही आपको मिलेगा कांवड़ यात्रा का लाभ। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि लोटे में जल भरकर या गंगा जल भरकर शिव मंदिर की 27 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वही जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि आप नंगे पैर रहें और पीले या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। लोटे में थोड़ा सा बचा हुआ जल रखें और घर के हर कोने में छिड़क दें। अगर ये प्रक्रिया सोमवार को करें तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा।
1: कोई व्यक्ति यदि कांवड़ यात्रा पे नहीं आना चाहता या नहीं आ सकता, हर एक के लिए आवश्यक भी नहीं होती कि ये दौड़ दौड़े ही, लेकिन मनों की इच्छा पूर्ण करना चाहता है तो भगवान शिव को जल का एक लोटा, गंगा जल सनातन धर्मियों के घर में अवश्य होता ही है, न हो तो गंगा आदि का ध्यान करके पवित्र स्वच्छ जल को घर के पार्थिव शिवलिंग पे आप अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो घर के पास मौजूद किसी भी शिवलिंग पर गंगा आदि का ध्यान करते हुए, हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड का ध्यान करते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र है, फिर भगवान शिव के मंत्रों के स्वार्थ में जलाभिषेक करते तो वही फल प्राप्त होता है।
0: आपकी मनोकामना कोई भी हो, शिव की उपासना और आराधना में इतनी शक्ति है कि आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो इस सावन में कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना का पावन जल और मांग लीजिए मन चाहा वरदान।
2: कहते हैं कि कांवड़ यात्रा साधक के आत्मबल की भी परीक्षा लेते हैं, साथ ही तन और मन में एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करवाती है। इस यात्रा को लेकर कई तरह की सावधानियों का भी खास ध्यान रखा जाता है, जिसको ध्यान में रखना भक्ति के साथ साथ कांवड़ यात्रा जैसे कठोर तप के लिए बेहद जरूरी है।

0: रावण यात्रा करता है
1: तो कोई आस्था का यह सफर वाहन पर सवार होकर करता है, लेकिन भाव तो भक्ति का होता है, शिव साधना का होता है। सावन के आरंभ से लेकर सावन की शिवरात्रि तक शिव भक्तों की भक्ति अपने चरम पर होती है।
2: कांवड़ यात्रा दो प्रकार से आजकल हम देखते हैं, एक तो जो श्रद्धा भाव से कंधे पर जल लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और एक हम देख रहे हैं कि जो डाक कांवड़ चलती है उसमें भी दौड़ते ही लोग चलते हैं, धावक होके जल ही लेकर चलते हैं। विधान यह है कि घर से माता पिता की आज्ञा लेकर और अपने जिस शिवालय में जलाभिषेक करना है उसके दर्शन करके उनकी आज्ञा लेके व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड आदि, ये कई लोग गौमुख से भी जल लाते हैं, ये जल उठाकर उस शिव जला शिवालय में जलाभिषेक किया जाता है।
1: बाबा के जलाभिषेक की तमन्ना लिए लाखों शिव भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हुए मंदिरों और शिवालयों में उमड़ पड़ते हैं। कहते हैं सावन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो शिव भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कांवड़ से लाए गए गंगा जल से करता है उसके भाग्य फल में शुभता का प्रवेश हो जाता है, जीवन में सब मंगल होने लगता है। बदलते वक्त के साथ साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बहुत बदल चुका है। आज के दौर में 5 तरह की कांवड़ देखने को मिलती है।
2: कांवड़ मुख्यतया 2-3 प्रकार की गिनते, एक तो चल कांवड़ है जिसे आजकल डाक कांवड़ कहने लगे हैं, उसमें वाहनों से आते हैं और जल वाहनों से ही लेके जाते हैं। इसका एक और रूप है कि वाहन तो आते हैं साथ साथ चलते हैं, लेकिन जल जो लेके चलते हैं वो दौड़ते हुए चलते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाले उस शिवालय में जल चढ़ाते हैं। दूसरा एक जो कांवड़ का स्वरूप हम देखते हैं कि शिव के जल अभिषेक करने के लिए कंधे पर पैदल करते हैं, पैदल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। ऐसे लोगों का श्रद्धावानों की मनोकामना अक्सर और जल्दी ही पूर्ण होती है।
1: बैठी कांवड़, बैठी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया कांवड़ को जमीन पर रख सकता है। डाक कांवड़, डाक कांवड़ियों को कांवड़ के साथ दौड़ना पड़ता है, वे रुक नहीं सकते। खड़ी कांवड़, खड़ा कांवड़िया न तो कांवड़ को लटका सकते हैं और न ही उसे फर्श पर रख सकते हैं। जब वो आराम कर रहे हों तो उसे किसी और को इसे पकड़ने के लिए कहना पड़ता है। झूला कांवड़, झूला कांवड़िया अपने कांवड़ को लटका सकते हैं लेकिन उसे जमीन पर नहीं रख सकते। श्रृंगार कांवड़, भगवान शिव की विभिन्न झांकियां निकालकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इस यात्रा के दौरान भगवान शिव का श्रृंगार भी होता है।

0: कांवड़ यात्रा महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का एक अमोघ उपाय है, लेकिन कांवड़ उठाने से पहले इसकी सावधानियों को जान लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी कांवड़ उठाने वाले हैं तो गौर से देख लीजिए। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। इस दौरान तामसी भोजन यानी मांस मदिरा आदि का सेवन न करें। बिना स्नान किए अपनी कांवड़ को हाथ न लगाएं। चमड़े से बनी वस्तु का स्पर्श भी कांवड़ यात्रियों के लिए वर्जित है। कांवड़ यात्रा में बोल बम का उच्चारण करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। तो आप भी आस्था और विधान के साथ कांवड़ की परंपराओं का पालन करें। माना जाता है कि नियमों का पालन करने से मन में संकल्प शक्ति का जन्म होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है। तो आप भी शिव की भक्ति के लिए तैयार हो जाइए और पा लीजिए देवाधिदेव महादेव से वरदान, जिससे आने वाला सावन आपके लिए वाकई मन भावन हो जाए।
1: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में युवा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में जेएनटे के 3 होनहार पत्रकारों को 40 अंडर 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया।
9: जीएनटी परिवार के लिए ये गर्व का पल है। ये वो लम्हा है जब देश भर के 40 होनहार युवा पत्रकारों में आपके गुड न्यूज टुडे के 3 होनहार पत्रकारों को इस सम्मान के लिए चुना गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए भव्य समारोह में जीएनटी की पत्रकार गीतिका पंत, मनीषा लड्डा और रानू राठौड़ को 40 अंडर 40 अवार्ड से नवाजा गया। एक्सचेंज फॉर मीडिया की ओर से आयोजित इस खास समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा ने अपने हाथों से जीएनटी के इन 3 पत्रकारों को सम्मानित किया।
10: मैं डेडिकेट करना चाहूंगी सबसे पहले तो अपने माता पिता और अपने परिवार को जिन्होंने पंख दिए, उसके बाद मेरे मेंटर्स सुप्रिया प्रसाद और श्वेता सिंह जिन्होंने उड़ना सिखाया, और अंत में केपी मैम और इंडिया टुडे ग्रुप जिन्होंने आसमान लिया।
9: चाहे ग्राउंड पर उतरकर बेबाक और सटीक रिपोर्टिंग हो या फिर स्टूडियो में बैठकर सौम्य और प्रभावी एंकरिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाना, जीएनटी के युवा पत्रकारों ने इसे बखूबी अंजाम दिया है।
10: मुझे 11 साल इस जगह पर हो गए हैं, 2 साल से भी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी कि मेरे लिए मेरा पहला अवार्ड है।
11: हर खबर जहाँ नई उम्मीद जगाती है, हर मुस्कान एक कहानी सुनाती है। गुड न्यूज टुडे क्यों गुड न्यूज टुडे है, क्योंकि यहाँ हर खबर अच्छी और सच्ची होती है।
9: उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और डॉक्टर अनुराग बत्रा ने सभी युवा विजेताओं को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: वायरल वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में नजर आता है, तभी उसकी नजर लाल रंग की ड्रेस पहनी एक महिला पर पड़ती है। मजेदार बात यह कि उस महिला ने बिल्कुल वैसी ही लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है जैसी बच्चे की माँ ने पहनी है। बस फिर क्या था, नन्हा मासूम बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को ही अपनी माँ समझ बैठता है और उसके साथ चलने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद असली माँ सामने आ जाती है। अब बच्चे के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है, वो कभी एक महिला की तरफ देखता है तो कभी अपनी माँ की ओर। आखिरकार नन्हा अपनी असली माँ का हाथ मजबूती से थाम लेता है और उनके साथ वहाँ से चल देता है। बच्चे की ये मासूम गलती, उसके चेहरे पर उभरते प्यार एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नन्हे फैन की खिलखिलाहट सबके चेहरे पर मुस्कान ला रही है। एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से टीवी पर मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी देखता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कार्टून में मजेदार शरारतें और फनी सीन सामने आते हैं, वैसे वैसे बच्चे की हंसी भी और मजेदार होती जाती है। कभी वो ठहाके लगाकर हंसता है तो कभी हंसते हंसते खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। उसकी मासूम खिलखिलाहट कमरे का माहौल ही बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कार्टून से ज्यादा मजेदार बच्चे का हंसने का अंदाज हो। बच्चे की बेफिक्री और चेहरे पर छलकती खुशी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। इस वायरल वीडियो में एक माँ हाथ में चप्पल लिए अपनी नन्ही बच्ची के पीछे दौड़ती नजर आती है। लगता है कि बच्ची ने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसके बाद माँ उसे सबक सिखाने के मूड में है। उधर पापा आराम से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े रखते हुए नजर आ रहे हैं, तभी उनकी नजर घबराकर भागती बच्ची पर पड़ती है और वो फौरन एक मजेदार तरकीब निकाल लेते हैं। पापा झट से बच्ची को उसी बड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर छिपा देते हैं। माँ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन बच्ची दिखती नहीं। कुछ पल के लिए उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर नन्ही शैतान कहाँ गायब हो गई। इधर बैग के अंदर छिपी बच्ची सुरक्षित रहती है और पापा के इस रेस्क्यू मिशन की वजह से चप्पल की मार से वो बच जाती है। माँ का गुस्सा, पापा की फुर्ती और बच्ची की मासूम शरारत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: सूर्यवंशी की आईसीसी रैंकिंग में धमाकेदार एंट्री, टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, देश विदेश से बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु, सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। देशभर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला, माता रानी के दर्शन के साथ महोत्सव में हो रहे शामिल। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महा उत्सव की धूम, फूलों से सजा साईं दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। नेशनल टाइगर डे, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रेत पर अद्भुत तस्वीर, बाघ संरक्षण का संदेश दिया।

0: नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। गुरु की करुणा, शिव का साथ लेकर आ गया है सावन का पावन मास। शुरुआत हालांकि कल से हो रही, लेकिन आज है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, जिसको लेकर चर्चा करेंगे। सावन को लेकर भी आपको क्या क्या मान्यताएं इससे जुड़ी हैं, कैसे आप प्रभु की कृपा पा सकते हैं, शिव कृपा पाने का ये विशेष महीना होता है, ये सब आके आपको बताएंगे। तो गुरु शिव समान है जो ब्रह्म और स्वयं का ज्ञान कराते हैं। आज उन्हीं की कृपा पाने का दिन है, और आज शिव से बड़ा गुरु भला कौन है जो भवसागर को पार कराते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा की शुभ घड़ी में हम ज्योतिष और धर्म आध्यात्म के जानकारों से जानेंगे इस सावन गुरु के ज्ञान से और शिव के ध्यान से कैसे बनेंगे बिगड़े काम, कैसे गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा पाए, और किस उपाय से सावन के पावन महीने में शिव का आशीष मिलेगा। इस बार सावन के चार सोमवार पड़ रहे हैं और पांच शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कल पहले सावन के दिन जलाभिषेक होगा, क्योंकि शुरुआत कल से हो रही है। हालांकि पहले सोमवार को तमाम भक्त पहुंचेंगे शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए, तो तमाम मुहूर्त भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कल से सावन की क्योंकि शुरुआत हो रही, तो इस दिन आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। रुद्राभिषेक के लिए इस सावन में कौन कौन से दिन अति उत्तम है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सावन से जुड़े तमाम पहलुओं पर आगे बात होगी। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और पंडित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सावन शुरू हो रहा है, और इससे पहले आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। सुबह से ही हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, नासिक, अकोला, पालघर, शिरडी, तमाम जगहों पर गुरु पूर्णिमा उत्सव की तस्वीरें आ रही हैं। पवित्र गंगा घाटों पर लोगों ने स्नान ध्यान किया और फिर गुरु का पूजन किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी गुरु पूर्णिमा की भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला और पालघर से भी आस्था भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं शिरडी में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया है, और इस दौरान भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है।
1: दरबार पर मैं हम हर साल में दो बार जरूर आते हैं। बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है, और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: जो कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को, सब कुछ मैंने पाया यहाँ पे। बाबा के सिवा मेरा कोई है नहीं। माई बाप जो भी मैं खड़ा हूँ सिर्फ बाबा की वजह से खड़ा हूँ।
3: पैदा हुए हैं, 35 साल से हम लोग आ रहे हैं, और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
4: बाबा ही हमारे गुरु है, गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामना पूरे करते हैं। ऐसा है बाबा का, हम उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते। बाबा के बहुत हमें दृष्टांत हो गए हैं, ये शिरडी में आके हैं हम पावन हो जाते हैं।
0: तो गुरु पूर्णिमा पर एक नहीं बल्कि महासंयोग बहुत सारे बन रहे हैं। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। कल मंगलवार शाम 6:18 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि तिथि आज रात 8:05 पर रहेगी, समाप्त हो रही है 8:05 पर, और इसी तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा पर बुधादित्य, शश और हंस योग भी बन रहा है। ग्रहों की स्थिति 56 साल बाद एक साथ आई है, और आज के दिन गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करने की परंपरा है। आज से ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, और कल से सावन का पावन महीना शुरू होगा। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन, और यह सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा, और इस बार कुल चार सोमवार इस दौरान पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को, और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। और इसके लिए दिल्ली, हरिद्वार, काशी समेत देश के तमाम हिस्सों में मेले भी लग रहे हैं, सावन के मेले, जहां पर लोग पहुंचते हैं। शिवधाम सज चुके हैं, भक्तों का मेला लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के अद्भुत रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। शिव भक्त हर जगह महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
5: आज से 10-12 साल पहले कांवड़ लेने आए थे, और जब से लेके जा रहे हैं भोले बाबा की फुल कृपा जी, जो हमने मांगा उनसे ज्यादा ही भोलेनाथ ने दिया है और कभी भी आज तक कष्ट नहीं हुआ, उनकी फुल कृपा है भोलेनाथ जी। बोल शंकर भगवान की जय।
6: जयकारो वीर बजरंगे।
5: पैदल ही लेके जाएंगे, साइकिल पे भी लेके गए हैं।
7: घर में सुख शांति रहे, घर परिवार सही रहे, माँ बाप अच्छे रहे, बहन भाई सही रहे।
8: 200 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे परेशानी नहीं?
7: नहीं कोई परेशानी नहीं, सब बोले की कृपया बोला ले जाता है, बस हम इसमें ही राजी हैं।
9: कामना कुछ नहीं है, गौ माता राष्ट्र माता के लिए जल उठता है और हमारी बहन है बागपत से, यह 71 लीटर जल लेकर जाएंगे बागपत।
10: हाँ जी बोला, एक कंधे भी लेके जा रहे हैं।
8: बोले को आपने चश्मा पहना रखा है क्या है वजह?
10: पूरे रात को लाइट लूट लगी जाती है ना, इसलिए चश्मा पहना रखा है बोले।
0: तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी के साथ कहें तो गलत नहीं होगा कि अभी तो रौनक शुरू हुई है, आगे आगे आपको दिखेगा कांवड़ियों का मेला जो आपको गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाएंगे। बहरहाल खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ हैं, वान्यार्या जी हैं, साथ ही साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित प्रकाश आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, देखिए इस वक्त हम लोग उसी तिथि पर भी चल रहे हैं, 8:05 तक पूर्णिमा तिथि है, क्या कुछ किया जा सकता है? हालांकि अभी देखिए 4:15 का वक्त हो चुका है, अभी तक अगर गुरु को नमन, गुरु को प्रणाम नहीं किया है, कोई उपाय नहीं किए हैं, पूजा पाठ नहीं किया है, तो क्या बताएंगे कितना अहम ये दिन है आज का और अभी क्या किया जा सकता है?
11: देखिए बहुत अहम दिन है और कहा जाता है गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एक मार्गदर्शन होता है, गुरु हमारी जो मन की आंखें खोलने वाला एक व्यक्ति होता है, एक मार्गदर्शक होता है जिसको आप मान लीजिए। तो गुरु की तो महिमा अपरंपार है, इसलिए उनको देव तुल्य, भगवान ईश्वर तुल्य, पितृ तुल्य ही माना जाता है। जहां पर हमारे देवी देवताओं का पूजन होता है, भजन होता है, वहीं पर सनातन के अंदर हमारे हिंदू धर्म की पद्धति के अंदर गुरु को भी उन भगवान तुल्य ही माना जाता है। यदि मान लीजिए कि अगर अभी भी आप छूट गए हैं और आपके गुरु अगर नहीं मिल पाए हैं या किसी प्रकार से आप लेट हो गए हैं, तो अभी भी आप रात तक यानी 8 बजे तक आप क्या कर सकते हैं कि गुरु के घर में जाएं, ठीक है ना, और पीला वस्त्र उनको भेंट दिया जाता है और पीले पुष्प होते हैं, तो पीले पुष्प ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श किए जाते हैं। सबसे पहले आपको गुरु का क्या करना है कि आज के दिन आपको चरण धोना है, चरण धोने के बाद गुरु के चरण स्पर्श कीजिएगा, उनको तिलक कीजिएगा, उसके बाद उनके चरणों पे कोई भी ओम गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु देवता भ्यो नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरह से गुरु का जो भी आपको ध्यान आता हो, श्लोक आता हो, वो बोलते हुए गुरु के जो मस्तक और पैरों पे यानी उनके सर पे और पैरों पे पुष्प की बोछार कीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पीला कपड़ा आज के दिन दिया जाता है, पीली मिठाई गुरु को आप भेंट कर दीजिएगा, अभी टाइम है और गुरु से आज जरूर लीजिएगा आज, क्योंकि गुरु की कृपा अगर हो गई तो प्रभु की कृपा हो गई, इसलिए आज का दिन आशीर्वाद वाला भी दिन है, तो गुरु का आशीर्वाद अगर आप ले लेंगे आपके जीवन में जो भी कष्ट है, और खासकर क्या होता है ना, जीवन के अंदर गुरु और ज्योतिष के अंदर गुरु यानी बृहस्पति दोनों ही शुभ माने जाते हैं, तो इसी प्रकार से आज अगर हम ग्रह नक्षत्र में भी देखें तो बृहस्पति और सूर्य की युति है वैसे भी, और कर्क राशि उच्च राशि में बृहस्पति विराजमान है, यहीं पर सूर्य विराजमान है और दोनों नवम भाव के अंदर आ गए हैं, तो भाग्य में वृद्धि भी हो जाएगी, तो गुरु से जरूर मिलना है, याद रखिएगा।
0: बिल्कुल गुरु से मिलना है, जो भी आपके टीचर हो, अगर नहीं मिले हैं सबसे अच्छी बात है कि उनको कॉल करके उनको विश भी किया जा सकता है। वाना जी आपके पास आऊंगी, 56 साल बाद कहा जा रहा है कि विशेष और महायोग बन रहे हैं, कौन कौन सी युतियां आज बन रही हैं?
12: जी सबसे पहले जेएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खास जो है ग्रहों के संयोग बन रहे हैं, वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च अवस्था में है और आज शश योग भी बन रहा है और साथ में जो है बुध आदित्य योग हंस योग ये सारे योग जो आज खास बन रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है और और आज के दिन आप अपने गुरु से जरूर मिलिए, आज के दिन आप अपने गुरु से आपके लिए गाइडेंस जरूर लें, गुरु को आशीर्वाद जो है आज जरूर लें, गुरु के लिए पीली मिठाई जो है वो आज आप जरूर लेके जाएं, गुरु को कुछ भी पीला दान जो है वो अगर आज आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। गुरु के लिए पीले वस्त्र जो है वो आप जरूर आप गुरु को दान करें, गुरु को पीले फूल जो है वो दान कर सकते हैं, आप कुछ दक्षिणा जो है वो दान कर सकते हैं। याद रखें गुरु का आशीर्वाद लेना आज जो है ना भूलें बिल्कुल भी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमा का जो है आप जाप कर सकते हैं, ओम गुरवे नमा का जाप कर सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आज जितना हो सकता है जाप करें। याद रखें अगर आपको अपनी लाइफ में अपने जुपिटर को स्ट्रांग करना है, अपने गुरु को स्ट्रांग करना है, तो आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ को भी जो है अपना गुरु मान सकते हैं। एक सही गुरु वही होता है जो हमें लाइफ में मार्गदर्शन दिखाता है, हमें लाइफ में लाइट दिखाता है, हमें लाइफ में ऑथेंटिक रहना सिखाता है और हमें लाइफ में ये भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी चीजों को अपनी लाइफ में अपने पाथ में इंटेग्रिटी के साथ जो है फॉलो कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ जितना हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन थोड़ी देर बैठ के अपने गुरु का ध्यान जो है जरूर करें और गुरु से पूछें कि हमें अपनी लाइफ में मार्गदर्शन जो है वो आप जरूर दें, कैसे हम अपनी लाइफ को एक प्रॉब्लम फ्री बना के एक हैप्पीनेस की तरफ जो है अपनी लाइफ में लेके जा सकते हैं। आज बहुत ज्यादा शुभ संयोग है। अगर अभी भी आप नहीं गए हैं तो अगर आपके गुरु आपसे दूर भी हैं तो भी आप वीडियो कॉल करके जो है अपने गुरु से बात कर सकते हैं, अपने गुरु को आशीर्वाद जो है आप जरूर ले सकते हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, कल से जो है सावन भी शुरू हो रहा है और कल भी आप देखिए जैसे कल 30th डेट है और डे भी जो है कल थर्सडे है, कल गुरु का ही दिन है। अगर आपके लाइफ में आपके कुंडली में कुछ भी आपको लगता है कि जुपिटर जो है किसी भी मेलिफिक स्टेट में है, गुरु नीच है या फिर गुरु की राहु के साथ युति है, तो उस केस में आपको अपने गुरु को हमेशा जो है पावरफुल रखना पड़ेगा और स्ट्रांग भी रखना पड़ेगा। और आज के दिन आप अपना गुरु मंत्र जो है वो आप जरूर कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी गुरु मंत्र है तो रोज आप जो चैंटिंग करते हैं उसकी जो आप ज्यादा से ज्यादा आज अगर जितनी मालाएं कर सकते हैं वो आप जरूर करें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ पर जो है सिंपल जो है वहां पर जाके भी कोई मिठाई फल और जो है बेलपत्र अगर आप चढ़ा के आते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा और गुरु की ब्लेसिंग्स आपको आपके जीवन में और आपकी लाइफ जरूर मिलेंगे।
0: छोटे छोटे उपाय श्रुति करबंदा जी आपके पास आना चाहूंगी। गुरु बहुत अहम है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और पंडित प्रकाश ने बड़े अच्छे से बताया कि एक गुरु वो जो कि हम सांसारिक जीवन की बात करते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। और कल इसको लेकर हालांकि चर्चा भी हो रही थी, एक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही थी कि गुरु केवल एक नहीं हो सकता, आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं चाहे आपसे छोटे हैं बड़े हैं, इनफैक्ट आपके अगर दुश्मन भी हैं वो भी अगर आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए गुरु ही हो सकते हैं। समय को सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है तो ये हम कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारी जेंजी के लिए एक मैसेज दीजिए, दूसरे वो गुरु जो कि हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है। तो जेंजी के लिए गुरु की परिभाषा और आज वो किस तरीके से उसको प्रसन्न कर सकते हैं और कितना जरूरी है गुरु को प्रसन्न करना ये भी बताइएगा।
13: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी और जीएनटी के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए गुरु पूर्णिमा को समझने की इस तरह जरूरत है कि आप देखिए श्लोक एक है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है। तो उनको जब ब्रह्मा विष्णु महेश का कहा गया है, गुरु वो जो आपको ईश्वर के समीप ले जाए। ब्रह्म जो क्रिएटर है वो क्रिएट भी करना जानता है, वो आपका पालनहार है, वो संहार करता है जिन चीजों को लाइफ में जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ऐसी गाइडेंस जो होती है ना, जो आपको डिप्रेशन से भी बाहर लेकर आता है, जो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं, वो आपके दोस्तों के रूप में भी आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए ईश्वर के समीप जो ले जाए वो गुरु है। ईश्वर के समीप यानी कि जो नेचर के लॉज हैं, जो आपको जिंदगी को देखने का एक नजरिया देते हैं, तो आपको चित्त आपका स्थिर होता है, आप काम रह के भी जो है बहुत फोकस्ड रहते हैं। इस तरह की चीजें जो है ये हमें सिखाई जाती हैं। और देखें ज्योतिष का मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी जो जेंजी है वो हर चीज को बहुत साइंटिफिक तरीके से जानना चाहती है। उनको आजकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का और हवाओं में और सितारों का जो है वो देखने जानने का बहुत शौक होता है, बहुत दिलचस्पी रहती है। तो सूर्य देखें आषाढ़ मास की जो है पूर्णिमा ये कही जाती है गुरु पूर्णिमा को। तो सूर्य की जो दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं धनु राशि पे होती है, जो हायर फिलोसफिक जो आपका इंसाइट्स होते हैं, जो जिंदगी का दर्शन होता है, जो आपको सहजता देता है, जो आपके चित्त में शांति भरता है, इस तरह की वो राशि होती है, जो लीडरशिप की भी राशि है। फिर उसको अग्नि तत्व से भी जोड़कर देखा जाता है, पिता का जो सपोर्ट होता है उसको जोड़कर देखा जाता है। तो जिंदगी जो है बहुत सिखाती है, लेकिन अगर जीवन में ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो आपको चित्त की शांति दे और आपको जिंदगी देखने का नजरिया ऐसा दे दे कि आप हमेशा एक परम आनंद की स्टेट में रहें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं। और सूर्य की जो दृष्टि है, जैसे मैंने अभी कहा था कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, तो सूर्य अक्सर जो होता है ना इस समय जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि से गोचर कर रहे होते हैं, और अभी तो फिलहाल वो साक्षात गुरु के साथ, चूंकि वी आर ऑलवेज इन ट्रांसिट, प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन ट्रांसिट, तो वो कैंसर यानी कर्क राशि में है, गुरु के ही साथ है। अध्यात्म की राशि से जुड़े हुए जो ग्रह हैं उसके नक्षत्र में जो है वहां से गोचर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है
0: जी
13: स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, जर्नलिंग करने का, हायर स्टडीज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 12th साइन में शनि वहां से गोचर कर रहे हैं, तो जितने भी हायर स्टडीज हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जेंजी को मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, देखें अगर आप अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर की कृपा होती है आपके अंदर से, अगर वो आवाज आती है मेडिटेशन यानी हर चीज का ध्यान रखना, जर्नलिंग करना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आप पर होगी और आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो आपको चित्त की शांति दे। मेडिटेशन करना इसलिए कि आप स्थिर रहे, आपका चित्त शांत रहे और आप अपने आसपास वो खुशियां हैं, जो ज्ञान है वो जो है सबको बांट सके और आपको भी जो है परम आनंद की प्राप्ति।
0: चलिए आचार्य संजीव जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ महिमा गुरु के शास्त्रों में बताई गई है।
14: जय हो, क्या बात है। जीएनटी न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आप सभी पैनल्स पर बैठने वाले महान भावों के लिए। देखिए गुरु का बहुत उत्तम नाम ही गुरु है, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश पुंज की तरफ जो ले जाए वो गुरु गुरु है। तो और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु क्या है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, तो गुरु का नाम ही बहुत दिव्य होता है। तो इसलिए इसलिए कहा गया है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी संसार में जो अंधकार है उस अंधकार से निकालकर गोविंद रूपी प्रकाश पुंज में जो लेकर जाए वो गुरु होता है। दूसरी बात है, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं ये सब गुरु की कृपा के बिना और किसी ग्रह का कोई इसमें मतलब नहीं होता है, पर क्योंकि गुरु महिमा ही संसार में ओतप्रोत। आप देखिए सबसे पहले गुरु जी मिलते हैं, जब तक गुरु जी मिलते हैं तब तक साहब 5 साल 10 साल निकल जाते हैं, और उससे पहले भी कोई गुरु होता है जो हमको मिलता है, तो सबसे पहले बड़ी गुरु संसार में गुरु अगर कोई सबसे पहले है, कोई बड़ी है, तो मेरी माँ है, जो माँ मुझे सबसे पहले चलना सिखाती है, घूमना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है, हमको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, तो सबसे पहले जो गुरु हमारी है वो माँ है, और माँ के चरणों को जरूर स्पर्श करना चाहिए। यदि माँ है नहीं है तो उनका स्मरण करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्मरण करना भी एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी संस्कृति, बहुत बड़ी सभ्यता है, और गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परमात्मा गुरु होते हैं, और गुरुदेव जो पढ़ा देते हैं आज उनकी कृपा महिमा से ही आपके जीएनटी न्यूज के माध्यम से हम कुछ दो शब्द बोलना चाह रहे हैं और बोल पा रहे हैं। अगर गुरु की कृपा संभव ना हो तो शायद हम लोग नहीं बोल सकते हैं। पंगु चढ़ई चढ़ई गुरु वर ग्रहण, पंगु चढ़ई, पंगु माने लूला लंगड़ा भी जो है पहाड़ को लांग जाता, क्यों, बोले गुरुदेव की महती कृपा से लांग जाता, गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा यदि ना हो तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए गुरु महिमा से संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। और संपूर्ण सृष्टि की, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि वास्तविक कोई गुरु है तो वो हमारा भारत गुरु है। जितने भी अमेरिका आदि जितने भी देश है अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझते हैं, आज वो सब मिलकर मन ही मन में भारत की जो है प्रशंसा करते हैं, भारत को अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करते हैं। और नहीं करेंगे तो करनी पड़ेगी नवजोत जी, क्योंकि भारत ही गुरु है, नॉट अदर। कोई देश गुरु नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी साक्षात हमारा मथुरा वृंदावन धाम है, जहां हमारे साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम केवलम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण सृष्टि के जगत गुरु हमारे जो कन्हैया जी, गोपाल जी, साक्षात मां के बिहारी जी हैं, वो हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतर ध्रुवा नीतर मतर ममा। साक्षात मां के बिहारी जी गुरु हैं, जगत गुरु भगवान कृष्ण को कहा गया है, इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है और भारत की भी बड़ी महिमा है जी। और आप सबकी बड़ी महिमा है जो हमारे भारत की तरफ से जीएनटी न्यूज के माध्यम से और हम सभी मिलकर के और जीएनटी न्यूज के माध्यम से आज सब गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। ये नवजोत जी रूपी जो ये ज्योति जल रही है, उस ज्योति के माध्यम से आज ये गुरु महिमा, भारत की महिमा, ये सब जो है आपके सामने जो है।
0: बिल्कुल पंडित प्रकाश आपके पास आना, बिल्कुल मैं लौटती हूँ पंडित प्रकाश, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिये हम गुरु पूर्णिमा उसका महत्व कितना है और कैसे आज के दिन गुरु की कृपा पाई जा सकती है, इसको लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कल से सावन के पावन महीने की शुरुआत भी हो रही है। इस बार किन मायनों में सावन का महीना खास रहेगा, किस तरह का ग्रह गोचर है, क्या कुछ बताएंगे आप इसके लिए, और कल पहला दिन है, क्या करना चाहिए?
11: देखिए पहली चीज ये कि आपने बहुत अच्छी नवजोत जी बात की कि जो जो जयंती आज हम मना रहे हैं यानी कि गुरु की, तो वेद व्यास जी के 16 गुरु थे, मकड़ी भी उनमें से एक उनकी गुरु थी, यानी कि उन्होंने मकड़ी तक को भी गुरु बनाया, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जीवन को जीने की कला कोई व्यक्ति हमें देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है और जिससे पॉजिटिविटी मिलती है, तो उसको हमें गुरु मान के और वो ग्रहण करना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो कल से सावन प्रारंभ है, 31 दिन का सावन रहने वाला है और सावन जो है 30 जुलाई से प्रारंभ हो गया और 28 अगस्त तक रहने वाला है। ऐसे में क्या करना चाहिए, सबसे पहले भोलेनाथ का, क्योंकि सावन के अंदर महत्व है भोलेनाथ का, और इस समय ग्रह गोचर की स्थिति भी देखें तो सूर्य कर्क राशि के अंदर और साथ ही साथ बृहस्पति भी उचके हैं कर्क राशि के अंदर, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही बैठे हैं, तो बहुत अच्छा फल जातकों को मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक होते हैं, सूर्य क्या होते हैं, सूर्य यश के कारक होते हैं, करियर के कारक सूर्य होते हैं और धन के कारक, और दोनों यानी यश वैभव देने वाला ग्रह और बृहस्पति धन के कारक, सक्सेस के कारक, शादी विवाह के कारक, वंश वृद्धि के कारक बृहस्पति दोनों ही अगर मिले, और शिव जी जिन्होंने सावन के महीने में विष पिया नीलकंठ हुए, कहा यह भी जाता है, धार्मिक मान्यता ये भी है कि शिव जी सावन के महीने में पृथ्वी लोक पे आते हैं और जगह जगह पे भांति भांति के जो हमारे भक्त होते हैं उनको दर्शन भी देते हैं, उनके अंदर उनको दर्शन भी सावन के महीने में मिलता है। साथ ही साथ नीलकंठ हो जा जो शिव जी ने इस संसार की उन्नति के लिए विष धारण किया था, तो ये सिखाता है कि कोई भी भक्ति कोई भी साधना यदि आप कर रहे हैं तो मानव कल्याण के लिए आपको करनी चाहिए, जन के लिए करनी चाहिए, पहली चीज ये हो गई। और सावन का जो महीना वो श्रवण का महीना है, यानी सुनना चाहिए, और खासकर मैं जनजीवों को बोलना चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा करें, शिव जी की सेवा करें। शिव जी क्या है, और सबसे बात शिव जी, शिव पुराण के अंदर लिखा है कि शिव साक्षात जल रूप में विद्यमान है, तो जल को जितना सेव कर पाएंगे उतना अच्छा, पेड़ों को जल दें, ठीक है, शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं, साथ ही साथ जल का दुरुपयोग ना करें, माता पिता की सेवा करें, और कहा जाता है ना नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाया भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय। अगर शिव जी की अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको क्या है कि श्रद्धा से करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक तो वो क्योंकि जो ये श्रावण का महीना शुरू हो गया है तो जितना आप श्रवण कर पाए सुन पाए, माता पिता बुजुर्ग की बातें सुने, किसी बड़े आचार्य की किसी अच्छे गुरु की बातें सुने और उसको मनन करे जीवन में, तो आपका श्रावण सफल हो जाएगा।
0: बिल्कुल वाना जी आपके पास आना चाहूंगी, इस बार का सावन किन मायनों में खास है जानना चाहूंगी। और दूसरा देखिए सावन का इंतजार हर कोई करता है क्योंकि कहा जाता है कि महादेव

0: है और लास्ट है 24th of August। इसमें जो लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। इट्स बेटर यू एडवाइस योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं, कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप आराम से फास्टिंग कीजिए। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो भी आप घर बैठे जो है, आपके जो भी नियर बाय मंदिर है, आप वहां पर जो है शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। आप पंचामृत बना के भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से भी जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं, आप उन्हें सादा जल दे के भी अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ के जीवन से हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। सावन में बी अ गुड लिसनर, सावन में जितना हो सकता है एक अच्छे लिसनर बनने का प्रयास करें। अपनी माता की सेवा जो है जितना ज्यादा आप सावन में कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। सावन में जो है आप शिव शक्ति मुद्रा, जो इस तरह से बनती है, आप शिव शक्ति मुद्रा को फॉलो कर सकते हैं। सावन में आप नीलकंठ मुद्रा को भी जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह की मुद्राओं पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लाइफ में आपका मून जो है वो भी स्ट्रांग होगा। सावन में कोशिश कीजिए अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। सावन को अगर मैं साइंटिफिकली भी देखूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इन दिनों इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप जितना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते बहुत अच्छा है। अगर आप जल पे रह सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं रह सकते आप फल पे रहिए। फल पे भी नहीं रह सकते तो आप जो है नवरात्रि में जो आप भोजन करते हैं आप सेम वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, ईश्वर जो है वो सिर्फ हमारे इंटेंशंस को देखता है। आप अपने आचार अच्छे रखें, विचार अच्छे रखें, अपनी लाइफ में अपने कर्म अच्छे रखें और भगवान अपने आप आपको देखता है। आप नमः शिवाय का जाप करें, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। सावन में देखिए ग्रीनरी, आपको हर तरफ ग्रीनरी दिखती है, तो नेचर जो होती है, जो प्रकृति होती है, वो हर चीज को हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई करती है। इस टाइम पर जो है आप पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों की भी ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो कराती हैं क्योंकि नेचर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। तो आप जो सावन में विश मांगते हैं आपको करना क्या है, आप सावन में बेलपत्र पर सुबह जल चढ़ाइए, बेलपत्र लेके भी शिवलिंग पे चढ़ाइए, बेलपत्र के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और आप शाम को बेलपत्र पर एक दिया जो है वो आप जरूर जलाइए। कहीं ना कहीं वो भी आपको जो है बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। आप किसी भी तेल का जलाइए, मन में कोई वहम नहीं रखना है आपको। आप सिंपल जो है जाइए मंदिर या फिर नियर बाय जो भी आपको बेलपत्र का पेड़ मिलता है, क्योंकि बेलपत्र भी ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिनिटी में ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सारी चीजें जो है रिप्रेजेंट करता है। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप वहां पर जाके कोई पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं। आप रोज वाटर से भी जो है, अब जो आप जल का लोटा लेंगे उसमें थोड़ा सा आप रोज वाटर जो है वो भी जो है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर बैठिए शिवलिंग के सामने, जलाद्री को लांगे ना, क्योंकि उससे जो है हमें जो वो नहीं ऑस्पिशियस होता। लेकिन आप नंदी जी के कान में जो भी आपको विश मैनिफेस्टेशन करनी है वो आप कीजिए। और इसके अलावा आप वहीं पर अगर शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय जाप करते हैं तो उससे आप देखेंगे आपके ऑरा में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और मन शांत होता है।
1: बिल्कुल। और सावन में इस बार क्या कुछ आप कर सकते हैं, कैसे महादेव की कृपा पा सकते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर हम चर्चा लगातार अपने खास मेहमानों से कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हमने की है गुरु पूर्णिमा की और साथ ही साथ सावन की शुरुआत हो रही है। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूंगी। उपवास की बात करते हैं, वाणिज्य जी से यही सवाल जानना चाह रही थी। चार सोमवार का व्रत नॉर्मली रखा जाता है हर सोमवार, कहते हैं कि प्रभु की कृपा पाने के लिए हर सोमवार का व्रत करना चाहिए। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और वो लोग जो ना कर पाए वो क्या कर सकते हैं?

0: देखें, पहले तो व्रत ये जो हम करते हैं इसके महत्व को जान लेते हैं कि क्यों ये इतना जो है महत्वपूर्ण है। आप ये अगर ध्यान दें तो इस समय जो है ना विष्णु जी को कहा जाता है कि वो योग निद्रा में है नवंबर तक। देवताओं की रात का समय है जिसे कहा जाता है रात्रि का समय, क्योंकि सूर्य भी दक्षिणायन है। ऊपर से श्रावण मास लग गया है जो कि शिव जी का मास है, जहां जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन और शून्यता से जो है जोड़कर देखते हैं। श्रावण मास जो है श्रवण नक्षत्र से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वहां से गोचर भी कर रहे हैं और सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है उसी नक्षत्र पे पड़ रही है, तो इसलिए हम उसको जो मास है, चूंकि सूर्य के सोलर और आपके जो मून के ट्रांजिट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए उसको श्रावण का मास कहा गया, जो कि आपके कर्म का जो है स्थान है। तो वो जो 10th हाउस है, 10th राशि है, हम हमेशा देखते हैं कि देखें यहाँ पे एक पैटर्न आता है। श्रवण नक्षत्र को हम जैसे कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि आप सुने ज्यादा, सुनने से जोड़कर देखा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी आता है जब आप सुनते हैं। सुनने की क्षमता कैसे बढ़ती है? जब आप व्रत की स्थिति में होते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ व्रत करिए। साधकों के लिए खास तौर पे जो बहुत स्पिरिचुअली खुद को एक्टिव करना चाहते हैं, उनके लिए व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अपनी सारी ऊर्जा एकाग्रचित करके भूखे रहना है, वहां पे खुद को नियंत्रण में करना है, तभी आप जो है सब सुन पाएंगे। अगर आप कर्म बंधन में लिपटेंगे, जैसे आप चाहे खाना बनाना हो, खाना खाना हो, कहीं जाना हो, बहुत सारा आप जब काम में होते हैं तो बहुत चीजें आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है ना वो बहुत सीमित होता है। ईश्वर की कृपा से अगर कोई ख्याल आ जाए, कोई आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन हमारे जो ध्यान करने की क्षमता है वो बहुत सीमित होती है। इसलिए कहा जाता है साधकों के लिए खास तौर पे कि परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको खुद को नियंत्रित करना है, तो अपनी ऊर्जाओं को जो है एकत्रित करके आपको एक कहते हैं ना कि एक एफर्ट डालना पड़ता है, टाइटन करना पड़ता है, कि आप कुछ नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा कर्म नहीं करेंगे, साधना में एक जगह बैठेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। जब आप नहीं होंगे, पूजा या मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे होंगे, तब आप आसपास देख रहे होंगे कि आपके जीवन में जहां पर प्रभु ने आपको जिस भी एनवायरमेंट में रखा है वहां क्या हो रहा है, तो आपको वो ज्ञान की जैसे प्राप्ति होगी। और तभी आप जिसे गुरु पूर्णिमा हम आज कह रहे हैं, मना भी रहे हैं, तो आपको खुद को ज्ञान होगा, तभी आप वो संसार को उस ज्ञान से जो है बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जो मार्ग से जुड़े हुए लोग हैं, साधु संत सन्यासी हैं, उनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो व्रत रखें। अन्यथा भी जो गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर वो व्रत रखते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए रखते हैं, उनके आशीर्वाद से के लिए रखते हैं, कि ईश्वर की जो है ना कृपा हम पर बनी रहे, हमारी सेहत में सुधार हो, हमारे कार्य क्षेत्र में जो है वो वहां हमको जो है सफलता मिले, और हमसे जो गलती हो ईश्वर उसे माफ करके हमें वो ज्ञान की प्राप्ति दे, क्योंकि हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर चुनते हैं आपको आपके काम के लिए, आप चाहे मिलिट्री में हो, आप टीचर बने, आप डॉक्टर बने, ईश्वर ने आपको वहां पे रखा है। तो जब हम गृहस्थ में हैं और हम अपना काम कर रहे हैं तो ईश्वर की कृपा हो, वही हमको बताता जाए, ज्ञान देता जाए, हमारे लिए क्या सही है, हम परिवार के लिए कैसे जो है विचरण करें, कार्य क्षेत्र में जो है कैसे विचरण करें, कौन सी चीजों का ध्यान रखें, तो ईश्वर की वो कृपा, ज्ञान की वो कृपा हमको मिलती रहे, इसलिए भी बहुत लोग जो है व्रत रखते हैं। और वैसे भी अगर मैं कहूँ कि ग्रह गोचर देखा जाए तो इस बार मुझे लगता है कि गुरु की स्थिति जो है वो काफी बेहतर है, क्योंकि गुरु की स्थिति जब बेहतर होती है ना तो संसार में थोड़ी राइटियसनेस जो है, अच्छे कर्मों की या अच्छी सोच की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी एक्सपैंड होती है। तो ये जो समय है मुझे लगता है कि अगर आप प्रभु शिव का जो है महादेव का व्रत रखेंगे तो उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी।
1: बिल्कुल संजीव अग्निहोत्री जी, आपके पास आती हूँ। क्या करना चाहिए, कैसे प्रभु की कृपा पाएं, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये पूरा महीना सावन का महीना, क्योंकि शुरुआत कल से हो रही है, क्या नहीं करना चाहिए इस पूरा महीना? हमें कौन कौन सी चीज छोड़ देनी चाहिए, कौन सी चीज वर्जित बताई गई है, खास तौर पर सावन के महीने में?
2: देखिए, व्रत की बहुत सारी बातें हुई हमारी, बहुत बहुत दिव्य दिव्य देवता और देवियां विराजमान है इस चैनल पर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बड़ा खूबसूरत एक ये नजारा है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं आप सभी को, और ये पूरा भारत देख रहा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बिना कृपा के कुछ भी संभव इस संसार में नहीं है। और जोशी जी साहब इस समय तो देखो क्या बताएं, गुरु की चर्चा चल रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ साहब, इस समय जोशी जी शिक्षा गुरु बन चुके हैं भारत में, तो मैं कहना चाहता हूं कि असकृत जल पाना च सकृत तांबूल भक्षणम, बार बार व्रत में तांबूल सुपारी लौंग इलायची बहुत ज्यादा इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, बार बार जलपान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बार बार फलाहार ही करते रहते कि साहब हमारा तो व्रत है तो व्रत में चक्र जो है देसी घी के बने हुए माल मसाले मिलते हैं, तो भैया ऐसा ना करें, व्रत में बड़ा सावधानी से रहें और जिस बिस्तर पर आप शयन करते हैं उस पर आपको शयन नहीं करना है, क्योंकि उस सकृत सैया न लभ्यते, तो ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। तो क्योंकि आप भूखे रह करके भगवान के लिए आत्मसमर्पित हो करके आप अपना व्रत निर्णय लेते हैं, तो बड़े भाव से व्रत करें। और बहुत अच्छी बात यह कि ज्यादा मंत्रों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय बोलोगे जो बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्योंकि मैं वैदिक परंपरा से हूं तो जो गुरुजनों ने सिखाया वही मैं आपके चैनल से बोलूंगा। शिवाय नमः का जाप करें, या फिर महामृत्युंजय करना है तो महामृत्युंजय, क्योंकि वैदिक मंत्र बिना यज्ञोपवीत धारी कोई भी, बिना संध्या वंदन समायुक्त कोई भी ब्राह्मण भी उस महामृत्युंजय मंत्र को बोलने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं सरल महामृत्युंजय आपके चैनल के माध्यम से इस सभी से कह देता हूं, इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन में बारे न्यारे हो जाएंगे, आयु बढ़ेगी, आरोग्यता बढ़ेगी और बहुत सुंदर आपका स्वरूप हो जाएगा ठाकुर जी भोलेनाथ की कृपा से। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई ही पीड़ितम कर्म बंधनई, साक्षात भगवान महामृत्युंजय की शरणागत लें भोलेनाथ की, और इससे आपके जीवन में बहुत दिव्यता आ जाएगी, आपकी निरोगी काया रहेगी, और आपका जब निरोगी काया रहेगी तो आपका भजन में भी बल लगेगा और साक्षात अपना ठाकुर जी का नाम है राधेश्याम राधेश्याम सीताराम सीताराम या फिर शिव शिव, इस मंत्र को जपें। बहुत दो अक्षर का शिव है, जो व्यक्ति दो अक्षर का नाम लेता है शिव, तो शास्त्र में लिखा है यद्यक्षरं नाम गिरे रितम निर्णाम सकृत प्रसंगाद अगमाशु हंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भावानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। भगवती गौरा पार्वती मैया कहती हैं कि जो मेरे भोलेनाथ के शिव दो अक्षर के नाम को लेता है, जन्म से लेके आज तक जब आपने शिव कहा तब तक के संपूर्ण पाप अग आपके समाप्त हो जाते हैं और आपका जीवन बहुत उत्तम हो जाता है, और दिव्यता से व्रत करें और भगवान शिव पर जाकर के, शास्त्र में लिखा जल धारा शिव प्रिया, भगवान को जल की धारा अतिशय प्रिय, गंगा जल चढ़ाए तो और सोने में सुहागा है, और बेलपत्र आग धतूरा ये सब सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ाएं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान की बहुत दिव्य, अगर आप ये स्तुति करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जय

0: घुष्मेशम च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ये जो स्तोत्र है, जो इसका पाठ करता है देवी जी, तो उसके सप्त जन्म, सात जन्मों के पाप पुण्य साफ समाप्त होते हैं और उसको दिव्य जीवन, दीर्घायु जीवन उसको प्राप्त होता है और आनंद हो जाता है। उसके जीवन में हजारों श्रावण मासों का उदय हो जाता है और वो व्यक्ति निर्लेप हो जाता है। उसके जीवन में आनंद होता है, शुभ होता है, कल्याणमय जीवन होता है। महादेव महादेव ऐसा जब
1: संजीव जी
0: आपके जीवन में
1: होगा। बिल्कुल पंडित प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जलाभिषेक हालांकि किया जाता है तो पूरा सोमवार, चारों सोमवार तो जलाभिषेक लोग करते ही हैं, कांवड़िए जाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, उससे जलाभिषेक होता है, लेकिन पूरे सावन अगर हर दिन जलाभिषेक करना है, क्या उसका कोई विशेष मुहूर्त है, क्या कुछ नियम इसमें बताए गए हैं?
2: देखिए, जलाभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या है कि ज्यादातर लोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं, और जीएनटी में नवजोत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अक्सर क्या होता है कि गृहिणियों को कुछ चीजें मालूम नहीं होती, उसको थोड़ा ध्यान रखना। पहला चीज कि घर के अंदर अगर आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो जी आप घर के अंदर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। एक हाथ से ये हथेली से छोटा शिवलिंग घर पे आप स्थापित कर सकते हैं। उसका मुख हमेशा आपको उत्तर में रखना होता है, पहला चीज ये। कृत्रिम शिवलिंग आप बिल्कुल प्रयोग ना करें, वो उसमें जितना पूजा पाठ करेंगे सब निष्फल ही रहेगा। तो आप कृत्रिम, जैसे सीमेंट से बना हुआ होता है, टाइल से बना हुआ होता है, मूर्ति से बना हुआ जो शिवलिंग होता वो नहीं, आप धातु का शिवलिंग ले लीजिए, सोने का, चांदी का, या फिर आपके पत्थर जो शिवलिंग का जो पिंडी होती है, जो शिवलिंग होता है वो आप नर्मदेश्वर नदी से जो पत्थर निकलता वो रख के उसको स्थापित करके आप, या किसी भी नदी का पत्थर आप स्थापित कर लीजिएगा। तो अगर आप नेचुरल शिवलिंग अगर आप रखते हैं घर के अंदर तो ऊर्जा आपकी बनेगी, घर के अंदर जो भी विकार है वो दूर होंगे, पहला चीज। दूसरी चीज, घर के अंदर एक और गलती होती है कि ज्यादातर महिला क्या करती है, तुलसी के साथ में शिवलिंग को घर के बाहर स्थापित कर देती है या लगा प्राण प्रतिष्ठा करवा देती है, वहीं जल चढ़ाती है, ये गलती है। अगर आपने तुलसी के साथ में शिव जी को या शिवलिंग को स्थापित कर दिया तो घर के अंदर कलेश होगा, हरी बीमारी होगी, वास्तु दोष जो एक्टिव नहीं थे वो भी एक्टिव कर रहे हैं आप, तो ऐसा ना करें। अगर आपको शिवलिंग बाहर ही रखना है, आंगन में रखना है, तो तुलसी के साथ में मिलन नहीं है, क्योंकि शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, याद रखिएगा। कुमकुम शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता, केतकी का जो वो होता है फूल वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता, वो नारियल का पानी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। तो अगर आपको शिवलिंग पे अगर चढ़ाना है तो दूध दही से आप अभिषेक शिव जी का चारों सोमवार कर सकते हैं, लेकिन कोई जैसे आप कुमकुम मत चढ़ाइए उनको, ठीक है ना साथी, या फिर आप जैसा मैंने कहा केतकी का आपको फूल नहीं चढ़ाना, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है। साथ ही साथ अगर आप चार सोमवार के यदि गृहणियां व्रत कर रही हैं और सोमवार में, चार सोमवार में अगर घर के अंदर वैवाहिक शांति नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है, चार सोमवार को जल के अंदर जो भी एक लोटा जल देंगे ना उसके अंदर एक मुट्ठी सफेद तेल डाल के आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ मंदिर के प्रांगण में भी आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि जल चढ़ा दिया और छुट्टी हो गई थी, छुट्टी नहीं हुई। आपको क्या है कि साधना में शिव का क्या है, शिव का है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम, हमें आत्मा को भी तो रमाना है ना शिव में, तो ऐसे में क्या है कि आपने शिव जी पे अभिषेक तो कर दिया तो आप मंदिर के प्रांगण का कोई कोना लेके बैठ जाए, वहां पर भी कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर घर में कर रही है तो घर में भी आपका शिवलिंग छोटा होना चाहिए और परात के अंदर शिवलिंग स्थापित करके आप अभिषेक जो मैंने कहा अगर शादी में बाधा आ रही है करें, और ओम नमः शिवाय का आप जाप कम से कम एक माला जरूर करें। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में कुछ बाधाएं चल रही है, तो ऐसे में क्या करना है कि आप बिल्व पत्र ले लें, जिनके एक बिल्व पत्र तीन का होता है, ज्यादातर यही मिलता है, पांच का भी होता है लेकिन वो दुर्लभ होता है, हर किसी को नहीं मिलता। तीन पत्तियों का एक आपका बिल्व पत्र होता है, तो 27 बिल्व पत्र प्रत्येक सोमवार को आपको क्या करना है, उस पर चंदन लगा दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और उसके बाद आपको जो आपके वहाँ शिवलिंग है या घर पे आप करना चाहते हैं तो उनपे आप बिल्व पत्र 27 पत्ते आप जरूर चढ़ा दें। चार सोमवार करेंगे तो धन में भी वृद्धि होगी, नौकरी में कोई दिक्कत चल रही है उसमें भी आपको काफी अच्छा इसका रिजल्ट नजर आएगा।
1: बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास वाना जी, आपके पास आना चाहूंगी, मनोकामनाओं की बात करेंगे। लेकिन पंडित प्रकाश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग कर देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि तुलसी जी के साथ शिव जी का अभिषेक होता है, जलाभिषेक लोग करते हैं, और ऐसी कॉमन छोटी छोटी सी गलतियां लोग करते हैं, तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। वाना जी, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या कुछ करना चाहिए सावन के महीने में, कैसे प्रभु की कृपा पा सकते हैं?
3: जी, सावन के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये इमोशनल प्यूरिफिकेशन का होता है और स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का होता है, क्योंकि आपको बॉडी की क्लॉक भी रीसेट होती है, तभी आप लोग फास्टिंग करते हो ताकि आपके ऑर्गन्स को हीलिंग मिले। तो सावन में आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नेचर से आप अटैच करके रखिए। जब भी आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसमें आप पहले अपनी एक पेपर पर विश लिखिए, उसके बाद जो है आप उस पौधे का बीज डालिए और उसके बाद वो पौधा लगाइए। सावन में भगवान शिव के लर्निंग्स को सीखिए, सावन में आप सरेंडर करना सीखिए कि जैसे माता पार्वती के फेथ ने उन्हें भगवान शिव को दिया था, तो जो उनकी तपस्या थी, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि जब भी हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें तपस्या करनी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो भगवान शिव की आप जितना हो सकता है तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, व्रत कीजिए, इमोशनल प्यूरिफिकेशन, अपनी पूरी बॉडी क्लॉक को रीसेट कीजिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करके आप जितना हो सकता है सावन में विशेष को मैनिफेस्ट कीजिए।
1: चलिए, लगातार सावन उत्सव हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है और उसकी रौनक भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
4: सावन के महीने का क्या है पूजा विधान? सावन के महीने में शिव कृपा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन महीने की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
7: To the near side corner, to wraparound, he scores!
5: And your favorite music.
8: You and I stargazing.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: तो कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले मौसम ने भी शिव भक्तों का स्वागत बारिश की पुहारों से करना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देश भर के मौसम का मिजाज अभी क्या है।

0: कहते हैं सावन और बारिश का रिश्ता वैसा ही है जैसा धरती और आसमान का। सावन वो महीना है जो आसमान से बरसता है और धरती पर हरियाली बनकर मुस्कुराता है। कल से सावन का शुभारंभ हो रहा है, उससे पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे शबाब पर है और उसकी हर बूंद आने वाले सावन की नई कहानी लिख रही है। जुलाई का आखिरी हफ्ता बारिश से तरबतर है, कहीं रिमझिम फुहारें मन को सुकून दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश लोगों के धैर्य और हौसले की परीक्षा ले रही है। सावन के आगमन से पहले ही राजधानी दिल्ली और एनसीआर बारिश से तराबोर है। बीते कई दिनों तक उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था, लेकिन जैसे ही बादल बरसे गर्मी ने मानो घुटने टेक दिए। मौसम खुशनुमा हो गया है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की ये मेहरबानी अभी थमने वाली नहीं है।
1: ओवरऑल आप बात करें तो इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। अगर ये आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज्यादातर हिस्सा ईस्ट इंडिया का इधर ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है और बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर जा रहा है इस रीजन के लिए, और इसके अलावा अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, जिसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। इवन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, और हिमालय की बात करें आने वाले 3 से 4 दिन और स्पेसिफिकली उत्तराखंड हिमाचल, वहाँ वेरी हैवी विन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रह सकते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादातर हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा।
0: उधर पहाड़ों पर भी सावन पूरे रंग में बरसने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है।
2: 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पर इसी दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और ये जो वेदर एक्टिविटी है इसमें देखिए 30 और 31 जुलाई को काफ़ी सक्रिय रहेगा और इस चलते हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो सालों में देखने को मिलेगी। अगर 30 की बात करें, 30 जुलाई की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना एक दो सालों में, इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और 31 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, यहाँ के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जो मेन एक्टिविटी है वो 29 जुलाई की देर रात से लेकर 31 जुलाई तक काफी सक्रिय रहेगा।
0: कहते हैं सावन सिर्फ धरती को नहीं बल्कि हर किसी का मन भिगो देता है। यही वो मौसम है जब शिव भक्ति और बारिश का संगम दिखाई देता है। इसी सावन में आस्था और प्रकृति एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं और हरियाली के बीच खुशहाली की उम्मीदें भी लहलहाने लगती हैं। सावन की हर फुहार सिर्फ बरसती नहीं है बल्कि अपने साथ सुकून, श्रद्धा और जीवन का नया उत्साह भी लेकर आती है। शिमला से विकास शर्मा, चंडीगढ़ से असीम बसी और दिल्ली से मनीषा लता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: Welcome to Get Real.
5: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
6: Oh my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
8: Why do these girls forgive him?
9: She has a soft spot for troubled men.
7: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
10: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। मन भावन कहे जाने वाला सावन बसा ही गया है, हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे, कावड़ यात्रा का माहौल बन रहा है। तो कैसे बिखरे हैं कावड़ मार्ग पर भक्ति और आस्था के रंग, आपको आगे दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आज गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा का पर्व यानी कि गुरु पूर्णिमा है, तो दिखाएंगे आपको पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रमों तक आज कैसी भक्तिमय तस्वीरें नजर आई।
3: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल कर कामयाबी की छलांग लगाने वाले सर्वेश कुशारे के संघर्ष की कहानी क्या है वो दिखाएंगे आपको।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, और साथ ही इंडिया फैशन कुट्योर वीक के मंच पर फैशन क्राफ्ट और शाही अंदाज की शानदार तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की ICC रैंकिंग में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु, सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन से पहले जयपुर नगर निगम की सराहनीय पहल, शहर के 5 प्रमुख शिवालयों में शिवार्पण अभियान की शुरुआत, शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र, फूल से तैयार होगी जैविक खाद। देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला, माता रानी के दर्शन के साथ महोत्सव में हो रहे शामिल। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के धाम में महाउत्सव की धूम, फूलों से सजा साई दरबार, जुटे हजारों भक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी सावन के महीने की। आपको हमने रथ यात्रा की तस्वीरें दिखाई। अब देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भारत उत्सवों का देश है, यहाँ पर तरह तरह के उत्सव पूरे साल लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो रथ यात्रा अभी संपन्न हुआ और अब जिसका इंतजार था वो समय आ गया है, पावन महीना भगवान भोलेनाथ का। तो शुरू हो गया है शिव भक्ति का उत्सव भी देश भर में। भोले के भक्त अपने अपने अंदाज में महादेव की आराधना में जुट गए हैं। कहीं आस्था के रंग नजर आ रहे हैं तो कहीं भक्ति की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
1: और श्वेता के एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस मैं जोड़ देती हूँ, जीएनटी उत्सवों का चैनल है, यहाँ पे आप कोई भी उत्सव मिस नहीं कर सकते हैं। कहते हैं महादेव को भाव सबसे प्रिय है और यही वजह है कि शिव भक्त अपनी श्रद्धा को अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। सावन के इस पावन महीने में भक्ति के ऐसे कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार में श्रावण मेला शुरू हो चुका है, बम भोले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है।

0: हरिद्वार में गंगा घाट सज चुके हैं, कावड़ यात्रा मार्ग तैयार हैं और अब शिव भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रावण मेले का शुभारंभ हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
1: आज से 10-12 साल पहले कावड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं, भोले बाबा की फुल कृपा जी, जो हमने मांगा उनसे ज्यादा ही भोलेनाथ ने दिया है और कभी भी आज तक कष्ट नहीं हुआ, उनकी फुल कृपा है। भोलेनाथ जी बोल, शंकर भगवान की जय। पैदल ही लेके जाएंगे, साइकिल पे भी लेके गए हैं।
0: कावड़ यात्रा मार्ग पर अब घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी है। भगवा रंग में रंगे शिव भक्तों के कदम हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। कई कावड़िये तो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना भी हो चुके हैं, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म नगरी भी पहुंच रहे हैं।
2: घर में सुख शांति रहे, घर परिवार सही रहे, माँ बाप अच्छे रहे, बहन भाई सही रहे।
3: 200 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे, परेशानी नहीं?
2: नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बोले की कृपया बोला ले जाता है, बस हम इसमें ही राजी है।
0: कावड़ मार्ग आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर है। शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनोखी और भव्य कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। इस बार कई कावड़ अपने आकार और डिजाइन को लेकर खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। किसी कावड़ में रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही हैं, तो किसी को खास थीम के साथ सजाया गया है।
4: कामना कुछ नहीं है, गौ माता राष्ट्र माता के लिए जल उठता है और हमारी बहन है बागपत से, यह 71 लीटर जल लेकर जाएंगी बागपत।
0: इन्हीं में से एक लग्जरी कार के आकार वाली कावड़ श्रद्धालुओं और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस कावड़ को आगे तिरंगे से सजाया गया है, जबकि ऊपर भगवान महादेव की प्रतिमा विराजमान है।
5: हाँ जी बोला, एक कंधे भी लेके जा रहे हैं।
3: बोले को आपने चश्मा पहना रखा है, क्या है वजह? चश्मा
5: पूरे रात को लाइट लूट लगी जाती है ना, इसलिए चश्मा पहना रखा है।
0: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सावन शुरू होते ही हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगता है। गंगा किनारे स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। यही वजह है कि सावन में हरिद्वार का माहौल दिन हो या रात, पूरी तरह शिवमय और भक्तिमय नजर आता है। हरिद्वार पहुंचने के बाद शिव भक्त सबसे पहले माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद गंगा जल लेकर अपनी कांवड़ सजाते हैं और अपने अपने शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, संकल्प और भक्ति का प्रतीक है। जहां हर कदम पर गूंजता है हर हर महादेव का जयकारा। हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: बिल्कुल ऐसा ही नजारा और ऐसी ही तस्वीर आपको अब नजर आने वाली पूरे सावन में। तो कल से सावन महीने की शुरुआत होने वाली है और कांवड़िए निकलने वाले हैं जल लेने के लिए, गंगा जल लाकर महादेव पर अर्पित करेंगे। तो देखिए, शिव भक्तों ने आस्था की महायात्रा की सुरक्षा और सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी हाईटेक तैयारी जो है वो कर ली है और पुलिस बलों को मुस्तैद किया जा रहा है लगातार, यहां तक कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने ऐप भी लॉन्च किया है।

0: तैयार हैं शिवालय, तैयार हैं भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य के सबसे पावन महीने में उनका अभिषेक करने। मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, देवा अधिदेव महादेव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी मनोरथ को लेकर देश भर से कांवड़िए पतित पावनी गंगा समेत पवित्र नदियों से जल भरने निकल पड़े हैं, ताकि सावन के सोमवार पर महादेव का जलाभिषेक कर सके। इन कांवड़ियों की सुरक्षा और स्वागत के लिए प्रशासन भी तैयार है। ये तैयारी यूपी के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। मेरठ में जहां पुलिस ने एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया है।
1: हम हैं मेरठ के हाईटेक कंट्रोल रूम में, जहां कमल यात्रा को लेकर इस बार हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहां तमाम निगाह रखी जा रही है और यहां एक टाइम में लगभग 250 कैमरों का जो है एक्सेस लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे इस कैमरे जो तमाम ये कैमरे हैं उनसे नजर रखी जा रही है, क्या गतिविधियां कहां कहां चल रही हैं, कहां कहां के कैमरे बंद हैं या कहां कहां कौन सी परेशानी आ रही है, उसको लेकर के 24 घंटे यहां निगाह रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम में 250 जगहों का जो एक्सेस है वो लिया जा सकता है, 250 जगहें एक साथ देखी जा सकती हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि लगभग 1500 कैमरे अभी तक जो है वो कावल जो मार्ग है उस पर लगाए गए हैं और 250 कैमरों का आप यहाँ एक टाइम में मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
0: हापुड़ पुलिस ने 17 कांवड़ मोबाइल टीम गठित की है, जो कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।
2: 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीजन हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी।
0: यूपी में कांवड़ यात्रियों की सहूलत के लिए प्रशासन डिजिटल तरीका भी अपना रही है। बागपत में कांवड़ियों की मदद के लिए QR कोड आधारित कांवड़ यात्रा ऐप लॉन्च की गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिव भक्तों को कंट्रोल रूम, मेडिकल सहायता, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, भंडारे, पीने के पानी के केंद्र, कांवड़ मार्ग की जानकारी सभी मिल सकेगी। साथ ही पूरे महादेव मंदिर परिसर का डिजिटल मैप समेत तमाम जरूरी सुविधाएं भी मौजूद है।
3: इस बार जो हमारा कावड़ ऐप है वो बिल्कुल अपडेटेड है। जितने भी शिविर होंगे, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे भंडारा लग रहा है, टॉयलेट कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, वो सभी हमने उस कावड़ ऐप पे उपलब्ध है। और इसके अलावा हमने IMA से भी समन्वय किया हुआ है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कावड़ रूट पे मिलेंगे, वहाँ पे अगर किसी कावड़िया को कोई भी हेल्थ संबंधित कोई भी इशू होता है तो वो वहाँ पर जाके निशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं।
0: कांवड़ियों को यात्रा मार्ग पर खाने पीने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन सही कीमत पर मिले, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेट लिस्ट चस्पा कर दी गई है, साथ ही QR कोड भी लगाए गए हैं।
4: हापुड़ का ये पुलेंचर रोड है जो पुलेंचर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर तमाम ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इन ढाबों पर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस मामले में आज खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार के यहाँ पर एक स्टिकर लगाया है, जिससे ये पुष्टि होगी कि वो दुकान किस मालिक की है। इस जो स्कैनर आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करते ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी सामान मिलता है उसके रेट क्या है। रेट लिस्ट इसको सही लगानी पड़ेगी और दुकानदार की जो पहचान है वो भी स्पष्ट सामने आएगी। इस मामले में कहीं भी कांवरिया को कोई परेशानी ना हो पाए, इसके लिए भी शिकायत का प्रावधान किया गया है।
0: यूपी और उत्तराखंड की तरह ही बिहार और झारखंड में भी प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। कोशिश यही है कि सावन के महीने में शिवालयों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और देखिए, सावन में शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर कोई भोले की भक्ति में रमने के लिए तैयार है, साथ ही तैयार हैं देश भर के छोटे बड़े शिवालय भी।
6: बिल्कुल, और इसी भीड़ को देखते हुए खास तौर पर काशी विश्वनाथ में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। तो इस बार कैसे काशी सज रही है और कैसे भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें।
7: ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, माता गौरव को, और इस महीने में भगवान कैलाश से यहाँ काशी में वास करते हैं, तभी यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं।
8: भगवान शिव को ये प्रिय महीना है, तो इसमें जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी।
9: ब्लास्टिंग इन योर सोल एंड योर आत्मा इज बिग बिग दर्शन।
10: यूं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हर दिन रौनक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, लेकिन सावन की तो बात ही निराली है। सावन, जब प्रकृति हरे रंग से धरती का श्रृंगार करती है, आसमान से बरसती बूंदे उनमें ताजगी का एहसास भर देती है, और इन सब के बीच भगवा रंग में रंगे कांवड़ियों का जय घोष मानो देवादिदेव के रंग में खुद के रंग जाने का ऐलान करता है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, लेकिन विश्वनाथ धाम में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है।
11: सावन का पावन माह इस बार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इसलिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये संख्या 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। और अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसके मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई हैं।
10: महादेव को काशी भी पसंद है और सावन भी, तभी तो भोलेनाथ के इस मोक्षधाम में सावन की अद्भुत छटा बिखरती है। बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ हर घड़ी सुनाई देती है। महीने भर भक्तों का मेला रहता है, संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। सावन में यहां सबसे ज्यादा 1,63,00,000 शिव भक्तों के पहुंचने का रिकॉर्ड है। इस बार भी अनुमान 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने का है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एंड टू एंड और जिगजैग बैरिकेडिंग होगी, जर्मन हैंगर, पेयजल, ग्लूकोज, ओआरएस की व्यवस्था होगी, खोया पाया केंद्र बनाया गया है, कांवड़ियों के लिए 1 लेन पूरी तरह से सुरक्षित की गई है, श्रद्धालुओं के रूट पर वेटिंग रूम, मेडिकल टीम, पीआरवी, क्यूआरटी टीम भी 4 किलोमीटर पर मौजूद रहेगी। सिविल ड्रेस में भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि बेहतर निगरानी की जा सके। बाढ़ को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ, बाढ़ राहत पुलिस, पीएसी की फ्लड कंपनी और स्थानीय जल पुलिस की सभी घाटों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके, और प्राइवेट गोताखोरों को भी रखा गया है। निर्धारित मानक और डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। प्लास्टिक पर पहले से ही रोक है, और इस बार भी सावन में प्लास्टिक की सामग्री को लेकर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन पर पूरे महीने रोक रहेगी।
12: सोपी हमारी पुनः लागू रहेगी, उसी प्रकार जिगजैग लगाए जाएंगे, एंड टू एंड जिगजैग रहेगा। प्रवेश और निकास के निर्धारित मार्ग रहेंगे, 6 मार्गों से प्रवेश निकास की व्यवस्था रहेगी। लोगों के लिए एंड टू एंड जो है वो कैनोपीज लगाकर, या हमारे जो जर्मन हैंगर्स हैं और जो अलग सिंथेटिक फाइबर का जो हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है उसके माध्यम से लोगों को छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल के अलावा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, ओआरएस की व्यवस्था रहेगी, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था बनाई गई है।
10: वहीं भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि मंदिर आते समय वो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।
12: इसके अतिरिक्त यह अपील बार बार जारी की गई है, कृपया प्लास्टिक की सामग्री लेकर धाम में प्रवेश न करें। यह अपील बार बार जारी की गई है कि दर्शन में समय अधिक लगता है, श्रावण मास में बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो कृपया खाली पेट न आएं क्योंकि लंबा समय लगने पर लोगों के फेंट होने की समस्या होती है। और बार बार यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने ठहरने के स्थान पर, रुकने के स्थान पर, अपने घर पर, सराय में, होटल में, रिश्तेदार के यहाँ, जहां से भी आप आ रहे हो दर्शन करने, वहां पर अपना मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरे वाला जो चश्मा होता है, पेन और धातु की अन्य नुकीली वस्तुएं छोड़कर आए, इनके साथ यहाँ प्रवेश संभव नहीं है। बैग लेकर आए, बैगेज काउंटर उसमें संचालित नहीं होते हैं।
10: सावन है, महादेव है, काशी है, श्री भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने बिना ही सावन मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पावन उत्सव में शरीक हो सकते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन के महीने में अब कावड़ भी खूब नजर आएंगी, इसकी शुरुआत भी हो गई है। कई शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर हरिद्वार में दिखे तो कई गंगाजी से जल भरकर अपने अपने घर रवाना होते हुए नजर आए। इन्हीं में रास्ते चल रही दो अनूठी कावड़ खूब चर्चा में रही।
13: बिल्कुल, आपको बता दें कि पहली कावड़ जहां प्यार और सम्मान की इमोशनल तस्वीर बयां कर रही है, तो दूसरे में लगाए गए हैं नोट। धर्म कर्म में लगाए जाने के उद्देश्य के कारण आते जाते लोगों की निगाहें उन पर पड़ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये अनूठी कावड़ और इसको ले जाने वाले भोलों से मिलवाते हैं।

0: सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय माना गया है, क्योंकि इसी महीने हर आस्थावान भक्त उत्साह और आत्मबल के सहारे महादेव का नाम लेकर उन्हें पूजता है, जलाभिषेक करता है। बोल बम के जय घोष के साथ लाखों शिव भक्तों की अनोखी आस्था अब धीरे धीरे नजर भी आ रही है। खासतौर से कांवड़ मार्ग पर कुछ ऐसे भोले की भक्ति दिख रही है जो लोगों का ध्यान खूब आकर्षित कर रही है। एक ऐसी ही अनोखी और भावुक कर देने वाली इस कांवड़ के भी खूब चर्चे हो रहे हैं। अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को कांवड़ में बैठाकर काजल चौधरी हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा तक जा रही है। बेशक काजल की ईश्वर से कोई मन्नत नहीं।
1: मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी खाली माता की सेवा करने की मन्नत है। मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, और मेरी कोई मन्नत नहीं।
0: दूसरी बार कांवड़ ले जाने वाली काजल हर दिन 11 से 12 किलोमीटर तक ऐसे संदेश के साथ चल रही हैं, जिसे आज के समय में हर किसी को समझने की जरूरत है। दरअसल उनके लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
1: अपने सासू ससुर की, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें, जब वो हमारे पास से जाए तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जो हमारे बच्चे भी पले फूले। और माता पिता की सेवा करना ही हमारा धर्म है।
0: वहीं बुजुर्ग सास के लिए काजल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक दिलचस्प गुहार लगाई है।
1: मेरा निवेदन है सीएम साहब से कि मेरी अम्मा की इच्छा हुआ जरूर पूरी करें, कि मेरी अम्मा उनसे मिलना चाहती है, जो मेरी माँ जी है, जो मेरी सासू माँ है, सीएम साहब से मिलना चाहती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरी माँ जी से वो जरूर मिलें। और माँ मेरी उन्हें कुछ देना चाहती है, मुझे ये नहीं पता वो क्या देना चाहती है, लेकिन माँ मेरी देना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है।
0: कांवड़ मेले के आगाज के साथ ही एक रंग ये भी दिखा। हरिद्वार में नोटों से बनी इस कांवड़ की भी खूब चर्चा रही, जिसे 100, 50, 20 और 10 के नोटों से सजाया गया है। बारिश में नोट खराब ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है, लिहाजा कांवड़ को पॉलिथीन से कवर किया गया है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले और इस अनूठी कांवड़ को तैयार करने वाले शिव भक्त दीपांशु ने भोलेनाथ से एक अनोखी मन्नत ये मांगी कि अगले साल वो इससे भी बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने आएंगे। और जहां तक एक बात कांवड़ में लगे नोटों की है, तो वो इन पैसों को धर्मार्थ पर खर्च करेंगे।
2: बोले, मैं अभी हरिद्वार से मैंने कांवड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली। सपना था नोट वाली कांवड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कांवड़ लेने। हमारे शिवालय पे पहुँचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे और उनका भंडारा करवाएंगे। हम टोटल 4 लोग हैं, पर ये कांवड़ सिर्फ मैं चलाऊंगा, एक कंधे कांवड़ है।
0: भले ही कांवड़ यात्रा भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति और आस्था की ही प्रतीक है, ऐसे में तमाम श्रद्धालु अपनी अपनी कांवड़ लेकर मंजिल की तरफ बढ़ना भी शुरू हो गए। लेकिन इस बीच ऐसी अनूठी कांवड़ शिव भक्ति के अलहदा रंग ही बिखेर रही हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। सावन महीने की पूरी रौनक तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम और आप मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व। दिखाते वो तस्वीरें।

0: आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आस्था का ये महापर्व गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रम तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कहीं भक्त गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो कहीं गुरु चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, नासिक, देश भर के पवित्र नदी और घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन को लेकर मान्यता है कि आज के दिन नदियों में स्नान कर गुरु का स्मरण करने मात्र से ही उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। प्रयागराज में आस्था और विश्वास के रंग बिखरे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए आ रहे हैं।
1: देखिए, स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, दान पुण्य किया और अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

0: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज का कण कण आस्था और श्रद्धा में डूबा है। प्रयाग के संगम क्षेत्र में पतित पावनी गंगा में स्नान ध्यान करने श्रद्धालु सुबह से उमड़ पड़े। हर हर गंगे और जय गुरुदेव के जय घोष के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की।
1: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे। फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है, वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
2: बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
3: हम लोग स्नान करने आए हैं पूरे परिवार सहित। अरे बस अपना परिवार सुखी रहे, बाल पास ठीक ठाक से रहे।
0: गुरु पूर्णिमा पर संगम में आस्था श्रद्धा और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किया।
4: आज का दिन सनातन धर्म एवं हिंदुओं के लिए बहुत खास पुनीत पर्व है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जी की पूर्णिमा है। जितने भक्तजन है जो गुरु दीक्षित हो चुके हैं, गुरु से मंत्र ले चुके हैं, उन लोगों की अति पुनीत पर्व है। वो प्रातः काल काशी जी में, हरिद्वार जी में और प्रयाग में स्नान करके अपने गुरु भगवान के आश्रम में जाएंगे, गुरु की पूजा करेंगे, प्लस वासुदेव भगवान की पूजा करेंगे। जिनके कोई गुरु नहीं है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु।
0: गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज से ही आई ये दूसरी तस्वीर है। प्रयागराज के बागम्बरी मठ के महंत बलवीर गिरी ने रीति रिवाज से हटकर विशेष पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर गुलाब के फूलों से पुष्पार्जन कर इस पावन त्योहार को श्रद्धा पूर्वक मनाया।
5: प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा का त्योहार काफी सादगी भरा मनाया जा रहा। वैसे ही बागम्बरी मठ जो प्रयागराज का है, और कहा जाता है नरेंद्र महाराज जो थे उनकी

0: देखिए, ये हमारे सदगुरुदेव की समाधि स्थल है और उसी समाधि स्थल के ऊपर नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया गया। इसलिए गुरु के रूप में हम भगवान शंकर के स्वरूप में अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन करते हैं। आज जो आपने पुष्पों से अर्चन देखा होगा, ये पुष्पार्चन कहते हैं इसको। तो रुद्र सूक्त से अपने गुरुदेव का अर्चन किया गया, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।
1: इसके साथ ही महंत बलबीर गिरी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो गुरु के बताए मार्ग पर चले और धर्म, सेवा तथा सदाचार का पालन करें। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शिरडी साई धाम श्रद्धा और भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग गया है। 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत काकड़ आरती के साथ आज हुई
3: और इसके बाद साई बाबा की प्रतिमा और श्री साई चरित्र ग्रंथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु साई समाधि के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लेते नजर आए।

0: बाबा का सजा दरबार है। चारों ओर फूलों का श्रृंगार है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं को ये भक्तों की सौगात है। श्रीडी की रौनक बता रही है कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व शुरू हो चुका है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया है तो कोई सात समंदर पार से बाबा के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करने पहुँचा है। गुरु उत्सव के पावन पर्व की रौनक से चप्पा चप्पा दमक रहा है।
1: बाबा के दरबार आते हुए हमें कम से कम भी, मैं 2005 या 6 से जुड़ा था, तो अब बाबा की बहुत कृपा है। मतलब हमने दिन प्रगति देखी है। बाबा से दर्शन करो और दर्शन करने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। और मुझे लगता है कि सब साईं भक्तों को यहाँ आना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की सब साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा को गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। इस अवसर पर कोई साईं को सोना चांदी चढ़ाता है तो कोई गुरु दक्षिणा में रुपए पैसे दान देता है, लेकिन श्रद्धा में सब बराबर है। साईं के भक्त भी मानते हैं कि हर मनुष्य में भगवान देखने का साईं का संदेश यहाँ आकर साक्षात सच प्रतीत होता है। इस बार साईं बाबा को नेल्लूर के एक भक्त ने 642 ग्राम सोने का 1,03,00,000 रुपए का ये मुकुट अर्पित किया है। इस सोने के मुकुट पर दशावतार की मूर्तियां हैं।
2: गुरु पूर्णिमा का वजह से एक मुकुट लाया भगवान का अर्पण करने का। ये गुरु पूर्णिमा डबे में ये मुकुट है नवग्रह का, बाबा का अर्पण करने का। ये मुकुट का वैल्यू है रफली 1 करोड़ एंड इट इज वैल्यूड एट, वो मुकुट का ये नवग्रह का ये भगवान नवग्रह रूप है, भगवान साईं बाबा ऐसा है। मैं ये देने का मेरे को मौका मिला है वो दे दिया।
3: श्रीनिवास राव, उन्होंने लगभग 642 ग्राम का सोने का मुकुट जो है वो बाबा को अर्पण किया है। उसकी कीमत जो है लगभग 1,03,00,000 है। वो बाबा के बहुत डेडिकेटेड डिवोटी है, हर साल में 2-3 बार आते हैं और संस्थान के जो चैरिटेबल एक्टिविटी रहती है उसमें हमेशा योगदान देते हैं।
0: वैसे तो साईं का दरबार रोज इसी तरह भक्तों से आबाद रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर इस दरबार की रौनक कुछ अलग ही होती है। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिन चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत कक्कड़ आरती से हुई। आरती के बाद साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र ग्रंथ का जुलूस गुरुस्थान होकर द्वारका माई मंदिर में पहुंचा और यहां आए लाखों श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान मांगा।
3: गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत जो है आज हुई है। 3 दिन की उत्सव में आज सुबह कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकल गई और द्वारका माई में जो है अखंड साई चरित्र पारायण की शुरुआत हुई है। पूरी देश विदेश से लाखों साई भक्त जो है वो इस उत्सव में आने की आशंका है। बाबा के भक्त बाबा को जो है गुरु मानते हैं, तो यहाँ आने के बाद बाबा के

0: झोली में भर भर के गुरु दक्षिणा जो देते हैं।
1: साईं बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इस 3 दिनों में बाबा के दर्शन का न केवल रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि हर बार की तरह इस बार भी चढ़ावे का नया कीर्तिमान बनेगा। फिलहाल तो शिरडी के साईं का ये धाम भक्ति के आनंद में मगन है, साईं के दर्शन भर से कृतज्ञ है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं के जोश से धन्य है। शिरडी से नितिन मिराणे की रिपोर्ट।
2: अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सैलाब के बीच कैसे चल रही है मिशन जिंदगी।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी रैंकिंग में धमाकेदार एंट्री, टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु, सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन से पहले जयपुर नगर निगम की सराहनीय पहल, शहर के 5 प्रमुख शिवालयों में शिवार्पण अभियान की शुरुआत, शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र फूल से तैयार होगी जैविक खाद। तो चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पड़ रही है मानसूनी फुहार तो कहीं तगड़ी मानसूनी बौछार। मूसलाधार बारिश ने देश के कई इलाकों में परेशानी भी खड़ी कर दी है। पहाड़ है तो दरक रहे हैं, वहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मैदान है तो नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम के इन्हीं साइड इफेक्ट से दो दो हाथ कर रही है हमारे देश की तमाम राहत एजेंसियां, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। साथ ही कुछ जगह तो लोकल्स भी बढ़ चढ़कर अपने इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं।
9: देश में अब मॉनसून फुल स्पीड में है। जाहिर है गर्मी और उमस से राहत भी है, लेकिन साथ ही तकलीफों का साया भी मंडरा रहा है। देश भर में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं, लेकिन प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में बचाव टीमें दिन रात एक कर दे रही हैं। जब तक प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंच जाती, उन्हें संकट से बचा नहीं लिया जाता, तब तक रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं। तो चलिए एक एक कर आपको मैदान से लेकर पहाड़ों तक हो रही भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी संख्या में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। मानसूनी बारिश की जद में देश का नॉर्थ ईस्ट रीजन बुरी तरह चपेट में है। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां नाजीरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यहीं के लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। इन लोगों ने नावों और बांस के बेड़ों की मदद से करीब 1000 से ज्यादा फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाई।
12: हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 थो, और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग मामा लोग बहुत लोग है, हमारा अपना ही लोग है, तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया सब लोग मिलके।
9: ये तस्वीर नागालैंड की है, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो कई लोग फंस गए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने यहां राहत बचाव का काम चलाया हुआ है। खबरों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीमापुर भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई तो यहां भी फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तिलवाड़ा में उफनाई मंदाकिनी में कुछ महिलाएं फंस गईं, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये महिलाएं दरअसल नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने गई थी, लेकिन नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो ये करीबन 1 घंटा वहीं फंसी रही, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर निकाला। फिलहाल तो मानसूनी सीजन में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को राहत देने, उनको रेस्क्यू करने के लिए देश की बचाव एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन वही इसी आफत की बारिश के बीच खुद के स्तर पर स्थानीय लोगों का भी राहत बचाव कैंपेन काबिले तारीफ है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
13: यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में लहरा रहा है भारत का परचम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 12 मेडल जीत लिए हैं और पदक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते। बीती रात गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में 2रा स्थान हासिल किया। वो इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।
1: बिल्कुल, देखिए गुलवीर के अलावा महिला वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। 69 किलोग्राम वर्ग में 29 साल की वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर का ये करियर का बेस्ट प्रदर्शन रहा। और इसके अलावा गुड न्यूज ये भी है कि भारतीय बॉक्सरों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम 3 और मेडल भारत के लिए पक्के कर दिए हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के हाई जंपर सर्वेश कुशारे भी छा गए हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले वो भारत के पहले एथलीट बने हैं,
2: लेकिन उनको ये उपलब्धि बड़े ही संघर्षों के बाद हासिल हुई। सर्वेश दरअसल एक गरीब परिवार से आते हैं, उनके पिता किसान हैं, लेकिन कड़ी ट्रेनिंग और नेशनल लेवल पर दमदार खेल से सर्वेश कुशारे को सेना में नौकरी मिली और अब उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम ऊंचा कर दिया।
3: कामयाबी की इस छलांग ने सर्वेश कुमार को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वेश ने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ ही सर्वेश कॉमनवेल्थ हाई जंप कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सर्वेश किशोर ने इस प्रतियोगिता में 2.25 मीटर की छलांग लगाई। सर्वेश किशोर को सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी ब्रैडफोर्ड ने भी 2.25 मीटर की छलांग लगाई। ब्रैडफोर्ड ने ये छलांग पहली ही कोशिश में लगाई। सर्वेश ने ये छलांग 3री कोशिश में लगाई। बराबर छलांग के बावजूद नियमों के मुताबिक सर्वेश को सिल्वर मेडल मिला। फिलहाल भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी इस कामयाबी पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। इस जीत के बाद से ही घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
4: खुशी लग रही है और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ उनके पास, क्योंकि भारत का पहला लड़का, मतलब इंडिया का फर्स्ट प्लेयर है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और सिल्वर मेडल लेके आ गए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। प्रेशर ही आ रहा था, मतलब जब वो जंप करने जाते थे तो हम भगवान के पास जाते थे और उनके पास दुआ करते थे कि सर्वेश के मेहनत को फल देना, उनके कष्ट को फल देना, और भगवान ने दे दिया।
3: लेकिन सर्वेश के लिए कामयाबी की ये राह आसान नहीं थी। सर्वेश के पिता किसान हैं। शुरुआती दिनों में सर्वेश को खेल से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हाई जंप की प्रैक्टिस के लिए मैट खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं था। प्रैक्टिस के लिए सर्वेश ने देसी जुगाड़ अपनाया। उनके पिता ने मक्के के छिलके और कपास से एक मैट तैयार की। इस देसी मैट पर ही सर्वेश ने अभ्यास किया।
5: छोटे से गांव से चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना इतना मुश्किल है और वो उन्होंने करके दिखाया है। कोई सुविधा नहीं होती थी, कोई प्रॉपर ये नहीं मिलता था।
6: जब सुविधा नहीं थी तो वो कैसे प्रैक्टिस करता?
5: सुविधा नहीं थी तो उसको बोरी में मक्के का भूस डाल के वो पीठ बनाता था और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता था।
3: मेहनत और लगन रंग लाई और सर्वेश ने पहले जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। स्पोर्ट्स कोटे से सेना में नौकरी मिली तो सर्वेश को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन भी मिले। कॉमनवेल्थ गेम से पहले भी सर्वेश ने कई मेडल अपने नाम किए हैं। सर्वेश ने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर भारत का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसी साल मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर की छलांग के साथ सर्वेश ने 3रा स्थान हासिल किया। 2023 में एशियन एथलेटिक्स में सर्वेश ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 2024 में पेरिस ओलंपिक में सर्वेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर सर्वेश ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो और सच्ची हो तो चुनौतियां खुद ब खुद घुटने टेक देती है। सर्वेश की ये कामयाबी आज लाखों नौजवानों के लिए मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात फिल्मों की कर लेते हैं। और इस वक्त की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रामायण को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते कॉमिक कॉन 2026 में ट्रेलर रिलीज टलने के बाद फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रणवीर कपूर और यश स्टारर रामायण का पहला ट्रेलर 30 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। और देखिए, खास बात यह है कि मेकर्स ने रामायण के ट्रेलर रिलीज के लिए एक बेहद खास समय चुना है।
2: देखिए, फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:15 पर दुनिया भर में एक साथ रिलीज किया जाएगा। ये समय अलग अलग देशों के टाइम जोन को ख्याल में रखकर तय किया गया है। सुबह का ये समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जिसे आध्यात्मिक साधना, पूजा अर्चना और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान श्री राम पर आधारित इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की पहली झलक भी इसी शुभ बेला में दर्शकों के सामने लाई जाएगी।
3: दिल्ली में इंडिया फैशन वीक का आयोजन हो रहा है, जहां फेमस डिजाइनर्स एक से बढ़कर एक फैशन का अंदाज पेश कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं मशहूर डिजाइनर जयंती रेड्डी अब अपना नया कुट्योर कलेक्शन द गिल्डेड इरा लेकर आए हैं।
4: तो कैसे राम पर रॉयल फील के साथ भारतीय विरासत के खूबसूरत रंग बिखरे। इस फैशन शो का वैसे सबसे खास आकर्षण रहे एक्टर सिद्धार्थ और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी।

0: देश की राजधानी में लगा है फैशन का मेला। इंडिया कोत्योर वीक के मंच पर दिखा आधुनिकता और पारंपरिक डिजाइनों का अनोखा मेल। इस फैशन वीक में मशहूर डिजाइनर जयंत रेड्डी ने अपना नया कोत्योर कलेक्शन द गिल्डेड एरा पेश किया। इस कलेक्शन में रैंप पर राजसी वैभव के साथ वेशभूषा में भारतीय विरासत की खूबसूरत झलक पेश की। इस कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय कारीगरी को आधुनिक रंगों के साथ पेश किया गया। काले कपड़ों पर सुनहरे रंगों की बारीक जरी और खिलकर उभर रही थी। हाथ की कढ़ाई और रॉयल एम्ब्रॉयडरी से सजे परिधानों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर डिजाइन में भारतीय शिल्प कला और शाही सौंदर्य का अनूठा मेल दिखाई दिया। शो के सबसे खास आकर्षण रहे अभिनेता सिद्धार्थ और अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, जिन्होंने शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर शानदार वॉक किया। दोनों की शानदार मौजूदगी ने फैशन शो में चार चांद लगा दिए। रॉयल आउटफिट में सजे इन सेलिब्रिटी कपल ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। जयंत रेड्डी के साथ मशहूर डिजाइनर डॉली जे ने भी अपना खूबसूरत कलेक्शन पेश किया। लाल रंग से सजे इन पारंपरिक लहंगों को खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी से सजाया गया था। शानदार फैब्रिक और महीन डिटेलिंग डॉली जे के डिजाइनों की खास पहचान बन गया। डॉली जे के कलेक्शन में पुरुषों के लिए भी फैशन का बेहद जुदा अंदाज दिखा। खास बात ये थी कि मेल कलेक्शन में भी लाल रंग को ही अहमियत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है, लेकिन खबर यह है कि इसकी मेंटेनेंस को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एसओपी जारी किया है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है।
2: बिल्कुल, देखिए, इस पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 रुपए और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थयात्री कई जगह पर घूमते हैं, लेकिन अब यहाँ गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है।
3: आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। इनमें एक तरफ पानी का सबसे खतरनाक शिकारी था तो दूसरी ओर एक निडर इंसान। दरअसल 5-6 फीट लंबा एक मगरमच्छ राजस्थान के कोटा में चंबल, काली सिंह और पार्वती नदियों के किनारे बसे रामपुरिया दाबाई गांव में अचानक पहुंच गया और वहां अफरा तफरी मच गई।
4: करीब 45 से 50 किलो वजनी इस मगरमच्छ के सामने आने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसी खतरनाक मगरमच्छ के सामने एक शख्स डटकर खड़ा था, जिसे इलाके के लोग टाइगर कहते हैं। इनका नाम वैसे हयात खान है, जो एक समाजसेवी हैं। इन्होंने बगैर घबराए मगरमच्छ को काबू में कर कंधे पर उठाया, फिर बाइक पर लादकर चंबल नदी तक ले गए और सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा बना हुआ है।
3: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
6: जाती है। Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
1: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, गोवर्धन में वाद्य यंत्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन की गूंज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ। देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु। सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन से पहले जयपुर नगर निगम की सराहनीय पहल। शहर के 5 प्रमुख शिवालयों में अभियान की शुरुआत हुई। शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र फूल से तैयार होगी जैविक खाद। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट। लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही हिमा दास। सावधानी बरतने की भी अपील कर रही है। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक विशेष कार्यक्रम। बाघ संरक्षण का दिया संदेश।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस त्योहार की जो गुरु की महिमा को समर्पित है। आज देश में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। देश भर में लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों के साथ श्रद्धा और आदर प्रकट कर रहे हैं। गोरखपुर से लेकर शिरडी साई धाम और कान्हा की ब्रजभूमि तक गुरु पूर्णिमा पर आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मठ आश्रमों में लोग अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आम तौर पर शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझा जाता है, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कई ज्यादा विस्तृत है। सिर्फ पढ़ाने वाला गुरु नहीं, जो जीवन में कुछ भी अच्छा और सार्थक सिखा दे वो एक तरह से गुरु ही होता है, आदर के योग्य है। लेकिन जो आत्मबोध करवा दे, जिंदगी में सही रास्ता दिखा दे, उसके गुण तो जीवन भर गाए जा सकते हैं। आपके जीवन में भी अगर ऐसा कोई है तो आज का दिन उन्हें याद करने का, उन्हें ये एहसास दिलाने का है कि आपके लिए कितने ज्यादा वो खास हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जीएनटी स्पेशल की। और सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है गुरु उपासना के पर्व गुरु पूर्णिमा की ये महिमा।

0: तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का, वही शागिर्द हैं जो खिदमते उस्ताद करते हैं। देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का भोर। किस तरह अमानत न रहूं गम से मैं दिलगीर, आंखों में फिरा करती है उस्ताद की सूरत। वो उर्दू हो या अरबी की अलिफ बे, या हिंदी के वर्ण और व्याकरण हो, शब्द हो या संकेत, संसार में शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिसमें गुरु, शिक्षक, आचार्य या उस्ताद का गुणगान न किया गया हो। लेकिन हर भाषा में बात बहुत सीधी है और सार उतना ही सरल। जो सिखा दे वो गुरु है। माता पिता जीवन देते हैं तो गुरु जीवन जीने का सलीका सिखाता है। तभी तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरची संकर सम होई। इसी तरह मार्ग दर्शाने वाले गुरु का गुणगान हर धर्म और पंथ में अलग अलग रूपों में किया जाता ही रहा है। लेकिन खास तौर पर सनातन धर्म में अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। सनातन परंपरा में बेहद श्रद्धा से कहा जाता है, गुरु ग्रंथों का सार हैं, गुरु हैं प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति हैं, गुरु हैं चारों धाम। उन्हीं गुरु के प्रति आस्था का पर्व गुरु पूर्णिमा आज पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मठ मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में लोग अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हर साल गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। पौराणिक इतिहास में इस त्योहार का संदर्भ एक कथा में मिलता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को पहली बार श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
1: ये वेद व्यास जी जो सारी है ना रचनाओं के रचयिता है, जिन्होंने पुनः दोबारा वेदों का प्रादुर्भाव भी किया, उनका जन्म तिथि है। उनकी जन्म जयंती के साथ साथ में ये गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम पे की जाती है। और आज के दिन ही अपने गुरुओं का पूजन करना और उनके आशीर्वाद लेना और अपने उत्तम लोक के कल्याण हेतु उनसे ज्ञान लेने का दिन कहलाता है।
0: आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कई ज्यादा विस्तृत और विराट है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। सनातन धर्म में मान्यता है कि वास्तव में वो गुरु ही हैं जो आध्यात्मिक उत्थान, चित्त की स्थिरता और जीवन में सफलता के लिए शिष्य को प्रेरित करते हैं। गुरु की शरण में रहने से विद्यार्थियों को विद्या, स्मरण शक्ति और अनुशासन का सबक मिलता है, तो वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है। तभी तो गुरु को समर्पित ये दिन आत्मबोध और जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, गुरु के समक्ष समर्पण का संदेश देता है। तभी तो सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमाओं में इस एक पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही साल भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन सुबह से ही मठ मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है। जो जिसे गुरु मानता है वो उन्हें पूछता है, लेकिन तब क्या करें जब आपके कोई गुरु ही न हो। हम बताते हैं कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना है। मान्यता है कि हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में महादेव ही हैं। ऐसे में अगर गुरु न हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए करें, मानसिक रूप से उनको पुष्प मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करें, स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें।
1: यदि आपको शारीरिक गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसके आपके चरण पकड़ के आपका कल्याण हो, तो भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके आप निष्ठा पूर्वक भगवान के भगवत भजन में लग जाएं, अपने सिद्धियों को यह प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया श्री कृष्ण 16 कला परिपूर्ण है, इनकी भक्ति करने वाला, इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही उनका गुरु के समान ही अपने जीवन में प्रभाव पाता है और वह पल पल पे, पग पग पे आपका हाथ पकड़ के आपके आगे के मार्गों को सुगम करते हैं।
0: आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान बुद्ध की आस्था से भी जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। भारत के जीवन चरित्र में भगवान बुद्ध की भूमिका शांति और अहिंसा की रोशनी दिखाने वाले गुरु की रही है। ऐसे में इस मौके पर भगवान बुद्ध को नमन करने की भी परंपरा है। वास्तव में जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा का पर्व असल में हमें यही सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुरु पूर्णिमा का इस खास मौके पर सबसे ज्यादा रौनक नजर आ रही है कान्हा की नगरी में। ब्रजभूमि में इस समय मुड़िया पूर्णिमा मेले की धूम है। पिछले एक हफ्ते से मथुरा में ये मेला चल रहा है। इस खास मौके पर देश भर से करोड़ों भक्त ब्रजभूमि पहुंचे हैं। इस खास मौके पर भक्त दूर दूर से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। दरअसल भारत के पौराणिक इतिहास में गिरिराज गोवर्धन का अतुलनीय स्थान रहा। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर गोवर्धन परिक्रमा का विशेष महत्व होता है।

0: रजभूमि में गिरिराज का जयकारा लग रहा है। कान्हा की नगरी में भक्ति रस बरस रहा है। मथुरा वृंदावन में आस्था का महामेला सजा है। मथुरा में अपार जनसैलाब है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से पटी है। पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में आस्था में आकंठ डूबे भक्तों के कदम गोवर्धन परिक्रमा की ओर निकल पड़े हैं। कोई पास से आया है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, लेकिन कान्हा की नगरी में हर किसी की मनोकामना परिक्रमा करने की है। होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यम द्वितीया और राधा अष्टमी पर मथुरा में लाखों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन मुड़िया पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की ये संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेले में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बता दें कि सारे देश में जिस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, ब्रज में उसे मुड़िया पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
1: व्यास जी आदि गुरु हैं, इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, किंतु गिरिराज जी में इसे मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का देह आज ही के दिन छूटा था, तो उनके शिष्यों ने उनकी सबको लेकर के पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा की और सभी ने अपना मुंडन कराया, तो वह परंपरा वो आज भी निभाते हैं। प्रत्येक आषाढ़ की पूर्णिमा को अपना मुंडन करा करके और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा कहा गया है।
0: ब्रज में गुरु पूर्णिमा से पहले ही गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। ट्रेन, बस, निजी साधन और पैदल यात्रा कर रोज लाखों श्रद्धालु बीते कई दिनों से मथुरा पहुंच रहे थे। अब गुरु पूर्णिमा के मौके पर कान्हा की नगरी भक्तों से गुलजार हो उठी।
2: प्रसिद्ध मथुरा का मुड़िया मेला, जो जिसमें की गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं, लगाने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो शुरू हो चुका है। और इसके लिए पूरे क्षेत्र को 9 सुपर जोन 22 जोन्स में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक बृहद ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें कि कहाँ कहाँ पार्किंग्स है, कहाँ नो एंट्री है, कहाँ वन वे है, और जनता को भी इससे अवगत कराया गया है।
0: भारत में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का अपना पौराणिक महत्व है। मान्यता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बस उसके बाद से सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए आने लगे। द्वापर में यदुवंशियों के गुरु महामुनि गर्ग ने अपनी संहिता में लिखा है, जब पहली बार गोवर्धन पूजा हुई थी तब इसकी पहली परिक्रमा श्री कृष्ण ने की थी। उनके पीछे पूरा ब्रज था। गोवर्धन श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। माना जाता है कि इसकी एक शिला के दर्शन करने से व्यक्ति को दोबारा धरती पर जन्म नहीं मिलता, उसे मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्ण के समय से लेकर आज तक भक्त लगातार गोवर्धन की परिक्रमा करते आ रहे हैं।
1: भगवान कृष्ण ने द्वापर में गिरिराज जी की पूजा कराई इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, और गिरिराज जी की जब पूजा कराई तो एक रूप से स्वयं कृष्ण गिरिराज जी के रूप में पूजे, एक रूप से पूजा विधि विधान से भगवान की पूजा करी, और गिरिराज जी की पहली परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने लगाई। जब पूजा कर दी तो गिरिराज जी की नंद बाबा ने पूछा, भाई अब ता करना है, दोनों के बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, तो वो माता को आगे करके गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने की। तो जो भगवान कृष्ण की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले गिरिराज जी हैं, तो हमारी क्यों नहीं करेंगे। जो व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उसकी सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है।
0: पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत 8 गज लंबा, 6 गज चौड़ा और 2 गज ऊंचा हुआ करता था, लेकिन पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण कालांतर में गोवर्धन पर्वत का आकार घटने लगा। इस कथा के मुताबिक एक बार पुलस्त्य मुनि धरती की परिक्रमा कर रहे थे। भारत के पश्चिम में मुनि ने हरे भरे सुंदर गोवर्धन पर्वत को देखा। फिर उसके पिता द्रोणाचल गिरी पर्वत से आग्रह किया कि मैं आपके बेटे को अपने साथ काशी ले जाना चाहता हूँ, वहाँ सभी मुनि इस पर बैठकर तपस्या करेंगे। श्राप के डर से द्रोणाचल मान गए और भारी मन से अपने बेटे को उनके साथ जाने को कहा। कथा में आगे उल्लेख मिलता है कि पुलस्त्य मुनि ने अपने तपोबल से गोवर्धन गिरी को अपने हाथ पर रख लिया, लेकिन गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि आप मुझे बीच में कहीं नहीं रखेंगे, एक बार धरती पर आप मुझे जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। मुनि ने ये शर्त मान ली। इसके बाद उनकी यात्रा आरंभ हुई और गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिए पुलस्त्य मुनि ब्रज क्षेत्र से गुजरे। ये तब की बात है जब यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। इस कथा में आगे वर्णन मिलता है कि वास्तव में गोवर्धन यहीं आने के लिए जन्मे थे।
1: पुलस्त्य ऋषि जी ने शर्त मान ली और अपने तपोबल से इसे अपने हथेली पर लेकर के यहाँ आए। जब इस ब्रजभूमि को देखा तो गिरिराज जी ने कहा मेरे प्रभु यह लीला करेंगे, तो उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ाया। पुलस्त्य ऋषि प्रमित हुए और वो शर्त को भूल गए और उन्होंने गिरिराज जी को यहीं स्थापित कर दिया। उन्हें अपना संध्या बंदन के बाद में उन्होंने विचार किया, चलो गिरिराज। गिरिराज जी ने कहा भाई हमने आपसे शर्त रखी थी, हम यहाँ से अब नहीं चलेंगे। तो ऋषि ने कहा तुम मुझे तिल तिल करके सता रहे हो, तो तिल तिल करके तुम घटोगे। गिरिराज जी को ऋषि का श्राप है, उससे गिरिराज जी पहले शिखर बहुत ऊंचे थे, अब धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं।
0: श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन की आस्था में पगी ब्रजभूमि पर हर साल आषाढ़ महीने के आखिरी हफ्ते में गोवर्धन मेले का आयोजन होता है। हर साल गुरु पूर्णिमा तक ब्रज में इस मेले की रौनक रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन मथुरा में मंदिर मंदिर मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद सावन के पहले दिन मेले का समापन हो जाता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुरु शिष्य परंपरा की एक और तस्वीर गोरखपुर में नजर आई। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर गोरखनाथ मंदिर में हमेशा की तरह विशेष अनुष्ठान हुआ। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आए। एक तरफ वो अपने गुरु अवेदनाथ और आदि गुरु गोरखनाथ का पूजन कर रहे थे, तो वहीं अपने शिष्य और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दे रहे थे। गुरु पूर्णिमा पर हर साल गोरखनाथ मंदिर में ये विशेष आयोजन होता है। इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ का विशेष पूजन किया। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को रोट अर्पित किया और अनुष्ठानों के सम्पन्न होने के बाद अपने शिष्यों और अनुयायियों को आशीर्वाद भी दिया। गुरु पूर्णिमा और नाथ पंथ का संबंध काफी गहरा है। नाथ पंथ में गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं माना जाता। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 3 दिन चलता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सदियों से परंपरा यूं ही चलती आ रही है। अब आपको लेकर चलते हैं साईं धाम।

गुरु पूर्णिमा के इस पावन मौके पर शिरडी साईं धाम में खासी रौनक है। यहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व का शिरडी में विशेष महत्व है। साईं बाबा को करोड़ों श्रद्धालु अपना सदगुरु मानते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के चरणों में नमन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस पावन मौके पर साईं बाबा का दर्शन और गुरु पूजन करने से गुरु की कृपा होती है और जीवन के दुख संकट और अज्ञान का नाश होता है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा शिरडी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है और लाखों लोग इस पर्व का हिस्सा भी बनते हैं।

0: बाबा का सजा दरबार है। चारों ओर फूलों का श्रृंगार है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं को ये भक्तों की सौगात है। शिरडी की रौनक बता रही है कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व शुरू हो चुका है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया है तो कोई सात समंदर पार से बाबा के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करने पहुँचा है। गुरु उत्सव के पावन पर्व की रौनक से चप्पा चप्पा दमक रहा है।
1: बाबा के दरबार आते हुए हमें कम से कम भी, मैं 2005 या 6 से जुड़ा था, तो अब बाबा की बहुत कृपा है। मतलब हमने दिन प्रतिदिन प्रगति देखी है। बाबा से दर्शन करो और दर्शन करने से मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। और मुझे लगता है कि सब साईं भक्तों को यहाँ आना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की सब साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा को गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। इस अवसर पर कोई साईं को सोना चांदी चढ़ाता है तो कोई गुरु दक्षिणा में रुपए पैसे दान देता है, लेकिन श्रद्धा में सब बराबर है। साईं के भक्त भी मानते हैं कि हर मनुष्य में भगवान देखने का साईं का संदेश यहाँ आकर साक्षात सच प्रतीत होता है। इस बार साईं बाबा को नेल्लूर के एक भक्त ने 642 ग्राम सोने का 1,03,00,000 रुपए का ये मुकुट अर्पित किया है। इस सोने के मुकुट पर दशावतार की मूर्तियां हैं।
2: गुरु पूर्णिमा का वजह से एक मुकुट लाया भगवान का अर्पण करने का। ये गुरु पूर्णिमा में ये मुकुट है नवग्रह का, बाबा का अर्पण करने का। ये मुकुट का वैल्यू है रफली 1 crore एंड इट इज वैल्यूड एट, वो मुकुट का ये नवग्रह का ये भगवान नवग्रह रूप है, भगवान साईं बाबा ऐसा है। मैं ये देने का मेरे को मौका मिला है वो दे दिया।
3: श्रीनिवास राव उन्होंने लगभग 642 ग्राम का सोने का मुकुट जो है वो बाबा को अर्पण किया है। उसकी कीमत जो है लगभग 1,03,00,000 है। वो बाबा के बहुत डेडिकेटेड डिवोटी है, हर साल में 2-3 बार आते हैं और संस्थान की जो चैरिटेबल एक्टिविटी रहती है उसमें हमेशा योगदान देते हैं।
0: ऐसे तो साईं का दरबार रोज इसी तरह भक्तों से आबाद रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर इस दरबार की रौनक कुछ अलग ही होती है। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिन चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत कक्कड़ आरती से हुई। आरती के बाद साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र ग्रंथ का जुलूस गुरु स्थान होकर द्वारका माई मंदिर में पहुंचा और यहां आए लाखों श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान मांगा।
3: गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत जो है आज हुई है। 3 दिन की उत्सव में आज सुबह कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकल गई और द्वारका माई में जो है अखंड साई चरित्र पारायण की शुरुआत हुई है। पूरी देश विदेश से लाखों साई भक्त जो है वो इस उत्सव में आने की आशंका है। बाबा के भक्त बाबा को जो है गुरु मानते हैं, तो यहाँ आने के बाद बाबा की झोली में भर भर के गुरु दक्षिणा जो देते हैं।
0: साईं बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इस 3 दिनों में बाबा के दर्शन का न केवल रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि हर बार की तरह इस बार भी चढ़ावे का नया कीर्तिमान बनेगा। फिलहाल तो शिरडी के साईं का ये धाम भक्ति के आनंद में मगन है, साईं के दर्शन भर से कृतज्ञ है और सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचे श्रद्धालु

0: के जोश से धन्य है। शिरडी से नितिन मिराणे की रिपोर्ट।
1: आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दिल में आस्था और मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए तटों पर पहुंचने लगी। हरिद्वार में भक्तों ने गंगा स्नान किया तो वहीं अयोध्या पहुंचे भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और फिर रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर भी पहुंचे। जय श्री राम के उद्घोष और भक्ति गीतों के बीच में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। ये सिलसिला अब भी जारी है। इसी तरह वाराणसी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के प्रमुख मठों आश्रमों और मंदिरों में गुरु दर्शन और पूजन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु अपने गुरुजनों का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लेते हैं। अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भंडारे भजन कीर्तन सत्संग का आयोजन भी हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ जीएन स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: प्रदर्शनकारियों ने हाइड्रोजन ट्रेन पर किया पथराव। बीजेपी प्रोटेस्ट में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में तोड़फोड़। ईरान ने अमेरिका का F-22 रैप्टर जेट मार गिराया। नन्ही सी उम्र में क्रिकेट का जुनून। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: राह सच्चाई की रात।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown.
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, गोवर्धन में वाद्य यंत्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन की गूंज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु, सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन से पहले जयपुर नगर निगम की सराहनीय पहल, शहर के 5 प्रमुख शिवालयों में अभियान की शुरुआत, शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र फूल से तैयार होगी जैविक खाद। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही हिमा दास, सावधानी बरतने की भी कर रही अपील। आज मनाया जा रहा इंटरनेशनल टाइगर डे, रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक विशेष कार्यक्रम, बाघ संरक्षण का दिया संदेश।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत, पहलगाम में निभाई जाएंगी भूमि पूजन। अमरनाथ में पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआत पर निभाई गई नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्म। 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक दर्शन, 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे भक्त। आस्था उमंग के साथ अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा के बीच में आगे बढ़ रहा यात्रियों का जत्था। कल से शुरू हो रहे सावन मेले को लेकर देशभर में तैयारियां तेज, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा विशेष इंतजाम। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाला राज्य के श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, दुम्मा बॉर्डर पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर हुआ मेले का शुभारंभ। मेले को लेकर प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम, श्रद्धालु मुख्य और बाहरी अर्घा के जरिए करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सुरक्षा के लिए 11,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी।

कल से 28 अगस्त तक चलेगा यह पवित्र मेला। इस बार लगभग 55 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा की दिख रही रौनक। राजधानी के अलग अलग इलाकों में सज चुके हैं कांवड़ कैंप। कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल से हो रही सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। रामनगरी अयोध्या में कांवड़ मेले के लिए व्यापक तैयारी। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। सरयू घाटों से लेकर प्रमुख मठ मंदिरों और श्री राम जन्मभूमि परिसर तक सुरक्षा यातायात सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए। शिव भक्तों राम भक्तों के आने की उम्मीद। शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था लागू। साफ सफाई पेयजल प्रकाश व्यवस्था का भी ख्याल रखा जा रहा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की रौनक। शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर निकले कांवड़िए। उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में गंगा जल लेने पहुंचे भक्त। जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी। सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज हुआ। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। श्रावणी मेले में कांवड़ियों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मथुरा में दिखा आस्था का अनोखा रंग। मुड़िया संतों ने ढप ढोलक और मृदंग की धुन पर निकाली शोभा यात्रा। गिरिराज जी की भक्ति में डूबे नजर आए सनातन गोस्वामी के अनुयायी। हरिनाम संकीर्तन करते हुए निकाली मुड़िया शोभा यात्रा। गुरु के सम्मान में सिर मुंडवाए नजर आए मुड़िया संत। शोभा यात्रा के दौरान मुड़िया संतों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। मुड़िया पूर्णिमा मेला संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन है। 500 साल पुरानी है ये पवित्र परंपरा। चकलेश्वर स्थित राधा श्याम सुंदर मंदिर से शुरू हुई ये मुड़िया शोभा यात्रा। नगर भ्रमण करते हुए राधा श्याम सुंदर मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई पवित्र यात्रा। कालकाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा की धूम। बड़ी संख्या में पहुंच रहे तमाम भक्त। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवघर विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा की पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह पर बंद हो जाएगी बाबा की स्पर्श पूजा। पूरा सावन महीने अर्घा में जल चढ़ाने के कारण आज भारी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं भक्त। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आई धर्मनगरी काशी। प्रमुख मठों आश्रमों और मंदिरों में गुरु दर्शन और पूजन के लिए उमड़े भक्त। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम महिलाएं और पुरुषों ने उतारी सनातनी गुरु की आरती। फतेहपुर शेखावटी में आज विभिन्न मंदिरों में मनाया जा रहा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। भक्त मंदिरों में भगवान की महागुरु के रूप में कर रहे पूजा अर्चना। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से भक्तों का मेला लगा। संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने किया पूजा पाठ। अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र दत्त मंदिर और विभिन्न गुरुपीठों में भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा। भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को अर्पित किए। मुंबई के एक भक्त ने मन्नत पूरी होने पर सोने का हार किया अर्पित। 47,00,000 रुपए आंकी गई इसकी कीमत। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। साईं बाबा का पुजारियों ने किया विधि विधान से पूजन और अभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया। साईं बाबा की उतारी गई विशेष आरती। फूलों से सजाकर निकाली गई साईं बाबा की पालकी। भक्तों ने गाए भजन कीर्तन। साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए साईं राम के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर और दरबार की गई भव्य सजावट। विदेश से भी पहुंच रहे श्रद्धालु। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने गुरु का किया पूजन। गुरु की उतारी गई आरती।
गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता, लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। राजस्थान की डीग में सीएम भजन लाल शर्मा ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंगला आरती में हुए शामिल। थूथुकुड़ी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर उमड़ा सघन जन सैलाब, हजारों भक्तों ने जलाए मिट्टी के दिए। गुरु पूर्णिमा के खास गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी, भक्तों ने किया पूजा पाठ। मथुरा में गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेले पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु उमड़े, जमकर लगाए जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह मुस्तैद दिखे जवान। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने अपने गुरु दिग्विजय नाथ और वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, दोनों की उतारी आरती। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर पतंजलि योगपीठ में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने शिष्यों को दिया गुरु कृपा का आशीर्वाद। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकार ने उकेरी अनोखी कलाकृति, पीपल के पत्तों पर बनाया महर्षि वेदव्यास की तस्वीर को। महर्षि वेदव्यास के साथ उनके चारों शिष्यों को अलग अलग पत्तों पर बनाई उनकी तस्वीर, गुरु शिष्य परंपरा को निभाया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में संतों ने की महंत संजय दास की पूजा, गुरु का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर महंत नृत्य गोपाल दास का हुआ पूजन, गुरु के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। पुलवामा में बुजुर्गों के लिए पुलवामा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वडोदरा में गौरी व्रत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान की डीग में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। अगरतला में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, सीएम साहा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। बिहार के मुंगेर में सरकार डिग्री कॉलेज के शैक्षणिक सत्र का आगाज हुआ, सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल। दिल्ली में इंडिया कुटियोर वीक शो का शानदार आयोजन हुआ, मशहूर डिजाइनर डॉली जे ने पेश किए अपने कलेक्शंस। फैशन शो में पारंपरिक भारतीय कारीगरी की झलक नजर आई, दुल्हनों के लिए लहंगे कॉकटेल गाउन और शादी समारोह के लिए खास डिजाइन पेश किए गए। भोपाल में मिली चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निषादपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, इंदौर उज्जैन की ओर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को होगा फायदा। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कार्यक्रम में राज्यभर से पहुंचे दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी, लगाई 230 स्थान की लंबी छलांग, लगाकर 48वें नंबर पर पहुंचे।

0: 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी, पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में शामिल हुए। टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कैप्टन शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने गुलवीर सिंह ने लहराया तिरंगा, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान अपने नाम किया। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं गुलवीर सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 10,000 मीटर दौड़ में ये भारत का पहला पदक। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल, 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो का वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलो वजन उठाकर पर्सनल बेस्ट हासिल किया, उसके बाद क्लीन एंड जर्क में 126 किलो वजन उठाते हुए सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 12 मेडल जीत लिए हैं और पदक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज है। गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर श्रीमद् भागवत गीता फिल्म सीरीज की घोषणा हुई, श्रीमद् भागवत गीता पर बनेगी 7 फिल्मों की एक लंबी सीरीज। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अमित राय की फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना रिलीज हो गया है, 7 अगस्त को फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार। इस फ्राइडे सिनेमाघरों में रिलीज हो रही स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के दर्शकों के लिए सरप्राइज है, फिल्म से पहले दिखेगी एवेंजर्स डूम्स डे के थिएट्रिकल ट्रेलर और रामायण के लेटेस्ट ट्रेलर की एक झलक। 67 साल के हुए संजय दत्त, बेटा बेटी ने शेयर किया इमोशनल सा पोस्ट, लिखा दुनिया के बेस्ट पापा। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार खत्म हुआ, कल रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके हैं रामायण के म्यूजिकल राइट्स। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सलमान खान ने बढ़ाया हाथ, पीड़ितों के लिए भेजा राहत सामग्री का सामान। खोसला का घोसला पार्ट 2 में हुई दिव्या खोसला की एंट्री, अनुपम खेर, भवन ईरानी, रणवीर शौरी, रवि किशन, निशांत वर्मा पुरानी स्टारकास्ट नजर आएगी। गुजराती फिल्म असंभव का टीजर जारी, 28 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चीन के शेंजेन में खुला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये दक्षिण चीन का सबसे बड़ा और व्यापक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इस म्यूजियम में 8 थीम वाले एग्जीबिशन हॉल्स हैं जो ब्रह्मांड, पृथ्वी, विकास, डायनासोर, इंसान, जीव विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी पर बेस्ड। इन 8 हॉल्स में 7,400 से ज्यादा असली फॉसिल्स रखे गए हैं। 7,400 से ज्यादा असली फॉसिल्स, 338 रेप्लिका मॉडल्स, 194 इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए ये म्यूजियम दर्शकों को पृथ्वी के विकास के बारे में बताएगा। शेंजेन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अपने कलेक्शन को जीवंत बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। बेल्जियम में एक छोटे सील के बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया, ये बेबी सील नॉर्थ सी से काफी अंदर तक गया था। सील का ये बच्चा लगभग 2 महीने का है, ये काफी कमजोर सा लग रहा है जो शायद अपने माता पिता से बिछड़कर यहां पहुंचा। फिलहाल बेबी सील को सील रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है, बच्चे को हल्का बुखार है लेकिन रेस्क्यू सेंटर में उसकी देखभाल की जा रही। जर्मनी में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है, सूरज की बढ़ती तपिश से बचने के लिए म्यूनिख में लिया जा रहा रिमोट कूलिंग सिस्टम का सहारा। रिमोट कूलिंग सिस्टम के जरिए दूर बैठे किसी भी जगह में बढ़ाई जा सकती है ठंडक, फिलहाल म्यूनिख में 4 रिमोट कूलिंग सिस्टम मौजूद। चीन में पेश किया गया दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल साथी रोबोट पांडा, झेजियांग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया। घर में रहने वाले छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है प्रोएक्टिव रोबोट पांडा। बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, स्पर्श को समझकर प्रतिक्रिया देता है। बच्चों में रोजाना की आदतों को सीखने में मददगार होगा रोबोट पांडा। अलग अलग लेवल पर बच्चों के विकास में बनेगा भागीदार। चीन में फाइटर रोबोट का वीडियो वायरल हुआ। मार्शल आर्ट्स की स्किल्स ने खींचा सबका ध्यान। जबरदस्त एनर्जी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की शुरुआत हो गई है। रोबोट में संभावित टारगेट को स्कैन करने पहचानने के लिए लगे हैं 3D लेजर विजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सावन के महीने का क्या है पूजा विधान? सावन के महीने में शिव कृपा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन महीने की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: कहीं पड़ रही है मानसूनी फुहारें, तो कहीं तगड़ी मानसूनी बौछार हो रही है। मूसलाधार बारिश ने देश के कई सारे इलाकों में परेशानी खड़ी कर दी। पहाड़ हैं तो दरक रहे हैं, वहां लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन मौसम के इन्हीं साइड इफेक्ट्स के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं हमारे देश के तमाम राहत बचाव एजेंसीज, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। साथ ही कुछ जगह तो लोकल्स भी बढ़ चढ़कर अपने इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं।
9: देश प्रदेश में अब मॉनसून फुल स्पीड में है। जाहिर है गर्मी और उमस से राहत भी है, लेकिन साथ ही तकलीफों का साया भी मंडरा रहा है। देश भर में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं, लेकिन प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में बचाव टीमें दिन रात एक कर दे रही हैं। जब तक प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंच जाती, उन्हें संकट से बचा नहीं लिया जाता, तब तक रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं। तो चलिए एक एक कर आपको मैदान से लेकर पहाड़ों तक हो रही भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी संख्या में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। मानसूनी बारिश की जद में देश का नॉर्थ ईस्ट रीजन बुरी तरह चपेट में है। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां नाजीरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यहीं के लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। इन लोगों ने नावों और बांस के बेड़ों की मदद से करीब 1000 से ज्यादा फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाई।
10: हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 थो, और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग मामा लोग बहुत लोग है, हमारा अपना ही लोग है, तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया सब लोग मिलके।
9: ये तस्वीर नागालैंड की है, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो कई लोग फंस गए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने यहां राहत बचाव का काम चलाया हुआ है। खबरों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीमापुर भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई तो यहां भी फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तिलवाड़ा में उफनाई मंदाकिनी में कुछ महिलाएं फंस गईं, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये महिलाएं दरअसल नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने गई थी, लेकिन नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो ये करीबन 1 घंटा वहीं फंसी रही, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर निकाला। फिलहाल तो मानसूनी सीजन में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को राहत देने, उनको रेस्क्यू करने के लिए देश की बचाव एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन वही इसी आफत की बारिश के बीच खुद के स्तर पर स्थानीय लोगों का भी राहत बचाव कैंपेन काबिले तारीफ है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
9: प्रदर्शनकारियों ने हाइड्रोजन ट्रेन पर किया पथराव। बीजेपी प्रोटेस्ट में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में तोड़फोड़। ईरान ने अमेरिका का F-22 रैप्टर जेट मार गिराया। नन्ही सी उम्र में क्रिकेट का जुनून। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
11: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
12: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
3: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
13: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
3: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
14: Because people who all watch games, they hear the voice.
3: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
8: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
5: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, गोवर्धन में वाद्य यंत्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन की गूंज। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु, सावन में करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन से पहले जयपुर नगर निगम की सराहनीय पहल, शहर के 5 प्रमुख शिवालयों में शिवार्पणम अभियान की शुरुआत, शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र, फूल से तैयार होगी जैविक खाद। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है हिमा दास, सावधानी बरतने की भी कर रही अपील। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे, रणथंबोर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक विशेष कार्यक्रम, बाघ संरक्षण का दिया संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। कांवड़ मेले की शुरुआत होते ही भोले के भक्त अपने अपने अंदाज में महादेव की आराधना में जुट गए हैं। कहीं आस्था के रंग नजर आ रहे हैं, तो कहीं भक्ति की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, हरिद्वार में कांवड़ मेले का शुभारंभ। कल से महादेव के सबसे प्रिय महीने यानी कि सावन की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार से लेकर काशी तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर बोल बम के जय घोष के साथ लाखों शिव भक्त कांवड़ मार्ग पर दिखाई देने लगे हैं।

0: सावन यानी शिव और शक्ति की आराधना का सबसे पावन और सर्वोत्तम समय। सावन यानी शिव भक्ति की अनवरत धारा। सावन यानी आस्था का महासंगम। सावन यानी व्रत, जप, तप और रुद्राभिषेक का पुण्यकाल। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सावन का हर दिन शिव भक्त व्रत, जप, तप और अभिषेक को समर्पित है। हरिद्वार में कांवड़ मेले का शुभारंभ हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
1: आज से 10-12 साल पहले कांवड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं, भोले बाबा की फुल कृपा जी।
0: कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी है। भगवा रंग में रंगे शिव भक्तों के कदम हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं। कई कांवड़िये तो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना भी हो चुके हैं, तो वही बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म नगरी पहुँच रहे हैं। हरिद्वार में नोटों से बनी इस कांवड़ की खूब चर्चा रही, जिसे 100, 50, 20 और 10 के नोटों से सजाया गया है। बारिश में नोट खराब न हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है, लिहाजा कांवड़ को पॉलिथीन से कवर किया गया है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले और इस अनूठी कांवड़ को तैयार करने वाले शिव भक्त दीपांशु ने भोलेनाथ से एक अनोखी मन्नत मांगी कि अगले साल वो इससे बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने जाएंगे। और जहां तक बात कांवड़ में लगे नोटों की है, तो वो इन पैसों को धर्मार्थ पर खर्च करेंगे।
2: बोले, मैं अभी हरिद्वार से मैंने कांवड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली। बोले, हम मेरा क्या कहते हैं, मतलब सपना था नोट वाली कांवड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कांवड़ लेने। इतने भी ये नोट हैं, हमारे शिवालय पे पहुँचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे और उनका भंडारा करवाएंगे।
0: इन्हीं में से एक लग्जरी कार के आकार वाली कांवड़ श्रद्धालुओं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस कांवड़ को आगे तिरंगे से सजाया गया है, जबकि ऊपर भगवान महादेव की प्रतिमा विराजमान है। आस्था और भक्ति की ऐसी भव्य तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है, जहां एक बहु काजल चौधरी अपनी 90 साल की सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा तक जा रही हैं।
3: अपने सासु ससुर की, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें, जब वो हमारे पास से जाए तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जो हमारे बच्चे भी पले फूले। और माता पिता की सेवा करना ही हमारा धर्म है।
0: इस साल करोड़ों कांवड़िया यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा और स्वागत के लिए प्रशासन भी तैयार है। ये तैयारी यूपी के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है।
4: हम हैं मेरठ के हाईटेक कंट्रोल रूम में, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम निगाह रखी जा रही है और यहाँ एक टाइम में लगभग 250 कैमरों का जो है एक्सेस लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे इस कैमरे जो तमाम ये कैमरे हैं उनसे नजर रखी जा रही है, क्या गतिविधियां कहां कहां चल रही हैं, कहां कहां के कैमरे बंद हैं या कहां कहां कौन सी परेशानी आ रही है, उसको लेकर के 24 घंटे यहां निगाह रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम में 250 जगहों का जो एक्सेस है वो लिया जा सकता है, 250 जगहें एक साथ देखी जा सकती हैं।
0: मेरठ में जहां पुलिस ने एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया है, वहीं हापुड़ में 17 कांवड़ मोबाइल टीम गठित की गई है, जो कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
5: 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीजन हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी।
0: मान्यता है कि सावन में श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी संकट दूर होते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
6: और देश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आस्था का ये महापर्व गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रमों तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर आस्था के अद्भुत रंग देखने के लिए मिले। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में भक्तों का तांता। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साई बाबा मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया। वहां सुबह से दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है।

0: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मथुरा के गोवर्धन में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। वाद्य यंत्रों के साथ हरिनाम के कीर्तन की गूंज से पूरी गिरिराज तलहटी गुंजायमान हो उठी। गुरु के सम्मान में सिर मुंडवाए मुढ़िया संत ढोलक और झांझ मजीरे की धुन पर नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। मुढ़िया मेला संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोवर्धन में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुढ़िया संतों के अलावा बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हुए। इस शोभा यात्रा के दौरान मुढ़िया संतों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चकलेश्वर स्थित राधा श्याम सुंदर मंदिर से सुबह 12 बजे मुढ़िया शोभा यात्रा महंत राम कृष्ण दास महाराज के निर्देशन में नगर भ्रमण के लिए निकाली गई, जो चकलेश्वर, हरिदेव जी मंदिर, दान घाटी मंदिर, बड़ा बाजार होते हुए राधा श्याम सुंदर मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मुढ़िया संत हरिनाम के कीर्तन के साथ नृत्य करते हुए निकले तो उनके आगे श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। मुढ़िया शोभा यात्रा को लेकर मान्यता है कि 500 वर्ष पूर्व बंगाल से आए सनातन गोस्वामी चकलेश्वर स्थित भजन कुटी में भजन करते थे, वहां उनका निधन हो गया। उनके निधन होने पर उस समय उनके शिष्यों ने पार्थिव शरीर के निकट बैठकर सिर मुड़वाए थे। उसी परंपरा को कायम रखते हुए हर वर्ष मुढ़िया संत गुरु पूर्णिमा पर मुंडन करवाकर शोभा यात्रा निकालते हैं। सोमवार को सनातन गोस्वामी के 470वें अंतर्ध्यान महोत्सव पर उनके अनुयायी संतों ने सिर मुड़वाकर मुढ़िया शोभा यात्रा के साथ मानसी गंगा की परिक्रमा कर परंपरा का निर्वहन किया। मुढ़िया शोभा यात्रा पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। करीब 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग को पुलिस ने कई जोन में बांटकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
1: मुढ़िया पूर्णिमा मेले में लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर लोग आते हैं और जो है परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर से ज्यादा परिक्रमा मार्ग परिक्रमा करते हैं। इस पूरे में पुलिस व्यवस्था के लिए 4-5 पॉइंट बहुत चैलेंजिंग होते हैं। उन चैलेंजिंग पॉइंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके सारे हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके जहाँ कहाँ बॉटलनेक्स है वहाँ पे फोर्स लगाते हुए पूरे परिक्रमा मार्ग को लगभग 9 सुपर जोन और 22 जोन में डिवाइड करके उसको डिप्लॉय किया है।
0: गोवर्धन में मुढ़िया पूर्णिमा के दिन सुबह से शिष्य और गुरु की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। शिष्यों ने गुरु से दीक्षा लेकर गुरु पूजन किया। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे।
2: आस्था और भक्ति की भव्य तस्वीर बाबा बर्फानी की यात्रा में भी देखने के लिए मिल रही है। मौसम की चुनौतियों के बीच बड़ी संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच बाबा के अनोखे भक्त भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा लिए उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु सुनील ने ऐसा संकल्प लिया है जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है बाबा बर्फानी के दरबार तक दंडवत यात्रा। अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन की आशा के साथ 413 दिनों से सुनील ने थर्माकोल की एक साधारण शीट पर दंडवत लेटकर यात्रा पूरी करने का संकल्प लिया। सुनील इंच इंच आगे बढ़ते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीर थक सकता है, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का विश्वास हर चुनौती पर भारी पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां भी सुनील पहुंचे वहां श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कोई उन्हें प्रणाम करता नजर आया तो कोई हर हर महादेव के जय घोष से उनका हौसला बढ़ा रहा है। हर कदम पर बाबा के प्रति उनके अटूट श्रद्धा लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। वाराणसी के काशी के सीर गोवर्धन पर स्थित रविदास जन्मस्थली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के हजारों रैदासियों के श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। संत रविदास जयंती पर लाखों की संख्या में यहां पर पहुंचे श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। यहां अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित कई देशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं जो सेवादार बन सेवा करते हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है संत रविदास जयंती पर आस्था का मेला। काशी के सीर गोवर्धन क्षेत्र में जन्मस्थली स्थल पर संत रविदास मंदिर का स्वर्ण शिखर वाला मंदिर स्थापित है। ये श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के बाद काशी का तीसरा स्वर्ण शिखर मंदिर माना जाता है। इसी जगह पर 650 वर्ष पूर्व संत रविदास का जन्म हुआ था। मंदिर बनने के बाद से हर वर्ष गुरु रविदास जयंती पर यहाँ विशाल श्रद्धालु समागम होता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा विदेशों में बसे एनआरआई रैदासी भक्त भी हर वर्ष जन्मस्थली पर मथा टेकने आते हैं और श्रद्धापूर्वक दान अर्पित करते हैं। संत रविदास मंदिर के पास वर्तमान में लगभग 300 किलोग्राम सोना है। इसमें स्वर्ण पालकी, स्वर्ण दीप, छत्र, मुकुट और स्वर्ण कलश सहित कई धार्मिक धरोहरें शामिल हैं। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना है। पटना में बाघ दिवस को अनोखे तरीके से मनाया गया। यहां पर चार शावकों को नाम दिया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। बाघ दिवस पर पटना जू में शावकों का नामकरण। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में चार शावकों का नामकरण किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसादन ने शावकों का नाम रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि रखा है। इस मौके पर बाघों के बच्चों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने बाघों की घटती संख्या, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और संरक्षण के लिए की जा रही कोशिश की जानकारी दी। आपको बता दें कि बाघों के संरक्षण के मामले में भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत के जंगलों में रहते हैं। देश के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इन दुर्लभ वन्य जीवों के सुरक्षित आवास बने हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आधुनिक निगरानी तकनीक, वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने बाघों की सुरक्षा को नई मजबूती दी है।
3: आज का दिन एक तरह से क्या कहिएगा, ऐतिहासिक दिन कहिए और शुभ दिन कहिएगा कि आज पूरी गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह हमको मौका मिला है। सौभाग्य का विषय है ये कि चार बच्चे बाघ का, जो नवजात शिशु है, ये साविक है, चार बच्चे का नाम हम लोग नामांकन किया है। और उसमें ये पहले बच्चे का नाम रुद्र है, दूसरा का तेजस। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए मैं एक बच्चे का नाम पूर्णिमा भी रखा हूँ और चौथा जो बच्चा है उसका नाम सृष्टि भी रखा हूँ। आज मेले सभा का विषय है और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, शुभ दिन है। और पूर्णिमा दिन जो है ना, हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, इसलिए मैं बहुत शुभ दिन में आया हूँ। मेरे सभा के लिए विषय
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सर्वेश हाई जंप प्रतियोगिता में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले हाई जंपर बने हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, CWG में भारत को हाई जंप में पहला पदक। जी हाँ, हाई जंप के लिए सर्वेश को शुरुआती दिनों में बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने गांव में देसी जुगाड़ अपनाया, खेतों से निकले मक्के के छिलकों और कपास से देसी मैट पर उन्होंने प्रैक्टिस किया और इस गेम में वो आगे बढ़े।
4: कामयाबी की इस छलांग ने सर्वेश कुमार को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वेश ने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ ही सर्वेश कॉमनवेल्थ हाई जंप कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिलहाल भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी इस कामयाबी पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। इस जीत के बाद से ही घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
5: खुशी लग रही है और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ उनके पास, क्योंकि भारत का पहला लड़का मतलब इंडिया का फर्स्ट प्लेयर है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और सिल्वर मेडल लेके आ गए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। प्रेशर ही आ रहा था, मतलब जब वो जंप करने जाते थे तो हम भगवान के पास जाते थे और उनके पास दुआ करते थे कि सर्वेश के मेहनत को फल देना, उनके कष्ट को फल देना, और भगवान ने दे दिया।
4: लेकिन सर्वेश के लिए कामयाबी की ये राह आसान नहीं थी। सर्वेश के पिता किसान हैं। शुरुआती दिनों में सर्वेश को खेल से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हाई जंप की प्रैक्टिस के लिए मैट खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं था। प्रैक्टिस के लिए सर्वेश ने देसी जुगाड़ अपनाया। उनके पिता ने मक्के के छिलके और कपास से एक मैट तैयार की। इस देसी मैट पर ही सर्वेश ने अभ्यास किया।
6: छोटे से गांव से चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना इतना मुश्किल है और वो उन्होंने करके दिखाया है। कोई सुविधा नहीं होती थी, कोई प्रॉपर ये नहीं मिलता था।
7: जो सुविधा नहीं थी तो वो कैसे प्रैक्टिस करता?
6: सुविधा नहीं थी तो उसको बोरी में मक्के का भूस डाल के वो पीठ बनाता था और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता था।
4: मेहनत और लगन रंग लाई और सर्वेश ने पहले जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। स्पोर्ट्स कोटे से सेना में नौकरी मिली तो सर्वेश को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन भी मिले। कॉमनवेल्थ गेम से पहले भी सर्वेश ने कई मेडल अपने नाम किए हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर सर्वेश ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो और सच्ची हो तो चुनौतियाँ खुद ब खुद घुटने टेक देती है। सर्वेश की ये कामयाबी आज लाखों नौजवानों के लिए मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
11: खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। पटना के स्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीम भी मौजूद रही।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर नजर आती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत की नई हाइड्रोजन ट्रेन पर पत्थरबाजी की है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के सबसे ज्यादा तेज तरार फाइटर जेट F-22 रैप्टर को ईरान ने मार गिराया है, इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई नवेली हाइड्रोजन ट्रेन पर पथराव किया जिससे ट्रेन को काफी नुकसान हुआ है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन पर जमकर पत्थरबाजी हो रही है और भारी हंगामा मचा हुआ है। वीडियो के साथ दावा किया गया है कि यह घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन की है जहां सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत की नई हाइड्रोजन ट्रेन को निशाना बनाते हुए उस पर पथराव किया और तोड़फोड़ की। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि दिल्ली में जंतर मंतर की ओर मार्च के दौरान एक स्टेशन पर खड़ी हाइड्रोजन ट्रेन पर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है। घटना के संबंध में अधिकारियों की ओर से जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है। बताया जा रहा है कि ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिस पर दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो से जुड़ी खबर की इंटरनेट पर तहकीकात की। हमें जो खबर मिली उसके मुताबिक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलाई जा रही है, जबकि वायरल वीडियो के साथ दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में हाइड्रोजन ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। मतलब ये कि वीडियो दिल्ली का नहीं हो सकता, अगर दिल्ली का होता तो फिर ये हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है।

0: कोई और ट्रेन हो सकती है, क्योंकि सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में इस वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 14 जून को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुए वीडियो में वायरल क्लिप वाला हिस्सा नजर आया। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक यह घटना बिहार के पटना स्थित दानापुर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की है, जहां बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थी ट्रेन के लेट होने के कारण उग्र हो गए थे। नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, जो बाद में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प और पत्थरबाजी में बदल गया। पड़ताल के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर 14 जून को अपलोड हुआ वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल क्लिप वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बिहार में ट्रेनों के विलंब होने से परेशान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। छात्रों की इस पत्थरबाजी और उग्र प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, जिससे मौके पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। जांच के दौरान हमें 14 जून को एक एक्स यूजर का पोस्ट मिला। इस पोस्ट में भी वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। पोस्ट के कैप्शन में बताया था कि यह वीडियो बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने ट्रेन लेट होने और परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की थी। आगे की जांच में हमें एक वेबसाइट पर भी 14 जून को इस मामले पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में हजारों की संख्या में उम्मीदवार बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। यह परीक्षा दो पालियों में होनी थी। इस दौरान ट्रेन लेट होने से नाराज अभ्यर्थी पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर उतर गए, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। ट्रैक पर मौजूद भीड़ के द्वारा किए गए पथराव के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। खोजने पर हमें इसी तरह के एक वायरल पोस्ट पर उत्तर रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल की तरफ से किया गया रिप्लाई मिला। पोस्ट के जरिए बताया गया था कि वायरल वीडियो में दिख रही ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है। इस वीडियो को पुराना बताते हुए स्पष्ट किया गया है कि हाइड्रोजन ट्रेन की सेवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर पथराव का दावा बेबुनियाद है। वायरल हुआ वीडियो बिहार का है, जहां बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों ने ट्रेन पर पथराव किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक फाइटर जेट क्रैश होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को जमींदोज कर दिया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: ईरान और अमेरिका के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका लगातार ईरान के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एयरपोर्ट पर आग की लपटों में घिरा एक फाइटर जेट दिख रहा है और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद ईरान ने अमेरिका के सबसे नए और सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को मार गिराया। ईरान अब एक सुपर पावर है, एक ऐसा सुपर पावर जिसने अमेरिका को हराया है। अगर इस इलाके के देशों में थोड़ी भी समझदारी है तो उन्हें अमेरिका के बजाय ईरान का साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वजह है अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक माना जाने वाला लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर, जिसे ईरान ने मार गिराया है। बिल्कुल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसी दावे के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखा। हमें यह विमान किसी भी एंगल से अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक माना जाने वाला लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर नहीं लगा, इसीलिए हमने दो तस्वीरें, यानी एक ये विमान और साथ ही साथ दूसरा विमान, दोनों को साथ रख के इनको मिलाने की कोशिश की। हमें दोनों में कुछ भी सिमिलर नजर नहीं आया। ऐसे में हमें इस दावे पर शक हुआ, जिसके बाद हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। सवाल पहला यह था कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे विमान की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल, अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। एक और सवाल जो हमारे मन में आया वो ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें अमेरिकी लड़ाकू प्लेन को मार गिराए जाने के बारे में हाल फिलहाल में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। ईरान के सरकारी न्यूज आउटलेट्स पर भी दावे की पुष्टि करती कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान यूके के एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रहा वीडियो मिला। 10 जुलाई को शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया था कि यह हादसा ग्रीस में हुआ था। ग्रीक वायुसेना का एक F-16 फाइटर जेट 9 जुलाई को ज़ाकिंथोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। सर्च के दौरान हमें इस प्लेन हादसे से जुड़ी कई रिपोर्ट्स मिली। 9 जुलाई को छपी इन रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आ गई और विमान में आग लगने का संकेत मिला, जिसके कारण उसे बिना लैंडिंग गियर के ही उतारना पड़ा। इस क्रैश लैंडिंग से रनवे पर आग लगी, जिसके बाद फायर फाइटर्स और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई थी कि फाइटर जेट रनवे पर कई मीटर तक फिसला और उसमें आग लग गई। फायर फाइटर्स ने तुरंत विमान पर फोम डालकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे के दौरान अच्छी बात यह रही कि पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल आया और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। एयरपोर्ट के कर्मचारियों और आम लोगों को भी कोई चोट नहीं आई। हालांकि ज़ाकिंथोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर कुछ समय के लिए कामकाज रोकना पड़ा। इस तरह से हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो ग्रीक एयरफोर्स का F-16 फाइटर प्लेन है। 9 जुलाई को तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इसमें आग लग गई थी। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको वायरल दुनिया में लिए चलेंगे, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं आपको ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: कहते हैं जब दिल में संगीत बज जाए तो कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, लेकिन जब ये जादू इंसान की जगह एक प्यारे से डॉगी पर चढ़ जाए तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसी बात की मिसाल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीवी पर एक डांस शो चल रहा है, स्क्रीन पर कलाकार शानदार अंदाज में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी हर बीट हर स्टेप का असर सामने मौजूद डॉगी पर साफ दिखाई देता है। डॉगी भी पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचने लगता है, कभी उछलता है, कभी अपने पंजों पर थिरकता है, तो कभी स्क्रीन पर नजरें टिकाए ऐसे झूमता है मानो खुद भी इस डांस शो का हिस्सा हो। लेकिन तभी कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट, किसी ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। बस फिर क्या था, डॉगी का डांस तो रुका ही, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। वो नाराजगी भरी नजरों से टीवी की ओर देखने लगता है, जैसे कह रहा हो अरे भाई म्यूजिक बंद क्यों कर दिया, चलाओ ना। उम्र भले ही छोटी हो लेकिन क्रिकेट का जुनून किसी बड़े स्टार से कम नहीं। बल्ला हाथ में आते ही यह नन्ना खिलाड़ी कभी चौका चढ़ता है तो कभी छक्का लगाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते बच्चे के हर शॉट में गजब का जोश और हर स्ट्रोक में बड़े क्रिकेटरों वाली झलक दिखाई देती है, मानो मैदान पर कोई प्रोफेशनल बल्लेबाज उतर आया हो। और फिर आता है सबसे दिलचस्प पल, रनआउट से बचने के लिए नन्हा खिलाड़ी पूरे जोश के साथ डाइव लगा देता है। उसकी ये कोशिश देखकर ऐसा लगता है जैसे जीत की जंग में एक एक रन की कीमत उसे अच्छी तरह पता हो। इतना ही नहीं, शानदार बल्लेबाजी के बाद बल्ला उठाकर जो एक्सप्रेशन देता है वो किसी बल्लेबाज की सेंचुरी सेलिब्रेशन से कम नहीं लगता। नन्हे क्रिकेटर का यही जोश, मासूमियत और बड़े खिलाड़ियों जैसी अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही हैं। हंसी अगर दिल से निकले तो उसे सुनकर दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान आ ही जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नन्हे फैन की खिलखिलाहट भी कुछ ऐसी ही है जो हर किसी का दिल जीत रही है। वीडियो में एक छोटा बच्चा बड़े ध्यान से टीवी पर मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी देखता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कार्टून में मजेदार शरारतें और फनी सीन सामने आते हैं वैसे वैसे बच्चे की हंसी भी और जोरदार हो जाती है। कभी वो ठहाके लगाकर हंसता है तो कभी हंसते हंसते खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। उसकी मासूम खिलखिलाहट कमरे का माहौल ही बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कार्टून से ज्यादा मजेदार बच्चे का हंसने का अंदाज हो। बच्चे की बेफिक्र हंसी और चेहरे पर छलकती खुशी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। यही वजह है कि यह प्यारा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहते हैं माँ का साथ सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जब एक जैसी ड्रेस में दो लोग सामने आ जाए तो बड़ों बड़ों को भी धोखा हो सकता है। फिर ये तो एक नन्हा बच्चा था। वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में नजर आता है, तभी उसकी नजर लाल रंग की ड्रेस पहने एक महिला पर पड़ती है। मजेदार बात यह है कि उस महिला ने बिल्कुल वैसी ही लाल रंग की ड्रेस पहन रखी होती है जैसी बच्चे की माँ ने पहनी है। बस फिर क्या था, नन्हा मासूम बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को ही अपनी माँ समझ बैठता है और उसके साथ चलने लगता है। लेकिन कुछ ही कदम बाद असली माँ सामने आ जाती है। अब बच्चे के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देती है। वो कभी एक महिला की तरफ देखता है तो कभी अपनी माँ की ओर। उसके चेहरे के भाव मानो कह रहे हो, अरे मैं तो गलत मम्मी के साथ चला गया था। आखिरकार नन्हा अपनी असली माँ का हाथ मजबूती से थाम लेता है और उनके साथ वहाँ से चल देता है। बच्चे की मासूम गलती और उसके चेहरे पर उभरते प्यारे एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। एटीएम की सुरक्षा के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली को पहरा देते देखा है? वायरल वीडियो में एक बिल्ली एटीएम मशीन के बिल्कुल किनारे बड़े आराम से बैठी नजर आती है। तभी एक शख्स पैसे निकालने के लिए मशीन के पास पहुंचता है। जैसे ही वो एटीएम में हाथ डालकर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है, बिल्ली तुरंत एक्टिव हो जाती है। कभी वो अपने पंजे से उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है तो कभी ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देती है मानो हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हो। उसका अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एटीएम की सेल्फ अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड हो जो बिना जांच पड़ताल किसी को पैसे निकालने नहीं देगी। शख्स जितनी बार मशीन की तरफ हाथ बढ़ाता है, बिल्ली भी उतनी ही मुस्तैदी से उसे रोकने की कोशिश करती है। बिल्ली की चौकसी और उसके मजेदार हाव भाव वीडियो को और भी दिलचस्प बना देते हैं। माँ का गुस्सा, बच्चे की शरारत और बीच में पापा की स्मार्ट एंट्री। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक परिवार की ऐसी मजेदार नोकझोंक दिखाता है जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। वीडियो में एक माँ हाथ में चप्पल लिए अपनी नन्ही बच्ची के पीछे दौड़ती नजर आती है। लगता है कि बच्ची ने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसके बाद माँ उसे सबक सिखाने के मूड में है। उधर पापा आराम से एक बड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े रखते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनकी नजर घबराकर भागती बच्ची पर पड़ती है और वो फौरन एक मजेदार तरकीब निकाल लेते हैं। पापा झट से बच्ची को उसी बड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर छिपा देते हैं। माँ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन बच्ची नजर नहीं आती। कुछ पल के लिए उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर नन्ही शैतान कहाँ गायब हो गई। इधर बैग के अंदर छिपी बच्ची सुरक्षित रहती है और पापा के इस रेस्क्यू मिशन की वजह से चप्पल की मार से बच जाती है। माँ का गुस्सा, पापा की फूर्ती और बच्ची की मासूम शरारत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर बात खाने की हो तो जानवर भी बड़े ध्यान से हर बात समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसी बात का मजेदार सबूत है। वीडियो में एक व्यक्ति और उसका पालतू डॉगी साथ साथ बैठे नजर आते हैं। उनके सामने एक घंटी टंगी होती है, वहीं पास में एक महिला भी खड़ी रहती है। जैसे ही व्यक्ति घंटी बजाता है, महिला तुरंत उसके मुंह में खाने का एक निवाला रख देती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार लगातार होता है। डॉगी पूरी घटना को बड़े गौर से देखता रहता है मानो हर नियम समझने की कोशिश कर रहा हो। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में डॉगी को भी पूरा खेल समझ आ जाता है। वो अपने पंजे से घंटी बजाता है और खाने का इंतजार करने लगता है। उसका अंदाज देखकर ऐसा लगता है मानो वह कह रहा हो, अगर घंटी बजाने से खाना मिलता है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। डॉगी की समझदारी और उसके प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। संगीत की कोई भाषा नहीं होती और शायद यही वजह है कि इसकी धुन इंसानों के साथ साथ जानवरों के दिल को भी छू जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसी खूबसूरत तालमेल की कहानी बयां करता है। वीडियो में एक माँ बड़े सुकून के साथ पियानो बजाती नजर आ रही है। पीछे उनके नन्हा बच्चा खड़ा होकर इस खूबसूरत पल को देख रहा है। वहीं पास में बैठा एक प्यारा सा डॉगी भी पूरे ध्यान से पियानो की धुन सुनता दिखाई देता है। जैसे जैसे पियानो की मधुर धुन कमरे में गूंजती है, डॉगी भी अपनी आवाज से उसका साथ देने लगता है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है मानो वो भी पियानो की धुन के साथ अपना सुर मिला रहा हो। कभी वो गर्दन उठाकर सुर लगाता है तो कभी पूरे मन से संगीत का हिस्सा बनने की कोशिश करता नजर आता है। माँ की मधुर धुन, बच्चे की मासूम मौजूदगी और डॉगी का अनोखा म्यूजिकल परफॉर्मेंस इस वीडियो को बेहद खास बना देता है। आराम में खलल किसे पसंद है, और अगर नींद गहरी हो तो फिर कोई भी उसे बीच में डोक दे, ऐसे में नाराजगी तो बनती है। ये पांडा भी कुछ ऐसे ही अंदाज में लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक पांडा बड़े आराम से गहरी नींद का आनंद लेता नजर आ रहा है। तभी चिड़ियाघर का एक कर्मचारी वहां पहुंचता है और उसे दूसरी जगह करने की कोशिश करता है, लेकिन जनाब की नींद में खलल पड़ते ही पूरा मिजाज बदल जाता है। पांडा कभी हाथ पैर हिलाकर तो कभी अपने मजेदार हाव भाव से कर्मचारी को साफ इशारा करता है कि प्लीज मेरी नींद खराब मत करो। कर्मचारी जितनी बार उसे हटाने की कोशिश करता है, पांडा उतना ही मासूम मगर मजेदार नाराजगी दिखाते हुए उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है। उसकी हर प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगता है मानो वो कह रहा हो, सोने दो भाई, बाकी काम बाद में कर लेना, क्योंकि ये आराम का मामला है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: गुरु का मान, ज्ञान का सम्मान, गुरु शिष्य की महान परंपरा का पर्व, शिव भक्ति के संग कांवड़ के रंग, भारत बना टाइगर कैपिटल, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
10: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: सावन के महीने का क्या है पूजा विधान? सावन के महीने में शिव कृपा से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन महीने की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। गुरु शिष्य की महान परंपरा का पर्व गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों की तरफ से गुरु वंदना। शिव भक्ति के संग कावड़ के रंग गुड न्यूज टुडे पर। करेंसी नोटों की कावड़ के साथ लग्जरी कार की रेप्लिका पर भोलेनाथ की प्रतिमा दिखे। और भारत बना टाइगर कैपिटल, भारत में अब दुनिया के 70% बाघ। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: देशभर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी में संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना। पटना के स्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिवसागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली।

आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात गुरु पूर्णिमा की। गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है और इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। साथ ही साथ कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का भी सम्मान किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साई मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साई बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साई बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणे, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: और अब बात करेंगे श्रावण मास की, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री गंगा जल भरने के लिए घरों से निकल चुके हैं अपनी कावड़ लेकर, जबकि कई कावड़ यात्री तो गंगा जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि सावन के पहले सोमवार तक शिवलिंग का जलाभिषेक कर सके। शहर निकलने वाली कावड़ यात्रा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

0: कंधे पर रंग बिरंगे कावड़ और बोलबम के जयकारे लगाते हुए शिवालयों की ओर निकल चुके हैं कावड़ यात्री। इनमें कोई अकेले ही कावड़ लेकर चल रहा है, कोई दोस्तों के साथ और कोई परिवार संग कावड़ लेकर जा रहा है। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें हरिद्वार के गंगा घाट से आई हैं, जहां गंगा जल भरने के लिए न सिर्फ बड़ी संख्या में कांवड़िए अब पहुंच रहे हैं, बल्कि कई कांवड़ यात्री तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर कूच भी कर चुके हैं। इनमें कोई पहली बार कांवड़ लेकर जा रहा है, जबकि कोई दूसरी और तीसरी बार, और कोई सालों से कांवड़ लेकर जा रहा है।
1: हरियाणा से कांवड़ लेके जा रहे हैं, आज से 10-12 साल पहले कांवड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं। भोले बाबा की फुल कृपा जी, जो हमने मांगा उनसे ज्यादा ही भोलेनाथ ने दिया है और कभी भी आज तक कष्ट नहीं हुआ, उनकी फुल कृपा है। भोलेनाथ जी बोल, शंकर भगवान की जय।
2: गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। हाँ जी, पिछली बार 51 लीटर था, अपनी बार 71 लीटर।
3: कान और रोहतक हरियाणा से
4: कांवड़ लेके जा रहे हैं।
3: हाँ जी,
4: मन में इच्छा है,
3: मन में इच्छा है कि माँ बाप की सेवा हो जाए, सभी भक्तों की सेवा बढ़िया हो जाए, सभी अपने अपने घर जाएं, अच्छे भगवान के दर्शन करें।
4: पहले लेके गए कभी कांवड़?
3: हाँ जी, 10-12 साल हो गए।
4: अच्छा, नहीं होता
3: मतलब ही नहीं जी, बहुत कृपा रही है भोलेनाथ की।
0: कांवड़ यात्रा के लिए कई जरूरी और कठिन नियम होते हैं, जिन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान पालन करना बहुत अहम होता है। बावजूद इसके आस्था के इस कठिन सफर पर निकले इन शिव भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं।

0: देवादी देव महादेव पर अटूट विश्वास रखकर ये शिव भक्त यूं ही झूमते गाते जयकारा लगाते सावन के पहले सोमवार पर जल अभिषेक की मनोकामना लेकर आगे बढ़ चले हैं।
1: बस नहीं बस बड़ा खुश रखा बस
2: ये दूसरी बार ही है बोला था घर बन जाएगा तो घर बन के तैयार हो गया और घर में थोड़ा सुख शांति से रहते हैं। पहले लड़ाई होती थी अब नहीं होती और अब तसल्ली से रहते हैं घर के अंदर और ये मन्नत है मेरे घर वाले मेरे साथ खुश रहे।
0: कावड़ यात्रा का श्री गणेश होते ही इनके अनोखे रंग भी नजर आने लगे हैं। एक से बढ़कर एक कावड़ सड़कों पर दिखने लगे हैं। इनमें कोई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा कंधों पर लेकर चल रहा है, कोई रंग बिरंगी लाइटों से सजी कावड़ लेकर आया है, कोई लग्जरी कार की रेप्लिका पर भगवान शिव की प्रतिमा रखकर कावड़ यात्रा कर रहा है, कोई श्रवण कुमार की तरह माता पिता को कंधे पर उठाकर कावड़ यात्रा पर निकल चुका है और कोई 10, 20, 50 और 100 की नोटों से सजी कावड़ लेकर जा रहा है।
3: बोले मैं अभी हरिद्वार से मैंने कावड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली।
4: क्या मन है नोटों की कावड़ ले जाने?
3: बोले हम मेरा क्या कहते हैं मतलब सपना था नोट वाली कावड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कावड़ लेने।
4: कितने नोट लगाए?
3: बोले आप देख सकते हो मेरे पीछे जो कावड़ है इसमें अनगिनत नोट है, इसकी कोई गिनती नहीं है।
4: कौन से नोट लगाए?
3: इसमें 50 के, 100 के, 10 के और 20 के नोट हैं आपके।
4: क्या करोगे कावड़ नोटों पर जाके?
3: जितने भी ये नोट हैं हमारे शिवालय पे पहुंचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे। भोले बाबा के हर साल आते हैं कावड़ लेने, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे, इस साल कुछ अलग करा हमने। तुम्हारी मतलब ऐसा था मन में कि नोटों कावड़ लेके जाने, तो बस नोट लगा दिए?
4: कितने नोट लगाए होंगे?
3: जी ये नहीं बताइए, अनगिनत नोट है लेकिन नहीं है। इसे बनाने में टोटल हम 9 जने हैं, 9 लोगों को एक दिन और एक रात लग गई पूरी।
0: कावड़ यात्रियों के निकलते ही शहर शहर कावड़ यात्रा रूट पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। कहीं कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है, कहीं ड्रोन से निगरानी हो रही है और कहीं पुलिस की टीम ग्राउंड पर उतरी है और कहीं तकनीक का सहारा लेकर कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पुलिस के आला अफसर पूरे लाव लश्कर के साथ कावड़ रूट पर पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए।
5: देखिए लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 की फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 9 कंपनी हमारी पीएसी और आरएफ इत्यादि लगाई गई है, एटीएस लगाई गई है, बीडीएस की टीम है, इसमें एएस चेक की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा जो स्पेशल है टेथर ड्रोन भी लगाया गया है। 3 हमारे ड्रोन्स हैं जो कि एक एक चीज जूम करके 500 से 600 मीटर तक देख सकते हैं, एक ही स्थान से एक एक चीज जो दिखाई देती है उसमें। इस प्रकार से हर पॉइंट पर लगभग आप 520 ऐसे पॉइंट है जहां पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ पूरी पेट्रोलिंग पिकेटिंग, आप जानते हैं कि 9 जोन है, 9 सुपर जोन है, 16 जोन है और 89 प्लस 141 सेक्टर सब सेक्टर हैं और सुपर सुपर जोन भी हमारे 6 बनाए गए हैं, एडिशन एसपी से लेकर 6 एडिशन एसपी और 16 डीएसपी से लेकर के पूरा 30 इंस्पेक्टर जो बाहर से ये आए हुए हैं, बाकी हमारे जिले की फोर्स अलग से डिप्लॉय किया गया है।
0: उत्तराखंड और यूपी की तरह ही बिहार में भी कावड़ यात्रा की रौनक दिखाई देने लगी है। मुंगेर जिले में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है, वहां लगभग 105 किलोमीटर लंबे कच्चे कावड़ पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार 7 आधुनिक टेंट सिटी बनाए गए हैं, जहां कावड़ियों के लिए आराम, पीने के पानी, लाइट, शौचालय और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इन टेंट सिटीज में रोजाना भजन, भक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
6: इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि जो हम लोगों ने तैयारी यहाँ पे की है कच्चे कावड़िया पथ पर, जो आकर्षक हम लोगों ने गेट बनाया है शिव की गुफा के तौर पे, उसको दिखाया है हम लोगों ने। उसके अलावा हर जगह हमारे हेल्थ कैंप्स लगे हैं, जो भी लाइट्स हम लगाते हैं वो काफ़ी डेकोरेटिव हैं, ताकि बाहर से जो भी लोग आते हैं हमारे राज्य में, बिहार राज्य में कावड़ बन के, वो लोग भी एक बिहार की अच्छी छवि को लेकर यहाँ से जाए, जो भी सुविधा यहाँ पे।
0: कावड़ यात्रा श्रावण मास की सबसे बड़ी और लोकप्रिय आस्था का प्रतीक है। ये यात्रा केवल पैदल चलना नहीं बल्कि शारीरिक कष्ट, संयम और भक्ति का अद्भुत मेल है। जो पूरे श्रावण मास के दौरान दिखाई देने वाली है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे बाघों की। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। आज से करीब 16 साल पहले कई देशों की तरफ से बाघों को बचाने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसका नतीजा साफ नजर आने लगा है। बाघों को बचाने में भारत का योगदान सबसे बड़ा साबित हुआ। दुनिया भर में ऐसे 13 देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया की 70% से ज्यादा बाघों की आबादी अकेले भारत में, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

0: बाघों को अदम्य शक्ति, साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से जंगलों में उनका सबसे ज्यादा दबदबा होता है। भले ही कहावतों में शेर को जंगल का राजा बताया जाता है, लेकिन हकीकत में घने जंगलों में हुकूमत बाघों की ही होती है। भव्य और प्रभावशाली बनावट की वजह से बाघों को ललकारने का जवाब जंगल के दूसरे बाशिंदे नहीं दे पाते। 16 साल पहले शुरू हुए एक अभियान की वजह से भारत दुनिया का टाइगर कैपिटल बन चुका है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई देशों की तरफ से बाघों को बचाने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया था। उसका नतीजा अब सामने है। बाघों के संरक्षण के मामले में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। यहाँ अब बाघों की संख्या 3682 हो चुकी है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिल करके रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: पहले बाघों की संख्या में लगातार बनी रही कमी की कई वजह रही है, जिनमें बढ़ते जंगलों की कटाई, अवैध शिकार, गलती से रिहायशी इलाकों में घुसने पर मारे जाना, टाइगर टूरिज्म, नाकाम प्रोजेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वजह शामिल रही।
2: तो देश के लिए अच्छी खबर है, 29 जुलाई 2026 आज हम वर्ल्ड टाइगर डे मना रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर टाइगर की प्रजातियां अभी भी जिंदा हैं, उनमें भारत एक है। और अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त भारत में 3682 वाइल्ड टाइगर्स हैं, जो कि 58 फॉरेस्ट रिजर्व में अभी भी हैं। यानी कि अगर दुनिया के हिसाब से पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं,

तो आज वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, भारत के लिए अगर देखा जाए तो गर्व की बात यह है कि दुनिया के जिन गिने चुने मुल्कों में इस वक्त टाइगर की प्रजाति है उनमें भारत सबसे अव्वल नंबर पर आता है। 58 रिजर्व्स हैं जहां पर 3682 वाइल्ड टाइगर्स रहते हैं।

0: बाघों की संख्या लगातार बनी रहे, कमी ना आए, इसी को देखते हुए 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे घोषित किया गया था। बढ़ते जंगलों की कटाई, अवैध शिकार, गलती से रिहायशी इलाकों में घुसने पर मारे जाना, टाइगर टूरिज्म, नाकाम प्रोजेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये तमाम ऐसी वजह हैं जिस वजह से ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। लेकिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और ये वो वक्त था जब देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और उस समय देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी कि 2022 तक अगर देखें तो इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान के रामगढ़ पुरुषधारी टाइगर रिजर्व जो सबसे नया अभ्यारण माना जाता है। तो देश भर में ऐसे 13 जगह हैं, दुनिया भर में ऐसे 13 देश हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीनियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, ये तमाम देश ऐसे हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। और बाघों की आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा 70%, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि 70% हिस्सा भारत में मौजूद है, जो तमाम इकोसिस्टम है, परिस्थितियां हैं, इसको टाइगर के अनुकूल बनाया गया, ये सबसे बड़ी वजह है। जंगल में जीव जंतुओं के बीच संतुलन बनाए रखना, ये तमाम ऐसी मानदंड है जिनको देखते हुए टाइगर रिजर्व्स में इन तमाम टाइगर्स को छोड़ा गया। भारत के लिए बाघ जानवर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहर और देश का राष्ट्रीय पशु भी है और इसीलिए आज के दिन इसे मनाया जाता है। मौसम की बात कर लेते हैं, कहीं मानसूनी फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं तगड़ी मानसून बौछार हो रही है। मूसलाधार बारिश ने देश के कई इलाकों में परेशानी खड़ी कर दी है। पहाड़ हैं तो दरक रहे हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, मैदान हैं तो नदियां उफान पर हैं, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लेकिन मौसम के इन्हीं साइड इफेक्ट से दो दो हाथ कर रही है हमारे देश की तमाम राहत और बचाव एजेंसियां, जो कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ जगहों पर लोकल्स भी बढ़ चढ़ कर अपने इलाकों में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं।
1: देश में अब मॉनसून फुल स्पीड में है, जाहिर है गर्मी और उमस से राहत भी है लेकिन साथ ही तकलीफों का साया भी मंडरा रहा है। देश भर में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं लेकिन प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में बचाव टीमें दिन रात एक कर दे रही हैं। जब तक प्रभावितों तक मदद नहीं पहुँच जाती, उन्हें संकट से बचा नहीं लिया जाता, तब तक रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं। तो चलिए एक एक कर आपको मैदान से लेकर पहाड़ों तक हो रही भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां भारी संख्या में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। मॉनसूनी बारिश की जद में देश का नॉर्थ ईस्ट रीजन बुरी तरह चपेट में है। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां नाजीरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यहीं के लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। इन लोगों ने नावों और बांस के बेड़ों की मदद से करीब 1000 से ज्यादा फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाई।
2: हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग मामा लोग बहुत लोग है, हमारा अपना ही लोग है, तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया सब लोग मिलके।
1: ये तस्वीर नागालैंड की है जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो कई लोग फंस गए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने यहां राहत बचाव का काम चलाया हुआ है। खबरों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीमापुर भी बाढ़ की चपेट में आए हैं, ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई तो यहां भी फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तिलवाड़ा में उफनाई मंदाकिनी में कुछ महिलाएं फंस गईं, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये महिलाएं दरअसल नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने गई थी, लेकिन नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो ये करीबन एक घंटा वहीं फंसी रही, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर निकाला। फिलहाल तो मानसूनी सीजन में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को राहत देने, उनको रेस्क्यू करने के लिए देश की बचाव एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं। लेकिन वहीं इसी आफत की बारिश के बीच खुद के स्तर पर स्थानीय लोगों का भी राहत बचाव कैंपेन काबिले तारीफ है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन

हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन यानी श्रावण का जो महीना है इसकी महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक महीना माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये चातुर्मास के 4 महीने हैं और उसमें श्रावण का महीना पहला महीना है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से पूरी तरीके से शिव जी से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, हलाहल विष पिया था। विष के पान करने की वजह से, विष पीने की वजह से चूंकि शरीर में गर्मी हुई, विष की उग्रता आ गई, तो इसको शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। साल भर जो शिव जी की पूजा करके आप फल प्राप्त करते हैं वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। अगर आप केवल सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें तो वर्ष भर की शिव पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तपस्या, साधना और वरदान अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए सावन का महीना बहुत शुभ है। सावन के महीने में साधना और तपस्या करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, आपको विशेष वरदान मिलेंगे। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का।

0: दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप सावन के महीने में साधना, तपस्या और उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के लाभ हो सकते हैं? देखिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं, अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है उनको भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है, स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। सावन में शनि देव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप सावन में शनि देव की पूजा करते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे अगर कुंडली में ग्रहण दोष है, राहु का कोई दोष है, गुरु चांडाल दोष है, तो सावन के महीने में इसकी समाप्ति हो सकती है। सावन का महीना एकमात्र ऐसा महीना है जब पूरे साल में सिर्फ एक बार सर्प की पूजा की जाती है, तो सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और कभी भी नहीं होती। तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई बाधा है, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप सावन के महीने में साधना, उपासना, पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। चर्चा सावन पर हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप सामान्य रूप से रोज सावन में पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे? कम से कम इतना करिए कि सावन के जितने भी सोमवार हैं हर सोमवार को उपवास रखिएगा, रोज सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा, दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे से दूध अर्पित बिल्कुल ना करें। रोज सुबह जब आप शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा लेते हैं तो इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करें। तो जब रोज सुबह जल चढ़ा लें और शिव मंत्र का जप कर लें तब जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, एक दाना या एक माला अगर आप रुद्राक्ष की पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज्यादा सही है। सावन के महीने में आप जितना कम अनाज खाएं उतना बेहतर होगा। पत्ते वाली सब्जियां जिसको साग भी कहते हैं, लीफी वेजिटेबल्स सावन में ना खाएं और कच्ची सब्जियां या कच्चा अनाज खाने से बचें। सावन में खाने के पहले खाने को पका लें या अच्छी तरह उबाल लें ताकि उसके कीटाणु और अगर उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो नष्ट हो जाएं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। सावन में रोज शाम को या जितने दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। सावन में जितने ज्यादा दिन आप चाहें ऐसा करें, आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। अब जान लेते हैं 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना।

0: मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा, मेडिकल और अग्निशमन की टीम भी रही मौजूद। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉकिंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिए ये फैसला। असम के शिवसागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा उत्तर प्रदेश के एक विशेष भक्त की अमरनाथ यात्रा की भी है। देखिए,
1: बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का पवित्र गुफा तक पहुंचना जारी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक रंग ये भी है जिसमें एक श्रद्धालु कुछ इस अंदाज में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते दिखे। यूपी के रहने वाले श्रद्धालु सुनील थर्मोकोल की शीट पर पेट के बल लेटकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखे। रास्ते में तैनात सुरक्षाकर्मी हाईवे पर उनकी इस यात्रा को सुनिश्चित करते हुए चलते रहे। सुनील ने यूपी से 1800 किलोमीटर की अपनी ये दंडवत यात्रा शुरू की थी और 413वें दिन की अपनी इस यात्रा में हाईवे पर आकर्षण का केंद्र बने रहे। 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में 436,000 से ज्यादा श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। खराब मौसम के चलते बीच में 19 से 24 जुलाई तक यात्रा स्थगित रही थी। 25 जुलाई से अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां लड़कियों ने गौरी व्रत के लिए आयोजित विशेष मेहंदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने हाथों पर सुंदर और बारीक मेहंदी डिजाइन बनवाए। इस कार्यक्रम के साथ लड़कियों के मनाए जाने वाले पारंपरिक गौरी व्रत की शुरुआत हुई। गौरी व्रत देवी गौरी को समर्पित है, जिसे आशीर्वाद, खुशी और समृद्धि पाने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। इस वार्षिक त्योहार में शामिल होने को लेकर लड़कियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। गौरी व्रत से पहले आयोजित मेहंदी कार्यक्रम में भक्ति, परंपरा और सामुदायिक भागीदारी देखने को मिली। उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हरियाली से गुलजार इस घाटी में कल कल बहते झरने, बादलों से घिरी पर्वत चोटियां और रंग बिरंगे खिले खिले फूल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन सब के बीच यहां एक विशेष चित्रित पोस्ट कार्ड का विमोचन हुआ, जो दुर्लभ अल्पाइन फूलों और मनोरम दृश्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध फूलों की घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को एक नए माध्यम से पेश करेगा। डाक विभाग की ओर से ये पहल उत्तराखंड की प्राकृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ की गई। करीब 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस फूलों की घाटी का भी मुख्य सीजन चल रहा है, लिहाजा प्राकृतिक सौंदर्य, दुर्लभ पुष्प प्रजातियां और मनोरम हिमालय वातावरण से सजी ये घाटी इस समय अपने सबसे सुंदर स्वरूप में है। इसके चलते देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर देश में अलग अलग तरह के रंग देखने को मिले। पटना के संजय गांधी बोटैनिकल पार्क में 4 नए बाघों का नामकरण किया गया। इस चिड़ियाघर में आए 4 नए बाघों का नाम रुद्र, पूर्णिमा, तेजस और सृष्टि रखा गया है। यहां पर्यटक इन बाघों का दीदार कर पाएंगे। इन 4 नए बाघों के साथ यहां बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बाघों के बारे में, उनके संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास को बचाने, वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना होता है। इसी मकसद के साथ ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बाघ की एक शानदार कलाकृति बनाई। रेत से बनाए गए इस 10 फीट लंबे बाघ की कलाकृति का दीदार कर लोग अपनी खुशी जताते नजर आए। ये तस्वीर राजस्थान के कोटा जिले के इटावा इलाके की है। चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों के किनारे बसे यहां के रामपुरिया धाबाई गांव में अचानक से एक मगरमच्छ को देखते ही लोग घबरा गए। इस मामले की जानकारी वन विभाग के साथ समाज सेवी हयात खान उर्फ टाइगर को दी गई, जिसके बाद हयात अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फिर मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से काबू में किया। सबसे पहले करीब 45 से 50 किलो वजनी इस मगरमच्छ के जबड़े के साथ ही उसके पिछले हिस्से को मजबूत टेप से बांधा गया। फिर हयात खान बाइक के पीछे बैठकर मगरमच्छ को संभालते हुए चंबल नदी तक ले गए, जहां वन विभाग की मौजूदगी में मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है।
0: और अब बात करते हैं सावन के पवित्र महीने की। अब से कुछ घंटे बाद सावन माह की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कहीं आस्था के रंग नजर आ रहे हैं तो कहीं भक्ति की अनोखी तस्वीरें दिखने को मिल रही है। हरिद्वार से लेकर काशी तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक आस्था और भक्ति के रंग दिखने शुरू हो गए और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गंगा जल भरने के लिए घरों से निकल चुके हैं, जबकि कई कांवड़ यात्री तो गंगा जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ चुके हैं ताकि सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकें।

0: आज से 10-12 साल पहले कांवड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं। भोले बाबा की फुल कृपा है जी।
1: लीडर है और ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लिखे जा रहे हैं।
2: उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार में भोले भक्त कांवड़ियों के लिए गंगा घाट सज चुके हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग भी तैयार है और अब शिव भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रावण मेले का शुभारंभ हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
0: जो हमने मांगा उनसे ज्यादा ही भोलेनाथ ने दिया है और कभी भी आज तक कष्ट नहीं हुआ। उनकी फुल कृपा है भोलेनाथ जी। बोल शंकर भगवान की जय। पैदल ही लेके जाएंगे, साइकिल पे भी लेके गए हैं। गांव से ही आते साइकिल चला के और साइकिल पे लेके जाते हैं। ये नहीं है कभी गाड़ियों में गए नहीं जी, कभी कोई परेशानी नहीं है। भोले की फुल कृपा है।
2: यात्रा मार्ग पर अब घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी है। भगवा रंग में रंगे शिव भक्तों के कदम हरि के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ कांवड़िए तो गंगा जल लेकर वहां से रवाना भी हो चुके हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
1: घर में सुख शांति रहे, घर परिवार है रहे, माँ बाप अच्छे रहे, बहन भाई है रहे।
3: 200 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे परेशानी नहीं?
1: नहीं कोई परेशानी नहीं, सब बोले की कृपया है। बस हमें बोला ले जाता है, बस हम इसमें राजी हैं।
2: हरिद्वार जाने वाला कांवड़ मार्ग आस्था और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। शिव भक्त अपने आराध्य देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनोखी और भव्य कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। इस बार कई कांवड़ अपने आकार और डिजाइन को लेकर खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किसी कांवड़ में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही हैं, तो किसी को खास थीम के साथ सजाया गया है।
4: बस कामना कुछ नहीं है, गौ माता राष्ट्र माता के लिए जल उठता है और हमारी बहन है बागपत से, यह 71 लीटर जल लेकर जाएंगे बागपत।
2: हरिद्वार से आई इस तस्वीर को देखिए। लग्जरी कार के आकार वाली ये कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस कांवड़ को आगे से तिरंगे से सजाया गया है, जबकि ऊपर भगवान महादेव की प्रतिमा विराजमान है।
3: कंधे पे लेके जा रहे हैं?
4: हाँ जी बोला, कंधे पे लेके जा रहे हैं।
3: बोले को आपने चश्मा पहना रखा है, क्या है वजह? चश्मा
4: पूरे रात को लाइट लूट लगी जाती है ना, इसलिए चश्मा पहना रखा है बोले।
2: अब जरा भक्ति के इस अनोखे अंदाज को भी देख लीजिए। एक शिव भक्त ने नोटों से कांवड़ बना डाला। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए शिव भक्त भजन गाते हुए कैसे मस्ती में आगे बढ़ रहा है। सावन शुरू होते ही हर तरफ हर हर महादेव, बम भोले का जयघोष गूंजने लगता है। गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए शिव भक्तों का तांता लगता है। यही वजह है कि सावन में हरिद्वार का माहौल पूरी तरह शिवमय हो जाता है।
5: बोले हम मेरा क्या कहते हैं, मतलब सपना था नोट वाली कांवड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कांवड़ लेने।
3: कितने नोट लगाए?
5: बोले आप देख सकते हो मेरे पीछे जो कांवड़ है इसमें अनगिनत नोट है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें 50 के, 100 के, 10 के और 20 के नोट हैं। आपके
3: क्या करोगे कांवड़
5: जितने भी ये नोट हैं हमारे शिवालय पे पहुंचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे और उनका भंडारा करवाएंगे।
2: हरिद्वार पहुंचकर शिव भक्त माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद गंगा जल लेकर कांवड़ सजाते हैं और अपने अपने शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ मार्ग पर कुछ ऐसी भक्ति भी दिख रही है जो लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच रही है। एक ऐसे ही अनोखी और भावुक कर देने वाली कावड़ के खूब चर्चे हो रहे हैं। अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को कावड़ में बैठाकर काजल चौधरी हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा जा रही हैं।
6: मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी खाली माता की सेवा करने की मन्नत है। मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, और मेरी कोई मन्नत नहीं है। अपने सासु ससुर की, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें, जब वो हमारे पास से जाए तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जो हमारे बच्चे भी पले फूले। और माता पिता की सेवा करना ही हमारा धर्म है।
2: वहीं लाखों शिव भक्तों को रास्ता पूछने, ढूंढने या जरूरी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब मोबाइल से सिर्फ एक QR कोड स्कैन करते ही पूरी कावड़ यात्रा उनकी हथेली पर होगी। इसके लिए बागपत में डिजिटल गाइड को लॉन्च किया गया। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में लगने वाले श्रावणी शिवरात्रि मेले और कावड़ यात्रा को इस बार पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है।
7: हरिद्वार से लगभग लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु आते हैं, उनकी यात्रा को सरल और सहज और सुलभ बनाए जाने के लिए इस कावड़ यात्रा ऐप का जो है निर्माण किया गया है। ये कावड़ यात्रा ऐप हमारे जितने भी जहां स्थानों पर साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह इसका QR कोड लगाया गया है, लिंक लगाया गया है, जिससे कि उस पर लिखा होगा QR कोड स्कैन करें। उसमें मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, किस स्थान पर शौचालय है, किस स्थान पर स्वास्थ्य सुविधा है, किस कावड़ यात्रा पूरा महादेव मंदिर को जाने के लिए कितनी दूरी और चलना पड़ेगा, जगह जगह साइनेज, और उससे सिर्फ भक्तों में एक उन्हें उनकी यात्रा को सरल सहज कैसे बनाया जा सके, इस कावड़ यात्रा ऐप से बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे।
2: कावड़ यात्रा को सकुशल और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने के लिए मेरठ जोन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। ADG मेरठ जोन भानु भास्कर ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परंपरागत कावड़ मार्ग का ही उपयोग करें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा न करें। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।
8: हर एक जनपद में लगभग एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, जो पूरी तरह से आधुनिक अति आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ है। साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने PA सिस्टम का नेटवर्क बनाया है, जो लगभग 240 से अधिक PA सिस्टम है। वॉश टावर का 74 वॉश टावर है, और इसके सहयोग में हम लोगों ने लगभग 134 अस्थायी चौकियां और 6 नए थाने बनाए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कावड़ के उद्देश्य से बनाए गए। यूपी 112 की गाड़ियां हैं, वो भी भारी संख्या में उनको पदस्थापित किया गया है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से श्रद्धालुओं या आम नागरिकों को दिक्कत ना आए। कावड़ यात्रा 2026 जो है पूरी तरह से जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य है, इसी पर सभी लोग प्रयासरत।
2: कावड़ यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, संकल्प और भक्ति का प्रतीक है, जहां हर कदम पर गूंजता है हर हर महादेव और बोल बम का जयकारा। बागपत से मनुदेव, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर देश भर में गूंज रहा बाघ संरक्षण संदेश, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है। खबर यह है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर PWD विभाग ने SOP जारी की है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थ यात्री कई जगहों पर घूमते हैं, लेकिन अब यहां गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के ऐतिहासिक मॉल रोड पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की आवाज़ सुनाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के चलते जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से पूरी मॉल रोड को नो हॉर्निंग जोन घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नैनीताल आने वाले लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में झील किनारे घूमने का आनंद ले सके, इसके पीछे यही सोच है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों और टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक बाघ संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए विशेष जंगल सफारी जागरूकता कार्यक्रम और आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की लॉन्चिंग जैसे कई आयोजन हुए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास कमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ATR और भिलाई के मैत्री बाग में विशेष रूप से बाघ संरक्षण की दिशा में कई फैसले लिए गए। एथलीट हिमा दास ने एक बार फिर अपने गृह राज्य असम में बाढ़ के दौरान अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों के लिए मदद पुतली हैं। प्रभावित इलाकों में हिमा दास जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दे रही है, साथ ही उनका दुख बांट रही है। इससे पहले 2019 में भी बाढ़ के दौरान हिमा ने राहत कार्यों के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शादीमार KCB नाथ जंगलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन आयोजित किया गया। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस अनूठे उत्सव में रस्सा कशी और म्यूजिकल चेयर जैसे और भी कई मनोरंजक खेलों के साथ स्थानीय कवियों का मुशायरा भी आयोजित किया गया।
10: और अब बात गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस मौके पर पवित्र नदियों के घाटों से लेकर मंदिरों और आश्रमों तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: ये पर्व है गुरु पूर्णिमा का, जो न केवल एक पर्व है बल्कि भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का उत्सव है, जहां गुरु को साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। तभी तो महान संत और दार्शनिक कबीर दास जी अपने एक दोहे में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। यानी ये दिन है श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का, जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में नमन कर आशीर्वाद लेता है। गुरु को समर्पित ये बेहद खूबसूरत कलाकृति महाराष्ट्र के पालघर से आई है। पीपल के पत्तों के बीच दिखाई दे रहे ये पंच परमेश्वर हैं। गुरु पूर्णिमा शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं को समर्पित एक पवित्र त्योहार है। ये दिन महाभारत, श्रीमद् भगवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
1: गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य सिर्फ शिक्षकों का आभार व्यक्त करना नहीं है, अपने माता पिता या अपने आध्यात्मिक गुरु या जिन्होंने जीवन में हमें मार्गदर्शन किया उनका आभार व्यक्त करना भी होता है। इसी के चलते गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना तथा अनेक पुराणों का संकलन किया है, इसी कारण उन्हें आदि गुरु की उपाधि प्राप्त है। उन्हीं के सम्मान के लिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है।
0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम, आदर और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से आई है, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने पहुंचे। साईं मंदिर में शुरुआत काकड़ आरती से हुई, उसके बाद विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन के लिए पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे शिरडी की आध्यात्मिक आभा और निखर उठी। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, लिहाजा और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। इस मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसी बेश कीमती भेंट भी की। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
2: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है, और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
3: हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आस्तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
4: 20 साल तक मैं पूना से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
5: एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: आस्था और भक्ति की रौनक यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह भक्तिमय नजर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्त अपने आराध्य, अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अयोध्या को मोक्षदायिनी कहा गया है, यहाँ पतित पावनी सरयू नदी बहती है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह ही भक्त सरयू में स्नान के लिए पहुंच गए।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
0: संगम नगरी प्रयागराज में भी आस्था और विश्वास के रंग बिखरे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया।
7: गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोग ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे। फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है, वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान का दुआ है कि स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
9: आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा है, हम लोग स्नान करने आए हैं पूरे परिवार सहित। अरे बस अपना परिवार सुखी रहे, बाल गोपाल सब ठीक ठाक से रहे।
0: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म नगरी काशी श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आई। बाबा विश्वनाथ की नगरी के प्रमुख मठों, आश्रमों और मंदिरों में गुरु दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे और अघोर परंपरा के प्रमुख तीर्थ स्थल बाबा कीनाराम आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में फूल माला, नारियल और पूजा सामग्री लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। महाराष्ट्र के अकोला में गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें गुरु दर्शन के लिए लगी रहीं। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।

0: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो तुम्हारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है, और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
1: भारतीय परंपरा में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, और गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। शिरडी से नितिन मिराने, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बुधवार 29 जुलाई को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 29 जुलाई को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,000 रुपए पर बना रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,25,300 रुपए पर पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 29 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। बुधवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.66 के स्तर पर बंद हुआ।
3: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना। पटना के स्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, लापात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा, मेडिकल और अग्निशमन की टीम भी रही मौजूद। न्यूज पथ में आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। अब इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
5: एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर वायरल है, जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। देखिए, एक पिता बाढ़ के बीच अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर और खुद तैर कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। पिता को अपनी जान की परवाह नहीं, वो बस बच्चों को इस आपदा में सुरक्षित रखना चाहता है। सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये वायरल तस्वीरें एक सादी दौर की झलक को दिखाती है, जहां एक बच्चा साइकिल पर स्कूल जाता दिखता है तो दो युवा छात्र घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। वो किस पर सवार है इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्कूल आने जाने के लिए हमेशा बस या कार की जरूरत नहीं होती, कभी कभार परंपरा, आजादी और दृढ़ संकल्प ही कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। यानी कोई भी वाहन मिले जहां पहुंचना है वहां पहुंचकर ही रहेंगे। बचपन में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जबरन जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से स्कूल में सुबह सुबह जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए तो फिर तो हो गया काम। अब वायरल तस्वीरों में इस बच्चे को जरा देखिए, बेचारा चंचल मन का बच्चा मेडिटेशन के दौरान अपना मन शांत करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें सबको अपना बचपन याद दिला रही है।

0: कोई जाति, धर्म या भाषा नहीं होती और आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ लंगर को देखिए, आपको ये बात सिरे से महसूस होने लगेगी। ये वायरल तस्वीरें यही संदेश दे रही है, यहाँ अमीर हो या गरीब सबकी भूख समान है। ये स्थान हर भूखे को अपना मानता है। वायरल तस्वीरें सबके भीतर एक पॉजिटिव इमोशन भर रही है, लोगों को ये तस्वीरें खूब पसंद भी आ रही है।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर नगर निगम की एक नई पहल की। ये पहल सावन में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ने वाली पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएगी। जयपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए शिव अर्पणम नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिव अर्पणम अभियान चलाया जाएगा। सावन में हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी तक ये पवित्र पूजा सामग्री सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाती थी, इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी। लेकिन नगर निगम की नई पहल से अब ये पूजा सामग्री खाद का रूप लेगी। निगम ने अभियान चलाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली है। सावन के प्रत्येक सोमवार शहर के बड़े शिव मंदिरों से नगर निगम का इलेक्ट्रिक वाहन चढ़ाई गई पूजा सामग्री का संग्रह करेगा। मंदिरों से इकट्ठा की गई सामग्री को पास के उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद कंपोस्ट पिट में डीकंपोजर कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तैयार खाद को शिव अर्पणम ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जयपुर नगर निगम का ये अभियान 29 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रमुख शिवालयों में चलाया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के जरिए 10,000 से अधिक शिव अर्पणम जैविक खाद प्रसाद पैकेज श्रद्धालुओं तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है ये अभियान धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है। इससे एक ओर मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा। इस पहल को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: तो रिमझिम बारिश के साथ में आता है श्रद्धा का उत्सव, आस्था का उत्सव, जब हर एक भक्त अपने भगवान को, चाहे वो महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनको पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर ऐसे में ये जो जितनी भी सामग्री है ये कहीं ना कहीं वेस्ट भी जाती है और उनका जो सम्मान है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कोई पेड़ के नीचे उसको बाद में रखता है, कोई पानी में डालता है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग सॉल्यूशन है उस सामान, उन सामान का ढूंढा जाता है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने एक पहल की है जिसमें शिव अर्पणम नाम की गाड़ी जो है वो जयपुर नगर निगम लेके आया है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि जिस भी मंदिर में आप भगवान शिव को पूरे सावन में, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी पूजा की सामग्री है, वो अर्पित करेंगे, तो वो वहाँ से उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसमें डाला जाएगा। और इस गाड़ी, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस गाड़ी में पूजा सामग्री डाली जाएगी जिसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँ तो इस गाड़ी में एक तरीके से ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसका पूरा काम होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कोई भी भक्त आ रहा है तो मंदिर में वो सब कुछ चढ़ा रहा है, जहाँ से सारा सामान इस गाड़ी में जा रहा है, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या फिर अन्य जो सामग्री है वो हो, वो इस गाड़ी से फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होके और पूरा एक जगह पे लेके जाया जाता है और एक जगह से उसको खाद में बदला जाता है। वो खाद बनने के बाद में पेड़ों पौधों में इस्तेमाल की जाती है और उसका पूरी तरीके से सदुपयोग किया जाता है, जिससे जब वो जैविक खाद बन जाए तो उससे पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश दिया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब ऐसे में मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके। सर, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम देव है, देव परनानी। मैं, सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये, लेकिन मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा।

0: जैसे भी जैन साहब ने बताया कि ये इस सावन के महीने के लिए सेवा शुरू की गई है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि ये 12 महीने ही सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि फूल पत्ती गंदगी के बजाय डेली आप देखेंगे कभी रोड पे आइएगा कोई गाड़ी कचरा रोड पे फेंकते हैं जितना कचरा है, अगर रिसाइकल होकर खाद बनेगी तो अच्छे काम में यूज होगी। तो सरकार को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि इस सेवा को 12 महीने ही शुरू करें, ये सेवा निःशुल्क है और सेवा को है ना 12 महीने ही सेवा चालू की जाइए, ये हमारा सुझाव रहेगा।
1: मैडम मैं तो नगर निगम में कर्मचारी हूँ, मैं JEN हूँ, और ये अभी क्या है कि हमारे शिवार्पणम जो भी यहाँ पे फूल पत्तियाँ हैं और बिल पत्र जो भी चढ़ावा आता है उसमें पॉलीथीन वगैरह हम अलग कर लेते हैं, वो अलग गाड़ी से जाते हैं, ये हमने सिर्फ इसके लिए नई गाड़ियाँ लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये सावन के महीने में चलेगा, आगे फिर हमारे कमिश्नर साहब जो भी आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, यहाँ से ये खाद बनेगा हमारी शटर मशीनों पर जाएगा, तो वहाँ पे क्या है फिर वहाँ से हम खाद बना के निःशुल्क जयपुर को पैकेट बनाएंगे उनके एक एक किलो के ऐसे, और फिर उसको निःशुल्क जयपुर की जनता में बांटा जाएगा।
2: आज जो शुरुआत की है हमने, एक तो सबसे पहले अपने यहाँ का चौड़ा रास्ता ताड़ेश्वर जी का मंदिर है जो बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा मंदिर है छोटी चौपड़ पर रोजगारेश्वर मंदिर, तीसरा मंदिर है झारखंड महादेव जी का मंदिर, एक अपने कलेक्ट्री के पास में है उसका मंदिर का नाम क्या नाम है, जगनेश्वर मंदिर जी महादेव जी का मंदिर, चल एक चमत्कारेश्वर मंदिर, ये पांच जगह नगर निगम ने नई गाड़ियां लगाई है, ये जो भी शिव जी के अर्पण होंगे प्लास्टिक को छोड़ करके वो सब हम यहाँ से एकत्रित करके और हमारी शटर मशीन जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ उनको भिजवा रहे हैं, वहाँ खाद तैयार होगा, वहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ भी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, और अच्छा सराहनीय कार्य सबसे पहले जो कमिश्नर साहब ने और हमारी गार्डन शाखा ने जो ये कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय है, आगे भी चलता रहे तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चले,
3: ये सही कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे, ये इधर उधर कचरा पैरों में आए हो रहा है इसलिए कोई खाद बन रही है वो ज़्यादा बेस्ट है।
4: बहुत बढ़िया है अभियान चालू करा इन्होंने, ये पैरों में भी आवे नहीं दोष भी नहीं लगता है और ये सही जगह लगेगा पेड़ पौधे में काम में आएगा ये खाद के रूप में, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे चलता रहे बहुत बढ़िया रहेगा।
5: फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना हुआ रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर। फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना सामने आ गया है, धर्म नाम के इस गाने को सुखविंदर सिंह और स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज दी है। ओ माई गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की इस नई फिल्म ओ माई डॉग में पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में है, उनके अलावा इस फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा भी नजर आएंगे। फिल्म ओ माई डॉग में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डॉग दिखने वाले हैं। डॉग और इंसानों के बीच के रिश्ते की कहानी वाली ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही एक खास अपडेट भी सामने आया है। सिनेमा घरों में 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही रणबीर कपूर स्टारर रामायण और एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर भी रिलीज होगा। फिल्म शुरू होने से पहले इन दोनों फिल्मों का लेटेस्ट ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग को लेकर ये चर्चा भी जोरों पर है कि ये फिल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने की श्रीमद् भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा। ये भगवत महापुराण पर आधारित 7 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म सीरीज होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत पार्ट 1 से होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कमान रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा के हाथों में है। फिल्म को सागर पिक्चर्स ग्लोबल के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। गुजराती फिल्म अंश भाव का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म इंसान और डॉग के बीच के अनोखे और प्यारे रिश्ते पर आधारित है, जिसे पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि आनंद पंडित और वैशाल शाह इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म में मित्र गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भरद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अंश भाव रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा वहां से गुड न्यूज के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में 2 और मेडल आए। जी हाँ, और यही नहीं, गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले धावक बने जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाया। उधर भारत के बॉक्सर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 4 मेडल पक्का कर दिया है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार के मेडल का खाता खोलने के बाद से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। महिला खिलाड़ी तो इतिहास रच रही हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और पैरा एथलीट में शर्मिला धनखड़ देश को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। कई खिलाड़ी सिल्वर मेडल तो कोई ब्रोंज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन हरजिंदर कौर ने मेडल जीतने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और देश को 11वां मेडल दिलाया। हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूंगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं साई की बहुत सपोर्ट है, मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: उधर छठे दिन ही धावक गुलवीर सिंह ने देश को न सिर्फ 12वां मेडल दिलाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। गुलवीर ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। एथलीट से लेकर पैरा एथलीट तक सब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू और हरजिंदर कौर इस पर कब्जा जमा चुकी हैं। तो दौड़ में गुलवीर सिंह और हाई जंप में सर्वेश कुशरे सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों पर पूरा देश फख्र कर रहा है, तो परिवार का गर्व करना लाजमी है। पदक विजेताओं के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, तो बिंदिया रानी देवी वेटलिफ्टिंग में ये मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पैरा एथलीट शिल्पा शायला भी ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं कई भारतीय बॉक्सर पदक पक्का कर चुके हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले उन बॉक्सर का ब्रोंज मेडल तो पक्का हो ही चुका है। इनमें महिला बॉक्सर प्रिया घनघस और प्रीति पवार का नाम शामिल है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को ब्रोंज मेडल दिया, पर ये ब्रोंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है।
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। अच्छा फीलिंग है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा इससे, ताकि मैं अपना नेक्स्ट बाउट में और भी अच्छा करूं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है तो इसलिए मेडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
0: वहीं पुरुष बॉक्सर में जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनके निशाने पर गोल्ड है।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले कम गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेहतर कर सकूं मैं।
5: नहीं, मेडल तो कंफर्म हो गया, बट ये कि इससे हमें गोल्ड की उम्मीद है, तो हमारा प्लान गोल्ड का है। बट ये बाउट आपको बताया कि क्वार्टर फाइनल बाउट सबसे ज्यादा टफ रहती है, क्यों वो मेडल बाउट है। जब एक बार मेडल में एंटर हो गए तो उसके बाद फिर दिमाग सेटअप हो जाता है कि सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है, बट मेन फोकस है पहले मेडल के अंदर एंटर होना। तो उसके हिसाब से हमने प्लान भी किया था, फिर इसकी प्रीवियस इसने भी बाउट देखी, हमने भी देखी, कोचों ने, कईयों ने देखी, इवन आते आते आधे घंटे पहले भी भाई ये क्या इसका सही है, जब हमें पता था इसका उसका राइट अच्छा है, राइट लेफ्ट राइट, तो हमने उसका राइट पे काम किया था, तो देन वो सक्सेस रहा वो प्लान हमारा।
0: महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिल चुका है, जिससे उनका ब्रोंज मेडल भी पक्का हो चुका है। इस तरह बॉक्सिंग के अलग अलग भार वर्ग में भारत का 4 ब्रोंज मेडल तय है। और जाहिर है अब नजरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और दूसरी स्पर्धाओं में भी कई और पदकों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
7: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's heat up your routine with couples games, massage oils, and 20% off Cal Exotic toys. Start exploring at your local Cirilla's or online at cirillas.com.
8: Tune in How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
0: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 बैटर्स में शामिल हो गए हैं। वैभव 48वें नंबर पर आ चुके हैं। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
15: भारत के 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। ताजा T20 रैंकिंग में 230 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर वैभव ने दुनिया के टॉप 50 बल्लेबाजों में 48वां स्थान हासिल कर लिया है। उनके कुल 536 रेटिंग अंक हैं। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 910 रेटिंग अंकों के साथ T20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। वहीं अगर वनडे रैंकिंग की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। वहीं इस रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी कहलाने वाले जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम है और वो 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन स्थान पर काबिज हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हुलियान लोकी की एक स्टडी के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 28.5 अरब रुपयों से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, जबकि आईपीएल की बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू बढ़कर 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी रुपए में 19.5 खरब से ज्यादा हो गई है यानी एक बिजनेस।
0: इसी के साथ न्यूज पत में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover,
16: we all just wanna be big rock stars and
13: interested in what's going on around the world,
17: I have no idea how this election is going to play out,
13: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
0: को छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University transforming your passion into profession।
2: देशभर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीम भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिए फैसला। आसम के शिवसागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली।

आप जोश और हवा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी, साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास तादाद और खूबियां दिखाएंगे। बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए, उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास, बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मेला। शांत, अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिल करके रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं, और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर विहीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देन ही है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया, उसी के वजह से आज टाइगर या तो एमपी चला जाता है या कोटा चला जाता है या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहाँ टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: वो आसानी से दिखता नहीं, मगर उसकी मौजूदगी से जंगल चौकन्ना रहता है। वो नजर आ सकता है किसी घने दरख्त की आड़ में या अपने शाही चाल में बड़े आराम से सड़क पार करते, लेकिन जब कभी टाइगर नजर आता है, देखने वाले बड़ी अदब से उसे रास्ता दे देते हैं। जंगल में इसी बादशाह का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में मौजूद रातापानी रिजर्व में आबाद है। एमपी के इस नए रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है गुप्ता जी की। इस नाम को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि रातापानी में जो बाघ मेल अल्फा है, या कहिए कि बाघों का अगुआ है, उसका नाम गुप्ता जी है।
1: यहाँ पे कई सारे टाइगर्स की कहानी रही हैं, रुद्रांश है और वीरा है, ये अक्सर इन जंगलों में देखा जाता है पर्यटकों को। कई बार तो अगर आपको मैं पहले वीडियो देखें तो इस गेट से आता हुआ आपको दिखेगा टूरिस्ट, अब कुछ ही दिनों पहले के टूरिस्ट यहाँ अंदर तो नहीं आ पाते, लेकिन वो वहाँ ऊंचाई से जहाँ पे इनका आखिरी पॉइंट होता है, तो उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ टाइगर्स को देखा है। ये यहाँ पे नीचे खदान है, जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर है, जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल है, अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है। अच्छा।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह रातापानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती है। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखे ना, तो उसका जो ऑरा रहता है ना,
2: अच्छा,
1: गजब का ऑरा रहता है उसका। देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से इसे लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप का रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठी अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: गाड़ी बंद।
1: कुछ है
2: पेड़ के राइट साइड में।
0: अरे
2: हल्का हल्का आपको उसका स्ट्राइक दिख रहा होगा झाड़ी में से।
0: ओहो
2: ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है।
0: एक बड़ा दिख रहा है।
2: हाँ काफी बड़ा है।
0: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या हो सकता है?
2: ये वही
1: झाड़ी में क्यों फ्लाई जाते हैं जैसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहे हैं।
0: हाँ
1: से नहीं दिखेंगे लगते दिखेगा कि नहीं ऐसे बैठा।
0: अरे
2: उठा अभी
0: वापस
2: जा रहे हैं।
1: अभी
0: जस्ट

0: इनकी खूबी यह है कि ये काकी शिकारी होते हैं और आमतौर पर रात में अकेले ही भोजन की तलाश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अच्छे तैराक होते हैं। इनकी रफ्तार भी गजब की है। पूरी रफ्तार से बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑरेंज कलर का दिखने वाला रॉयल बंगाल टाइगर आसानी से अपने शिकार को धोखा दे देता है।
1: टाइगर हम लोग को ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, बट अगर हम हर्बीवोर के प्रस्पेक्टिव से देखें तो वो कलर में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो उनका जो ऑरेंज कलर है वो सो ग्रीन ही दिखेगा। तो इस तरह से ये फोलियज में
2: मतलब
1: कैमोफ्लेज हो जाते
2: जितने
1: हैं।
2: लोग टाइगर के शिकार हो सकते हैं जितने तरह के जानवर उनको वो ऑरेंज नहीं दिखता।
1: वो नहीं दिखेगा ऑरेंज।
2: तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम लोग उसके शिकार नहीं है।
1: हम लोग नेचुरल शिकार टाइगर के नहीं है,
2: हम लोग को दिख रहा है।
1: हाँ।

0: बाघ शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानवर मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व्स में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
8: देश भर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक. मथुरा के मुनिया संतों ने निकाली शोभा यात्रा. वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना. यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार. भोले के भक्तों के लिए स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार. कल से शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना. पटना के स्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल. आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखा गया. मेडिकल और अग्निशमन की टीम मौजूद रही. नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा ₹1,000 जुर्माना. 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन. शोर शराबे को कम करने के लिहाज से फैसला.

कल से 28 अगस्त तक चलेगा यह पवित्र मेला। इस बार लगभग 55 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की दिख रही रौनक, राजधानी के अलग अलग इलाकों में सज चुके हैं कांवड़ कैंप। कांवड़ यात्रा के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था को भी किया जा रहा है दुरुस्त। कल से हो रही है सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। रामनगरी अयोध्या में भी कांवड़ मेले के लिए व्यापक इंतजाम, लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। सरयू घाटों से लेकर प्रमुख मठ मंदिरों और श्रीराम जन्मभूमि परिसर तक सुरक्षा यातायात सुविधाओं के इंतजाम। सावन महीने में लाखों शिव भक्तों और राम भक्तों के आने की उम्मीद। शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेटिंग कर पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का भी रखा जा रहा है ख्याल। रोहतास के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। मंदिर परिसर में ध्वजारोहण के साथ ही भव्य उद्घाटन। श्रावणी मेले शुरू होते ही गया जंक्शन पर लगने लगी कांवड़ियों की भीड़। बोलबम किनारे से गूंज उठा पूरा जंक्शन। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए सज गए कपड़ों की दुकानें। इस बार योगी मोदी और बुलडोजर की तस्वीर वाली टी शर्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड। पवित्र श्रावण मास के लिए अलग अलग डिजाइन के हजारों परिधान बाजार में उपलब्ध। हर बार की तरह इस बार भी भगवान भोलेनाथ की छवि वाले कपड़ों की सबसे अधिक डिमांड। हापुड़ में एक अनोखी कांवड़ यात्रा बनी चर्चा का विषय। दांतों से कार खींचते हुए गंगा जल लेकर अपने गांव लौट रहे कांवड़िए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की रौनक, शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर निकले कांवड़िए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से गंगा जल लेने पहुंचे भक्त जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। सीकर के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक की विशेष तैयारी। सावन में पूरे महीने सैकड़ों युवा एक साथ एक वेशभूषा में करेंगे रुद्राभिषेक। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। श्रावणी मेले में कांवड़ियों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के खास इंतजाम। अरावली जिले के श्यामलाजी में गुरु पूर्णिमा के पवित्र त्योहार की रौनक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे संत सुरमलदास जी महाराज की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर अंबाजी में भारी भीड़, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया दरबार। भक्तों ने मां को महागुरु मानकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। जूनागढ़ के भावनाथ में श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु पूजन, भजन कीर्तन और महाप्रसाद के आयोजन से भक्तिमय नजर आया मंदिर परिसर। भावनगर जिले के मशहूर बगनाना आश्रम में मनाई गई गुरु पूर्णिमा। परम पूज्य शिरोमणि संत श्री बजरंगदास बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दत्त भगवान के दूसरे अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के मंदिर में भक्तों की भीड़। लोगों ने दर्शन पूजन के साथ ही ग्रहण किया प्रसाद। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में दिखा आस्था का अनोखा नजारा। मुड़िया संतों ने ढप ढोलक और मृदंग की धुन पर निकाली शोभा यात्रा। गिरिराज जी की भक्ति में डूबे नजर आए सनातन गोस्वामी के अनुयायी। हरिनाम संकीर्तन करते हुए निकाली शोभा यात्रा। गुरु के सम्मान में सिर मुंडवाए नजर आए मुड़िया संत। शोभा यात्रा के दौरान मुड़िया संतरू का जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत। मुड़िया पूर्णिमा मेला संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन। 500 साल पुरानी परंपरा। चकलेश्वर स्थित राधाश्याम सुंदर मंदिर में शुरू हुई थी मुड़िया शोभा यात्रा। नगर भ्रमण करते हुए राधाश्याम सुंदर मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई पवित्र यात्रा। कालकाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा की धूम। बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त माता के दर्शन के साथ ही गुरु पूर्णिमा उत्सव में पहुंचे लोग। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर भी श्रद्धालु का तांता। बाबा की पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए भक्त पहुंचे। कल से शुरू हो रहे

0: मास पर बंद हो जाएगी बाबा की स्पर्श पूजा। पूरे सावन महीने अर्घा में जल चढ़ाने के कारण आज भारी संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आई धर्मगिरी काशी। प्रमुख मठों आश्रमों और मंदिरों में गुरु दर्शन और पूजन के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने उतारी सनातन गुरु की आरती, पूजा वंदन करके आशीर्वाद दिया। फतेहपुर शेखावटी में आज विभिन्न मंदिरों में मनाया जा रहा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। भक्त मंदिर में भगवान की माँ गुरु के रूप में कर रहे पूजा, अपने गुरुओं का ले रहे आशीर्वाद। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से भक्तों का मेला। संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने किया पूजा पाठ। अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र दत्त मंदिर और विभिन्न गुरु पीठों में भक्तों की लगी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा। भक्तों ने लगभग 1,70,00,000 रुपए के सोने के आभूषण बाबा को भेंट किए। मुंबई के एक भक्त ने मन्नत पूरी होने पर सोने का हार अर्पित किया। 47,00,000 आकी गई कीमत। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। साईं मंदिर में पुजारियों ने विधि विधान से किया पूजन अर्चना और अभिषेक। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। साईं बाबा की उतारी गई विशेष आरती। फूलों से सजाकर निकाली गई साईं बाबा की पालकी। भक्तों ने गाए भजन कीर्तन। साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए साईं राम के जयकारे। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर और दरबार की भव्य सजावट। विदेश से भी पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा पर संत गुरु रविदास को नमन किया, आशीर्वाद भी लिया। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल। आतंकी घुसने के बाद एटीएस ने की कार्रवाई। मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर परिसर में अत्याधुनिक हथियार से लैस होकर घुसे 3 आतंकी। पूरे मंदिर परिसर को अपने कब्जे में लिया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। स्थानीय पुलिस समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहा। मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर परिसर के बाहर मेडिकल टीम, अग्निशमन टीम मौजूद रही। ड्रिल देखने के लिए जमा हुई लोगों की भीड़। मुजफ्फरनगर पहुंची एक कांवड़ बनी चर्चा का विषय। भोले का एक बॉडी बिल्डर भक्त अमित लोहे की जंजीरों से खींच कर ला रहा है कांवड़। इस कांवड़ में पीछे की तरफ बनाया गया एक जिम। आगे विराजमान है भगवान भोलेनाथ। भारत के इतिहास का हिस्सा। 2013 में शुरू हुई प्रख्यात जयपुर वॉच कंपनी अब तक 150 से अधिक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन तैयार कर चुकी है ये कंपनी। किसी न किसी भारतीय विरासत, शिल्प और ऐतिहासिक पहचान से प्रेरित है हर कलेक्शन। कई पारंपरिक कलाओं को भी बनाया गया है घड़ियों का हिस्सा। कंपनी ने लॉन्च किए हैं 2 नए कलेक्शन। भारत की ऐतिहासिक वास्तुकला को समर्पित गेट्स ऑफ इंडिया, वहीं प्रीमियम बाग कलेक्शन राजस्थान की कला और प्रकृति से प्रेरित। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम। लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पास। संगठित अपराधों के लिए कम से कम 10 साल की सजा, साथ ही 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक पर ट्वीट किया, देशभर के छात्रों को बधाई दी। बिहार में सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले। स्वागत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर की जाएंगी बहाली। दरभंगा में बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों के लिए स्वीकृत परियोजना प्रदान करने का फैसला। स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रेत पर अद्भुत आकृति, बाघ संरक्षण का संदेश दिया। इंटरनेशनल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर से रणथंभौर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के मैत्री बाग जू में भी इंटरनेशनल टाइगर डे पर खास आयोजन। देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में इस जू ने बनाई है अपनी अलग पहचान। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC की पहल, 1 सितंबर को रक्सौल से रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। उज्जैन नासिक संभाजीनगर ज्योतिर्लिंग के अलावा शिरडी साई बाबा दर्शन है यात्रा का मुख्य आकर्षण। 8 रात 9 दिन की होगी पूरी धार्मिक यात्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के ओमांतुरुर स्टेट से नंदनम तक मेट्रो ट्रेन में यात्रा की। मेट्रो में एंट्री करते दिखे विजय। नंदनम स्थित चेन्नई मेट्रो रेल के मुख्यालय का दौरा भी किया। मेट्रो की कामकाज व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित असम में सोलर मोबाइल चार्जिंग डिवाइस बना उम्मीद की किरण। बाढ़ के कारण पावर कट जाने से प्रभावित इलाकों में काफी कारगर। अभिजीत ने बाढ़ पीड़ितों को जुड़े रहने में मदद करने के लिए पोर्टल सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए। शिवसागर में लगभग 10 बाढ़ प्रभावित गांव में ये सोलर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित। नैनीताल की मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध। उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उत्तरी भारतीय एथलीट लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही हिमादास। सावधानी बरतने की भी अपील। शिवसागर में बाढ़ के बीच दिखी एक मानवीय तस्वीर। बाढ़ के पानी से गाय को बचाने की कोशिश करता नजर आया एक युवक। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा। कुश नदी में अचानक फ्लैश फ्लड के कारण बढ़ा जलस्तर। फंसे हुए शख्स का सफल रेस्क्यू। मंडी पठानकोट हाईवे पर एक बार फिर से दरकने लगा पहाड़। असाई रैंप बनाकर गुजर रहे हैं वाहन। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन। मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर। घरों तक पहुंचा पानी। नागेश्वर में भारी बारिश का कहर। घरों में घुसा पानी और सड़कें नाले में तब्दील। लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान देवदूत साबित हुए SDRF की टीम। गंगा में स्नान के दौरान डूबते कावड़ी की जान बचाई। मध्यपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों के कई गांवों में अचानक बाढ़। लोगों में दहशत। SDRF को बचाना अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश। प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। देश के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी लगाए 230 पायदान की छलांग। 48वें नंबर पर पहुंचे। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी। पहली बार टॉप 50 में शामिल हुए। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशांत किशन नंबर 1 स्थान पर। काबस 910 है रेटिंग पॉइंट। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम। 870 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 स्थान पर काबस। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रीमद भागवतम फिल्म रिलीज की घोषणा। श्रीमद भागवतम पर बनेगी 7 सीरीज। रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ। फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अमिताभ राय की फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना रिलीज। 7 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। इस फ्राइडे सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के दर्शकों के लिए सरप्राइज। फिल्म से पहले दिखेगी एवेंजर्स डूम्सडे के थिएट्रिकल ट्रेलर और रामायण के लेटेस्ट ट्रेलर की झलक। 67 साल के हुए संजय दत्त। बेटा और बेटी ने शेयर की इमोशनल पोस्ट। लिखा दुनिया के बेस्ट पापा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान, सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के हाई जंपर सर्वेश कुशारे भी छा गए। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले वो भारत के पहले एथलीट बन गए, लेकिन उनको ये उपलब्धि बड़े ही संघर्षों के बाद हासिल हुई है। सर्वेश दरअसल एक गरीब परिवार से आते हैं और उनके पिता किसान है, लेकिन कड़ी ट्रेनिंग और नेशनल लेवल पर दमदार खेल से सर्वेश कुशारे को सेना में नौकरी मिली और अब उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम ऊंचा किया।
2: कामयाबी की इस छलांग ने सर्वेश कुमार को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वेश ने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ ही सर्वेश कॉमनवेल्थ हाई जंप कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सर्वेश किशोर ने इस प्रतियोगिता में 2.25 मीटर की छलांग लगाई। सर्वेश किशोर को सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी ब्रैडफोर्ड ने भी 2.25 मीटर की छलांग लगाई। ब्रैडफोर्ड ने ये छलांग पहली ही कोशिश में लगाई। सर्वेश ने ये छलांग तीसरी कोशिश में लगाई। बराबर छलांग के बावजूद नियमों के मुताबिक सर्वेश को सिल्वर मेडल मिला। फिलहाल भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी इस कामयाबी पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। इस जीत के बाद से ही घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
3: खुशी लग रही है और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ उनके पास, क्योंकि भारत का पहला लड़का मतलब इंडिया का फर्स्ट प्लेयर है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और सिल्वर मेडल लेके आ गए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। प्रेशर ही आ रहा था, मतलब जब वो जंप करने जाते थे तो हम भगवान के पास जाते थे और उनके पास दुआ करते थे कि सर्वेश के मेहनत को फल देना, उनके कष्ट को फल देना, और भगवान ने दे दिया।
2: लेकिन सर्वेश के लिए कामयाबी की ये राह आसान नहीं थी। सर्वेश के पिता किसान हैं। शुरुआती दिनों में सर्वेश को खेल से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हाई जंप की प्रैक्टिस के लिए मैट खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं था। प्रैक्टिस के लिए सर्वेश ने देसी जुगाड़ अपनाया। उनके पिता ने मक्के के छिलके और कपास से एक मैट तैयार की। इस देसी मैट पर ही सर्वेश ने अभ्यास किया।
4: छोटे से गांव से चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना इतना मुश्किल है और वो उन्होंने करके दिखाया है। कोई सुविधा नहीं होती थी, कोई प्रॉपर ये नहीं मिलता था।
5: जब सुविधा नहीं थी तो वो कैसे प्रैक्टिस करता?
4: सुविधा नहीं थी तो उसको बोरी में मक्के का भूस डाल के वो पीठ बनाता था और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता था।
2: मेहनत और लगन रंग लाई और सर्वेश ने पहले जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। स्पोर्ट्स कोटे से सेना में नौकरी मिली तो सर्वेश को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन भी मिले। कॉमनवेल्थ गेम से पहले भी सर्वेश ने कई मेडल अपने नाम किए हैं। सर्वेश ने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर भारत का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसी साल मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर की छलांग के साथ सर्वेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। 2023 में एशियन एथलेटिक्स में सर्वेश ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 2024 में पेरिस ओलंपिक में सर्वेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर सर्वेश ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो और सच्ची हो तो चुनौतियां खुद ब खुद घुटने टेक देती है। सर्वेश की ये कामयाबी आज लाखों नौजवानों के लिए मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडियस टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
6: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Schwarber to right field, and it will lead.
6: From the first pitch of the season to the stretch run,
7: and that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे
1: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: देशभर में दिख रही गुरु पूर्णिमा की रौनक, मथुरा में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा, वाराणसी के संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सज गए बाजार, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, कल से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीम भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिए फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा का विषय रहने वाला है पवित्र सावन का महीना। चूंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है, तो इस सावन के पवित्र महीने में आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिसका भरपूर फायदा आपको होगा और हम सबको होगा, इसके बारे में पंडित जी तमाम उपाय आपको बताएंगे। आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे, साथ ही अंत में जाते जाते महा उपाय के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त का गुड लक मंत्र क्या है।
1: सावन के महीने में एक चांदी का बेलपत्र ले आइए, इसको शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए और अर्पित करने के बाद वापस ला करके अपने पास रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने मेज की दराज में, अपने बैग में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य और संपन्नता दोनों आपको प्राप्त होगी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 30 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी है सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, तो सबसे पहला सवाल पंडित जी से यही बनता है, पंडित जी सावन के महीने की महिमा क्या है, क्या महत्व है?
1: जी देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और सावन के महीने को जो हिंदुओं के 12 हैं उसमें काफी पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो इन 4 में पहला चातुर्मास का महीना सावन का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरीके से शिव जी से माना जाता है। इसी महीने में ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने मंथन में जब विष निकला तो विष पिया, विष का पान किया। विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने उन्हें जल चढ़ाया और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि भक्त सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। आप पूरे साल भर जो शिव जी की पूजा करते हैं उसका फल केवल सावन में पूजा करके पा सकते हैं। आपकी तपस्या के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए और वरदान के लिए सावन का महीना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सावन के महीने में अगर आप साधना करें, तपस्या करें, ध्यान करें, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ होंगे। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, जिसमें देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाएगी।
0: चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए सावन के महीने का चूंकि जिक्र कर रहे हैं तो पंडित जी से सवाल अब यही है। पंडित जी, ये बताइए कि सावन के महीने में किस तरह से विशेष लाभ हम सबको प्राप्त हो सकते हैं, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
1: देखिए, सावन के महीने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप निरंतर अगर शिव जी की उपासना करें, उनका ध्यान करें, तपस्या करें, तो आपको विशेष तरह के लाभ हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो सावन में साधना, पूजा, तपस्या से आपको विवाह का वरदान मिल सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनके आयु पर कोई बाधा है, स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, अगर ऐसे लोग सावन में साधना करें तो उनके आयु की रक्षा होगी और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। सावन के महीने में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। आप साल भर शनि की पूजा ना करें, केवल सावन में शनि की पूजा करें तो धन संपत्ति का लाभ होता है। इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार कहा जाता है। सावन के महीने में प्रार्थना करके, पूजा करके आप कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और इनके नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। पूरे साल भर में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और कभी नहीं होती। तो कुंडली में अगर किसी तरह का शाप है या कुंडली में किसी तरह का दोष है तो उसके लिए सर्प की पूजा भी आप सावन में करके शाप और दोष से छुटकारा पा सकते हैं।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं राशिफल के बारे में और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल की बारी है। पंडित जी आपको बताएंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, आर्थिक पक्ष पैसे रुपए का मामला मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, आपके सवालों को शामिल करते हैं इस शो में। और पहला सवाल कौन से दर्शक है उसकी तरफ मैं बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, पंडित जी से जवाब जानना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
1: जी, आज का पहला प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है और वसुधा जी हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1989, जन्म का समय शाम के 4:30, जन्म स्थान है बदायूं उत्तर प्रदेश। वसुधा जी कह रही हैं कि मैं प्राइवेट विद्यालय में एजुकेशन में नौकरी कर रही हूं और मैं काफी समय से नौकरी बदलना चाहती हूं बेहतर नौकरी और बेहतर सैलरी के लिए, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। वसुधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय आपका चल रहा है और ज्यादातर संभावना है कि अगस्त सितंबर के महीने में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगी। आपका आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से केवल आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेषकर अपनी आंखों का और अपने डाइजेशन का। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। कौन सा सवाल पंडित जी तक आया है, पंडित जी बताएंगे।
1: जी अगला प्रश्न धर्मात्मा गुप्ता ने हमें लिखा है और धर्मात्मा गुप्ता जी हमें मेल लिखते हैं बस्ती उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 8:30, जन्म स्थान है बस्ती। धर्मात्मा जी कह रहे हैं कि पहले मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चलता था और बाद में ऐसी नौबत आ गई कि मैंने व्यापार बंद कर दिया। आगे क्या मैं कोई व्यापार कर सकता हूं और क्या मुझे अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलेगी। धर्मात्मा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार करना चाहिए और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जन्म स्थान से दूर जाएंगे तभी सफलता मिलेगी, जन्म स्थान में भी आप सफलता पा सकते हैं। आप नया व्यापार अक्टूबर 2026 के बाद शुरू करें, सौंदर्य प्रसाधन का, दवाइयों का, कपड़ों का और खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार आप कर सकते हैं। बेहतर व्यापार और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि सावन में अक्सर हम शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा उपासना तो करते हैं, जिस तरीके से हमें ज्ञान है, सामान्य रूप से सही तरीके से सावन में पूजा करने का क्या विधान है।
1: देखिए, वैसे जिनको तपस्या करनी है, साधना करनी है, वो अपनी तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं और करना चाहिए, लेकिन अगर आप सावन में रेगुलर पूजा करना चाहते हैं, निरंतर पूजा करना चाहते हैं, तो सामान्य तरीका क्या है, कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखिएगा। पूरे सावन तो नहीं रख सकते, कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखें, रोज सुबह शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा, दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे के पात्र से दूध अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह जब आप जल चढ़ा लें, बेलपत्र चढ़ा लें, तो इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तो नित्य प्रातः जल के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए या शिव मंत्र का नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। जब आप सुबह जल चढ़ा लें, नमः शिवाय पढ़ लें, इसके बाद जलपान करिएगा या इसके बाद फलाहार करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप एक दाना रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। सावन के महीने में किसी भी दिन शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की।
1: तुला राशि, परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है, माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है और चोट चपेट लग सकती है, उससे बचिएगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल पंडित जी से लेते हैं, सावन से जुड़ा हुआ। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि सावन के सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, कहते हैं कि आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो सावन के सोमवार की पूजा का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, वो बताइए।
1: देखिए, वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन का सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है, चंद्रमा उसका स्वामी है, सोमवार का स्वामी भी चंद्रमा, सावन के महीने के स्वामी शिव जी हैं और सोमवार को भी शिवजी नियंत्रित करते हैं। तो भगवान शिव का विशेष संबंध माना जाता है सोमवार से। भगवान शिव की पूजा के लिए खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है और उसमें भी सावन का सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य की बाधा है या कोई मानसिक समस्या है आपको, तब भी सावन के सोमवार की पूजा करना उत्तम होता है। सावन के सोमवार की पूजा करने से आयु की रक्षा होती है। सावन के सोमवार पर विशेष रूप से रात के समय में शिव जी की पूजा करना सर्वोत्तम होता है और सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, रात में जग करके शिव मंत्र का जप करती हैं। ऐसा करने से उनका शीघ्र और मनचाहा विवाह हो जाता है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अब अंतिम तीन राशियों के बारे में भी। पंडित जी आपको बताएंगे कि इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
1: मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न आप इस शो में भेजना चाहते हैं इस शो में भेज सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। तो पंडित जी, अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
1: जी अगला प्रश्न चंचला जी ने हमें लिखा है और चंचला जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 9 जून 2002, जन्म का समय रात में 11:46, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है और आगे वो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्या बेटे का विदेश जाना उचित होगा और किस तरह की पढ़ाई मेरे बेटे को करनी चाहिए? चंचला जी, सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे के लिए आगे टेक्निकल पढ़ाई करना, एमटेक करना या एमएस करना अच्छा होगा, और अगर आपका बेटा विदेश जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि विदेश जाने पर पढ़ाई में थोड़ी बाधा 2028 में आ सकती है। अगर अपने देश में रह करके टेक्नोलॉजी की आगे की पढ़ाई करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने बेटे को नशे करने से, गलत रास्ते पे जाने से, भटकाव से बचाइए, क्योंकि आपके बेटे के भटकने की संभावनाएं बहुत हैं। एक उनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर इनको पहनाइए। और दूसरा, आप अपने बेटे से कहिए कि वो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में शामिल करने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है अंतिम प्रश्न और कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
1: जी अगला प्रश्न रिया ने हमें लिखा है और रिया हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। रिया की जन्म तारीख है 7 मई 2008, जन्म का समय है सुबह के 8:55, जन्म स्थान है कोलकाता। रिया कह रही हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन का पहला साल है मेरा, आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए, आगे मैं MBA करूं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं? रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना आपकी अच्छी है और आप बेहतर सफलता गवर्नमेंट जॉब में पा सकेंगी। आपको सिर्फ मेहनत बढ़ानी है और अपनी एकाग्रता पर ध्यान देना है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज

0: महीने में नया शुभ काम कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। देखिए सावन का महीना चातुर्मास में आता है, इसमें कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप शुभ और मंगल कार्य करना चाहते हैं तो कम से कम इतना करिए कि गोचर में, ब्रह्मांड में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति जरूर देख लीजिएगा।
1: और चलिए पंडित जी, अब आपको जानकारी देंगे 30 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस मंत्र का जप करें तो उन्हें लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है कर्क। आप नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप हमेशा करते रहें। ऐसा करने से स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों उत्तम रहेगी।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में, तमाम जानकारियां पंडित जी ने आप सबके साथ साझा कर दी है। अब बारी आती है महाउपाय के बारे में जान लेने की। तो आज का खास उपाय क्या है, पंडित जी से ही जानते हैं।
0: जी, आप सावन में अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, उसका सरल उपाय क्या है। सावन में रोज शाम को शिव मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। सावन में हर रोज शाम को ऐसा करें तो अच्छा होगा, नहीं तो सावन में जितने दिन भी आप ऐसा करेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी।
1: तो पंडित जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: बात। गुरु पूर्णिमा की, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: माँ के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो तुम्हारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका जिनका आश्रम है जिनके गुरु है वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणी, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: महादेव के सबसे प्रिय सावन महीने की शुरुआत हो रही है लेकिन उससे पहले ही पूरा देश शिवमय हो चुका है। कई कांवड़िए पवित्र नदियों से जल भरने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कहते कि महादेव को भाव सबसे प्रिय है, यही वजह है कि शिव भक्त अपनी श्रद्धा को अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। सावन के इस पावन महीने में भक्ति की ऐसी ही कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। हरिद्वार में श्रावण मेला शुरू हो चुका है और बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है।

गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा

0: कंधे पर रंग बिरंगे कावड़ और बोलबम के जयकारे लगाते हुए शिवालयों की ओर निकल चुके हैं कावड़ यात्री। इनमें कोई अकेले ही कावड़ लेकर चल रहा है, कोई दोस्तों के साथ और कोई परिवार संग कावड़ लेकर जा रहा है। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें हरिद्वार के गंगा घाट से आई हैं, जहां गंगा जल भरने के लिए न सिर्फ बड़ी संख्या में कांवड़िए अब पहुंच रहे हैं, बल्कि कई कांवड़ यात्री तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर कूच भी कर चुके हैं। इनमें कोई पहली बार कांवड़ लेकर जा रहा है, जबकि कोई दूसरी और तीसरी बार, और कोई सालों से कांवड़ लेकर जा रहा है।
1: हरियाणा से कांवड़ लेके जा रहे हैं, आज से 10-12 साल पहले कांवड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं। भोले बाबा की फुल कृपा जी, जो हमने मांगा उनसे ज्यादा ही भोलेनाथ ने दिया है और कभी भी आज तक कष्ट नहीं हुआ, उनकी फुल कृपा है। भोलेनाथ जी बोल, शंकर भगवान की जय।
2: गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए।
3: पहले भी चल लेके गए?
2: हाँ जी, पिछली बार 51 लीटर था, अपनी बार 71 लीटर।
4: कान और रोहतक हरियाणा से
3: कांवड़ लेके जा रहे हैं।
4: हाँ जी,
3: मन में इच्छा है,
4: मन में इच्छा है कि माँ बाप की सेवा हो जाए, सभी भक्तों की सेवा बढ़िया हो जाए, सभी अपने अपने घर जाएं, अच्छे भगवान के दर्शन करें।
3: पहले लेके गए कभी कांवड़?
4: हाँ जी, 10-12 साल हो गए।
3: अच्छा, नहीं होता
4: मतलब ही नहीं जी, बहुत
3: लगातार
4: कृपा रही है भोलेनाथ की।
0: कांवड़ यात्रा के लिए कई जरूरी और कठिन नियम होते हैं, जिन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान पालन करना बहुत अहम होता है। बावजूद इसके आस्था के इस कठिन सफर पर निकले इन शिव भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं।

0: देवादी देव महादेव पर अटूट विश्वास रखकर ये शिव भक्त यूं ही झूमते गाते जयकारा लगाते सावन के पहले सोमवार पर जल अभिषेक की मनोकामना लेकर आगे बढ़ चले हैं।
1: दूसरी बार ये बोला था घर बन जाएगा तो घर बन के तैयार हो गया और घर में थोड़ा सुख शांति से रहते हैं। पहले लड़ाई होती थी अब नहीं होती और अब तसल्ली से रहते हैं घर के अंदर और ये मन्नत है मेरे घर वाले मेरे साथ खुश रहे।
0: कावड़ यात्रा का श्री गणेश होते ही इनके अनोखे रंग भी नजर आने लगे हैं। एक से बढ़कर एक कावड़ सड़कों पर दिखने लगे हैं। इनमें कोई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा कंधों पर लेकर चल रहा है, कोई रंग बिरंगी लाइटों से सजी कावड़ लेकर आया है, कोई लग्जरी कार की रेप्लिका पर भगवान शिव की प्रतिमा रखकर कावड़ यात्रा कर रहा है, कोई श्रवण कुमार की तरह माता पिता को कंधे पर उठाकर कावड़ यात्रा पर निकल चुका है और कोई 10, 20, 50 और 100 की नोटों से सजी कावड़ लेकर जा रहा है।
2: बोले मैं अभी हरिद्वार से मैंने कावड़ उठाई अपनी, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार दिल्ली।
3: क्या मन रहे नोटों की कावड़ ले जाने?
2: बोले हम मेरा क्या कहते हैं मतलब सपना था नोट वाली कावड़ ले जाने का, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आज नोट वाली कावड़ लेने।
3: कितने नोट लगाए?
2: बोले आप देख सकते हो मेरे पीछे जो कावड़ है इसमें अनगिनत नोट है, इसकी कोई गिनती नहीं है।
3: कौन से नोट लगाए?
2: इसमें 50 के, 100 के, 10 के और 20 के नोट हैं आपके।
3: क्या करोगे कावड़ नोटों पर जाके?
2: जितने भी ये नोट हैं हमारे शिवालय पे पहुंचने के बाद इनके सारे नोट हटा के हम मंदिर में दान करेंगे।
4: भोले बाबा के हर साल आते हैं कावड़ लेने, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे, इस साल कुछ अलग करा हमने। तुम्हारी मतलब ऐसा था मन में कि नोटों की कावड़ लेके जाने तो बस नोट लगा दियो।
3: कितने नोट लगाए होंगे?
4: जी ये नहीं बताइए, अनगिनत नोट है, ये गिने नहीं है। इसे बनाने में टोटल हम 9 जने हैं, 9 लोगों को एक दिन और एक रात लग गई पूरी।
0: कावड़ यात्रियों के निकलते ही शहर शहर कावड़ यात्रा रूट पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। कहीं कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है, कहीं ड्रोन से निगरानी हो रही है और कहीं पुलिस की टीम ग्राउंड पर उतरी है और कहीं तकनीक का सहारा लेकर कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पुलिस के आला अफसर पूरे लाव लश्कर के साथ कावड़ रूट पर पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए।
5: देखिए लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 की फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 9 कंपनी हमारी पीएसी और आरआरएफ इत्यादि लगाई गई है, एटीएस लगाई गई है, बीडीएस की टीम है, इसमें एएस चेक की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा जो स्पेशल है टेथर ड्रोन भी लगाया गया है। 3 हमारे ड्रोन्स हैं जो कि एक एक चीज जूम करके 500 से 600 मीटर तक देख सकते हैं, एक ही स्थान से एक एक चीज जो दिखाई देती है उसमें। इस प्रकार से हर पॉइंट पर लगभग आप 520 ऐसे पॉइंट है जहां पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ पूरी पेट्रोलिंग पिकेटिंग, आप जानते हैं कि 9 जोन है, 9 सुपर जोन है, 16 जोन है और 89 प्लस 141 सेक्टर सब सेक्टर हैं और सुपर सुपर जोन भी हमारे 6 बनाए गए हैं, एडिशन एसपी से लेकर 6 एडिशन एसपी और 16 डीएसपी से लेकर के पूरा 30 इंस्पेक्टर जो बाहर से ये आए हुए हैं, बाकी हमारे जिले की फोर्स अलग से डिप्लाई किया गया है।
0: उत्तराखंड और यूपी की तरह ही बिहार में भी कावड़ यात्रा की रौनक दिखाई देने लगी है। मुंगेर जिले में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है, वहां लगभग 105 किलोमीटर लंबे कच्चे कावड़ पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार 7 आधुनिक टेंट सिटी बनाए गए हैं, जहां कावड़ियों के लिए आराम, पीने के पानी, लाइट, शौचालय और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इन टेंट सिटीज में रोजाना भजन, भक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
6: इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि जो हम लोगों ने तैयारी यहाँ पे की है कच्चे कावड़िया पथ पर, जो आकर्षक हम लोगों ने गेट बनाया है शिव की गुफा के तौर पे, उसको दिखाया है हम लोगों ने। उसके अलावा हर जगह हमारे हेल्थ कैंप्स लगे हैं, जो भी लाइट्स हम लगाते हैं वो काफ़ी डेकोरेटिव हैं, ताकि बाहर से जो भी लोग आते हैं हमारे राज्य में, बिहार राज्य में कावड़ बन के, वो लोग भी एक बिहार की अच्छी छवि को लेकर यहाँ से जाए, जो भी सुविधा यहाँ पे।
0: कावड़ यात्रा श्रावण मास की सबसे बड़ी और लोकप्रिय आस्था का प्रतीक है। ये यात्रा केवल पैदल चलना नहीं बल्कि शारीरिक कष्ट, संयम और भक्ति का अद्भुत मेल है। जो पूरे श्रावण मास के दौरान दिखाई देने वाली है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम की, कहीं पड़ रही है मॉनसूनी फुहार तो कहीं तगड़ी मॉनसूनी बौछार। मूसलाधार बारिश ने देश के कई इलाकों में परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाका, हर जगह पर स्थिति एक जैसी है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। मौसम के इन्हीं साइड इफेक्ट से दो दो हाथ कर रही है हमारे देश की तमाम राहत और बचाव एजेंसियां, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। साथ ही साथ कुछ जगहों में लोकल पुलिस और लोकल लोग भी बढ़ चढ़कर इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं।
7: देश में अब मॉनसून फुल स्पीड में है। जाहिर है गर्मी और उमस से राहत भी है, लेकिन साथ ही तकलीफों का साया भी मंडरा रहा है। देश भर में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं, लेकिन प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में बचाव टीमें दिन रात एक कर दे रही हैं। जब तक प्रभावितों तक मदद नहीं पहुँच जाती, उन्हें संकट से बचा नहीं लिया जाता, तब तक रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं। तो चलिए एक एक कर आपको मैदान से लेकर पहाड़ों तक हो रही भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी संख्या में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। मॉनसूनी बारिश की जद में देश का नॉर्थ ईस्ट रीजन बुरी तरह चपेट में है। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां नाजीरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यहीं के लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। इन लोगों ने नावों और बांस के बेड़ों की मदद से करीब 1000 से ज्यादा फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाई।
8: हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 थो, और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग मामा लोग बहुत लोग हैं, हमारा अपना ही लोग है, तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया सब लोग मिलके।
7: ये तस्वीर नागालैंड की है, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ तो कई लोग फंस गए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने यहां राहत बचाव का काम चलाया हुआ है। खबरों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीमापुर भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई तो यहां भी फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तिलवाड़ा में उफनाई मंदाकिनी में कुछ महिलाएं फंस गईं, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये महिलाएं दरअसल नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने गई थी, लेकिन नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो ये करीबन 1 घंटा वहीं फंसी रही, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर निकाला। फिलहाल तो मानसूनी सीजन में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को राहत देने, उनको रेस्क्यू करने के लिए देश की बचाव एजेंसी जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन वहीं इसी आफत की बारिश के बीच खुद के स्तर पर स्थानीय लोगों का भी राहत बचाव कैंपेन काबिले तारीफ है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
11: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
1: अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज
0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे

0: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
1: Marketplace.
4: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
1: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज।

तरफ जोश और हवा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी, साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास तादाद और खूबियां दिखाएंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए, उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास, बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मेला। शांत, अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिल करके रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं, और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर विहीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देन ही है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया, उसी के वजह से आज टाइगर या तो एमपी चला जाता है या कोटा चला जाता है या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहाँ टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: वो आसानी से दिखता नहीं, मगर उसकी मौजूदगी से जंगल चौकन्ना रहता है। वो नजर आ सकता है किसी घने दरख्त की आड़ में या अपने शाही चाल में बड़े आराम से सड़क पार करते, लेकिन जब कभी टाइगर नजर आता है, देखने वाले बड़ी अदब से उसे रास्ता दे देते हैं। जंगल में इसी बादशाह का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में मौजूद रातापानी रिजर्व में आबाद है। एमपी के इस नए रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है गुप्ता जी की। इस नाम को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि रातापानी में जो बाघ मेल अल्फा है, या कहिए कि बाघों का अगुआ है, उसका नाम गुप्ता जी है।
1: यहाँ पे कई सारे टाइगर्स की कहानी रही हैं, रुद्रांश है और वीरा है, ये अक्सर इन जंगलों में देखा जाता है पर्यटकों को। कई बार तो अगर आपको मैं पहले वीडियो देखें तो इस गेट से आता हुआ आपको दिखेगा टूरिस्ट, अब कुछ ही दिनों पहले के टूरिस्ट यहाँ अंदर तो नहीं आ पाते, लेकिन वो वहाँ ऊंचाई से जहाँ पे इनका आखिरी पॉइंट होता है, तो उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ टाइगर्स को देखा है। ये यहाँ पे नीचे खदान है, जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट किस टाइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्टाइपलेस टाइगर हैं, जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल हैं। अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है। अच्छा।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह रातापानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती हैं। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखिए ना, तो उसका जो ऑरा रहता है ना।
2: अच्छा।
1: गजब का ऑरा रहता है उसका, देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से ऐसे लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप का रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठी अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: 색깔이 너무
1: 고추야
2: 그래요?
1: 그래? 잘해 왜 이렇게 라이프 살기냐?
2: 아니
1: उसका स्ट्राइक दिख रहा होगा झाड़ी में से
2: ओहो
1: ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है
2: काफी बड़ा दिख रहा है
1: हाँ काफी बड़ा है
2: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या हो सकता है
1: ये वही
3: झाड़ी में क्यों फ्लाई जाते हैं देखिए कुछ अब ये नहीं दिख रहे हैं अपने
2: हाँ
3: यहाँ से नहीं दिखेंगे लग कुछ दिखेगा भी नहीं ऐसे बैठा
2: अरे
1: उठा अभी
2: वापस
1: जा रहे हैं
2: जस्ट

0: इनकी खूबी यह है कि ये काकी शिकारी होते हैं और आमतौर पर रात में अकेले ही भोजन की तलाश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अच्छे तैराक होते हैं। इनकी रफ्तार भी गजब की है। पूरी रफ्तार से बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑरेंज कलर का दिखने वाला रॉयल बंगाल टाइगर आसानी से अपने शिकार को धोखा दे देता है।
1: टाइगर हम लोग को ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, हाँ। बट अगर हम हर्बीवोर के पर्सपेक्टिव से देखें, हाँ। तो वो कलर में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो उनका जो ऑरेंज कलर है वो उसको ग्रीन ही दिखेगा, तो इस तरह से ये फोलियज में मतलब कैमोफ्लेज हो जाते
2: हैं। जितने लोग टाइगर के शिकार हो सकते हैं, जितने तरह के, हाँ। जानवर, उनको वो ऑरेंज नहीं दिखता,
1: वो नहीं दिखेगा ऑरेंज।
2: तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम लोग उसके शिकार नहीं है।
1: हम लोग नेचुरल शिकार टाइगर के नहीं है,
2: हम लोग को दिख रहा है।
1: हाँ,

0: बाघ शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानवर मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात गुरु पूर्णिमा की, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणी, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: आज शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर। अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस। बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग। शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
12: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर नगर निगम की एक नई पहल की। ये पहल सावन में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ने वाली पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएगी। जयपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए शिव अर्पणम नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिव अर्पणम अभियान चलाया जाएगा। सावन में हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी तक ये पवित्र पूजा सामग्री सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाती थी, इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी। लेकिन नगर निगम की नई पहल से अब ये पूजा सामग्री खाद का रूप लेगी। निगम ने अभियान चलाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली है। सावन के प्रत्येक सोमवार शहर के बड़े शिव मंदिरों से नगर निगम का इलेक्ट्रिक वाहन चढ़ाई गई पूजा सामग्री का संग्रह करेगा। मंदिरों से इकट्ठा की गई सामग्री को पास के उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद कंपोस्ट पिट में डीकंपोजर कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तैयार खाद को शिव अर्पणम ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जयपुर नगर निगम का ये अभियान 29 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रमुख शिवालयों में चलाया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के जरिए 10,000 से अधिक शिव अर्पणम जैविक खाद प्रसाद पैकेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है ये अभियान धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है। इससे एक ओर मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा। इस पहल को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
13: रिमझिम बारिश के साथ में आता है श्रद्धा का उत्सव, आस्था का उत्सव, जब हर एक भक्त अपने भगवान को, चाहे वो महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनको पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर ऐसे में ये जो जितनी भी सामग्री है ये कहीं ना कहीं वेस्ट भी जाती है और उनका जो सम्मान है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कोई पेड़ के नीचे उसको बाद में रखता है, कोई पानी में डालता है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग सॉल्यूशन है उस सामान, उन सामान का ढूंढा जाता है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने एक पहल की है जिसमें शिव अर्पणम नाम की गाड़ी जो है वो जयपुर नगर निगम लेके आया है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि जिस भी मंदिर में आप भगवान शिव को पूरे सावन में, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी पूजा की सामग्री है, वो अर्पित करेंगे, तो वो वहाँ से उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसमें डाला जाएगा। और इस गाड़ी, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस गाड़ी में पूजा सामग्री डाली जाएगी जिसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँ तो इस गाड़ी में एक तरीके से ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसका पूरा काम होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कोई भी भक्त आ रहा है तो मंदिर में वो सब कुछ चढ़ा रहा है, जहाँ से सारा सामान इस गाड़ी में जा रहा है, चाहे वो फूल

0: सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि फूल पत्ती गंदगी के बजाय डेली आप देखेंगे कभी रोड पे आइएगा कोई गाड़ी कचरा रोड पे फेंकते हैं जितना कचरा है। अगर रिसाइकल होकर खाद बनेगी तो अच्छे काम में यूज होगी। तो सरकार को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि इस सेवा को 12 महीने ही शुरू करें, ये सेवा निःशुल्क है, सेवा को है ना 12 महीने ही सेवा चालू की जाइए, ये हमारा सुझाव रहेगा।
1: मैडम मैं तो नगर निगम में कर्मचारी हूँ, मैं JEN हूँ, और ये अभी क्या है कि हमारे शिवार्पणम जो भी यहाँ पे फूल पत्तियाँ हैं और बिल पत्र जो भी चढ़ावा आता है उसमें पॉलीथीन वगैरह हम अलग कर लेते हैं, वो अलग गाड़ी से जाते हैं। ये हमने सिर्फ इसके लिए नई गाड़ियाँ लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये सावन के महीने में चलेगा, आगे फिर हमारे कमिश्नर साहब जो भी आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ से ये खाद बनेगा, हमारी शटर मशीनों पर जाएगा, तो वहाँ पर क्या है फिर वहाँ से हम खाद बना के निःशुल्क जयपुर को पैकेट बनाएंगे उनके एक एक किलो के ऐसे, और फिर उसको निःशुल्क जयपुर की जनता में बांटा जाएगा।
2: आज जो शुरुआत की है हमने, एक तो सबसे पहले अपने यहाँ का चौड़ा रास्ता ताड़ेश्वर जी का मंदिर है जो बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा मंदिर है छोटी चौपड़ पर रोजगारेश्वर मंदिर, तीसरा मंदिर है झारखंड महादेव जी का मंदिर, एक अपने कलेक्ट्री के पास में है उसका मंदिर का नाम क्या नाम है, जगनेश्वर मंदिर जी, महादेव जी का मंदिर, चलिए एक चमत्कारेश्वर मंदिर, ये पांच जगह नगर निगम ने नई गाड़ियां लगाई है। ये जो भी शिव जी के अर्पण होंगे प्लास्टिक को छोड़ करके वो सब हम यहाँ से एकत्रित करके और हमारी शटर मशीन जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ उनको भिजवा रहे हैं, वहाँ खाद तैयार होगा, वहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, और अच्छा सराहनीय कार्य सबसे पहले जो कमिश्नर साहब ने और हमारी गार्डन शाखा ने जो ये कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय है, आगे भी चलता रहे तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चले।
3: ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, ये इधर उधर कचरा पैरों में आए हो रहा है इसलिए कोई खाद बन रही है वो ज़्यादा बेस्ट है।
4: बहुत बढ़िया है अभियान चालू करा इन्होंने, ये पैरों में भी आवे नहीं, दोष भी नहीं लगता है, और ये सही जगह लगेगा, पेड़ पौधे में काम में आएगा ये खाद के रूप में, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे चलता रहे बहुत बढ़िया रहेगा।
5: आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर देश भर में गूंज रहा बाघ संरक्षण संदेश, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है, खबर यह है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर PWD विभाग ने SOP जारी की है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थयात्री कई जगहों पर घूमते हैं, लेकिन अब यहां गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के ऐतिहासिक मॉल रोड पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की आवाज़ सुनाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के चलते जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से पूरी मॉल रोड को नो हॉर्निंग जोन घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उस पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नैनीताल आने वाले लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में झील किनारे घूमने का आनंद ले सके, इसके पीछे यही सोच है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों और टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक बाघ संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए विशेष जंगल सफारी जागरूकता कार्यक्रम और आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की लॉन्चिंग जैसे कई आयोजन हुए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास कमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ATR और भिलाई के मैत्री बाग में विशेष रूप से बाघ संरक्षण की दिशा में कई फैसले लिए गए। एथलीट हिमा दास ने एक बार फिर अपने गृह राज्य असम में बाढ़ के दौरान अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों के लिए मदद पुतली हैं। प्रभावित इलाकों में हिमा दास जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दे रही है, साथ ही उनका दुख बांट रही है। इससे पहले 2019 में भी बाढ़ के दौरान हिमा ने राहत कार्यों के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शादीमार्ग KCB नाथ जंगलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन आयोजित किया गया। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस अनूठे उत्सव में रस्सा कशी, और

0: म्यूजिकल चेयर जैसे और भी कई मनोरंजक खेलों के साथ स्थानीय कवियों का मुशायरा भी आयोजित किया गया।
1: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बुधवार 29 जुलाई को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 29 जुलाई को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,000 रुपए पर बना रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,25,300 रुपए पर पहुँच गयी। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 29 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। बुधवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.66 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज वक्त में आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। अब इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
2: एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर वायरल है, जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। देखिए, एक पिता बाढ़ के बीच अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर और खुद डर कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। पिता को अपनी जान की परवाह नहीं, वो बस बच्चों को इस आपदा में सुरक्षित रखना चाहता है। सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये वायरल तस्वीरें एक सादी दौर की झलक को दिखाती है, जहां एक बच्चा साइकिल पर स्कूल जाता दिखता है तो दो युवा छात्र घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। वो किस पर सवार है, इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्कूल आने जाने के लिए हमेशा बस या कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभार परंपरा, आजादी और दृढ़ संकल्प ही कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। यानी कोई भी वाहन मिले, जहां पहुंचना है वहां पहुंच कर ही रहेंगे। यूं तो बचपन में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जबरन जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से स्कूल में सुबह सुबह जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए तो फिर तो हो गया काम। अब वायरल तस्वीरों में इस बच्चे को जरा देखिए, बेचारा चंचल मन का बच्चा मेडिटेशन के दौरान अपना मन शांत करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें सबको अपना बचपन याद दिला रही है। मौत के कुएं में सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, हौसले दौड़ते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस बेटी का हौसला देखिए। वैसे भी मौत के कुएं में बाइक चलाते महिलाओं को कम ही देखा गया है, लेकिन पेट के लिए इस बेटी को अपने पापा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रही है। वैसे भी वो जो कर रही है वो कड़ी ट्रेनिंग और बुलंद इरादे से ही हो पाता है। ये तस्वीरें देख लोग इस बेटी के हौसले, जुनून और मेहनत और साथ ही ट्रेनिंग को सलाम कर रहे हैं और उसे सुरक्षित होकर स्टंट करने की सलाह दे रहे हैं।

0: कोई जाति, धर्म या भाषा नहीं होती। और आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ लंगर को देखिए, आपको ये बात सिरे से महसूस होने लगेगी। ये वायरल तस्वीरें यही संदेश दे रही है, यहाँ अमीर हो या गरीब, सबकी भूख समान है। ये स्थान हर भूखे को अपना मानता है। वायरल तस्वीरें सबके भीतर एक पॉजिटिव इमोशन भर रही है। लोगों को ये तस्वीरें खूब पसंद भी आ रही है।
1: फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर। फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना सामने आ गया है। धर्म नाम के इस गाने को सुखविंदर सिंह और स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज दी है। ओ माय गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की इस नई फिल्म ओ माय डॉग में पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में हैं। उनके अलावा इस फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा भी नजर आएंगे। फिल्म ओ माय डॉग में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डॉग दिखने वाले हैं। डॉग और इंसानों के बीच के रिश्ते की कहानी वाली ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही एक खास अपडेट भी सामने आया है। सिनेमा घरों में 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही रणबीर कपूर स्टारर रामायण और एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर भी रिलीज होगा। फिल्म शुरू होने से पहले इन दोनों फिल्मों का लेटेस्ट ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग को लेकर ये चर्चा भी जोरों पर है कि ये फिल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने की श्रीमद् भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा। ये भगवत महापुराण पर आधारित 7 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म सीरीज होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत पार्ट 1 से होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कमान रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा के हाथों में है। फिल्म को सागर पिक्चर्स ग्लोबल के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। गुजराती फिल्म अंश भाव का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म इंसान और डॉग के बीच के अनोखे और प्यारे रिश्ते पर आधारित है, जिसे पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि आनंद पंडित और वैशाल शाह इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म में मित्र गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भरद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अंश भाव रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा वहां से गुड न्यूज के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में 2 और मेडल आए। जी हाँ, और यही नहीं, गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले धावक बने जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाया। उधर भारत के बॉक्सर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 4 मेडल पक्का कर दिया है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार के मेडल का खाता खोलने के बाद से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। महिला खिलाड़ी तो इतिहास रच रही हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और पैरा एथलीट में शर्मिला धनकड़ देश को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। कई खिलाड़ी सिल्वर मेडल तो कोई ब्रोंज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन हरजिंदर कौर ने मेडल जीतने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और देश को 11वां मेडल दिलाया। हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूँगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं साई की बहुत सपोर्ट है, मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: उधर छठे दिन ही धावक गुलवीर सिंह ने देश को न सिर्फ 12वां मेडल दिलाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। गुलवीर ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। एथलीट से लेकर पैरा एथलीट तक सब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू और हरजिंदर कौर इस पर कब्जा जमा चुकी हैं। तो दौड़ में गुलवीर सिंह और हाई जंप में सर्वेश कुशरे सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों पर पूरा देश फख्र कर रहा है, तो परिवार का गर्व करना लाजमी है। पदक विजेताओं के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, तो बिंदिया रानी देवी वेटलिफ्टिंग में ये मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पैरा एथलीट शिल्पा शायला भी ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं कई भारतीय बॉक्सर पदक पक्का कर चुके हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले उन बॉक्सर का ब्रोंज मेडल तो पक्का हो ही चुका है। इनमें महिला बॉक्सर प्रिया घनघस और प्रीति पवार का नाम शामिल है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को ब्रोंज मेडल दिया, पर ये ब्रोंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है।
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। अच्छा फीलिंग है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा इससे, ताकि मैं अपना नेक्स्ट बाउट में और भी अच्छा करूं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है तो इसलिए मेडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
0: वही पुरुष बॉक्सर में जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनके निशाने पर गोल्ड है।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले कम गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेटर कर सकूं मैं।
5: नहीं, मेडल तो कंफर्म हो गया, बट ये है कि इससे हमें गोल्ड की उम्मीद है, तो हमारा प्लान गोल्ड का है। बट ये बाउट आपको बताया कि क्वार्टर फाइनल बाउट सबसे ज्यादा टफ रहती है, क्यों वो मेडल बाउट है, जब एक बार मेडल में एंटर हो गए तो उसके बाद फिर दिमाग सेट हो जाता है कि सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है। बट मेन फोकस है पहले मेडल के अंदर एंटर होना, तो उसके हिसाब से हमने प्लान भी किया था। फिर इसकी प्रीवियस इसने भी बाउट देखी, हमने भी देखी, कोचों ने, कईयों ने देखी, इवन आते आते आधे घंटे पहले भी भाई ये क्या इसका सही है, जब हमें पता था इसका उसका राइट अच्छा है, राइट लेफ्ट राइट, तो हमने उसका राइट पे ही काम किया था, तो देन वो सक्सेस रहा वो प्लान हमारा।
0: महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिल चुका है, जिससे उनका ब्रोंज मेडल भी पक्का हो चुका है। इस तरह बॉक्सिंग के अलग अलग भार वर्ग में भारत का 4 ब्रोंज मेडल तय है। और जाहिर है अब नजरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और दूसरी स्पर्धाओं में भी कई और पदकों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई ब्लूबेरी की नई और बड़ी किस्म पककर तोड़ने के लिए तैयार हो गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चीन के जियांग में 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर विशेष प्रकार की स्वादिष्ट और बड़ी ब्लूबेरी उगाई गई, जो पक चुकी है और तोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल पिछले 8 साल में चीन ने ब्लूबेरी की एक नई किस्म विकसित की है, जिसके फल सामान्य ब्लूबेरी से 2 से 3 गुना बड़े होते हैं। कुछ का व्यास तो 26 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। इनकी पैकेजिंग लग्जरी सामान जैसी होती है और इनकी कीमत भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। स्मार्ट ग्रीन हाउस और ड्रिप सिंचाई तकनीक से यहाँ इनकी बम्पर पैदावार की जा रही है। चीन के पीले सागर और बुहाई खाड़ी के तट पर प्रवासी पक्षी अभयारण्य में मौजूद है, जो पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई मार्ग पर लाखों प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव, आराम और ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, जिनमें स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ब्लैक फेस्ड स्पून बिल और रेड क्राउन क्रेन जैसी वो प्रजातियां भी शामिल हैं जो अपना अस्तित्व बचा रही हैं। चीन का ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा और बायोडायवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का 10% से ज्यादा हिस्सा आराम लेने आता है। इसे यूनेस्को में भी विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। हांगकांग में दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस रोड टेस्ट, राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम शुरू हो चुका है। देश ने बाइडू के अपोलो गो को अपनी पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस ऑटोनोमस गाड़ी के टेस्टिंग परमिट के लिए मंजूरी दे दी थी, जिससे कंपनी को बगैर ड्राइवर के एयरपोर्ट आइलैंड पर पब्लिक रोड पर टेस्टिंग करने की इजाजत मिल गई। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस पब्लिक रोड टेस्ट था, जो राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम से किया गया। इससे पता चलता है कि चीन की ऑटोनोमस गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव मार्केट में आगे निकल गई हैं। चीन के लिए पांडा कितना जरूरी है ये सब जानते हैं। ये सिर्फ वहाँ का प्राणी नहीं, बल्कि कई देशों से रणनीतिक व्यावसायिक संबंधों की रणनीति के लिए भी अहम हथियार है। इसलिए अब चीन में दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल साथी रोबोट पांडा पेश किया गया। जेजियांग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है। ये घर में रहने वाले छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोएक्टिव रोबोट पांडा बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और स्पर्श को समझ कर उनको रिएक्शन देता है। चीन में फाइटर रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल से सबका ध्यान खींच रहा है। ये फाइटर रोबोट्स बता रहे हैं कि अब यहाँ जबरदस्त एनर्जी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की शुरुआत भी हो गई है। इन फाइटर रोबोट में संभावित टारगेट को स्कैन करने और पहचानने के लिए 3D लेजर विजन भी लगा है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
9: हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
11: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: आज शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज।

नवजोत सिंह हवा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी, साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास तादाद और खूबियां दिखाएंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मेला। शांत अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिल करके रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं, और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर विहीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देन ही है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया, उसी के वजह से आज टाइगर या तो MP चला जाता है या कोटा चला जाता है या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहाँ टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: वो आसानी से दिखता नहीं, मगर उसकी मौजूदगी से जंगल चौकन्ना रहता है। वो नजर आ सकता है किसी घने दरख्त की आड़ में या अपने शाही चाल में बड़े आराम से सड़क पार करते, लेकिन जब कभी टाइगर नजर आता है, देखने वाले बड़ी अदब से उसे रास्ता दे देते हैं। जंगल में इसी बादशाह का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में मौजूद रातापानी रिजर्व में आबाद है। एमपी के इस नए रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है गुप्ता जी की। इस नाम को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि रातापानी में जो बाघ मेल अल्फा है, या कहिए कि बाघों का अगुआ है, उसका नाम गुप्ता जी है।
1: यहाँ पे कई सारे टाइगर्स की कहानी रही है, रुद्रांश है और वीरा है, ये अक्सर इन जंगलों में देखा जाता है पर्यटकों को। कई बार तो अगर आपको मैं पहले वीडियो देखें तो इस गेट से आता हुआ आपको दिखेगा टूरिस्ट, अब कुछ ही दिनों पहले के टूरिस्ट यहाँ अंदर तो नहीं आ पाते, लेकिन वो वहाँ ऊंचाई से जहाँ पे इनका आखिरी पॉइंट होता है, उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ टाइगर्स को देखा है। ये यहाँ पे नीचे खदान है, जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर है, जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल है, अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है। अच्छा।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह रातापानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती हैं। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखिए ना, तो उसका तो ऑरा रहता है ना।
2: अच्छा।
1: गजब का ऑरा रहता है उसका, देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से इसे लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप का रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठ ही अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: पेड़ के राइट साइड में हल्का हल्का आपको उसका स्ट्राइक्स दिख रहा होगा झाड़ी में से। ओहो, ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है,
1: बड़ा दिख रहा है।
0: हाँ, काफी बड़ा है।
1: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या हो सकता है?
0: ये वही
2: झाड़ी में क्यों फ्लाई जाते हैं क्योंकि कुछ क्लियर नहीं दिख रहे हैं अपने।
1: हाँ,
2: यहाँ से नहीं दिखेंगे लोग, कुछ दिखेगा भी नहीं, ऐसे बैठा।
1: अरे
0: उठा अभी,
1: अब
0: वापस जा रहे हैं।
1: जस्ट

0: बाघ शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व्स में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात गुरु पूर्णिमा की, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामने पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा कि 1,70,00,000 का जो है सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिन घोर अंधार, मानो हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे। फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है, वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणे, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
11: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
14: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर नगर निगम की एक नई पहल की। ये पहल सावन में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ने वाली पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएगी। जयपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए शिव अर्पणम नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिव अर्पणम अभियान चलाया जाएगा। सावन में हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी तक ये पवित्र पूजा सामग्री सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाती थी, इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी, लेकिन नगर निगम की नई पहल से अब ये पूजा सामग्री खाद का रूप लेगी। निगम ने अभियान चलाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली है। सावन के प्रत्येक सोमवार शहर के बड़े शिव मंदिरों से नगर निगम का इलेक्ट्रिक वाहन चढ़ाई गई पूजा सामग्री का संग्रह करेगा। मंदिरों से इकट्ठा की गई सामग्री को पास के उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद कंपोस्ट पिट में डीकंपोजर कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तैयार खाद को शिव अर्पणम ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जयपुर नगर निगम का ये अभियान 29 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रमुख शिवालयों में चलाया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के जरिए 10,000 से अधिक शिव अर्पणम जैविक खाद प्रसाद पैकेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है ये अभियान धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है। इससे एक ओर मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा। इस पहल को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: तो रिमझिम बारिश के साथ में आता है श्रद्धा का उत्सव, आस्था का उत्सव, जब हर एक भक्त अपने भगवान को, चाहे वो महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनको पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर ऐसे में ये जो जितनी भी सामग्री है ये कहीं ना कहीं वेस्ट भी जाती है और उनका जो सम्मान है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कोई पेड़ के नीचे उसको बाद में रखता है, कोई पानी में डालता है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग सॉल्यूशन है उस सामान, उन सामान का ढूंढा जाता है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने एक पहल की है जिसमें शिव अर्पणम नाम की गाड़ी जो है वो जयपुर नगर निगम लेके आया है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि जिस भी मंदिर में आप भगवान शिव को पूरे सावन में, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी पूजा की सामग्री है, वो अर्पित करेंगे, तो वो वहाँ से उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसमें डाला जाएगा। और इस गाड़ी, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस गाड़ी में पूजा सामग्री डाली जाएगी जिसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँ तो इस गाड़ी में एक तरीके से ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसका पूरा काम होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कोई भी भक्त आ रहा है तो मंदिर में वो सब कुछ चढ़ा रहा है, जहाँ से सारा सामान इस गाड़ी में जा रहा है, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या फिर अन्य जो सामग्री है वो हो, वो इस गाड़ी से फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होके और पूरा एक जगह पे लेके जाया जाता है और एक जगह से उसको खाद में बदला जाता है। वो खाद बनने के बाद में पेड़ों पौधों में इस्तेमाल की जाती है और उसको पूरी तरीके से सदुपयोग किया जाता है, जिससे जब वो जैविक खाद बन जाए तो उससे पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश दिया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब ऐसे में मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके। सर, आपका शुभ नाम?
16: मेरा नाम देव है, देव परनानी। मैं सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये, लेकिन मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे भी जैन साहब ने बताया कि ये इस सावन के महीने के लिए सेवा शुरू की गई है, लेकिन मैं सरकार को

0: और बिल पत्र जो भी चढ़ावा आता है उसमें पॉलीथीन वगैरह हम अलग कर लेते हैं, वो अलग गाड़ी से जाते हैं। ये हमने सिर्फ इसके लिए नई गाड़ियाँ लगाई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये सावन के महीने में चलेगा, आगे फिर हमारे कमिश्नर साहब जो भी आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ से ये खाद बनेगा, हमारी शेडर मशीनों पे जाएगा, तो वहाँ पे क्या है फिर वहाँ से हम खाद बना के निःशुल्क जयपुर को पैकेट बनाएंगे उनके एक एक किलो के ऐसे, और फिर उसको निःशुल्क जयपुर की जनता में बांटा जाएगा।
1: आज जो शुरुआत की है हमने, एक तो सबसे पहले अपने यहाँ का चौड़ा रास्ता ताड़ेश्वर जी का मंदिर है जो बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा मंदिर है छोटी चौपड़ पर रोजगारेश्वर मंदिर, तीसरा मंदिर है झारखंड महादेव जी का मंदिर, एक अपने कलेक्ट्री के पास में है उसका मंदिर का नाम क्या नाम है, जगनेश्वर मंदिर जी, महादेव जी का मंदिर, चल एक चमत्कारेश्वर मंदिर। ये पांच जगह नगर निगम ने नई गाड़ियां लगाई है, ये जो भी शिव जी के अर्पण होंगे प्लास्टिक को छोड़ करके वो सब हम यहाँ से एकत्रित करके और हमारी शटर मशीन जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ उनको भिजवा रहे हैं, वहाँ खाद तैयार होगा, वहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, और अच्छा सराहनीय कार्य सबसे पहले जो कमिश्नर साहब ने और हमारी गार्डन शाखा ने जो ये कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय है, आगे भी चलता रहे तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चले।
2: ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, ये इधर उधर कचरा पैरों में आए हो रहा है इसलिए कोई खाद बन रही है वो ज़्यादा बेस्ट है।
3: बहुत बढ़िया है अभियान चालू करा इन्होंने, ये पैरों में भी आवे नहीं, दोष भी नहीं लगता है, और ये सही जगह लगेगा, पेड़ पौधे में काम में आएगा ये खाद के रूप में, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे चलता रहे बहुत बढ़िया रहेगा।
4: आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर देश भर में गूंज रहा बाघ संरक्षण संदेश, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है, खबर यह है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एसओपी जारी की है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थ यात्री कई जगहों पर घूमते हैं, लेकिन अब यहां गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के ऐतिहासिक मॉल रोड पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की आवाज़ सुनाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के चलते जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से पूरी मॉल रोड को नो हॉर्निंग जोन घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उस पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नैनीताल आने वाले लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में झील किनारे घूमने का आनंद ले सके, इसके पीछे यही सोच है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों और टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक बाघ संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए विशेष जंगल सफारी जागरूकता कार्यक्रम और आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की लॉन्चिंग जैसे कई आयोजन हुए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास कमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ATR और भिलाई के मैत्री बाग में विशेष रूप से बाघ संरक्षण की दिशा में कई फैसले लिए गए। एथलीट हिमा दास ने एक बार फिर अपने गृह राज्य असम में बाढ़ के दौरान अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों के लिए मदद पुतली हैं। प्रभावित इलाकों में हिमा दास जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दे रही है, साथ ही उनका दुख बांट रही है। इससे पहले 2019 में भी बाढ़ के दौरान हिमा ने राहत कार्यों के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शादीमार KCB नाथ जंगलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन आयोजित किया गया। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस अनूठे उत्सव में रस्सा कशी और म्यूजिकल चेयर जैसे और भी कई मनोरंजक खेलों के साथ स्थानीय कवियों का मुशायरा भी आयोजित किया गया।
4: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भाग

0: भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बुधवार 29 जुलाई को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 29 जुलाई को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,000 रुपए पर बना रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,25,300 रुपए पर पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 29 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। बुधवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.66 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज वक्त में आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। अब इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
1: एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर वायरल है जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। देखिए एक पिता बाढ़ के बीच अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर और खुद तैर कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। पिता को अपनी जान की परवाह नहीं, वो बस बच्चों को इस आपदा में सुरक्षित रखना चाहता है। सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये वायरल तस्वीरें एक सादी दौर की झलक को दिखाती है जहां एक बच्चा साइकिल पर स्कूल जाता दिखता है तो दो युवा छात्र घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। वो किस पर सवार हैं इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्कूल आने जाने के लिए हमेशा बस या कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभार परंपरा, आजादी और दृढ़ संकल्प ही कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। यानी कोई भी वाहन मिले जहां पहुंचना है वहां पहुंच कर ही रहेंगे। यूं तो बचपन में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जबरन जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से स्कूल में सुबह सुबह जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए तो फिर तो हो गया काम। अब वायरल तस्वीरों में इस बच्चे को जरा देखिए। बेचारा चंचल मन का बच्चा मेडिटेशन के दौरान अपना मन शांत करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें सबको अपना बचपन याद दिला रही है। मौत के कुएं में सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं हौसले दौड़ते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस बेटी का हौसला देखिए। वैसे भी मौत के कुएं में बाइक चलाते महिलाओं को कम ही देखा गया है, लेकिन पेट के लिए इस बेटी को अपने पापा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रही है। वैसे भी वो जो कर रही है वो कड़ी ट्रेनिंग और बुलंद इरादे से ही हो पाता है। ये तस्वीरें देख लोग इस बेटी के हौसले, जुनून और मेहनत और साथ ही ट्रेनिंग को सलाम कर रहे हैं और उसे सुरक्षित होकर स्टंट करने की सलाह दे रहे हैं।

0: कोई जाति, धर्म या भाषा नहीं होती। और आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ लंगर को देखिए, आपको ये बात सिरे से महसूस होने लगेगी। ये वायरल तस्वीरें यही संदेश दे रही है, यहाँ अमीर हो या गरीब, सबकी भूख समान है। ये स्थान हर भूखे को अपना मानता है। वायरल तस्वीरें सबके भीतर एक पॉजिटिव इमोशन भर रही है। लोगों को ये तस्वीरें खूब पसंद भी आ रही है।
1: फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना सामने आ गया है। धर्म नाम के इस गाने को सुखविंदर सिंह और स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज दी है। ओ माई गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की इस नई फिल्म ओ माई डॉग में पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में हैं। उनके अलावा इस फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा भी नजर आएंगे। फिल्म ओ माई डॉग में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डॉग दिखने वाले हैं। डॉग और इंसानों के बीच के रिश्ते की कहानी वाली ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही एक खास अपडेट भी सामने आया है। सिनेमाघरों में 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही रणबीर कपूर स्टारर रामायण और एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर भी रिलीज होगा। फिल्म शुरू होने से पहले इन दोनों फिल्मों का लेटेस्ट ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग को लेकर ये चर्चा भी जोरों पर है कि ये फिल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने की श्रीमद् भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा। ये भगवत महापुराण पर आधारित 7 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म सीरीज होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत पार्ट 1 से होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कमान रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा के हाथों में है। फिल्म को सागर पिक्चर्स ग्लोबल के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। गुजराती फिल्म अंश भाव का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म इंसान और डॉग के बीच के अनोखे और प्यारे रिश्ते पर आधारित है, जिसे पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि आनंद पंडित और वैशाल शाह इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म में मित्र गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भरद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अंश भाव रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा वहां से गुड न्यूज के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में 2 और मेडल आए। जी हाँ, और यही नहीं, गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले धावक बने जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाया। उधर भारत के बॉक्सर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 4 मेडल पक्का कर दिया है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार के मेडल का खाता खोलने के बाद से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। महिला खिलाड़ी तो इतिहास रच रही हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और पैरा एथलीट में शर्मिला धनकर देश को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। कई खिलाड़ी सिल्वर मेडल तो कोई ब्रोंज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन हरजिंदर कौर ने मेडल जीतने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और देश को 11वां मेडल दिलाया। हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूँगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं साई की बहुत सपोर्ट है, मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: उधर छठे दिन ही धावक गुलवीर सिंह ने देश को न सिर्फ 12वां मेडल दिलाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। गुलवीर ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। एथलीट से लेकर पैरा एथलीट तक सब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनकर भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू और हरजिंदर कौर इस पर कब्जा जमा चुकी हैं। तो दौड़ में गुलवीर सिंह और हाई जंप में सर्वेश कुशरे सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों पर पूरा देश फख्र कर रहा है, तो परिवार का गर्व करना लाजमी है। पदक विजेताओं के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, तो बिंदिया रानी देवी वेटलिफ्टिंग में ये मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पैरा एथलीट शिल्पा शायला भी ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं कई भारतीय बॉक्सर पदक पक्का कर चुके हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले उन बॉक्सर का ब्रोंज मेडल तो पक्का हो ही चुका है। इनमें महिला बॉक्सर प्रिया घनघस और प्रीति पवार का नाम शामिल है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को ब्रोंज मेडल दिया, पर ये ब्रोंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है।
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। अच्छा फीलिंग है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा इससे, ताकि मैं अपना नेक्स्ट बाउट में और भी अच्छा करूं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है तो इसलिए मेडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
0: वही पुरुष बॉक्सर में जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनके निशाने पर गोल्ड है।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले के गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेटर कर सकूं। मैं
5: मेडल तो कंफर्म हो गया, बट यही है कि इससे हमें गोल्ड की उम्मीद है, तो हमारा प्लान गोल्ड का है। बट ये बाउट आपको बताया कि क्वार्टर फाइनल बाउट सबसे ज्यादा टफ रहती है, क्यों वो मेडल बाउट है, जब एक बार मेडल में एंटर हो गए तो उसके बाद फिर दिमाग सेट हो जाता है कि सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है। बट मेन फोकस है पहले मेडल के अंदर एंटर होना, तो उसके हिसाब से हमने प्लान भी किया था। फिर इसकी प्रीवियस इसने भी बाउट देखी, हमने भी देखी, कोचों ने, कईयों ने देखी, इवन आते आते आधे घंटे पहले भी भाई ये क्या इसका सही है, जब हमें पता था इसका उसका राइट अच्छा है, राइट लेफ्ट राइट, तो हमने उसका राइट पे काम किया था, तो देन वो सक्सेस रहा वो प्लान हमारा।
0: महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिल चुका है, जिससे उनका ब्रोंज मेडल भी पक्का हो चुका है। इस तरह बॉक्सिंग के अलग अलग भार वर्ग में भारत का 4 ब्रोंज मेडल तय है। और जाहिर है अब नजरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और दूसरी स्पर्धाओं में भी कई और पदकों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई ब्लूबेरी की नई और बड़ी किस्म पककर तोड़ने के लिए तैयार हो गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चीन के जियांग में 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर विशेष प्रकार की स्वादिष्ट और बड़ी ब्लूबेरी उगाई गई, जो पक चुकी है और तोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल पिछले 8 साल में चीन ने ब्लूबेरी की एक नई किस्म विकसित की है, जिसके फल सामान्य ब्लूबेरी से 2 से 3 गुना बड़े होते हैं। कुछ का व्यास तो 26 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। इनकी पैकेजिंग लग्जरी सामान जैसी होती है और इनकी कीमत भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। स्मार्ट ग्रीन हाउस और ड्रिप सिंचाई तकनीक से यहाँ इनकी बंपर पैदावार की जा रही है। चीन के पीले सागर और बुहाई खाड़ी के तट पर प्रवासी पक्षी अभयारण्य मौजूद है, जो पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई मार्ग पर लाखों प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव, आराम और ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, जिनमें स्पून बिल्ड सैंडपाइपर, ब्लैक फेस्ड स्पून बिल और रेड क्राउन क्रेन जैसी वो प्रजातियां भी शामिल हैं जो अपना अस्तित्व बचा रही हैं। चीन का ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा और बायोडायवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का 10% से ज्यादा हिस्सा आराम लेने आता है। इसे यूनेस्को में भी विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। हांगकांग में दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस रोड टेस्ट, राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम शुरू हो चुका है। देश ने बाइडू के अपोलो गो को अपनी पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस ऑटोनोमस गाड़ी के टेस्टिंग परमिट के लिए मंजूरी दे दी थी, जिससे कंपनी को बगैर ड्राइवर के एयरपोर्ट आइलैंड पर पब्लिक रोड पर टेस्टिंग करने की इजाजत मिल गई। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस पब्लिक रोड टेस्ट था, जो राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम से किया गया। इससे पता चलता है कि चीन की ऑटोनोमस गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव मार्केट में आगे निकल गई हैं। चीन के लिए पांडा कितना जरूरी है ये सब जानते हैं। ये सिर्फ वहाँ का प्राणी नहीं, बल्कि कई देशों से रणनीतिक व्यावसायिक संबंधों की रणनीति के लिए भी अहम हथियार है। इसलिए अब चीन में दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल साथी रोबोट पांडा पेश किया गया। जेजियांग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है। ये घर में रहने वाले छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोएक्टिव रोबोट पांडा बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और स्पर्श को समझ कर उनको रिएक्शन देता है। चीन में फाइटर रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल से सबका ध्यान खींच रहा है। ये फाइटर रोबोट्स बता रहे हैं कि अब यहाँ जबरदस्त एनर्जी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की शुरुआत भी हो गई है। इन फाइटर रोबोट में संभावित टारगेट को स्कैन करने और पहचानने के लिए 3D लेजर विजन
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
11: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना, यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज।

नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी, साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास तादाद और खूबियां दिखाएंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मेला। शांत अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिलकर के रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित है और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर विहीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देन ही है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया, उसी की वजह से आज टाइगर या तो MP चला जाता है या कोटा चला जाता है या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहां टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: वो आसानी से दिखता नहीं, मगर उसकी मौजूदगी से जंगल चौकन्ना रहता है। वो नजर आ सकता है किसी घने दरख्त की आड़ में या अपने शाही चाल में बड़े आराम से सड़क पार करते, लेकिन जब कभी टाइगर नजर आता है, देखने वाले बड़ी अदब से उसे रास्ता दे देते हैं। जंगल में इसी बादशाह का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में मौजूद रातापानी रिजर्व में आबाद है। एमपी के इस नए रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है गुप्ता जी की। इस नाम को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि रातापानी में जो बाघ मेल अल्फा है, या कहिए कि बाघों का अगुआ है, उसका नाम गुप्ता जी है।
1: यहाँ पे कई सारे टाइगर्स की कहानी रही है, रुद्रांश है और वीरा है, ये अक्सर इन जंगलों में देखा जाता है पर्यटकों को। कई बार तो अगर आपको मैं पहले वीडियो देखें तो इस गेट से आता हुआ आपको दिखेगा टूरिस्ट, अब कुछ ही दिनों पहले के टूरिस्ट यहाँ अंदर तो नहीं आ पाते, लेकिन वो वहाँ ऊंचाई से जहाँ पे इनका आखिरी पॉइंट होता है, उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ टाइगर्स को देखा है। ये यहाँ पे नीचे खदान है, जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर है, जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल है, अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे है टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है। अच्छा।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह राता पानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो राता पानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती है। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखे ना, तो उसका तो ऑरा रहता है ना।
2: अच्छा।
1: गजब का ऑरा रहता है उसका, देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से जैसे लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप का रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठ ही अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: पेड़ के राइट साइड में हल्का हल्का आपको उसका स्ट्राइक दिख रहा होगा झाड़ी में से। ओहो, ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है।
1: एक बड़ा दिख रहा है।
0: हाँ, काफी बड़ा है।
1: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या? हाँ, हो सकता
0: है ये वही
2: झाड़ी में क्यों फ्लाई जाते हैं जैसे कुछ अब क्लियर नहीं दिख रहे हैं।
1: हाँ,
2: से नहीं दिखेंगे लोग कुछ दिखेगा कि नहीं ऐसे बैठा।
1: अरे
0: उठा अभी
1: वापस
0: जा रहे हैं।
1: जस्ट

0: बाग शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व्स में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात गुरु पूर्णिमा की, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसे है, जो आस्तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुणे से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामना पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो तुम्हारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान की दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणे, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Right field, from the first pitch of the season to the stretch run.
12: And that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: खबरें तो आ रही हैं।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना, यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
16: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर नगर निगम की एक नई पहल की। ये पहल सावन में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ने वाली पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएगी। जयपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए शिव अर्पणम नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिव अर्पणम अभियान चलाया जाएगा। सावन में हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी तक ये पवित्र पूजा सामग्री सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाती थी। इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी, लेकिन नगर निगम की नई पहल से अब ये पूजा सामग्री खाद का रूप लेगी। निगम ने अभियान चलाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली है। सावन के प्रत्येक सोमवार शहर के बड़े शिव मंदिरों से नगर निगम का इलेक्ट्रिक वाहन चढ़ाई गई पूजा सामग्री का संग्रह करेगा। मंदिरों से इकट्ठा की गई सामग्री को पास के उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद कंपोस्ट पिट में डीकंपोजर कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तैयार खाद को शिव अर्पणम ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जयपुर नगर निगम का ये अभियान 29 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रमुख शिवालयों में चलाया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के जरिए 10,000 से अधिक शिव अर्पणम जैविक खाद प्रसाद पैकेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है ये अभियान धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है। इससे एक ओर मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा। इस पहल को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
12: रिमझिम बारिश के साथ में आता है श्रद्धा का उत्सव, आस्था का उत्सव, जब हर एक भक्त अपने भगवान को, चाहे वो महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनको पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर ऐसे में ये जो जितनी भी सामग्री है ये कहीं ना कहीं वेस्ट भी जाती है और उनका जो सम्मान है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कोई पेड़ के नीचे उसको बाद में रखता है, कोई पानी में डालता है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग सॉल्यूशन है उस सामान, उन सामान का ढूंढा जाता है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने एक पहल की है जिसमें शिव अर्पणम नाम की गाड़ी जो है वो जयपुर नगर निगम लेके आया है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि जिस भी मंदिर में आप भगवान शिव को पूरे सावन में, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी पूजा की सामग्री है, वो अर्पित करेंगे, तो वो वहाँ से उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसमें डाला जाएगा। और इस गाड़ी, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस गाड़ी में पूजा सामग्री डाली जाएगी जिसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँ तो इस गाड़ी में एक तरीके से ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसका पूरा काम होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कोई भी भक्त आ रहा है तो मंदिर में वो सब कुछ चढ़ा रहा है, जहाँ से सारा सामान इस गाड़ी में जा रहा है, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या फिर अन्य जो सामग्री है वो हो, वो इस गाड़ी से फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होके और पूरा एक जगह पे लेके जाया जाता है और एक जगह से उसको खाद में बदला जाता है। वो खाद बनने के बाद में पेड़ों पौधों में इस्तेमाल की जाती है और उसको पूरी तरीके से सदुपयोग किया जाता है, जिससे जब वो जैविक खाद बन जाए तो उससे पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश दिया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब ऐसे में मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके। सर, आपका शुभ नाम?
17: मेरा नाम देव है, देव परनानी। मैं सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये, लेकिन मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे भी जैन साहब ने बताया कि ये इस सावन के महीने

0: सिर्फ इसके लिए नई गाड़ियां लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये सावन के महीने में चलेगा, आगे फिर हमारे कमिश्नर साहब जो भी आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ से ये खाद बनेगा, हमारी शटर मशीनों पे जाएगा, तो वहाँ पे क्या है फिर वहाँ से हम खाद बना के निःशुल्क जयपुर को पैकेट बनाएंगे उनके एक एक किलो के ऐसे, और फिर उसको निःशुल्क जयपुर की जनता में बांटा जाएगा।
1: आज जो शुरुआत की है हमने, एक तो सबसे पहले अपने यहाँ का चौड़ा रास्ता ताड़ेश्वर जी का मंदिर है जो बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा मंदिर है छोटी चौपड़ पर रोजगारेश्वर मंदिर, तीसरा मंदिर है झारखंड महादेव जी का मंदिर, एक अपने कलेक्ट्री के पास में है उसका मंदिर का नाम क्या नाम है, जगनेश्वर मंदिर जी, महादेव जी का मंदिर, चलिए एक चमत्कारेश्वर मंदिर, ये पांच जगह नगर निगम ने नई गाड़ियां लगाई है। ये जो भी शिव जी के अर्पण होंगे प्लास्टिक को छोड़ करके, वो सब हम यहाँ से एकत्रित करके और हमारी शटर मशीन जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ उनको भिजवा रहे हैं, वहाँ खाद तैयार होगा, वहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, और अच्छा सराहनीय कार्य सबसे पहले जो कमिश्नर साहब ने और हमारी गार्डन शाखा ने जो ये कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय है, आगे भी चलता रहे तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चले।
2: ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, ये इधर उधर कचरा पैरों में आए हो रहा है इसलिए कोई खाद बन रही है वो ज़्यादा बेस्ट है।
3: बहुत बढ़िया है अभियान चालू करा इन्होंने, ये पैरों में भी आवे नहीं, दोष भी नहीं लगता है, और ये सही जगह लगेगा, पेड़ पौधे में काम में आएगा ये खाद के रूप में, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे चलता रहे बहुत बढ़िया रहेगा।
4: आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर देश भर में गूंज रहा बाघ संरक्षण संदेश, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका हिस्सा।
5: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है, खबर यह है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एसओपी जारी की है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थयात्री कई जगहों पर घूमते हैं, लेकिन अब यहां गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के ऐतिहासिक मॉल रोड पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की आवाज सुनाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के चलते जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से पूरी मॉल रोड को नो हॉर्निंग जोन घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नैनीताल आने वाले लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में झील किनारे घूमने का आनंद ले सके, इसके पीछे यही सोच है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों और टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक बाघ संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए विशेष जंगल सफारी जागरूकता कार्यक्रम और आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की लॉन्चिंग जैसे कई आयोजन हुए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास कमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ATR और भिलाई के मैत्री बाग में विशेष रूप से बाघ संरक्षण की दिशा में कई फैसले लिए गए। एथलीट हिमा दास ने एक बार फिर अपने गृह राज्य असम में बाढ़ के दौरान अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों के लिए मदद पुतली हैं। प्रभावित इलाकों में हिमा दास जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दे रही है, साथ ही उनका दुख बांट रही है। इससे पहले 2019 में भी बाढ़ के दौरान हिमा ने राहत कार्यों के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शादीमार KCB नाथ जंगलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन आयोजित किया गया। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस अनूठे उत्सव में रस्सा कशी और म्यूजिकल चेयर जैसे और भी कई मनोरंजक खेलों के साथ स्थानीय कवियों का मुशायरा भी आयोजित किया गया।
4: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बुधवार 29 जुलाई को

0: शेरवाला बीएसई सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 29 जुलाई को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,000 रुपए पर बना रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,25,300 रुपए पर पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 29 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। बुधवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.66 के स्तर पर बंद हुआ।
1: न्यूज वक्त में आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। अब इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
2: एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर वायरल है जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। देखिए एक पिता बाढ़ के बीच अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर और खुद तैर कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। पिता को अपनी जान की परवाह नहीं, वो बस बच्चों को इस आपदा में सुरक्षित रखना चाहता है। सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये वायरल तस्वीरें एक सादी दौर की झलक को दिखाती है, जहां एक बच्चा साइकिल पर स्कूल जाता दिखता है तो दो युवा छात्र घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। वो किस पर सवार है इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्कूल आने जाने के लिए हमेशा बस या कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभार परंपरा, आजादी और दृढ़ संकल्प ही कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। यानी कोई भी वाहन मिले जहां पहुंचना है वहां पहुंच कर ही रहेंगे। यूं तो बचपन में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जबरन जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से स्कूल में सुबह सुबह जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए तो फिर तो हो गया काम। अब वायरल तस्वीरों में इस बच्चे को जरा देखिए, बेचारा चंचल मन का बच्चा मेडिटेशन के दौरान अपना मन शांत करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें सबको अपना बचपन याद दिला रही है। मौत के कुएं में सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, हौसले दौड़ते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस बेटी का हौसला देखिए। वैसे भी मौत के कुएं में बाइक चलाते महिलाओं को कम ही देखा गया है, लेकिन पेट के लिए इस बेटी को अपने पापा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रही है। वैसे भी वो जो कर रही है वो कड़ी ट्रेनिंग और बुलंद इरादे से ही हो पाता है। ये तस्वीरें देख लोग इस बेटी के हौसले, जुनून और मेहनत और साथ ही ट्रेनिंग को सलाम कर रहे हैं और उसे सुरक्षित होकर स्टंट करने की सलाह दे रहे हैं।

0: की कोई जाति, धर्म या भाषा नहीं होती। और आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ लंगर को देखिए, आपको ये बात सिरे से महसूस होने लगेगी। ये वायरल तस्वीरें यही संदेश दे रही है, यहाँ अमीर हो या गरीब, सबकी भूख समान है। ये स्थान हर भूखे को अपना मानता है। वायरल तस्वीरें सबके भीतर एक पॉजिटिव इमोशन भर रही है। लोगों को ये तस्वीरें खूब पसंद भी आ रही है।
1: फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना सामने आ गया है। धर्म नाम के इस गाने को सुखविंदर सिंह और स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज दी है। ओ माय गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की इस नई फिल्म ओ माय डॉग में पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में हैं। उनके अलावा इस फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा भी नजर आएंगे। फिल्म ओ माय डॉग में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डॉग दिखने वाले हैं। डॉग और इंसानों के बीच के रिश्ते की कहानी वाली ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही एक खास अपडेट भी सामने आया है। सिनेमा घरों में 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही रणबीर कपूर स्टारर रामायण और एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर भी रिलीज होगा। फिल्म शुरू होने से पहले इन दोनों फिल्मों का लेटेस्ट ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग को लेकर ये चर्चा भी जोरों पर है कि ये फिल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने की श्रीमद् भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा। ये भगवत महापुराण पर आधारित 7 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म सीरीज होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत पार्ट 1 से होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कमान रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा के हाथों में है। फिल्म को सागर पिक्चर्स ग्लोबल के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। गुजराती फिल्म अंश भाव का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म इंसान और डॉग के बीच के अनोखे और प्यारे रिश्ते पर आधारित है, जिसे पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि आनंद पंडित और वैशाल शाह इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म में मित्र गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भरद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अंश भाव रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा वहां से गुड न्यूज के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में 2 और मेडल आए। जी हाँ, और यही नहीं, गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले धावक बने जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाया। उधर भारत के बॉक्सर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 4 मेडल पक्का कर दिया है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार के मेडल का खाता खोलने के बाद से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। महिला खिलाड़ी तो इतिहास रच रही हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और पैरा एथलीट में शर्मिला धनखड़ देश को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। कई खिलाड़ी सिल्वर मेडल तो कोई ब्रोंज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन हरजिंदर कौर ने मेडल जीतने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और देश को 11वां मेडल दिलाया। हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूंगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं साई की बहुत सपोर्ट है, मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: उधर छठे दिन ही धावक गुलवीर सिंह ने देश को न सिर्फ 12वां मेडल दिलाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। गुलवीर ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। एथलीट से लेकर पैरा एथलीट तक सब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू और हरजिंदर कौर इस पर कब्जा जमा चुकी हैं। तो दौड़ में गुलवीर सिंह और हाई जंप में सर्वेश कुशरे सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों पर पूरा देश फख्र कर रहा है, तो परिवार का गर्व करना लाजमी है। पदक विजेताओं के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, तो बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में ये मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पैरा एथलीट शिल्पा शायला भी ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं कई भारतीय बॉक्सर पदक पक्का कर चुके हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले उन बॉक्सर का ब्रोंज मेडल तो पक्का हो ही चुका है। इनमें महिला बॉक्सर प्रिया घनघस और प्रीति पवार का नाम शामिल है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को ब्रोंज मेडल दिया, पर ये ब्रोंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है।
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। अच्छा फीलिंग है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा इससे, ताकि मैं अपना नेक्स्ट बाउट में और भी अच्छा करूं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है तो इसलिए मेडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
0: वही पुरुष बॉक्सर में जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनके निशाने पर गोल्ड है।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले के गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेहतर कर सकूं मैं।
5: नहीं, मेडल तो कंफर्म हो गया, बट यही है कि इससे हमें गोल्ड की उम्मीद है, तो हमारा प्लान गोल्ड का है। बट ये बाउट आपको बताया कि क्वार्टर फाइनल बाउट सबसे ज्यादा टफ रहती है, क्यों वो मेडल बाउट है। जब एक बार मेडल में एंटर हो गए तो उसके बाद फिर दिमाग सेटअप हो जाता है कि सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है, मतलब मेन फोकस है पहले मेडल के अंदर एंटर होना, तो उसके हिसाब से हमने प्लान भी किया था। फिर इसकी प्रीवियस इसने भी बाउट देखी, हमने भी देखी, कोचों ने, कईयों ने देखी, इवन आते आते आधे घंटे पहले भी भाई ये क्या इसका सही है, जब हमें पता था इसका उसका राइट अच्छा है, राइट लेफ्ट राइट, तो हमने उसका राइट पे ही काम किया था, तो देन वो सक्सेस रहा वो प्लान हमारा।
0: महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिल चुका है, जिससे उनका ब्रोंज मेडल भी पक्का हो चुका है। इस तरह बॉक्सिंग के अलग अलग भार वर्ग में भारत का 4 ब्रोंज मेडल तय है। और जाहिर है अब नजरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और दूसरी स्पर्धाओं में भी कई और पदकों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
7: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
8: है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: नो
10: ओह नो,
9: वेलकम To Get Real.
10: I got something to say.
9: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
10: Oh my God.
11: It's got to be deliciously desperate.
12: Why do these girls forgive him?
13: She has a soft spot for troubled men.
11: Boo bloody hoo.
9: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
10: Love runs deeper than we know.
9: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
14: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज।

नवजोत सिंह हवा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी, साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास आदत और खूबियां दिखाएंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास, बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मीला। शांत, अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिल करके रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा, वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं, और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर विहीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देन ही है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया, उसी के वजह से आज टाइगर या तो MP चला जाता है या कोटा चला जाता है या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहाँ टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह रातापानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो राता पानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती है। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखिए ना, तो उसका तो ऑरा रहता है ना।
2: अच्छा।
1: गजब का ऑरा रहता है उसका, देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से ऐसे लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप का रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठ ही अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: पेड़ के राइट साइड में हल्का हल्का आपको उसका स्ट्राइक दिख रहा होगा झाड़ी से। ओहो, ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है।
1: एक बड़ा दिख रहा है।
0: हाँ, काफी बड़ा है।
1: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या हो सकता है?
0: ये वही
2: झाड़ी में क्यों फ्लाई जाते हैं क्योंकि कुछ ये नहीं दिख रहे हैं।
1: हाँ,
2: से नहीं दिखेंगे लग कुछ दिखेगा भी नहीं ऐसे बैठा।
1: अरे
0: उठा अभी वापस जा रहे हैं।
2: अभी बढ़ रहे हैं
1: जस्ट

0: बाघ शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाघ जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानवर मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व्स में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से, पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around. He scores!
1: And your favorite music.
4: You and I stargazing.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: Good news today.
6: गुरु पूर्णिमा की गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसे है, जो आस्तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुना से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामना पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो तुम्हारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है वो लोग अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान का दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणे, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: It's storming and previously on my show Carly Pierce shared why she loves award show season.
12: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
11: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn. जी खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना, यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया, मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन, शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अवसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर वन बल्लेबाज।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
14: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर नगर निगम की एक नई पहल की। ये पहल सावन में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ने वाली पूजन सामग्री को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएगी। जयपुर नगर निगम ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए शिव अर्पणम नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिव अर्पणम अभियान चलाया जाएगा। सावन में हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी तक ये पवित्र पूजा सामग्री सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाती थी, इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थी, लेकिन नगर निगम की नई पहल से अब ये पूजा सामग्री खाद का रूप लेगी। निगम ने अभियान चलाने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली है। सावन के प्रत्येक सोमवार शहर के बड़े शिव मंदिरों से नगर निगम का इलेक्ट्रिक वाहन चढ़ाई गई पूजा सामग्री का संग्रह करेगा। मंदिरों से इकट्ठा की गई सामग्री को पास के उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद कंपोस्ट पिट में डीकंपोजर कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। तैयार खाद को शिव अर्पणम ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जयपुर नगर निगम का ये अभियान 29 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रमुख शिवालयों में चलाया जाएगा। नगर निगम ने इस अभियान के जरिए 10,000 से अधिक शिव अर्पणम जैविक खाद प्रसाद पैकेट श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है ये अभियान धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है। इससे एक ओर मंदिर में स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा। इस पहल को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
15: तो रिमझिम बारिश के साथ में आता है श्रद्धा का उत्सव, आस्था का उत्सव, जब हर एक भक्त अपने भगवान को, चाहे वो महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनको पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर ऐसे में ये जो जितनी भी सामग्री है ये कहीं ना कहीं वेस्ट भी जाती है और उनका जो सम्मान है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कोई पेड़ के नीचे उसको बाद में रखता है, कोई पानी में डालता है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग सॉल्यूशन है उस सामान, उन सामान का ढूंढा जाता है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने एक पहल की है जिसमें शिव अर्पणम नाम की गाड़ी जो है वो जयपुर नगर निगम लेके आया है। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि जिस भी मंदिर में आप भगवान शिव को पूरे सावन में, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या कोई भी पूजा की सामग्री है, वो अर्पित करेंगे, तो वो वहाँ से उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसमें डाला जाएगा। और इस गाड़ी, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस गाड़ी में पूजा सामग्री डाली जाएगी जिसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँ तो इस गाड़ी में एक तरीके से ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसका पूरा काम होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कोई भी भक्त आ रहा है तो मंदिर में वो सब कुछ चढ़ा रहा है, जहाँ से सारा सामान इस गाड़ी में जा रहा है, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या फिर अन्य जो सामग्री है वो हो, वो इस गाड़ी से फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होके और पूरा एक जगह पे लेके जाया जाता है और एक जगह से उसको खाद में बदला जाता है। वो खाद बनने के बाद में पेड़ों पौधों में इस्तेमाल की जाती है और उसको पूरी तरीके से सदुपयोग किया जाता है, जिससे जब वो जैविक खाद बन जाए तो उससे पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश दिया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब ऐसे में मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके। सर, आपका शुभ नाम?
16: मेरा नाम देव है, देव परनानी। मैं सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये, लेकिन मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे भी जैन साहब ने बताया कि ये इस सावन के महीने के लिए सेवा शुरू की गई है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि ये 12 महीने ही सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि फूल पत्ती गंदगी के बजाय डेली आप देखेंगे, कभी रोड पे आइएगा कोई गाड़ी कचरा रोड पे फेंकते हैं, जितना कचरा है अगर रिसाइकल होकर खाद बनेगी तो अच्छे काम में यूज होगी। तो सरकार को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि इस सेवा को 12 महीने ही शुरू करें, ये सेवा निःशुल्क है और सेवा को मैंने 12 महीने ही सेवा चालू की जाइए, ये हमारा सुझाव रहेगा।
17: मैडम, मैं तो नगर निगम में कर्मचारी हूँ, मैं JEN हूँ, और ये अभी क्या है कि हमारे शिव अर्पणम जो भी यहाँ पे फूल पत्तियाँ हैं और बिल पत्र जो भी चढ़ावा आता है उसमें पॉलीथीन वगैरह हम अलग कर लेते हैं, वो अलग गाड़ी से जाते हैं। ये हमने सिर्फ इसके लिए नई गाड़ियाँ लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये सावन के महीने में चलेगा, आगे फिर हमारे कमिश्नर साहब जो भी आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ से ये खाद बनेगा, हमारी शटर मशीनों पर जाएगा, तो वहाँ पर क्या है फिर वहाँ से हम खाद बना के निःशुल्क जयपुर को पैकेट बनाएंगे उनके एक एक किलो के ऐसे, और फिर उसको निःशुल्क जयपुर की जनता में बांटा जाएगा।
18: आज जो शुरुआत की है हमने, एक तो सबसे पहले अपने यहाँ का चौड़ा रास्ता ताड़ेश्वर जी का मंदिर है जो बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा मंदिर है छोटी चौपड़ पर रोजगारेश्वर मंदिर, तीसरा मंदिर है झारखंड महादेव जी का मंदिर, एक अपने कलेक्टर के पास में है उसका मंदिर का नाम क्या नाम है, जगनेश्वर मंदिर जी, महादेव जी का मंदिर, चलिए एक चमत्कारेश्वर मंदिर, ये पांच जगह नगर निगम ने नई गाड़ियां लगाई है। ये जो भी शिव जी के अर्पण होंगे प्लास्टिक को छोड़ करके, वो सब हम यहाँ से एकत्रित करके और हमारी शटर मशीन जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ उनको भिजवा रहे हैं, वहाँ खाद तैयार होगा, वहाँ भी कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। और अच्छा सराहनीय कार्य सबसे पहले जो कमिश्नर साहब ने और हमारे गार्डन शाखा ने जो ये कार्य किया, ये बहुत ही सराहनीय है। आगे भी चलता रहे तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चले।
19: ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। ये इधर उधर कचरा पैरों में आए हो रहा है, इसलिए कोई खाद बन रही है वो ज्यादा बेस्ट है।
20: बहुत बढ़िया है अभियान चालू करा इन्होंने, ये पैरों में भी आवे नहीं, दोष भी नहीं लगता है और ये सही जगह लगेगा, पेड़ पौधे में काम में आएगा एक खाद के रूप में। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे चलता रहे बहुत बढ़िया रहेगा।
14: आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर देश भर में गूंज रहा बाघ संरक्षण संदेश, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
21: उत्तराखंड का मशहूर और मच अवेटेड बजरंग सेतु बनकर तैयार है। खबर यह है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एसओपी जारी की है। दरअसल इस पुल पर आने वाले पर्यटकों को जल्द ही इसके ग्लास स्काई वॉक पर चलने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। पुल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 और बड़ों से 100 रुपए की फीस ली जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूं तो पर्यटक और तीर्थ यात्री कई जगहों पर घूमते हैं, लेकिन अब यहां गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु का ये कांच का पुल एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के ऐतिहासिक मॉल रोड पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून की आवाज सुनाई देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के चलते जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से पूरी मॉल रोड को नो हॉर्निंग जोन घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उस पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नैनीताल आने वाले लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में झील किनारे घूमने का आनंद ले सके, इसके पीछे यही सोच है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों और टाइगर रिजर्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई तक बाघ संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए विशेष जंगल सफारी, जागरूकता कार्यक्रम और आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की लॉन्चिंग जैसे कई

0: एथलीट हिमा दास ने एक बार फिर अपने गृह राज्य असम में बाढ़ के दौरान अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों के लिए मदद पुतली हैं। प्रभावित इलाकों में हिमा दास जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दे रही है, साथ ही उनका दुख बांट रही है। इससे पहले 2019 में भी बाढ़ के दौरान हिमा ने राहत कार्यों के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शादीमार्ग केसीबी नाथ जंगलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन आयोजित किया गया। नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आयोजित इस अनूठे उत्सव में रस्सा कशी और म्यूजिकल चेयर जैसे और भी कई मनोरंजक खेलों के साथ स्थानीय कवियों का मुशायरा भी आयोजित किया गया।
1: न्यूज पत्र पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बुधवार 29 जुलाई को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 888 अंकों की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 29 जुलाई को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,000 रुपए पर बना रहा। वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 2,25,300 रुपए पर पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 29 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। बुधवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.66 के स्तर पर बंद हुआ।
2: न्यूज पथ में आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। अब इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
3: एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर वायरल है, जिसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। देखिए, एक पिता बाढ़ के बीच अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर और खुद तैर कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। पिता को अपनी जान की परवाह नहीं, वो बस बच्चों को इस आपदा में सुरक्षित रखना चाहता है। सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये वायरल तस्वीरें एक सादी दौर की झलक को दिखाती है, जहां एक बच्चा साइकिल पर स्कूल जाता दिखता है तो दो युवा छात्र घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। वो किस पर सवार है इससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्कूल आने जाने के लिए हमेशा बस या कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभार परंपरा, आजादी और दृढ़ संकल्प ही कहीं ज्यादा खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। यानी कोई भी वाहन मिले, जहां पहुंचना है वहां पहुंच कर ही रहेंगे। यूं तो बचपन में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जबरन जाना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से स्कूल में सुबह सुबह जबरदस्ती मेडिटेशन कराया जाए तो फिर तो हो गया काम। अब वायरल तस्वीरों में इस बच्चे को जरा देखिए, बेचारा चंचल मन का बच्चा मेडिटेशन के दौरान अपना मन शांत करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें सबको अपना बचपन याद दिला रही है। मौत के कुएं में सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, हौसले दौड़ते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस बेटी का हौसला देखिए। वैसे भी मौत के कुएं में बाइक चलाते महिलाओं को कम ही देखा गया है, लेकिन पेट के लिए इस बेटी को अपने पापा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रही है। वैसे भी वो जो कर रही है वो कड़ी ट्रेनिंग और बुलंद इरादे से ही हो पाता है। ये तस्वीरें देख लोग इस बेटी के हौसले, जुनून और मेहनत और साथ ही ट्रेनिंग को सलाम कर रहे हैं और उसे सुरक्षित होकर स्टंट करने की सलाह दे रहे हैं।

0: कोई जाति, धर्म या भाषा नहीं होती। और आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ लंगर को देखिए, आपको ये बात सिरे से महसूस होने लगेगी। ये वायरल तस्वीरें यही संदेश दे रही है, यहाँ अमीर हो या गरीब, सबकी भूख समान है। ये स्थान हर भूखे को अपना मानता है। वायरल तस्वीरें सबके भीतर एक पॉजिटिव इमोशन भर रही है। लोगों को ये तस्वीरें खूब पसंद भी आ रही है।
1: फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर। फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना सामने आ गया है। धर्म नाम के इस गाने को सुखविंदर सिंह और स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज दी है। ओ माई गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की इस नई फिल्म ओ माई डॉग में पंकज त्रिपाठी अहम भूमिका में है। उनके अलावा इस फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा भी नजर आएंगे। फिल्म ओ माई डॉग में एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डॉग दिखने वाले हैं। डॉग और इंसानों के बीच के रिश्ते की कहानी वाली ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही एक खास अपडेट भी सामने आया है। सिनेमा घरों में 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही रणबीर कपूर स्टारर रामायण और एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर भी रिलीज होगा। फिल्म शुरू होने से पहले इन दोनों फिल्मों का लेटेस्ट ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग को लेकर ये चर्चा भी जोरों पर है कि ये फिल्म भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने की श्रीमद् भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा। ये भगवत महापुराण पर आधारित 7 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म सीरीज होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत पार्ट 1 से होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कमान रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा के हाथों में है। फिल्म को सागर पिक्चर्स ग्लोबल के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। गुजराती फिल्म अंश भाव का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म इंसान और डॉग के बीच के अनोखे और प्यारे रिश्ते पर आधारित है, जिसे पार्थ त्रिवेदी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि आनंद पंडित और वैशाल शाह इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म में मित्र गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भरद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अंश भाव रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा वहां से गुड न्यूज के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत के खाते में 2 और मेडल आए। जी हाँ, और यही नहीं, गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले धावक बने जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में देश को पदक दिलाया। उधर भारत के बॉक्सर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 4 मेडल पक्का कर दिया है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार के मेडल का खाता खोलने के बाद से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। महिला खिलाड़ी तो इतिहास रच रही हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और पैरा एथलीट में शर्मिला धनखड़ देश को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। कई खिलाड़ी सिल्वर मेडल तो कोई ब्रोंज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन हरजिंदर कौर ने मेडल जीतने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और देश को 11वां मेडल दिलाया। हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूंगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं साई की बहुत सपोर्ट है, मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: उधर छठे दिन ही धावक गुलवीर सिंह ने देश को न सिर्फ 12वां मेडल दिलाया बल्कि इतिहास भी रच दिया। गुलवीर ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और इस इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। एथलीट से लेकर पैरा एथलीट तक सब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू और हरजिंदर कौर इस पर कब्जा जमा चुकी हैं। तो दौड़ में गुलवीर सिंह और हाई जंप में सर्वेश कुशरे सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों पर पूरा देश फख्र कर रहा है, तो परिवार का गर्व करना लाजमी है। पदक विजेताओं के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, तो बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में ये मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पैरा एथलीट शिल्पा शायला भी ब्रोंज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं कई भारतीय बॉक्सर पदक पक्का कर चुके हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले उन बॉक्सर का ब्रोंज मेडल तो पक्का हो ही चुका है। इनमें महिला बॉक्सर प्रिया घनघस और प्रीति पवार का नाम शामिल है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को ब्रोंज मेडल दिया, पर ये ब्रोंज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है।
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। अच्छा फीलिंग है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा इससे, ताकि मैं अपना नेक्स्ट बाउट में और भी अच्छा करूं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है तो इसलिए मेडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
0: वही पुरुष बॉक्सर में जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनके निशाने पर गोल्ड है।
4: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले कम गेम्स में मेरा मेडल आके, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेटर कर सकूं मैं।
5: नहीं, मेडल तो कंफर्म हो गया, बट यही है कि इससे हमें गोल्ड की उम्मीद है, तो हमारा प्लान गोल्ड का है। बट ये बाउट आपको बताया कि क्वार्टर फाइनल बाउट सबसे ज्यादा टफ रहती है, क्यों वो मेडल बाउट है। जब एक बार मेडल में एंटर हो गए तो उसके बाद फिर दिमाग सेटअप हो जाता है कि सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है, बट मेन फोकस है पहले मेडल के अंदर एंटर होना, तो उसके हिसाब से हमने प्लान भी किया था। फिर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी बाउट देखी, हमने भी देखी, कोचों ने, कईयों ने देखी, इवन आते आते आधे घंटे पहले भी भाई ये क्या इसका सही है, जब हमें पता था इसका उसका राइट अच्छा है, राइट लेफ्ट राइट, तो हमने उसका राइट पे ही काम किया था, तो देन वो सक्सेस रहा वो प्लान हमारा।
0: महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिल चुका है, जिससे उनका ब्रोंज मेडल भी पक्का हो चुका है। इस तरह बॉक्सिंग के अलग अलग भार वर्ग में भारत का 4 ब्रोंज मेडल तय है और जाहिर है अब नजरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और दूसरी स्पर्धाओं में भी कई और पदकों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई ब्लूबेरी की नई और बड़ी किस्म पककर तोड़ने के लिए तैयार हो गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चीन के जियांग में 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर विशेष प्रकार की स्वादिष्ट और बड़ी ब्लूबेरी उगाई गई, जो पक चुकी है और तोड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल पिछले 8 साल में चीन ने ब्लूबेरी की एक नई किस्म विकसित की है, जिसके फल सामान्य ब्लूबेरी से 2 से 3 गुना बड़े होते हैं। कुछ का व्यास तो 26 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। इनकी पैकेजिंग लग्जरी सामान जैसी होती है और इनकी कीमत भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। स्मार्ट ग्रीन हाउस और ड्रिप सिंचाई तकनीक से यहाँ इनकी बम्पर पैदावार की जा रही है। चीन के पीले सागर और बुहाई खाड़ी के तट पर प्रवासी पक्षी अभयारण्य मौजूद है, जो पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई मार्ग पर लाखों प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव, आराम और ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, जिनमें स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ब्लैक फेस्ड स्पून बिल और रेड क्राउन क्रेन जैसी वो प्रजातियां भी शामिल हैं जो अपना अस्तित्व बचा रही हैं। चीन का ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा और बायोडायवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का 10% से ज्यादा हिस्सा आराम लेने आता है। इसे यूनेस्को में भी विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। हांगकांग में दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस रोड टेस्ट, राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम शुरू हो चुका है। देश ने बाइडू के अपोलो गो को अपनी पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस ऑटोनोमस गाड़ी के टेस्टिंग परमिट के लिए मंजूरी दे दी थी, जिससे कंपनी को बगैर ड्राइवर के एयरपोर्ट आइलैंड पर पब्लिक रोड पर टेस्टिंग करने की इजाजत मिल गई। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से ड्राइवरलेस पब्लिक रोड टेस्ट था, जो राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम से किया गया। इससे पता चलता है कि चीन की ऑटोनोमस गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव मार्केट में आगे निकल गई हैं। चीन के लिए पांडा कितना जरूरी है ये सब जानते हैं। ये सिर्फ वहाँ का प्राणी नहीं, बल्कि कई देशों से रणनीतिक व्यवसायिक संबंधों की रणनीति के लिए भी अहम हथियार है। इसलिए अब चीन में दुनिया का पहला प्रोएक्टिव इमोशनल साथी रोबोट पांडा पेश किया गया। जेजियांग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है। ये घर में रहने वाले छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोएक्टिव रोबोट पांडा बच्चों के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और स्पर्श को समझ कर उनको रिएक्शन देता है। चीन में फाइटर रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल से सबका ध्यान खींच रहा है। ये फाइटर रोबोट्स बता रहे हैं कि अब यहाँ जबरदस्त एनर्जी वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के निर्माण की शुरुआत भी हो गई है। इन फाइटर रोबोट में संभावित टारगेट को स्कैन करने और पहचानने के लिए 3D लेजर विजन भी लगा है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान? सावन के महीने में मिलेंगे कौन कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। यूपी में कांवड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज। पटना के इस्कॉन मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मेडिकल और अग्निशमन की टीमें भी मौजूद रही। नैनीताल की मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1,000 का जुर्माना, 1 अगस्त से लागू होगा नो हॉर्निंग जोन। शोर शराबे को कम करने के लिहाज से लिया गया फैसला। असम के शिव सागर में आपदा में शख्स ने निकाला अफसर, अभिजीत ने बनाया मोबाइल के लिए सोलर चार्जिंग डिवाइस, बाढ़ से ठप है इलाके की बिजली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईसीसी में धमाकेदार एंट्री, T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 230 पायदान की लगाई छलांग, शुभमन गिल बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बाघों की। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, और आज के दिन ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व करने की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज हम आपको देश में बाघों की बढ़ती तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों पर बात होगी। साथ ही समझेंगे कि पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए टाइगर्स क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स में, वहां बाघों की खास तादाद और खूबियां दिखाएंगे। बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे से, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। करीब 16 साल पहले बाघों को बचाने का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए जो प्रयास किए गए, उसका नतीजा अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत में बाघों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह संख्या हर साल यूं ही बढ़ती जाएगी। बाघ कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्यों पर्यावरण के लिए जरूरी है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

बिंदास, बेफिक्र मगर बड़ा ही शर्मेला। शांत, अकेला मगर बेहद खतरनाक। ठहरे तो जंगल में खामोशी, चले तो सनसनी और दहाड़ जैसे तूफान का ऐलान है। चार बादशाहों जैसी आंखें शमशीर, पीली काली धारियों में लिपटा ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सिर्फ शौर्य की मिसाल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

0: और देश के लिए ये तथ्य गर्व करने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है। दुनिया में करीब 5,500 बाघ हैं, जिनमें से करीब 70% यानी 3,682 बाघ अकेले भारत में हैं। ये उपलब्धि यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है। राष्ट्रीय नीति के साथ सामूहिक संकल्प और समुदायों की भागीदारी से ये मुमकिन हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में लिखा है कि सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को बधाई। भारत के लोगों को इस बात पर गर्व है कि दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी हमारे यहाँ है। भारत में बाघों के संरक्षण की कोशिशें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और हमारे लोगों के सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ रही है।
1: हमारा ये मानना है कि इस नेचर में को एग्जिस्ट करके सबको रहना होगा। हमारा सर्वाइवल तभी है जब जंगल का सर्वाइवल है, और जंगल का सर्वाइवल है तभी हम एक दूसरे पे मिलकर के रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। लगभग 630 के लगभग हमारे ESZ है, उसमें से 473 को हम फाइनलाइजेशन कर पाए हैं, वरना लंबे समय तक ये फाइनलाइजेशन नहीं थे। और जैसा मैंने आपको कहा वेटलैंड का भी महत्व होता है, तो केवल 24 वेटलैंड थी, उनकी संख्या बढ़कर के 99 हो गई है।
0: कुछ साल पहले जब देश में बाघों की संख्या चिंता की हद तक घट गई, तो उन्हें बचाने की चिंता ने टाइगर बचाने की मुहिम को शुरू किया था। आज उसका परिणाम देश भर के 18 राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्यों में नजर आता है। आबाद, खुशहाल और सुरक्षित बाघों को देखकर देश भर के वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की लगन समझ में आती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 तक गिर गई थी और देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 साल में यानी 2022 तक इनकी संख्या 58 हो गई। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है।
2: 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे भारत ने ये तय किया है, ये प्रण लिया है कि हम बाघों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद अपने बाघों के लिए जगह छोड़ेंगे। अभी आप हाल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज आप देखिए कि सन 2014 के 46 टाइगर रिजर्व में आज 2026 तक हमने 12 और टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया है, जिसमें कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल के एरिया में। तो अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आते हैं और सरकार की बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।
0: दुनिया में दर्जन भर ही ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा रूस में भी इनकी मौजूदगी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी अब भारत में है। सख्त वन सुरक्षा, शिकार पर रोक और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से हमारे देश में बाघ सुरक्षित हैं और इनकी तादाद भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। ग्लोबल टाइगर डे पर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों के लिए पेंटिंग क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही बच्चों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी कराई गई।

0: इंटरनेशनल टाइगर डे के दौरान वन विभाग ने बच्चों के साथ मनाया, जहां बच्चों को पार्क भ्रमण करवाकर कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जो राजस्थान के अंदर टाइगरों को आबाद करने के लिए जाना जाता है। जहां एक बार सरिस्का बिल्कुल टाइगर वीन हो गया था, तो आज रणथंभौर की देनी है जो वहां पर टाइगर सर्वाइकल कर रहा है। अगर हम टाइगर की बात करते तो टाइगर को लेकर वन विभाग कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क की जो एरिया है वो कम पड़ने लग गया है। उसी की वजह से आज टाइगर या तो MP चला जाता है, या कोटा चला जाता है, या करौली चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी ये एक गले की फांस बन जाता है। वहीं कई बार देखा गया कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान कई बाघों की मौत भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहाँ टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभाता है।
1: आपको बता दें कि रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघों को आबाद करने में रणथंभौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है, जहां वर्तमान में 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। रणथंभौर और ऐसे तमाम अभयारण्यों में आजादी के साथ जी रहे ये बाघ जैव विविधता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: बाघों का संरक्षण हमारे अपने इंसानों के भविष्य के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें इस बात को समझना होगा कि बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसका कि मतलब अर्थ सरल भाषा में ये हुआ कि किसी जंगल में अगर बाघ फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम पूरा स्वस्थ है, वो जंगल बहुत स्वस्थ है। तो क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो निर्भर होते हैं वहां के शाकाहारी जीवों पर, और जो वहां के शाकाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं वहां के स्थानीय वनस्पतियों पर, पेड़ पौधे पर, और ये सभी निर्भर करते हैं एक बड़े ही स्वच्छ जल के स्रोत पर। तो अगर किसी जंगल में बाघ फल फूल रहे हैं तो वो जंगल बहुत स्वस्थ है, और वो जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको धीमा करता है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसी तरह हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से लगभग 300 नदियां निकलती हैं, जिसपे कि एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग निर्भर करते हैं।
1: बाघों की अहमियत क्या है, इसे समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। उनके लिए जंगल को समझना और जंगल में बाघ की अहमियत जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन के लिए बाघ बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बाघ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जो उसे बेहद खास बनाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ इतनी बुलंद होती है कि आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, और ये भी कि रात में उनके देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। देखने में तो बाघ भारी भरकम होता है, लेकिन इसकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और थोड़े शर्मीले होते हैं। आपको बता दें कि देश के कई टाइगर रिजर्व्स में बाघों का नाम रखने का चलन है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक रिजर्व में मेल अल्फा यानी कि सबसे ताकतवर बाघ का नाम गुप्ता जी क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: वो आसानी से दिखता नहीं, मगर उसकी मौजूदगी से जंगल चौकन्ना रहता है। वो नजर आ सकता है किसी घने दरख्त की आड़ में या अपने शाही चाल में बड़े आराम से सड़क पार करते, लेकिन जब कभी टाइगर नजर आता है, देखने वाले बड़ी अदब से उसे रास्ता दे देते हैं। जंगल में इसी बादशाह का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में मौजूद रातापानी रिजर्व में आबाद है। एमपी के इस नए रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है गुप्ता जी की। इस नाम को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि रातापानी में जो बाघ मेल अल्फा है, या कहिए कि बाघों का अगुआ है, उसका नाम गुप्ता जी है।
1: यहाँ पे कई सारे टाइगर्स की कहानी रही है, रुद्रांश है और वीरा है, ये अक्सर इन जंगलों में देखा जाता है पर्यटकों को। कई बार तो अगर आपको मैं पहले वीडियो देखें तो इस गेट से आता हुआ आपको दिखेगा टूरिस्ट, अब कुछ ही दिनों पहले के टूरिस्ट यहाँ अंदर तो नहीं आ पाते, लेकिन वो वहाँ ऊंचाई से जहाँ पे इनका आखिरी पॉइंट होता है, तो उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ टाइगर्स को देखा है। ये यहाँ पे नीचे खदान है, जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि वो दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर है, जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल है, अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है। अच्छा।

0: राता पानी ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई रिजर्व हैं और इसी वजह से बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। इसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। जो उपलब्धि मध्य प्रदेश की है उस पर देश को भी गर्व है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जिस तरह रातापानी में गुप्ता जी की चर्चा होती है, उसी तरह दूसरे रिजर्व में भी स्थानीय लोगों ने बाघों को दिलचस्प नाम रखे हैं। बांधवगढ़ रिजर्व में एक बाघ को उसकी आदतों की वजह से पुजारी नाम दिया गया था, जो हर दिन पानी में नहाने के बाद शांत भाव से ध्यान लगाता और सुबह एक पेड़ के पास पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। इस तरह कान्हा में एक बाघिन का नाम डीजे। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों को रुद्राक्ष और त्रिशूल नाम दिए गए हैं। इसी तरह खिवनी का युवराज और मीरा पन्ना में मिस्टर इंडिया मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व की मौसी माँ बाघिन अपनी बहन के 3 शावकों को भी पालती है। बाघों के ऐसे नाम कई बार उनके डिलडोल या आदत की वजह से दिए जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर रिजर्व में अंगद के मामले में कुछ ऐसा ही है।
1: टाइगर का नाम है अंगद, अराउंड 290 केजी का है वो।
2: हाँ।
1: मतलब चलते हुए उसका देखिए ना, तो उसका जो ऑरा रहता है ना,
2: अच्छा,
1: गजब का ऑरा रहता है उसका। देख पांव जमा दिया तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाए। हम लोगों ने मतलब उसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि बहुत ही बल्कि दिखता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग दिखता है वो।
2: हाँ।
1: एक तरह से लगता है टाइगर की मतलब है, हम इस टाइप पर रहता है उसका।
0: बाघ की मौजूदगी इसलिए भी अलग से दिखती है क्योंकि इनकी कदकाठी अलग होती है। इनका वजन 360 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 3 मीटर तक।

0: के राइट साइड में हल्का हल्का आपको उसका स्ट्राइक्स दिख रहा होगा झाड़ी से। ओहो, ये इस एरिया का डोमिनेंट मेल है।
1: एक बड़ा दिख रहा है।
0: हाँ, काफी बड़ा है।
1: जिसकी बात आप कर रहे थे वही क्या हो सकता है?
0: ये वही
2: झाड़ी में कैमोफ्लेज रहते हैं, जैसे कुछ प्लेन नहीं दिख रहे हैं।
1: हाँ,
2: से नहीं दिखेंगे, लग कुछ दिखेगा भी नहीं, ऐसे बैठा है।
1: अरे
0: उठा अभी,
1: वापस
0: जा रहे हैं।
1: जस्ट

0: इनकी खूबी यह है कि ये काकी शिकारी होते हैं और आमतौर पर रात में अकेले ही भोजन की तलाश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अच्छे तैराक होते हैं। इनकी रफ्तार भी गजब की है। पूरी रफ्तार से बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑरेंज कलर का दिखने वाला रॉयल बंगाल टाइगर आसानी से अपने शिकार को धोखा दे देता है।
1: टाइगर हम लोग को ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, बट अगर हम हर्बीवोर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कलर में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो उनका जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन ही दिखेगा। तो इस तरह से ये फोलियज में
2: मतलब
1: कैमोफ्लेज हो जाते हैं।
2: जितने लोग टाइगर के शिकार हो सकते हैं, जितने तरह के जानवर, उनको वो ऑरेंज नहीं दिखता।
1: वो नहीं दिखेगा ऑरेंज।
2: तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम लोग उसके शिकार नहीं है।
1: हम लोग नेचुरल शिकार टाइगर के नहीं है,
2: हम लोग को दिख रहा है।
1: हाँ।

0: बाग शानदार हैं और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा भी। इसीलिए इनका होना और सुरक्षित होना देश के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेशनल टाइगर्स डे पर छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग जू चर्चा में रहा, जिसने देश में व्हाइट टाइगर के संरक्षण और सफल प्रजनन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दुर्लभ बाघों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां फिलहाल 5 व्हाइट टाइगर हैं, जिनकी देखभाल और संरक्षण के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। साल 1997 में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से व्हाइट टाइगर्स का एक जोड़ा मैत्री बाघ लाया गया था और इसके बाद अनुकूल वातावरण, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के चलते यहां व्हाइट टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब तक मैत्री बाघ से 13 व्हाइट टाइगर देश के कई चिड़ियाघरों में भेजे जा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान में चहल पहल रही। घूमने आए लोगों ने यहां भी व्हाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर्स को करीब से देखा। इस दौरान लोगों को बाघों के बारे में जानकारी भी दी गई और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। असल में बाघों की संख्या कम होने के पीछे एक बड़ी वजह इंसानों के साथ उनका टकराव भी रहा है और इसीलिए जानवर मानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बाघों के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है।
2: बाघों के स्थानों में उनके घरों में प्रवेश न करें। सरकार इस पर बहुत काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो बाघों के घरों में, मतलब टाइगर रिजर्व्स में प्रवेश न करें, क्योंकि मुख्य रूप से सभी जो जंगल में जो मानव बाघ संघर्ष है वो जंगलों में प्रवेश करने से प्रारंभ होते हैं। तो जो भी ग्रामीणों के जंगलों पर निर्भरता के कारण है, उनको लोकल अथॉरिटीज को प्रयास कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनको जंगल में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ जो जंगलों से सटे जो इलाके हैं, विशेष रूप से जहां से गांव प्रारंभ होते हैं, वहां मुस्तैदी से पेट्रोलिंग से इस मुठभेड़ की संभावना को काफी कम किया जा सकता है।
1: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: बात गुरु पूर्णिमा की, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का ये पर्व आज देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। दिन गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस खास मौके पर आज पवित्र नदियों के किनारे और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला और साथ ही कई जगहों पर लोगों ने अपने गुरुओं का सम्मान भी किया।

0: गुरुओं के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आया तो मठ मंदिरों से लेकर पवित्र घाटों तक आस्था और भक्ति की बयार बह निकली, जिसकी एक तस्वीर शिरडी के साईं मंदिर से सामने आई, जहां गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन और पूजन करने आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में भक्तों की ये भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि लोग साईं बाबा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षाओं में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि इस खास मौके पर कुछ भक्तों ने साईं के चरणों में सोने का हार और मुकुट जैसे कीमती भेंट अर्पित किए हैं। साईं मंदिर की तरफ से बताया गया कि मुंबई के एक भक्त ने तो अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने का नक्काशीदार हार अर्पण किया, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए है।
1: बाबा जब भी बुलाते हैं तब आना होता है और बाबा के दरबार में आकर बहुत ही शांति और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसी पावन धरती पे हैं कि जहाँ पर हमें सब चिंता से मुक्त होते हैं और बाबा के चरणों में ऐसे ही लीन हो जाते हैं कि सब सुख सब चीज हमें यही दिखाई देती है।
2: 35 साल से हम लोग आ रहे हैं और हमारे बाबा की आस्था ऐसा है, जो आज तक है हमारे पास वो बाबा की वजह से ही है सब कुछ। हमने तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा के खुद देखे हैं, लाइव देखे हैं जो हम लोग यहाँ पे आते हैं।
3: 24 साल तक मैं पुना से शिरडी चल के आ रही है और बाबा ही हमारे गुरु है। गुरु हमारे बाबा इतने है कि हमारे बहुत सारे कुछ मनोकामना पूरे करते हैं।
4: आज भी जो है एक सोने का हार आया है, उसका वेट जो है वो 300 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो है वो 47 लाख है। ऐसा के 1,70,00,000 का जो है सोने का सोने के दागिने जो है वो बाबा को भक्तों ने चढ़ाए।
0: महाराष्ट्र के ही अकोला में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी समर्थ केंद्र श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइंस गुरु दर्शन के लिए लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना, आरती और गुरु वंदना कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट किया।
5: हम फिलहाल है अकोला के स्वामी समर्थ, जो सभी लोगों के लगभग यहाँ पर आए सभी लोगों के जो है उन्हें गुरु मानते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वामी समर्थ महाराज का जो है यहाँ जाप किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, मानो हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन आपका निष्फल हो जाएगा। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है और इसी को लेकर आज ये पावन पर्व पर जो है यहाँ पर स्वामी समर्थ केंद्र में अपने गुरु को यहाँ पर उनकी गुरु दक्षिणा उन्हें देने का एक छोटा सा काम हर भक्त करता है।
0: पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी माना गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को कई वेदों और पुराणों से परिचित कराया था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान की परंपरा भी है। यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और अयोध्या के सरयू तट पर लाखों की संख्या में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, अपने गुरु की पूजा की और फिर दान दिया।
6: अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो सरयू नदी के तट पर दिख रहा है। लोग सुबह से स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, मठों में भीड़ है।
7: हम लोगों ने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के वाले दिन आज हम लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद जो है हम लोग दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ पे गुरु को अपना दान दक्षिणा करेंगे, फिर जिनका जिनका आश्रम है, जिनके गुरु है वो लोग अपने अपने अपने आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे।
8: पूरे फैमिली है साथ में, बस भगवान का दुआ है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मनोकामना अच्छी पूरी हो।
0: अयोध्या के मठ मंदिरों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की उनके भक्तों ने पूजा की। इसी तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जताई।
9: सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, संत हैं, शिष्यगण हैं, सभी गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और गुरु की महिमा अनंत है। कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनादि है और उसकी जितनी भी जो है चराचर जगत में जीव हैं सबके उत्थान के लिए गुरु होते हैं और गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता है। और आज हम लोग गुरु जी का पूजन किया हम लोगों ने और जितने शिष्यगण थे और देख रहे हैं आप कितने भक्त अनुयायी आ रहे हैं, बाहर में भी बहुत से लोग हैं और आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
0: भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय बताया गया है, इसलिए कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी से नितिन मिराणे, अकोला से धनंजय साबले, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
12: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
11: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना, यूपी में कावड़ यात्रा की जबरदस्त तैयारी, भोले के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रयागराज।